0: 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ। बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे भक्तों की संख्या भी पहुंची 2.5 लाख के पार। दिल्ली एनसीआर में बदलने वाला है मौसम का मिजाज। सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और आंधी से गिर सकता है पारा। आईपीएल में पंजाब किंग्स 11 की लगातार चौथी हार। दिल्ली ने 3 विकेट से हराया। कप्तान अक्षर पटेल और मिलर के अर्धशतक से जीती दिल्ली। आज से कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज। फ्रांस के कांस शहर में 23 मई 2026 तक आयोजित। आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ कई भारतीय हस्तियां होंगी शामिल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
2: इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए उपमा लिखी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अच्छा, तेते पे एक बात कहें हम। तेते का अर्थ उपलब्ध कराना, तेते इसके 2-3 अर्थ होते हैं, पर एक अर्थ पे बात करें। जो आपको कठिन लगे वो हनुमान जी की चरण शरण में आप छोड़ दो। हम वचन देकर कह रहे, कोई काम किसी भक्त का साधक का ना हो रहा हो, यदि सच्चे मन से आप हनुमान चालीसा के 40 दिनों तक 100-100 पाठ का अनुष्ठान करोगे, हनुमान जी को करना ही पड़ेगा। जो सतबार पाठ कर कोई छूट है बंदी, महासुख होई। तो हनुमान जी तेते का अर्थ, हनुमान जी सरलता के साथ उसको उपलब्ध कराते हैं जिसकी आवश्यकता है, जो चाहिए। आहा, उत्तर प्रदेश की एक घटना है। ट्रेन गाड़ी रेलगाड़ी चलाने वाला एक बालक, उसका नाम पवन था, ट्रेन का ड्राइवर पवन नाम। गांव में जन्म हुआ, रेलवे का पायलट, रेल का पायलट बना, ट्रेन चलाता, ट्रेन से आता जाता, लेकिन हनुमान जी की भक्ति कर करके वो रेलवे का ड्राइवर बना। हनुमान जी की भक्ति में बड़ा मन लगता उसका, रातों भर हनुमान जी के लिए बैठा रहता। सुबह से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता, दर्शन करता, फिर स्टेशन जाता, फिर रेल चलाता, शाम को आता, फिर दर्शन करता, चाहे जितने बज जाए, समय बदलता रहता, रात को भी पूजन जप तप करता। धीरे धीरे उसका मन संसार से दूर होने लगा। आहा, हुआ क्या, कुछ दिन बाद उसके मन में वैराग्य जागृत हुआ। तो गांव जंगल में था, जंगल के बीच में हनुमान जी का मंदिर था।

वो मंदिर में जाके बैठ गए, अब उठाई नहीं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन वहीं बैठा रहा, नींद आए सो जाए, वहीं बैठ के जब करे। घर वाले बड़े परेशान, गालियां देवे। अच्छा, घर वाले तो घर ही वाले होते हैं, उनका तो एक ही काम है, हाँ, कमाओ धमाओ, काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के, कुछ कमाओ जाओ भाई। नौकरी करने जाओगे तभी तो मिलेगा, जब मिलेगा तभी तो हम लोगों का पेट चलेगा, तो खूब गाली गलौज करे। पर वो बेचारा सीधा सरल सज्जन आदमी कुछ बोला नहीं, प्रतिदिन भगवान का भजन करे, हनुमान जी का भजन करे, रेलगाड़ी चलाने नहीं गया। घर वाले रोने लगे, माता जी रोने लगी, गाली दी, मारपीट की, पर वो घर ही ना जाए, मंदिर में हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गया। 5-6 दिन बाद उसे होश आया, बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे। 5-6 दिन बाद उसको होश आया कि हम रेलगाड़ी चलाने नहीं गए, सरकार की वेतन मिलेगी, व्यर्थ की वेतन होगी, एक काम करते हैं, इस्तीफा दे देते। स्टेशन मास्टर के पास गया, जेब से इस्तीफा निकाला कि क्षमा करो, हम अब रेलगाड़ी चलाने नहीं आ पाते हैं, 6 दिन छुट्टी रही, अचानक से आ नहीं पाए, आगे भी हम आ नहीं पाएंगे, हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो, हमसे भूल हो जाती है, इसलिए हम व्यर्थ की बेफिजूली की वेतन नहीं लेना चाहते, आप हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो। पता है क्या बोले स्टेशन मास्टर? बोला, पागल हो क्या तुम? कह रहे 6 दिन से रेलगाड़ी चलाने नहीं आए? अरे रोज तो तुम रेलगाड़ी चलाने आते हो, अभी अभी तो थोड़ी देर पहले तुम रेलगाड़ी छोड़कर गए हो, इंजन को छोड़ करके गए हो, अभी अभी तुम हस्ताक्षर करके गए हो, और तुम कह रहे हम 6 दिन से नहीं आ पाए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी अभी तो गए, यही कपड़े पहन के गए। उसने कहा, आपको गलत फहमी हुई होगी, हमारा शरीर आपको दिखाई पड़ रहा कि हम रेलगाड़ी, देखो दाढ़ी बढ़ गई, हमें ध्यान ही नहीं है, हम आए ही नहीं, मंदिर पे रहे। स्टेशन मास्टर बोला, तुम पागल हो गए? तुम्हारा मानसिक स्थिति ठीक है जो इस्तीफा लेके आ गए? अरे रोज तुम रेलगाड़ी चलाने आते हो। उसने कहा, जरा रजिस्टर दिखाओ, हम अपने हस्ताक्षर चेक करें। जैसे ही रजिस्टर उठाया, उसने अपने हस्ताक्षर देखे, उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। कोई और नहीं, हम मंदिर में हनुमान जी की पूजा करते रहे और हमारे बदले हनुमान जी ड्यूटी निभाते रहे। वाह, धन्य है, धन्य है, धन्य है। इतना सुनते ही जब उसने रजिस्टर में 6 दिन के हस्ताक्षर देखे, ये हस्ताक्षर हमारे अलावा कोई नहीं बना सकता, ये हमारे साइन है, लेकिन इनको हमारे अलावा यदि कोई बना सकता तो केवल हनुमान जी बना सकते हैं। शायद उनसे रहा नहीं गया होगा, हम वहां पूजा करते रहे, वो यहाँ रेलगाड़ी चलाने आ गए। ऐसी अनेक घटनाएं, सत्य घटनाएं कलयुग की है, कलयुग की, जहां हनुमान जी साक्षात दर्शन दिए। भैया, जितने भी श्रोता यहां बैठे, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, भैया 7 चिरंजीव हैं पृथ्वी पर, अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। 7 चिरंजीवियों में एक हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा, हनुमान जी उनको आभास भी देंगे, दर्शन भी देंगे, मिलेंगे भी। हनुमान जी तो कलयुग में भी है, साक्षात है। हम औरों की क्या कहें, अपनी ही सुनाते हैं। भैया, जिनकी तुम कथा सुनने आए ना, जिनको आज बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा कहा जाता, पूरी दुनिया के लोग जानते, टीवी में आ जाते, हम चाहे जहां पहुंच जाते, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे धाम आ रहे, मिल रहे, पर भैया हम अपनी औकात जानते हैं, हमें, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले है। आज जरूर बड़ा नाम हो गया, ये है प्रवीण जी ने हमको यहाँ बुला लिया, हमें हेलीकॉप्टर भेजे जाते, हवाई जहाज भेजे जाते लेने के लिए। भैया, हमें अपनी औकात पता है, टूटी साइकिल नहीं हमारे पिताजी को जूझी, टूटी साइकिल से चप्पल नहीं खरीद पाए, लाइलॉन की चप्पल आती थी 20 रुपया 22 की, वो नहीं खरीद पाए, कुर्ता नहीं कभी खरीद पाए, एक ही कुर्ता में हमने 3-3 साल गुजारे। हमारी माता जी, ये कोई हम तुमको 20-40 साल पुरानी बात नहीं सुना रहे, मात्र 15 साल पुरानी बात सुना रहे भैया। हमारी माताजी अभी भी है भैया, एक साड़ी पहन के रहती थी, और जब साड़ी फट जाती थी ना, रस्सी से बांध लेती थी, दूसरी साड़ी नहीं होती थी, उसी से बांध लेती थी, पर कभी शिकायत नहीं करती।

तीन तीन दिन भूखे रहे, किसी ने नहीं पूछा। हमारे गांव वाले, हमारे हमारे अपने जिनको हम कहते थे ना, आज भी हम उनको अपना कहते, वो हमारे पिताजी का नाम कार्ड में नहीं लिखवाते थे कि हम फटे कपड़ा पहन के आ जाएंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। भैया ये हमारी औकात थी, इतने नालायक थे, ये हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है कि आज कथा कहने लायक हो गए, दरबार लगाने लगे, अस्पताल बनने लगा, बेटियों का विवाह होने लगा, जगह जगह बुलाया जाने लगा। भैया ये हमारा चमत्कार नहीं है, ये कलिकाल के देवता बजरंग बली का चमत्कार है। अच्छा भैया दूसरी बात, बाकी तो तुम मजाक में लेते, हम भी मजाक में ही बोलते, पर सच बता रहे, हमारे पिताजी कभी सपने में हमने नहीं सोचा कि विदेश जाएंगे, आज 12-12 देश जा रहे। अंग्रेजों के जो वहां के प्रेसिडेंट होते वो प्रधानमंत्री मिलने आते, हमें अंग्रेजी नहीं आती। भैया ये प्रत्यक्ष चमत्कार हनुमान जी का है, हम प्रार्थना करेंगे बांदा के पागलो, तुम दुनिया से आशा मत करना, आशा करनी ही है तो बजरंग बली से करना, ये कभी धोखा नहीं देते। जब कोई नहीं होता यही साथ देते, तुम दुनिया वालों के भरोसे मत रहना, ये दुनिया बहुत विचित्र है, ये दुनिया सिर्फ बड़ों बड़ों को देखती है। तुमने मंच पे नहीं देखा, देखा जो प्रसिद्ध होते हैं पैसा वाले होते हैं वही मंच पे आते हैं, गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आता है। गरीबों का कोई नहीं होता, गरीबों का तो भैया सिर्फ भगवान होता, सिर्फ भगवान होता। हमने वो दिन देखे हैं, हमने वो रातें देखी हैं, हमारी दीपावली में पूरी नहीं बनती थी, कभी यदि डालडा मिल जाए ना तो पूरी बन जाती थी ना, तो पता है जिस दिन पूरी बनती थी उसी दिन दीपावली कहलाती थी। भैया कली काल के देवता हनुमान जी हैं, बुंदेलखंड वासियों, बांदा के पागलो, जितने भी लोग जहां जहां हमारी कथा सुन रहे, हम तुमसे हाथ जोड़ करके कहेंगे, हमने वो अंधेरी रातें, वो बुरे दिन, वो भीख मांग कर हमने दिन गुजारे। भैया हम प्रार्थना करेंगे तुम भी दुनिया पर भरोसा मत करना, बजरंग बली पर भरोसा करना, ये तुम्हारे दिन बदलेंगे, तुम्हारे बच्चों के दिन बदलेंगे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम काम छोड़ो, खूब काम करो, खूब कमाओ, भगवान जय जय करे। भैया पता है हम बेटियों का विवाह क्यों करवाते, हमारी खुद की बहन की शादी में हमें 20,000 रुपया उधार नहीं मिले। आज लोग हमको दानी समझते, हम कोई दानी वानी नहीं है, कोई परोपकारी मत समझना, हिंदू हमें रुपया देते, हमारे चेले हमें चढ़ोतरी देते, हम बेटियों के विवाह में लगा देते, हमारा नहीं है कुछ, लोग हमें दे देते उसी को हम लगा। कोई आता जैसे अभी आई ये कर्नाटका से, तो हमने इनको कहा, बड़े आदमी, हमने कहा कि कुछ बेटियों का कन्यादान कर देना, बोले गुरुजी हम 11 बेटियों का कर देंगे, ऐसे ही जोड़ लेते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं। हाँ पर हमको संतुष्टि ये रहती कि भगवान हमारे हाथों से करवा रहा है, तो हमको तुम बहुत ज्यादा दानी वानी मत समझना, हम देखो साफ आदमी है, साफ कहते हैं, हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते, क्योंकि माया छोड़ने के प्रवचन इसलिए नहीं सुनाते कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुना रहे, तुम्हें कहां से सुनाए है? हम खुद दक्षिणा लेके आए हैं, तुम्हें कहां से सुनाए कि माया बेकार है, काय में बेकार है। भारत को यदि ताकतवर बनाना है तो पहले अर्थ संपन्न बनाना पड़ेगा। देखो जो है सो मुंह पे है, हम साफ साफ कहते हैं, हमें लाग लपेट, तुम आओ हमारे पास या ना आओ, हम तो सीधी सीधी भैया, इसलिए हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते कि माया बेकार है, ये है ना ना माया ही, पैसा सब कुछ नहीं होता, ऐसा कहने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए। भैया एक बात बोले, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला, मनुष्य तन पाकर हम लोगों का भाग्य तो देखो, बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया, पर उससे बड़ा भाग्य तो ये है भारत जैसा वतन पाया है? बड़ा भाग्य मनुष्य तन और बड़ा भाग्य भारत जैसा वतन, लेकिन भैया उससे भी बड़ा भाग्य और है, बोले क्या, सनातन जैसा धर्म पाया। पहला सौभाग्य मनुष्य तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, तीसरा सौभाग्य सनातन जैसा धर्म, और चौथा सौभाग्य कि सनातन में होकर भगवान की कथा सुनने का परम सौभाग्य पाया। सब नहीं सुन पाते, बड़े भाग पाए सत्संगा, रामायण में लिखा।

बड़े भाग से सत्संग मिलता है, सबको सत्संग नहीं मिलता। ना ना ना, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा, बिनु सत्संग विवेक ना होई पर राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता भैया। देखो कई लोग ऐसे हैं इसी बांदा में, हमीरपुर में, करतल में, नरेनी में, चित्रकूट में, महोबा में, सतना में, रीवा में, पन्ना में, छतरपुर में, सब नहीं आ पाए। कौन आ पाया? जिसे भगवान ने बुलाया है। इसी बांदा में कई लोग घर पे टीवी पे देख रहे और रीलें डाल रहे और पोस्ट डाल रहे। पहले के जमाने में कुछ राक्षस होते थे, यज्ञ होती थी तो हड्डी डालते थे, आज के जमाने में पोस्ट डालते। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे। इसे हमारी अंग्रेजी में कहते हैं सेम टू यू माय बेटा। तो सब नहीं आ पाए। कौन आ पाया? जिसे भगवान ने बुलाया। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा,

राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना राम जी की कृपा के बिना भैया सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संग को पाने के लिए राम जी की कृपा जरूरी है। मेरे पागलो, जितने भी आज बांदा की इस कथा के महामहोत्सव महाकुंभ में विराजमान हैं, खड़े हैं, आए हैं, बैठे हैं, भैया एक बात मान लो, हमारी गांठ बांध लेना, तुम पे भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। पर एक बात बोले, कह दो बोलो, जरा जोर से तो कहो, हम लोग भगवान से प्रेम करें ये आस्था है। क्या है? भक्ति नहीं है, आस्था। तुम यहां आ गए, ये आस्था है। हम तो कुछ और ही चाहते, पूछो क्या चाहते। तुम भगवान को प्रेम करते हो ये आस्था है, पर भगवान तुमसे प्रेम करने लगे ये भक्ति है, है? तो आप कथा में आ गए, ये कृपा है, लेकिन प्रभु तुम्हारे जीवन में आ जाए ये महाकृपा है। आप कथा में आ गए ये भाग्य है, लेकिन प्रभु तुम्हारे जीवन में आ जाए ये परम भाग्य है। बोलो है कि नहीं? तो कथा में इसलिए नहीं बैठो कि हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, इसलिए बैठो कि भगवान को भी हमसे प्रेम हो जाए। किसी शायर ने लिखा है, आज नहीं तो कल इकरार होगा, हमें इस बंसी वाले से प्यार हुआ है, इसको भी कभी हमसे प्यार होगा। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आहा हा, आज के भाग्य की क्या सराहना करें। चौथे दिन की कथा, हनुमान जी का चरित्र चल रहा। कल की कथा में कौन कौन आया था? चौपाई याद है हनुमान चालीसा की? आहा हा, हनुमान चालीसा पर जब कथा गा रहे थे, चौपाई बड़ी अद्भुत थी।

0: जब दुनिया में कोई कठिन काम तुम्हारे जीवन में आ जाए तो हनुमान जी की शरण मांग लेना, ले लेना।
1: कौन सी राशि को मेहनत का फल पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? कौन सी राशि का व्यक्ति अगर शनि देव की पूजा करे तो उसको मेहनत का फल जरूर मिलेगा? और कौन सी राशि का व्यक्ति अगर पीपल के वृक्ष में जल डाले तो जीवन का संघर्ष कम होगा? कैसे मिलेगा मेहनत का फल, राशि अनुसार जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
2: Hey America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/freeforever. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
2: somebody save me,
1: to timeless favorites,
2: and life is like a song,
1: and new discoveries.
2: So much more than a history. Wake up.
1: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगलवार, सुबह से हनुमान मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 11 लाख के पार, 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्तों की संख्या भी पहुंची 2.5 लाख के पार। दिल्ली एनसीआर में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और आंधी से गिर सकता है पारा। आईपीएल में पंजाब किंग्स 11 की लगातार चौथी हार, दिल्ली ने 3 विकेट से हराया, कप्तान अक्षर पटेल और मिलर के अर्धशतक से जीती दिल्ली। आज से कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज, फ्रांस के कांस शहर में 23 मई 2026 तक आयोजित, आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ कई भारतीय हस्तियां होंगी शामिल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: चारधाम यात्रा पर लगातार बढ़ रही भक्तों की संख्या। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास परिषद के मुताबिक अब तक 21,000 से ज्यादा श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवाओं से कर चुके हैं यात्रा। आंकड़ों के मुताबिक फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से संचालित शटल सेवाओं से 17,976 यात्रियों ने यात्रा की, जबकि चार्टर्ड सेवाओं के जरिए 3,974 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं चारधाम के दर्शन, लगातार बढ़ रही है संख्या। बाबा केदार के दरबार में देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा उत्साह, अब तक 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, कपाट खुलने से अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 3 लाख श्रद्धालु ले चुके हैं बद्री विशाल का आशीर्वाद। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मंगलवार को ही हुआ था हनुमान जी का भगवान राम से मिलन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, भस्म आरती में लिया हिस्सा। पूरी तरह शिव शक्ति में लीन दिखी एक्ट्रेस, ये भगवान शिव के निराकार स्वरूप को साकार में बदलने की एक जीवंत परंपरा है भस्म आरती। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में सरदार धाम भवन 3 का किया लोकार्पण, इसे श्री दुष्यंत और दक्षा पटेल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। पाटीदार समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए बना सरदार धाम छात्रावास, 2,000 छात्र छात्राओं के रहने की सुविधा। 150 करोड़ की लागत से तैयार सरदार धाम छात्रावास परिसर में यूपीएससी अध्ययन केंद्र, केंद्रीय भोजन कक्ष, ई लाइब्रेरी, सभागार और जिम। गुजरात में ये तीसरा प्रमुख सरदार धाम प्रोजेक्ट है जो समाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला सरदार गौरव रत्न सम्मान, पीएम ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने सर झुकाकर नमन किया। अठारह से 19 मई 2026 को नॉर्वे की ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1983 के बाद से किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री इंडिया नॉर्डिक समिट में लेंगे हिस्सा, साथ ही कई दौरे की विपक्षी बातचीत भी संभव। असम में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में हिमंत बिस्व शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई 2026 को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद, राज्य में तीसरी बार बन रही है एनडीए की सरकार। पश्चिम एशिया संकट पर भारत सरकार अलर्ट, आईजीओएम की बैठक, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। मुंबई में टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस कन्वेंशन सेंटर में टिस ग्लोबल कोलोविकियम 2026 का आयोजन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। गोवा के खांडेपार स्थित रामकृष्ण मिशन मठ में प्रस्तावित रामकृष्ण मिशन गोवा परियोजना की रखी गई आधारशिला, सीएम सावंत ने आयोजन में हिस्सा लिया। दिल्ली में आईसीएआर और आईसीएमआर के एक संयुक्त राष्ट्र मिशन सेहत का शुभारंभ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। स्वच्छ दिल्ली अभियान को लेकर सरकार सख्त, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने खान मार्केट में रात की सफाई और पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। बाजार में स्वच्छता बनाए रखने के लिए रोजाना रात के समय की जा रही है सफाई और धुलाई। इलाके का सौंदर्यकरण और लोगों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करना है मकसद। दिल्ली में शुरू हुआ बैरियरलेस टोल सिस्टम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू किया नया सिस्टम। मुंडका बकरवाला टोल पर नहीं रुकेंगी गाड़ियां, बिना रुकावट कटेगा टोल टैक्स, MLFF सिस्टम से सफर हुआ आसान। AI टेक्निक से बदला टोल सिस्टम, हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ी गाड़ियां, यात्रियों के समय की होगी बचत, नए सिस्टम से बचेगा ईंधन। दिल्ली में CII समिट में बोले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पिछली सरकारों के गड्ढों को हमने भरा, अब यूपी को बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ाने की बारी। देसी जुगाड़ देखकर दंग रह गए सचिन तेंदुलकर, बच्चों की अनोखी देसी कार का वीडियो किया शेयर, बोले सचिन परिस्थितियां किसी का इंतजार नहीं करती, बस मौका चाहिए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
11: कौन सी राशि को मेहनत का फल पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? कौन सी राशि का व्यक्ति अगर शनि देव की पूजा करे तो उसको मेहनत का फल जरूर मिलेगा? और कौन सी राशि का व्यक्ति अगर पीपल के वृक्ष में जल डाले तो जीवन का संघर्ष कम होगा? कैसे मिलेगा मेहनत का फल, राशि अनुसार जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
12: हाय, आई एम किंगस्टन बैगव्यूज। सम पीपल से टॉक स्पोर्ट्स इज पजेस्ड बाय द प्रीमियर लीग, बट दैट्स जस्ट नॉट क्रिकेट। We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
13: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
4: La Que Buena.
2: ESPN Radio.
5: We know LeBron has to be the best player on the planet to
2: get The Daily.
6: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
7: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल पाती, तो आज हम आपको बताएंगे आपकी राशि के अनुसार आप कौन से उपाय करें कि आपको आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल मिल सके। देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो मेहनत करते हैं उसका फल आपको कैसे मिले, क्योंकि हर बार मेहनत करने पर उसका फल मिले ये आवश्यक नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं मेहनत और फल के पीछे। देखिए, कुंडली के ग्रह बहुत हद तक बता देते हैं कि जीवन में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में मेहनत की स्थिति क्या रहेगी। कुंडली के त्रिकोण लग्न पंचम और नवम और इसके स्वामी जीवन के संघर्ष वाले हिस्से को बताते हैं, और लग्न पंचम और नवम जो कुंडली का त्रिकोण है ये बता देता है कि संघर्ष कैसा रहेगा और कितना रहेगा। त्रिकोण में भी जो पंचम भाव है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूर्व पुण्य का भाव है। इस भाव और इसके स्वामी की स्थिति अच्छी हो तो पूर्व पुण्य इस जीवन में मिलता है, मेहनत के परिणाम मिलते हैं और व्यक्ति का संघर्ष कम होता है। पंचम भाव अगर कुंडली में अनुकूल है, फेवरेबल है, तो व्यक्ति कम प्रयास में जीवन में सफलता पा जाता है। वैसे तो नवम भाव आपके भाग्य का है, लेकिन पंचम अगर मजबूत है तो आपका बैकग्राउंड शुरू से आपके रास्ते बनाने लगता है, और जब नवम का सपोर्ट मिल जाता है तो ये रास्ते लंबे समय तक आपको सफलता देने लगते हैं। देखिए, अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेष, वृष और मिथुन राशि के लोग अगर अपनी मेहनत का फल चाहते हैं, संघर्ष का फल चाहते हैं, तो क्या करेंगे। मेष राशि की अगर बात करें तो मेहनत का फल पाने के लिए, सफलता पाने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिएगा। रोज सुबह उनको जल चढ़ाइए, उनके मंत्रों का जप करिए, और हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर, धर्म स्थान पर जाकर प्रार्थना करिए। वृषभ राशि, मेहनत का फल अगर जीवन में चाहते हैं तो शनि देव की उपासना आपको थोड़ी बहुत जरूर करनी चाहिए। कम से कम रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए, अपने घर में भी, बाहर भी, और उनकी देखभाल करिए।
मिथुन राशि, अगर आप अपनी मेहनत का, संघर्ष का फल चाहते हैं तो हर शनिवार को हनुमान जी की उपासना करिएगा। हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें। मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ भी जरूर करिए। अगर पाठ करना कठिन लगता है तो मोबाइल पर ऑडियो पर लगाकर शांति से बैठकर सुनिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको आपकी मेहनत का बेहतर फल जरूर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। देखिए, अगर आपकी राशि कर्क है और आप अपनी मेहनत का फल पाना चाहते हैं, संघर्ष में सफलता चाहते हैं, तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। खास तौर से ज्यादा कुछ ना कर सकें तो सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़िएगा और बृहस्पतिवार को निर्धनों को और बुजुर्गों को पीली मिठाई बांटिएगा, आपको लाभ होगा। सिंह राशि संघर्ष की राशि है और सिंह वाले अगर चाहते हैं कि उनको मेहनत का, संघर्ष का फल मिले तो घर में एक केले का पौधा लगाएंगे। घर के पीछे की तरफ नियमित रूप से उसकी देखभाल करेंगे। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे। नियमित रूप से संकट मोचन पढ़ते रहें, हनुमान जी की शरण में रहें, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कन्या राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल आपको मिले, संघर्ष आपका सफल हो, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करिएगा। खास तौर से रोज नहीं कर पाते तो हर बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करें और शनिदेव की यथाशक्ति पूजा करें। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि तुला वृश्चिक धनु वाले ऐसा क्या करें जिससे उनको उनकी मेहनत का फल मिले। तुला की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल आपको मिले तो आप रोज शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। उसका पूरा नाम है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। रोज शाम को पढ़िए या सुनिए। भगवान विष्णु को रोज सुबह तुलसी दल भोग के रूप में अर्पित करिएगा और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं
तो निश्चित रूप से आपको संघर्ष का, मेहनत का बेहतर फल जीवन में प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले, संघर्ष कम हो, तो अपने घर में खास तौर से पीछे की तरफ एक केले का पौधा जरूर लगाइएगा और उसकी देखभाल करिएगा। शिव जी को हर सोमवार को जल और बेलपत्र मंदिर में जाकर अर्पित करिएगा और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको सही समय पर आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। धनु राशि, इनके जीवन में भी संघर्ष बहुत होता है, इनको मेहनत का फल मिलने में विलंब होता है। तो अगर आपकी राशि धनु है, आप चाहते हैं कि आपको आपके मेहनत का फल मिले, जीवन का संघर्ष कम हो, तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और पानी पीने के लिए, प्रयोग करने के लिए तांबे के बर्तनों का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, देखिए आपके जीवन में संघर्ष कम हो, मेहनत का फल आपको मिले, इसके लिए एक चांदी का कड़ा या एक चांदी का छल्ला, चांदी का छल्ला किसी भी उंगली में पहन लीजिए या चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण करें। जब भी मौका मिले पीपल के पौधे लगाएं या लगवाएं। कुंभ राशि, आपकी मेहनत सफल हो, आपका संघर्ष कम हो, इसके लिए शिव जी को पंचामृत अर्पित करिएगा और अगर रोज ना भी कर पाए तो सोमवार को थोड़ा सा पंचामृत शिवलिंग पर लगाइए और उसके बाद जल अर्पित करिए, बाकी पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। मीन राशि, मेहनत का फल मिले, जीवन में संघर्ष कम हो, इसके लिए पूर्णिमा का व्रत रखिए, केवल जल और फल ग्रहण करके। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का व्रत रखें और रोज हनुमान जी की पूजा करिए भगवान राम के साथ। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, शादी होने वाली है, गृह प्रवेश होने वाला है, मुंडन होने वाला है, तो उसकी शुरुआत के पहले हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को नारियल अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके घर का शुभ और मंगल कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनको छोटी छोटी चीज पाने में संघर्ष करना होता है। दुकान पे छोटी सी चीज खरीदने जाएंगे, उनके जाने के पहले ही खत्म होगी वो। तो अगर आपको हर छोटी चीज पाने में संघर्ष करना पड़ता है तो इसको कैसे बेहतर करें?
रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। दीपक जलाने के बाद दीपक को हाथ जोड़कर उसके बाद आसपास के हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, उनसे कृपा की प्रार्थना करिए। ऐसा करने से हर मामले में जो संघर्ष करना पड़ रहा है वो समाप्त होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगलवार, सुबह से हनुमान मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 11 लाख के पार, 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं भक्तों की संख्या। दिल्ली एनसीआर में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और आंधी से गिर सकता है पारा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आपकी मेहनत के फल के बारे में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं लेकिन उनको उसका फल नहीं मिलता, तो आपकी राशि के अनुसार आपको किस तरह से करनी है मेहनत ताकि आपको उसका फल मिले, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
4: अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, शादी होने वाली है, गृह प्रवेश होने वाला है, मुंडन होने वाला है, तो उसकी शुरुआत के पहले हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को नारियल अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके घर का शुभ और मंगल कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए।
3: और चलिए अब जान लेते हैं 12 मई 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
4: दिनांक 12 मई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 2:52 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:25 तक। राहु काल का समय शाम के 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: और आइए अब जानते हैं मेहनत का ग्रहों के साथ क्या संबंध है।
4: जी देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो मेहनत करते हैं उसका फल आपको कैसे मिले, क्योंकि हर बार मेहनत करने पर उसका फल मिले ये आवश्यक नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं मेहनत और फल के पीछे। देखिए, कुंडली के ग्रह बहुत हद तक बता देते हैं कि जीवन में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में मेहनत की स्थिति क्या रहेगी। कुंडली के त्रिकोण लग्न पंचम और नवम और इसके स्वामी जीवन के संघर्ष वाले हिस्से को बताते हैं और लग्न पंचम और नवम जो कुंडली का त्रिकोण है ये बता देता है कि संघर्ष कैसा रहेगा और कितना रहेगा। त्रिकोण में भी जो पंचम भाव है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्व पुण्य का भाव है। इस भाव और इसके स्वामी की स्थिति अच्छी हो तो पूर्व पुण्य इस जीवन में मिलता है, मेहनत के परिणाम मिलते हैं और व्यक्ति का संघर्ष कम होता है। पंचम भाव अगर कुंडली में अनुकूल है, फेवरेबल है, तो व्यक्ति कम प्रयास में जीवन में सफलता पा जाता है। वैसे तो नवम भाव आपके भाग्य का है लेकिन पंचम अगर मजबूत है तो आपका बैकग्राउंड शुरू से आपके रास्ते बनाने लगता है और जब नवम का सपोर्ट मिल जाता है तो ये रास्ते लंबे समय तक आपको सफलता देने लगते हैं।
3: और चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या उपाय करें।
4: देखिए अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेष, वृष और मिथुन राशि के लोग अगर अपनी मेहनत का फल चाहते हैं, संघर्ष का फल चाहते हैं तो क्या करेंगे। मेष राशि की अगर बात करें तो मेहनत का फल पाने के लिए, सफलता पाने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिएगा। रोज सुबह उनको जल चढ़ाइए, उनके मंत्रों का जप करिए और हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर, धर्म स्थान पर जाकर प्रार्थना करिए। वृषभ राशि, मेहनत का फल अगर जीवन में चाहते हैं तो शनि देव की उपासना आपको थोड़ी बहुत जरूर करनी चाहिए। कम से कम रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए अपने घर में भी, बाहर भी, और उनकी देखभाल करिए। मिथुन राशि, अगर आप अपनी मेहनत का, संघर्ष का फल चाहते हैं तो हर शनिवार को हनुमान जी की उपासना करिएगा। हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें। मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ भी जरूर करिए। अगर पाठ करना कठिन लगता है तो मोबाइल पर ऑडियो पर लगाकर शांति से बैठकर सुनिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको आपकी आपकी मेहनत का बेहतर फल जरूर प्राप्त होगा।
3: और चलिए वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
4: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या उपाय करें।
4: अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। देखिए, अगर आपकी राशि कर्क है और आप अपनी मेहनत का फल पाना चाहते हैं, संघर्ष में सफलता चाहते हैं, तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। खास तौर से ज्यादा कुछ ना कर सकें तो सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़िएगा और बृहस्पतिवार को निर्धनों को और बुजुर्गों को पीली मिठाई बांटिएगा, आपको लाभ होगा। सिंह राशि संघर्ष की राशि है और सिंह वाले अगर चाहते हैं कि उनको मेहनत का संघर्ष का फल मिले तो घर में एक केले का पौधा लगाएंगे, घर के पीछे की तरफ नियमित रूप से उसकी देखभाल करेंगे, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे। नियमित रूप से संकट मोचन पढ़ते रहें, हनुमान जी की शरण में रहें, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कन्या राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल आपको मिले, संघर्ष आपका सफल हो, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करिएगा। खास तौर से रोज नहीं कर पाते तो हर बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करें और शनि देव की यथाशक्ति पूजा करें। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
3: और आइए अब जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
4: कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
4: जी आज का पहला प्रश्न समर जी ने हमें लिखा है और समर जी हमें मेल लिखते

0: की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप पंडित जी से चाहते हैं पूछना, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। देखते हैं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका लेते हैं।
0: अगला प्रश्न देवदत्त जी ने हमें लिखा है, गुड़गांव से लिखते हैं। देवदत्त जी की जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1981। जन्म का समय सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी में बदलाव करना चाहता हूं काफी समय से, और उड़ीसा या उसके आसपास जाना चाहता हूं, तो क्या मेरी नौकरी में बदलाव होगा? क्या मेरा स्थान परिवर्तन हो सकता है? देवदत्त जी, आपकी कुंडली में नौकरी और स्थान में परिवर्तन की संभावना बनती है, और आने वाले समय में आप उड़ीसा में पहुंच जाएंगे, भुवनेश्वर के आसपास नौकरी पा जाएंगे, ये संभावना दिख रही है। अपना प्रयास जारी रखिए। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या उपाय करें।
0: अब जानते हैं कि तुला, वृश्चिक, धनु वाले ऐसा क्या करें जिससे उनको उनकी मेहनत का फल मिले। तुला की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल आपको मिले, तो आप रोज शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। उसका पूरा नाम है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। रोज शाम को पढ़िए या सुनिए। भगवान विष्णु को रोज सुबह तुलसी दल भोग के रूप में अर्पित करिएगा, और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संघर्ष का, मेहनत का बेहतर फल जीवन में प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले, संघर्ष कम हो, तो अपने घर में खासतौर से पीछे की तरफ एक केले का पौधा जरूर लगाइएगा और उसकी देखभाल करिएगा। शिव जी को हर सोमवार को जल और बेलपत्र मंदिर में जाकर अर्पित करिएगा और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको सही समय पर आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। धनु राशि, इनके जीवन में भी संघर्ष बहुत होता है, इनको मेहनत का फल मिलने में विलंब होता है, तो अगर

0: अगर आपकी राशि धनु है, आप चाहते हैं कि आपको आपके मेहनत का फल मिले, जीवन का संघर्ष कम हो, तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और पानी पीने के लिए, प्रयोग करने के लिए तांबे के बर्तनों का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, काम में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों की समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में लगातार उन्नति होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या उपाय करें।
0: अब ये जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग ऐसे कौन से उपाय करें जिससे उनको उनकी मेहनत का फल जल्दी मिले, संघर्ष कम हो जाए। मकर राशि, देखिए, आपके जीवन में संघर्ष कम हो, मेहनत का फल आपको मिले, इसके लिए एक चांदी का कड़ा या एक चांदी का छल्ला, चांदी का छल्ला किसी भी उंगली में पहन लीजिए या चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण करें। जब भी मौका मिले पीपल के पौधे लगाएं या लगवाएं। और एक काम आप और भी कर सकते हैं, रोज ना भी कर पाए तो शनिवार को बिल्कुल प्रातः काल पीपल के वृक्ष में अगर जल डालें तो आपके लिए बेहतर होगा, मेहनत सफल होगी। कुंभ राशि, आपकी मेहनत सफल हो, आपका संघर्ष कम हो, इसके लिए शिव जी को पंचामृत अर्पित करिएगा, और अगर रोज ना भी कर पाए तो सोमवार को थोड़ा सा पंचामृत शिवलिंग पर लगाइए और उसके बाद जल अर्पित करिए, बाकी पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। एक तुलसी की माला आपको गले में पहननी चाहिए। इससे क्या होगा कि लक फैक्टर आपका बेहतर होगा और जीवन में घटने वाले आकस्मिक उतार चढ़ाव से आप बचेंगे। मेहनत के अच्छे परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। मीन राशि, मेहनत का फल मिले, जीवन में संघर्ष कम हो, इसके लिए पूर्णिमा का व्रत रखिए। केवल जल और फल ग्रहण करके महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का व्रत रखें और रोज हनुमान जी की पूजा करिए। भगवान राम के साथ हनुमान जी का एक नाम है रामेष्ट, आप रामेष्ट नाम का जप भी कर सकते हैं, उससे हनुमान जी और श्री राम दोनों की पूजा हो जाएगी। ऐसा रेगुलरली करिए, संघर्ष कम होगा, मेहनत के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
1: तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय ठीक होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: और चलिए जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न सौमित्र ने हमें लिखा है और सौमित्र हमें हैदराबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मार्च 1989। जन्म का समय सुबह के 10:05, जन्म स्थान है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सौमित्र कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। सौमित्र, आपकी कुंडली में विलंब से विवाह के योग जरूर बनते हैं, लेकिन ऐसा कोई योग नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी। आप इतना परेशान मत होइए, आपकी शादी जरूर होगी। साल 2026 के अंत तक आपका विवाह फाइनल होना चाहिए और 2027 के शुरुआती समय में, जनवरी से जून वाले समय में आपके विवाह होने की संभावना बनती है। प्रयागराज आपका मूल स्थान है, उसी के आसपास आपकी शादी होने की संभावना जन्म स्थान के निकट दिखाई दे रही है। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार दुर्गा माता के मंत्र का जप करें, ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न विनीता मिश्रा ने हमें लिखा है और विनीता हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 24 जून 1993, जन्म का समय रात में 11:24, जन्म का स्थान है जौनपुर उत्तर प्रदेश और मेल लिखती हैं लखनऊ से। ये कह रही हैं कि मेरी शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है, लेकिन वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इस विवाह से अलग हो जाना चाहिए, तो क्या ये मेरा विवाह चल सकेगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विनीता, केवल एक पक्ष की गलती वैवाहिक जीवन में नहीं होती है, आपको भी क्रोध बहुत है और आप एडजस्टमेंट नहीं कर रही हैं। थोड़ा सा संतुलन बना के चलिए, इतना मामला गड़बड़ दिखाई नहीं दे रहा है। अक्टूबर 2026 तक थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है, लेकिन अगर आप शांति से रहें, बैलेंस करके चलें, तो उसके बाद वैसे भी आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, लखनऊ में रहेंगी नहीं, स्थितियां आपकी इंप्रूव हो जाएंगी और विवाह आपका टूटेगा नहीं। अगर बुद्धिमानी से रहें तो ये शादी चलेगी भी और बेहतर भी होगी। रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं पढ़ पाती हैं मोबाइल पर लगा करके बैठ करके सुनिएगा रोज प्रातः, और एक पीला पुखराज लगभग 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पति वार की प्रातः धारण करें, आपको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन 12 मई 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: जन्मदिन 12 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, करियर में काफी हद तक स्थिरता आएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है और धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष भर अगर आप जप करें तो आपके लिए वर्ष अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना खराब होता है, वस्त्रों का दान करो तो बदले में पैसे ले लो। क्या वस्त्रों का दान किसी को भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं? देखिए, अलग अलग रंगों के वस्त्र अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। उसी रंग के वस्त्र का दान सामान्यतः करिए जो ग्रह आपका खराब है। और आप कपड़ा कभी भी दान करें, किसी को भी दान करें, साफ करके अच्छी तरह से धो करके दीजिए। और ऐसी कोई मान्यता नहीं है, ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि आप किसी को वस्त्र देंगे तो बदले में 2-4-10 रुपए उससे लेंगे। ऐसी कोई मान्यता, ऐसा कोई नियम नहीं है।
1: और आइए जान लेते हैं 12 मई 2026 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 12 मई 2026 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6:00 से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 मई मंगलवार शाम को 6:00 से 7:30 के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को इस एक सवा महीने में वर्तमान में किस तरह के स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। आज की गुडलक राशि है मिथुन। इस समय अपने खान पान का, अपने पाचन तंत्र यानी डाइजेशन का ध्यान दीजिए। और अगर डॉक्टर ने कोई दवा लिखी है किसी समस्या के लिए तो उसको खाने में लापरवाही मत करिएगा।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनको छोटी छोटी चीज पाने में संघर्ष करना होता है। दुकान पे छोटी सी चीज खरीदने जाएंगे, उनके जाने के पहले ही खत्म होगी वो। तो अगर आपको हर छोटी चीज पाने में संघर्ष करना पड़ता है तो इसको कैसे बेहतर करें? रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। दीपक जलाने के बाद दीपक को हाथ जोड़कर उसके बाद आसपास के हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, उनसे कृपा की प्रार्थना करिए। ऐसा करने से हर मामले में जो संघर्ष करना पड़ रहा है वो समाप्त होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कौन सी राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनको मेहनत में सफलता मिलती है?

0: कौन सी राशि के लोग अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें तो उनके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है। अलग अलग राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
2: Gone! Home run!
1: NHL.
2: It scores!
1: College basketball.
3: He shoots it immediately.
4: He makes it in!
1: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
5: One lap to go.
1: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
7: It's your boy,
6: just
7: Jay-Z.
6: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: और चलिए रुख करते हैं अयोध्या का, जहां मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में चल रहा काम भी जल्द पूरा होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां 30 जून तक अपना काम पूरा कर लेंगी। अब सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय पर सबसे ज्यादा फोकस है। इस संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं और इनमें एक गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी। देखिए खास रिपोर्ट।

0: सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
1: पहले प्रभु श्री राम का ये नया नवेला मंदिर राम भक्तों के लिए खुला और फिर मंदिर परिसर में बने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद इनके द्वार भी दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। लिहाजा देश और दुनिया भर से अयोध्या आने वाले राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का ये उत्साह और उमंग इनके आध्यात्मिक आनंद को बयां कर रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर और दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिसर में चल रहा दूसरा काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केवल रखरखाव से जुड़ी टीम ही परिसर में मौजूद रहेगी। हालांकि परिसर से बाहर ट्रस्ट कार्यालय, विश्राम गृह और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का काम चलता रहेगा।
2: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया था कि शहीद स्तंभ, पुण्य स्तंभ जो है स्मृति का, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य बाकी नहीं है।
1: नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर की पूर्णता के बाद अब ट्रस्ट का पूरा जोर सरयू तट पर बन रहे भव्य संग्रहालय के काम को पूरा करने पर है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में 20 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें एक विशेष गैलरी प्रभु राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित होगी। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि संग्रहालय में एक ऐसी दिव्य दर्शन गैलरी होगी जहां श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होगा मानो वो स्वयं मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे हों। वहीं संग्रहालय में देश के विभिन्न भाषाओं, लिपियों और कालखंडों में लिखे गए राम साहित्य और रामायण की दुर्लभ पांडुलिपियों को भी रखा जाएगा, ताकि शोधार्थियों और युवाओं को शोध के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकने की जरूरत न पड़े। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, राम साहित्य और अध्यात्म पर शोध का विश्व स्तरीय मंच भी बनकर उभरेगा। कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के बूते अयोध्या न सिर्फ इस वक्त धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी चमक बिखेर रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हैं। इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे तो कुछ आपको गुदगुदाएंगे और कुछ आपको इमोशनल भी कर देंगे।
4: जीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल यहाँ एक महिला पुलिसकर्मियों के भरोसे अपना बच्चा छोड़कर टॉयलेट चली जाती है, जो ये दिखाता है कि यहाँ के लोग पुलिस वालों पर कितना भरोसा करते हैं। वीडियो में महिला गोद में बच्चा लिए आती है और दो पुलिसकर्मियों को आता देख रुक जाती है। फिर वो महिला पुलिसकर्मी को अपना बच्चा थाम देती है और खुद टॉयलेट चली जाती है। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी बच्चे को प्यार से पुचकारती रहती है, जब तक कि वो महिला आ नहीं जाती। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर डांस का ये वीडियो लाखों लोगों का दिल जीत रहा है। एक पिता और उसकी बेटी की ये जुगलबंदी लोगों को पसंद आ रही है। वीडियो की सबसे खास बात ये कि जिस अंदाज में ये मासूम हर बीट को समझकर परफॉर्म कर रही है, उसे देख लोग हैरान हैं।
5: Why did you come to the police station?
6: Will you marry me?
4: सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा सीधे एक पुलिसकर्मी के पास पहुंचकर उसे रिंग के साथ प्रपोज कर देता है। वीडियो में बच्चा बेहद कॉन्फिडेंस के साथ पुलिसकर्मी के सामने खड़ा होकर रिंग आगे बढ़ाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग बच्चे की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों में होता है। वहीं कई यूजर्स ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई, ये बच्चा आखिर किसका है जिसने सीधे पुलिस वाले को ही प्रपोज कर दिया।
7: घर में ना शादी है, एक्चुअली ब्लिंकिट का आया 2000 रुपए बिल, तो अब ब्लिंकिट वाले भैया कह रहे टूटे पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ब्लिंकिट वाले भैया को पैसे दे दो।
4: शादी के माहौल में एक साधारण डिलीवरी उस समय खास बन गई जब परिवार ने ब्लिंकिट एजेंट को कैश की जगह दूल्हे के नोटों वाली माला दे दी। 2100 रुपए की इस माला को देख एजेंट की खुशी देखने लायक थी।
8: ब्लिंकिट वाले भैया को दे दिया गया हार, अभी अपने
4: उसने मुस्कुराते हुए माला पहन ली और पल को खुलकर एंजॉय किया। ये छोटा सा वाकया सोशल मीडिया पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आया। हाथी इंसानों के सबसे बड़े साथी होते हैं और जब बात दो बच्चों की हो तो फिर कहना ही क्या। यहाँ देखिए बेबी एलिफेंट और इस बच्ची की दोस्ती कितनी गहरी है। ये उसके लिए आइसक्रीम लाई है और बदले में हाथी उस पर खूब सारा प्यार बरसा रहा है। हाथी की बच्ची के साथ ही बॉन्डिंग देख लोग मुस्कुरा रहे हैं।
6: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: कौन सी राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनको मेहनत में सफलता मिलती है? कौन सी राशि के लोग अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें तो उनके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है? अलग अलग राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
10: Jack, you're killing me.
9: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
11: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
18: ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार, सुबह से ही हनुमान मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़।
3: चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 11 लाख के पास, 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन को भी उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़।
18: तेजी से आगे बढ़ रही है जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी, मंदिर सूत्रों के अनुसार अब तक तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य हुआ पूरा।
3: मौसम का मिजाज सक्रिय हुआ, पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और आंधी का अलर्ट, पहाड़ों में भी बदला मौसम, जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बारिश।
18: आज से कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज, फ्रांस के कान शहर में 23 मई 2026 तक आयोजन, आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ कई भारतीय हस्तियां होंगी शामिल।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पढ़ने।
18: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, नमस्कार सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
3: गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
18: शुभ समाचार की शुरुआत बड़ा मंगल के साथ होगी। आज ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगलवार है, सनातन में बड़े मंगलवार का खास महत्व माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से बजरंगबली की पूजा की जाए तो वो सारे संकट हर लेते हैं। इसी खास मौके पर देश भर के हनुमान मंदिरों से सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, तो कैसा है वहां का नजारा आगे आपको दिखाएंगे।
3: तो वहीं हर दिन एक साथ चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, अभी तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं, ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ सकता है, तो चारधाम भी आगे आपको लेकर चलेंगे।
18: जी हाँ बिल्कुल गीतिका, देखिए साथ ही साथ बात मौसम के बदलते हुए मिजाज की भी हम करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में मौसम में बदलाव हो सकता है, आंधी बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के मैदानी इलाकों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, और कहां कहां हो सकती है बारिश आगे आपको बताएंगे।
3: इसके अलावा आपको आईपीएल के मैदान भी लिए चलेंगे, आज हैदराबाद और गुजरात का मैच होगा, ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, तो कैसे ये दोनों टीमों की तैयारी ये भी आगे आपको बताएंगे।
18: यहां देखिए इसके अलावा स्पेन की सैर पर आपको लिए चलेंगे, ऐतिहासिक शहर गिरोनाक में इन दिनों जो है फूलों का जादू छाया हुआ है, और एक फेस्टिवल के दौरान पूरा शहर रंग बिरंगी कलाकृति और खुशबू से महक रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 बड़ी खबरें।
3: अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़ा मंगल पर भक्ति का सैलाब उमड़ गया, दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई। बड़ा मंगल को लेकर सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी रही, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए।
18: चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, अब तक करीब 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने चारधाम यात्रा की, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में करीब 3 लाख भक्तों ने हाजिरी लगाई।
3: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के दरबार में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया पहुंची, जहां उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया, वहीं तमन्ना पूरी तरह से शिव की भक्ति में लीन नजर आई, वहीं एक्ट्रेस को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ लगी रही।
18: पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पालघर के गुहर गांव में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का शुभारंभ कर दिया, सौर ऊर्जा से पूरा गांव रोशन होगा, इस योजना से 130 परिवारों को मुफ्त में बिजली मिलेगी, साथ ही साथ खेती करने में भी लोगों को आसानी प्राप्त होगी, वहीं पर क्लीन एनर्जी से गांव की तस्वीर बदल जाएगी।
3: राजस्थान के उदयपुर में शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को कार की जगह जेसीबी में बैठाकर अपने घर लेकर आया। रास्ते से जब दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ गुजरा तो हर कोई देखकर दंग रह गया। दूल्हा रूपलाल पेशे से जेसीबी ड्राइवर है। वो 6 मई को अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर ढाला गांव में बारात लेकर गया। विदाई के बाद जेसीबी बुलाई और दुल्हन को उसने बैठा कर ले आए।
18: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में 118 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टीम इंडिया का दबदबा कायम है। सालाना अपडेट के बाद भी भारतीय टीम दुनिया की नंबर वन टीम लगातार बनी हुई है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है जो भारत से 5 रेटिंग के अंक पीछे। ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर।
3: आईपीएल 2026 के 56वें मैच में आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। 11 मैचों में 14 अंक के साथ दोनों टीमें फॉर्म में हैं और ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में शीर्ष पर पहुंचने के लिए बेहद अहम है।
18: चीन के लहासा में गोल्डन जूनियर इंटरनेशनल हिप हॉप प्रतियोगिता का चौथा सीजन शुरू हो चुका है। युवा डांसर्स ने ब्रेकिंग और पॉपिंग डांस में दमखम दिखाया। 3650 मीटर की ऊंचाई पर आयोजित इस प्रतियोगिता में स्ट्रीट कल्चर की झलक साफ तौर पर देखने को मिली। मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में युवाओं का जोश अद्भुत।
3: करण जौहर के धर्म प्रोडक्शन की फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर एक गहरी और भावनाओं से भरी प्रेम कहानी की झलक देता है। पूरे ट्रेलर में अनन्या और लक्ष्य ही नजर आते हैं। फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

तो शुभ समाचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुभ मंगल के साथ आज का दिन बहुत शुभ है। आज दूसरा बड़ा मंगल है। बजरंगबली के भक्तों के लिए आज के दिन का विशेष महत्व है। इसे आस्था, सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि बड़े मंगल के दिन अगर सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की जाए तो साधक के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगल के दिन ही हनुमान जी को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था और इसी दिन भगवान श्री राम और महाबली हनुमान का मिलन हुआ था। इसलिए इसे महाबली की कृपा पाने का शुभ दिन माना जाता है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाने के इस प्रकार से बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तमाम भक्त ऐसे भी हैं जो प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में दूसरे बड़े मंगल पर ये तस्वीरें देश के कोने कोने से निकल कर आ रही हैं। बजरंगबली की शक्तियों का एहसास

सनातन में बड़े मंगल का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। खासतौर पर ज्येष्ठ मास में आने वाले मंगलवार बजरंग बली की पूजा के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इसी पावन दिन हनुमान जी की पहली भेंट भगवान श्री राम से हुई थी, इसलिए बड़े मंगल का महत्व और बढ़ जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इस महीने में अधिक मास लगा है। मतलब ये कि इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 महीने के बराबर है और इस महीने में कुल 8 बड़ा मंगलवार होने वाले हैं। इसलिए इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से हनुमान जी की आराधना करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है।

शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही हुई थी। एक कथा ये भी है कि हनुमान जी ने भीम के शक्तिशाली होने का घमंड भी तोड़ा था। इसी कारण ज्येष्ठ माह के दौरान पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से पुकारा जाता है। हनुमान जी की पूजा हर मंगलवार के दिन की जाती है, लेकिन ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन उनकी पूजा करने का महत्व अलग ही है। आज ज्येष्ठ माह का दूसरा मंगलवार है, यानी बड़ा मंगलवार है। इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है।

0: दूसरे बड़े मंगल पर सुबह 9:07 से लेकर दोपहर 12:23 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इसके बाद शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:03 से लेकर रात 8:06 तक रहेगा। हनुमान जी की पूजा सुबह सुबह करना श्रेष्ठ माना जाता है। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन बाबा को चोला चढ़ाना फलदायी होता है। दूसरे बड़े मंगल के दिन रोग पंचक का साया भी रहेगा। पंचक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी को सर्वशक्तिशाली माना गया है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा पंचक में भी की जा सकती है। कहा जाता है कि पंचक में पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से अज्ञात भय, तनाव और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। भंडारा भी कर सकते हैं, बस इस दिन कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें, न ही मांगलिक काम करें। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं, इसलिए उनकी पूजा के साथ श्री राम के मंत्रों का जाप करना बेहद जरूरी माना गया है। कहा जाता है कि राम नाम के बिना हनुमान पूजा अधूरी मानी जाती है। बड़ा मंगल के दिन हनुमत साधना करने वाले साधक को भूलकर भी काली या नीले रंग के कपड़ों को धारण नहीं करना चाहिए। आज के दिन लाल, पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। मान्यता के अनुसार बड़ा मंगल के दिन हनुमत साधना और व्रत करने वाले साधक को सात्विक चीजों को ग्रहण करना चाहिए और मांस, मदिरा आदि तामसिक चीजों से पूरी तरह दूरी बनाए रखनी चाहिए। ज्योतिषविदों का कहना है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, अगर वो बड़े मंगल के दिन कुछ विशेष उपाय कर ले तो उनकी समस्या दूर हो सकती है। इस दिन पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, इसके बाद मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से मंगल दोष शांत होता है और विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो आज दूसरा बड़ा मंगल है और बड़ा मंगल पर प्रयागराज में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। सुबह से संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और देखिए किस तरह से श्रद्धालु सुबह सुबह लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। ये प्रयागराज से तस्वीरें आप देखिए लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की, जहां बड़ा मंगल का आज दूसरा दिन और इस शुभ अवसर पर सुबह सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में लगा हुआ है। मंदिर परिसर की ये तस्वीरें, कितने श्रद्धालु हैं जो सुबह होते ही मंदिर पहुंच चुके हैं और प्रवेश द्वार से कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर प्रांगण की तस्वीरें देखें कि कितने श्रद्धालु बाहर हैं और कितने श्रद्धालु अंदर बाबा के दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं।
2: और देखिए
3: आज मंगलवार के शुभ अवसर पे हम लोग लेटे हनुमान जी की। आज में लेटे हनुमान जी के आज दर्शन करने आए हुए हैं। आज मंगलवार के शुभ अवसर पे हम लोग लेटे हनुमान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पढ़ाई करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करके कुछ जीवन में सफल होना चाहते हैं।
4: आज मंगलवार है और ये बड़े हनुमान मंदिर के पास आए हैं दर्शन के लिए। हम लोग बलिया से आए हैं।
5: आज हम लोग आए हैं बंधवा हनुमान मंदिर आए हुए हैं और आज बड़ा मंगल है, दूसरा मंगल है। आज बहुत भीड़ भी है यहाँ पे, देख रहे हैं कि मतलब लाखों मतलब हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। सुबह से यहाँ पे मतलब पूजा पाठ चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है।
2: बिल्कुल देखिए, बड़ा मंगल पर अयोध्या में राम भक्तों ने बंदरों की सेवा की बकायदा, और राम भक्तों ने बंदरों को केला और खाने की दूसरी चीजें भी अर्पित की। बड़ी संख्या में बंदर खाने के लिए वहां पर पहुंचे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से आज दूसरा बड़ा मंगल है। ऐसे में बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन कर रहे हैं बजरंग बली के, बल्कि उन्हीं का इस रूप कहते हैं कि बंदरों को भी इस प्रकार से प्रसाद वितरण कराने की एक परंपरा है, जिसमें बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं बंदरों को खाना खिलाते हुए, केला खिलाते हुए आपको नजर आ जाएंगे।
6: लेव।

0: श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त जो हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए। और देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह सुबह भक्त आज के इस खास मौके पर बड़ा मंगल पर हनुमान जी के आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मयंक शुक्ला अयोध्या से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले रुख करना चाहूंगी अयोध्या का। मयंक जरा अयोध्या की रौनक दिखाइए कि आज बड़े मंगल पर कितने श्रद्धालु कितने भक्त हैं जो सुबह से मंदिर जो है वहां पहुंच चुके हैं।
1: जी बिल्कुल, सुबह 4 बजे से ही ये यहाँ हनुमानगढ़ी की भीड़ है और काफी संख्या में यहाँ पे भक्त हैं, क्योंकि आज ज्येष्ठ माह का दूसरा मंगल है और उसको लेकर काफी श्रद्धालु यहाँ पे अभी तक देखिए आप जो कतार है वो सीधा हनुमानगढ़ी से लेकर ये पूरी जो रो है ये भरी हुई नजर आएगी, क्योंकि जो यहाँ पे शासन प्रशासन है उसने भी कर रखा है और साथ ही दूर दराज के लोग आए हैं और सुबह से ही यहाँ पे जो भक्त हैं वो बजरंग बली के दर्शन करेंगे क्योंकि राम द्वारे तुम रखवा रहे। तो ये भी है हनुमान चालीसा में एक दोहा, तो उसको लेकर जो द्वार पे बैठे हैं बजरंग बली क्योंकि अयोध्या धाम में, तो यहाँ पे पहले बजरंग बली का दर्शन फिर रामलीला का दर्शन, तो उसको लेकर काफी ज्यादा सुबह से ही हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर तक पूरी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और काफी दूर दूर से लोग आए हैं और अपनी हर एक मनोकामना को लेकर।
2: बिल्कुल मयंक, और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु लगातार पहुंचे हुए हैं दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज भी लगातार जुड़े हुए हैं, पंकज प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। पंकज आप भी तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या रौनक है, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर पहुंच रहे हैं वहां पर।
3: प्रयागराज में भी श्रद्धालु संगम के लेटे हनुमान मंदिर में पहुंचे हुए हैं और सुबह ही भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है और आज ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगल है तो मंदिर में सुबह से ही यहाँ भक्तों की भारी भीड़ है। यहाँ बजरंग बली लेटी हुई अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं और जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी करते हैं और यहाँ पर बजरंग बली को जो श्रद्धालु हैं आम हैं और तमाम मीठे शरबत हैं और जल यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। यहाँ भक्त सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और ये ब्रह्म मुहूर्त से सिलसिला लगा हुआ है और अभी दोपहर 12 बजे तक ये मुहूर्त है लेकिन शाम तक फिर आरती होगी। इसके बाद जो श्रद्धालुओं की भीड़ है लगातार ये यहाँ पर लगी हुई है तो सुबह से ही भक्त ज्येष्ठ माह के दूसरे मंगल पर बजरंग बली के दर्शन बड़ी संख्या में कर रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालु आकर अपने परिवार के सुख शांति की कामना कर रहे हैं।
0: तो देखिए तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं कि किस तरह से लेटे हुए हैं। आज का दिन ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगलवार के रूप में जिसे मना रहे हैं लोग और आज के दिन की बड़ी मान्यता है, लोग कहते हैं आज के दिन हनुमान जी से जो मांगो वो मुराद पूरी होती है।
1: जी बिल्कुल, अपनी उन मुरादों को लेकर आए हैं यहाँ हनुमान जी के द्वार पे, तो लोग खड़े हैं यहाँ पे और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनको दर्शन प्राप्त हो बजरंग बली के, क्योंकि जो भीड़ है उससे ही आपको अंदाजा लग सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो बजरंग बली के दर्शन के लिए व्याकुल हैं और लोग बहुत काफी देर से यहाँ खड़े हैं बजरंग बली के दर्शन करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोग आज पहुंच चुके हैं क्योंकि ये हनुमानगढ़ी है, अयोध्या का हनुमानगढ़ी है और यहीं से ये बजरंग बली है जो यहाँ पे जो राजा है और इनको राजा के रूप में है और अयोध्या का राजा बजरंग बली है, कलयुग के देवता बजरंग बली, तो उनका आशीर्वाद लेने ज्येष्ठ माह के पहले दूसरे मंगल पर जो है यहाँ पे लोग उमड़े पड़े हैं और दूर दराज से लोग आए हैं सुबह से ही। और काफी आप देखेंगे कि आज जो मौसम है वो थोड़ी सी गर्माहट भी है मौसम में और गर्मी भी है, धूप भी है लेकिन चिलचिलाती धूप।
2: बिल्कुल मयंक, चिलचिलाती धूप है और उसके बावजूद बड़ी संख्या में तमाम जो भक्त हैं वो आप संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी, सिर्फ आपको मस्तक ही नजर आएंगे दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो। मयंक बिल्कुल, और पंकज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, कह रहे हैं कि हम जब भी हनुमान जी का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि राम भक्त हनुमान, तो ऐसी भी बड़ी संख्या है श्रद्धालुओं की जो राम मंदिर में भी जा रहे हैं या जो राम दरबार है किसी भी मंदिर में, ऐसे मंदिरों की ओर भी लगातार रुख कर रहे हैं।
3: हनुमान जी जो बजरंग बली है वो भगवान श्री राम के प्रिय हैं और उसको लेकर के भी जो श्रद्धालु हैं भगवान राम के मंदिर भी जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर लेटी हुई परिक्रमा में सब भक्त आए हैं दर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर श्रद्धालु हमारे साथ हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगल है दर्शन करने के लिए आए, क्या कहेंगे।

0: पतंग बलि हाँ लेटी हुई अवस्था में दर्शन देते हैं।
1: जी हाँ, लेटी हुई अवस्था में दिखाई, जब तो पहली बार आया आपको तो अच्छा लगा।
0: देखो जो भक्त हैं सुबह से ही यहाँ आए हैं और यहाँ पर बजरंग बलि लेटे हुई अवस्था में दर्शन देते हैं, क्योंकि यहाँ बजरंग बलि लेटे हैं और कहा जाता है कि प्रयागराज में बजरंग बलि लेट गए हैं, तो तमाम चीजें यहाँ पर श्रद्धालु भक्त जो आते हैं श्रद्धालु दर्शन करने के लिए और अपने परिवार की सुख शांति कामना करने के लिए यहाँ जरूर आते हैं। और हर मंगलवार को भक्तों की जो भारी भीड़ वो लगती है, लेकिन ज्येष्ठ माह में एक अलग रौनक यहाँ पर दिखती है। पूरे मंदिर को सजाया गया है, पूरी मूर्ति का पूरे सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया है, आरती की गई है। अब यहाँ शाम को 4 बजे फिर आरती होगी, तो श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोला जाएगा। अभी फिलहाल 12 बजे तक उन श्रद्धालुओं की भीड़ है वो देखने को मिल रही है।
2: जी पंकज, तो मयंक आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन जो है उससे कई कथाएं जो है वो जुड़ी हुई हैं। आज एक कथा ये भी बड़ी प्रचलित है कि हनुमान जी जो है वो राम जी से ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही मिले थे, इसीलिए इसे बड़ा मंगल के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाना, उन्हें जो है वो लड्डू चढ़ाने की बड़ी मान्यता है, इससे हनुमान जी खुश होते हैं।
3: जी बिल्कुल, आज के दिन ही भगवान श्री राम से बजरंग बली का मिलन हुआ था, तो उसको लेकर काफी कहावत भी है कि राम जी के चरणों में हमेशा हनुमान जी रहते हैं। तो ये अयोध्या है और अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी है और यहाँ पे जो बजरंग बली का मंदिर है वहाँ पे जो बजरंग बली है उनको जो है बेसन के लड्डू काफी प्रिय है और यहाँ पे जो चढ़ते हैं और चढ़ावे में लोग यहाँ पे बजरंग बली के लड्डू लाए। आप क्या लेके जा रहे प्रसाद में आज बजरंग बली के लिए, आप क्या लेके जा रहे हैं प्रसाद बजरंग बली के लिए? देखिए लोग भी कह रहे हैं कि बजरंग बली के लिए प्रसाद में जो है बेसन के लड्डू लेके जा रहे हैं और जो कि बजरंग बली को ज्यादा प्रिय है और ये हनुमान गढ़ी पे यहाँ पे चढ़ता है यहाँ पे डेली। और यहाँ पे जो सुबह 4 बजे से जो भक्तों की जो भीड़ है, जो कतार है वो यहाँ पे है और जगह जगह आप यहाँ पे देखिए जो प्रसाद से जो स्टॉल है वो लगे हुए हैं, यहीं से भोग प्रसाद लोग ले रहे हैं और यहाँ पे माला भी है जो कि बजरंग बली के मंदिर में जो चढ़ाई जा रही है। तो सुबह से भक्त जो है अपने हाथों में प्रसाद,
4: जितनी दूर तक देख पा रहे हैं हमें सिर्फ भक्तों की कतारें नजर आ रही हैं। अगर आप समझा सकें कि कितना वक्त लग रहा है अगर दर्शन करना हो किसी श्रद्धालु को तो कितने घंटों में दर्शन मुमकिन होंगे?
3: बिल्कुल, लगभग लगभग 15 से 20 मिनट लग जा रहे हैं एक एक भक्त को जो है हनुमान जी तक पहुंचने में और काफी देर से लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं और क्योंकि भीड़ ज्यादा है तो उसकी कंट्रोलिंग भी की गई है और लगातार यहाँ पे जो है जो बैरिकेडिंग की गई है और 1 से 3 से 4 रो में जो भीड़ है उसको रखा गया है कि हर एक भीड़ में अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक यहाँ पे भक्त लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन है जो मंदिर से सीधा दूर तक है और ये सिंगार घाट बैरियर है और यहाँ पे पूरा जो एरिया है वो सिर्फ श्रद्धालुओं से भरा हुआ नजर आ रहा है। तो जो कतार है वो 3 रो में बांट दी गई है और काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे
2: बिल्कुल मयंक भक्तों की कतारें देख के तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितने भक्त हैं जो सुबह से हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और तमाम तस्वीरों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए क्योंकि बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कांस फिल्म फेस्टिवल के रंग।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: कौन सी राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनको मेहनत में सफलता मिलती है? कौन सी राशि के लोग अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें तो उनके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है? अलग अलग राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
8: What about me, Jack? What about me?
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
9: Well played, Jack. Well played.
7: Jack FM, playing what we want.
10: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
11: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश महीने का दूसरा बड़ा मंगलवार, सुबह से ही मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़।
3: चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 11 लाख के पार, 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, बद्री विशाल के दर्शन को भी उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़।
2: तेजी से आगे बढ़ रही है जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी, मंदिर सूत्रों के अनुसार अब तक तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण हुआ पूरा।
3: बदलने वाला है मौसम का मिजाज, फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और आंधी का अलर्ट, पहाड़ों में भी बदला मौसम, जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बारिश।
2: ब्राजील के सेंट्रो कल्चर विश्वविद्यालय में वैदिक मंत्रों और पारंपरिक अनुष्ठान के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना, ब्राजील में रह रहे भारतीयों के लिए ऐतिहासिक पल।
3: आज से कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज, फ्रांस के कांस शहर में 23 मई 2026 तक आयोजन, आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ कई भारतीय हस्तियां होंगी शामिल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: और अब आपको लेकर चलते हैं फ्रांस में, जहां पर भारतीय सितारों का जलवा देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ, फ्रेंच रिवेरा की चमचमाती गलियां, कैमरों की फ्रेश रेड कार्पेट पर दुनिया भर के सितारों की मौजूदगी, और इसी शोर के बीच अब भारतीय सिनेमा की आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद सुनाई देने वाली है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है, और हर साल की तरह इस बार भी निगाहें भारतीय फिल्मों और फिल्म मेकर्स पर टिकी हुई हैं। एक दौर था जब कान में भारत की मौजूदगी सिर्फ ग्लैमर और रेड कार्पेट तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। कान फिल्म फेस्टिवल में अब फिल्में ही नहीं बल्कि भारतीय सितारों का फैशन और ग्लैमर के साथ फिल्मों की भी चर्चा भी होती है। पिछले कई वर्षों से ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा समेत, देखिए आलिया भट्ट समेत कई सितारों ने रेड कार्पेट पर अपने शानदार अंदाज से दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है। इस साल भी भारतीय सितारे कान के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरने वाले हैं। फ्रांस में ये फेस्टिवल 12 मई से 23 मई तक चलने वाला है, और 79वें संस्करण में इस बार देखिए भारत की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और रंगों से भरी हुई दमदार नजर आएगी। दिलचस्प बात यह है कि इस बार कान में सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि भारत की अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों की कहानियां भी दुनिया के सबसे बड़े मंचों में एक पर अपनी चमक बिखेरती हुई नजर आएगी।
1: तो कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने पसंदीदा सितारों की पहली झलक देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके फैंस। कांस फिल्म फेस्टिवल सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहता बल्कि ये फैशन और ग्लैमर का भी सबसे बड़ा मंच माना जाता है। दुनिया भर के सितारे यहां अपने स्टाइल और लुक से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। भारतीय सितारों ने भी पिछले कई सालों में कांस के मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इस बार भी बॉलीवुड की कई फेमस एक्ट्रेसेस कांस में भारत का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। आलिया भट्ट इस बार दूसरी बार कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने जा रही हैं। वो लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर इस खास मंच पर दिखाई देंगी। पिछले साल कांस में उनका डेब्यू काफी चर्चा में रहा था, और इस बार भी फैंस उनके नए लुक का इंतजार बेसब्री के साथ कर रहे हैं।
0: तो देखिए आज से फ्रेंच रिवेरा की इन गलियों में कान फिल्म फेस्टिवल का महामेला शुरू हो चुका है। कान का ये 19वां एडिशन है और 23 मई तक चलेगा ही, और हाल में अगर हम देखें तो कुछ सालों में कान में भारतीय फिल्मों का जलवा जबरदस्त देखने को मिला है। शौनक सेन की ऑल दैट ब्रीथ्स, नीरज केवान की होमबाउंड और पायल कपाड़िया की ऐतिहासिक जीत के बाद अब भारतीय सिनेमा की धमक जो है और ज्यादा गहरी हो चुकी है। इस बार भारत की ओर से केवल हिंदी नहीं, आपको बता दें बल्कि पंजाबी, मलयालम, गुजराती और कन्नड़ सिनेमा की कई फिल्में कान में शोकेस होने जा रही हैं। इसमें देखिए फेमस एक्टर और सिंगर एमी वर्क और रूपी गिल की फिल्म जो है चढ़ती कला यहाँ पर प्रीमियर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंजुमेल बॉयज की जबरदस्त सफलता के बाद अब डायरेक्शन चिदंबरम अपनी नई फिल्म यानी बालन द बॉय के साथ कान में पहुंचे हैं। इस फिल्म को मार्केट सेक्शन में दिखाया जाएगा। वहीं पर कान का ला सिनेफ सेक्शन उभरते हुए टैलेंट के लिए जाना जाता है, और इस बार यहां एफटीआई के छात्र मेहर मल्होत्रा की शॉर्ट फिल्म यानी परछावे मस्या रातांधे यानी शेडोज ऑफ द मूनलेस नाइट अपनी चमक बिखेरते हुए नजर आएगी। तस्वीर देखिए।
1: और चलिए बात को लेकर चलते हैं स्पेन, जहां के ऐतिहासिक शहर गिरोना में इन दिनों फूलों का जादू छाया हुआ है। टेम्स डे फ्लोस फेस्टिवल के दौरान पूरा शहर रंग बिरंगी कलाकृतियों और खुशबुओं से महक रहा है। सदियों पुरानी गलियां, चर्च और सीढ़ियां फूलों से सजकर किसी आर्ट गैलरी में बदल गई हैं। दुनिया भर से पहुंचे पर्यटक इस खूबसूरत नजारे का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
2: स्पेन का खूबसूरत शहर गिरोना इन दिनों फूलों की खुशबू और रंगों से सराबोर है। यहाँ शुरू हुआ है मशहूर टेम्पस डे फ्लोर्स फेस्टिवल, जहाँ ऐतिहासिक इमारतों और गलियों को फूलों से सजाया गया है। गिरोना कैथेड्रल की सीढ़ियों पर फूलों से बना विशाल सलामेंडर यानी छिपकली जैसी कलाकृति लोगों का ध्यान खींच रही है। रंग बिरंगे फूलों और कलात्मक डिजाइन ने पूरे इलाके को किसी सपनों की दुनिया जैसा बना दिया है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद कर रहे हैं, किसी को यहाँ की सजावट पसंद आ रही है तो कोई गेम ऑफ थ्रोन से जुड़ी इस लोकेशन को देखने के लिए खास तौर पर पहुंचा है। फेस्टिवल में शहर की पुरानी इमारतों, गलियों और सीढ़ियों को फूलों की थीम से सजाया गया है। हर सजावट में कला और परंपरा की खूबसूरत झलक दिखाई देती है। फूलों से सजी सीढ़ियों और प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस फेस्टिवल में परंपरा और आधुनिक कला का अनोखा मेल देखने को मिलता है। इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय परिवार पीढ़ियों से हिस्सा लेते आ रहे हैं। कोको हुगुएट और उनका परिवार भी कई सालों से इस आयोजन का हिस्सा है।
3: The first memory, well, he was too young to participate because he was still a toddler, but he was still, and we had a shape of him on a swing in our floral exhibit. So yes, that's the first memory I have of doing things with him.
2: फेस्टिवल की तैयारी आसान नहीं होती। कलाकार और परिवार कई दिनों तक मेहनत करके इन खूबसूरत डिजाइनों को तैयार करते हैं। फूलों से बने चेहरे, ड्रैगन और अलग अलग कलाकृतियाँ इस फेस्टिवल को और भी खास बना रही हैं। लोग हर कलाकृति के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। गिरोना प्रशासन के मुताबिक हर साल करीब 4 लाख लोग इस फेस्टिवल को देखने पहुँचते हैं। 9 मई से शुरू हुआ ये फेस्टिवल 17 मई तक चलेगा। आखिरी दिन खास नाइट एग्जीबिशन भी आयोजित की जाएगी। फूलों, कला और इतिहास का ये संगम गिरोना को इन दिनों दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का नमूना ही नहीं बल्कि इंसानों के मददगार भी बनते जा रहे हैं। इंसान और मशीन का यही संगम देखने को मिला 28वें चीन बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हाईटेक एक्सपो में, जहां एक से बढ़कर एक आधुनिक टेक्निक और कार्य कुशलता से लैस रोबोट्स प्रदर्शित किए गए। ये रोबोट्स रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा अब महत्वाकांक्षी अंडर वाटर मिशन के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं।
4: नाचते गाते रोबोट्स तो कहीं पियानो पर हाथ आजमाते रोबोट्स, कहीं घरेलू कामकाज में माहिर रोबोट्स तो कहीं समुद्र की गहराइयों में उतरने को तैयार रोबोट्स। ये नजारा है 28वें चीन बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हाईटेक एक्सपो का, जहां एआई और आधुनिक तकनीक से लैस कई रोबोट्स और रोबो पार्ट्स को प्रदर्शित किया गया। इसमें आकर्षण का केंद्र बना एक्सपो में डेब्यू करने वाला मरीन रोबोट ऑर्का, पानी के नीचे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी यूनिवर्सल बॉडी और इंटरचेंजेबल रोबोटिक आर्म्स हैं, जिसकी बदौलत ये पानी के नीचे सफाई, ऑफशोर फोटोवोल्टिक मेंटेनेंस और ऑफशोर विंड फार्म ऑपरेशन जैसे जटिल काम कर सकता है। बीजिंग ई टाउन के ह्यूमनॉइड रोबोट ने भी भीड़ का ध्यान खींचा, जहां रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाने वाले रोबोट्स प्रदर्शित किए गए हैं। एक्सपो में स्पेशल स्केल रोबोट सेगमेंट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते और म्यूजिक पर नाचते दिखे लोगों ने भी इसकी जमकर तस्वीरें खींची। पचास हजार वर्ग मीटर में फैले इस एक्सपो में 6 थीम वाले जोन थे, जिनमें आईटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा, ग्रीन लो कार्बन, डिजिटल इकोनॉमी और क्षेत्रीय इनोवेशन शामिल थे। इनके तहत 800 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन इस एक्सपो में शामिल हुए। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, आजकल जहां विदेशों में डेस्टिनेशन शादियों का ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग खुलकर खर्च कर रहे हैं, तो वहीं पर मिडिल क्लास में भी फॉरेन ट्रिप कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने गैर जरूरती विदेशी यात्रा, विदेश में छुट्टियां मनाने और शादियां ना करने की लोगों से अपील की है। साथ ही साथ घरेलू पर्यटन और देश में ही किसी भी तरह के समारोह को आयोजित करने का सुझाव दिया ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद मिल पाए।
5: आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का, मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।
1: तो अगर आप चाहते हैं कि आप जहां रह रहे हैं वहां घूमने, खाने पीने, शॉपिंग करने के लिए कौन सी खास जगह है तो हमें जरूर बताएं और ये भी शेयर करें कि क्या आपके शहर में कोई ऐसी जगह है जो अनदेखी और अनसुनी है, क्या आपके शहर की कोई पहचान है जो ज्यादा लोगों तक ना पहुंची हो, आपके शहर की कोई ऐसी धरोहर है जिसका अपना अनोखा किस्सा हो, या आपके गाँव की वो खूबसूरत जगह जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो। तो अगर इनमें से कुछ भी आपकी जगह में है तो आप वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए, हम उसे GNT पर दिखाएंगे।
0: तो आपको IPL के मैदान में लेकर चलते हैं। IPL में कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को मात दे दी, तो आज IPL में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होने जा रहे हैं। देखिए ये मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 11 मैचों में 14 अंक के साथ दोनों टीमें फॉर्म में हैं और ये मुकाबला प्ले ऑफ की दौड़ में टॉप पर पहुंचने के लिए बहुत अहम साबित होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मैचेस खेले गए हैं, इसमें गुजरात ने 5 और हैदराबाद ने 1 मैच जीता है। पिछले सीजन में दोनों मुकाबले गुजरात ने जीते थे, इस सीजन में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होने जा रही हैं।
1: और चलिए अब बात मौसम के बदलते मिजाज की कर लेते हैं। दिल्ली NCR समेत देश के कई इलाकों में मौसम में बदलाव हो सकता है और आधी बारिश के चलते लोगों को राहत मिलने की भी उम्मीदें हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली, UP समेत देश के मैदानी इलाकों में आंधी के साथ हल्की हल्की बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर भी मौसम करवट ले रहा है।

0: अगर आप भी बढ़ते हुए तापमान और चुभती गर्मी से परेशान हैं, तो मौसम अब आपके लिए राहत लेकर आने वाला है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बारिश, आंधी के साथ तेज हवाएं गर्मी के तेवर ढीले करने वाले हैं। मौसम विभाग ने 13 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ गर्मी से राहत का पैगाम लेकर आ रहा है, जिससे तापमान में कमी दर्ज होने की संभावना है।
1: मेजरली आज कल तक ही रहने का अनुमान है, परसों भी थोड़ा रह सकते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर स्लोली टेम्परेचर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एज सच फिर भी कोई सिग्निफिकेंट टेम्परेचर्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आने वाले 6 से 7 दिन टेम्परेचर वही हार्डली 40 तक ही पहुंचेंगे, इससे ज्यादा नहीं करो उसके।
0: मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली NCR में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी। कहने का मतलब है कि दिन भले ही गर्म हो, लेकिन मौसम में बदलाव के चलते रात ठंडी होने की उम्मीद है। 13 मई तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख में छिटपुट से लेकर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 15 मई तक और उत्तराखंड में 14 मई तक बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में पूरे हफ्ते बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि दक्षिणी राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा।
1: जहां रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वहां भी हमारा ऑरेंज अलर्ट मेजरली रहेगा। आसाम मेघालय में वहाँ ऑलमोस्ट पूरा वीक एक्टिविटी रहेगी। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर इंडिया में जो एक्टिविटी हो रही है, रेनफॉल एक्टिविटी, वो हम केरला और तमिलनाडु के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो भी जहाँ एक लो प्रेशर बना हुआ है, उसके प्रभाव से ये इन राज्यों में भी रेनफॉल एक्टिविटी लागू रहने का।
0: बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार में तो प्री मॉनसून एक्टिविटी सक्रिय हो गई है। हरियाणा, पंजाब में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि भारत में मई में नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगी। बताया जा रहा है कि अलग अलग इलाकों में तापमान की स्थिति मिली जुली रहेगी, जबकि कुछ हिस्सों में नॉर्मल से ज्यादा हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: देखिए, उदयपुर जिले के झाड़ोल इलाके में एक अनोखी बारात देखने को मिली। यहां पर शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को किसी कार में नहीं बल्कि JCB के बकेट में बैठाकर अपने घर लेता हुआ नजर आया। देखिए तस्वीरें, जिस रास्ते से दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ गुजरा तो हर कोई ये दृश्य देखकर बिल्कुल दंग रह गया। दूल्हा रूपलाल, जो पेशे से JCB ड्राइवर है, 6 मई को अपने गाँव से 30 किलोमीटर दूर ढाला गाँव में बारात लेकर गया था। विदाई के बाद JCB बुलाई गई और दुल्हन को उसमें बैठाया गया। लोगों का कहना यह है कि देखिए, दूल्हे ने ये प्लान पहले से ही बना रखा था और अब दूल्हा दुल्हन को बारातियों का JCB के बकेट्स के साथ जो वीडियो है, अब सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। लोग इसको खूब शेयर कर रहे हैं और इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए मधुश्री की फनी इंस्टा स्टोरी।
3: लो मम्मी जी, बात करना चाहती हैं।
4: बहू, मेरे बेटे के हजारों रिश्ते आए थे,
3: फिर भी तेरे से शादी करा दी।
5: हाँ जी मम्मी जी, हजारों बच गई, बस मैं ही फंस गई।
6: ये क्या सुन रहा हूँ मैं?
7: क्या नाम है पति का?
8: नाम कैसे बोले गुरु जी? आर्यन के पापा बोल दीजिए।
7: किसके पापा?
8: आर्यन के, आर्यन के। हम नहीं बोल, हम आर्यन के पापा बोल दीजिए गुरु जी।
7: आर्यन के पापा के आर्यन के पिताजी।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
10: समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
2: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
11: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
12: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
14: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: जिस महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार, सुबह से ही मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 11 लाख के पार, 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ। बद्री विशाल के दर्शन को भी उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। तेजी से आगे बढ़ रही है जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी। मंदिर सूत्रों के अनुसार अब तक तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य हुआ पूरा। बदलने वाला है मौसम का मिजाज, फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और आंधी का अलर्ट। पहाड़ों में भी बदल गया मौसम, जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बारिश। ब्राजील के सेंट्रो कल्चरल विश्व विद्या में वैदिक मंत्रों और पारंपरिक अनुष्ठान के साथ हुई भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना। ब्राजील में रह रहे भारतीयों के लिए ऐतिहासिक पल। आज से कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज, फ्रांस के कान शहर में 23 मई 2026 तक आयोजन। आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ कई भारतीय हस्तियां शामिल होंगी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल पाती, तो आज हम आपको बताएंगे आपकी राशि के अनुसार आप कौन से उपाय करें कि आपको आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल मिल सके। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक बहुत अच्छे उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 मई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 2:52 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:25 तक। राहु काल का समय शाम के 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो मेहनत करते हैं उसका फल आपको कैसे मिले, क्योंकि हर बार मेहनत करने पर उसका फल मिले ये आवश्यक नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं मेहनत और फल के पीछे। देखिए, कुंडली के ग्रह बहुत हद तक बता देते हैं कि जीवन में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में मेहनत की स्थिति क्या रहेगी। कुंडली के त्रिकोण लग्न पंचम और नवम और इसके स्वामी जीवन के संघर्ष वाले हिस्से को बताते हैं, और लग्न पंचम और नवम जो कुंडली का त्रिकोण है ये बता देता है कि संघर्ष कैसा रहेगा और कितना रहेगा। त्रिकोण में भी जो पंचम भाव है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूर्व पुण्य का भाव है। इस भाव और इसके स्वामी की स्थिति अच्छी हो तो पूर्व पुण्य इस जीवन में मिलता है, मेहनत के परिणाम मिलते हैं और व्यक्ति का संघर्ष कम होता है। पंचम भाव अगर कुंडली में अनुकूल है, फेवरेबल है, तो व्यक्ति कम प्रयास में जीवन में सफलता पा जाता है। वैसे तो नवम भाव आपके भाग्य का है, लेकिन पंचम अगर मजबूत है तो आपका बैकग्राउंड शुरू से आपके रास्ते बनाने लगता है, और जब नवम का सपोर्ट मिल जाता है तो ये रास्ते लंबे समय तक आपको सफलता देने लगते हैं। देखिए, अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेष, वृष और मिथुन राशि के लोग
अगर अपनी मेहनत का फल चाहते हैं, संघर्ष का फल चाहते हैं, तो क्या करेंगे? मेष राशि की अगर बात करें तो मेहनत का फल पाने के लिए, सफलता पाने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिएगा। रोज सुबह उनको जल चढ़ाइए, उनके मंत्रों का जप करिए और हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर, धर्म स्थान पर जाकर प्रार्थना करिए। वृषभ राशि, मेहनत का फल अगर जीवन में चाहते हैं तो शनि देव की उपासना आपको थोड़ी बहुत जरूर करनी चाहिए। कम से कम रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए अपने घर में भी, बाहर भी, और उनकी देखभाल करिए। मिथुन राशि, अगर आप अपनी मेहनत का, संघर्ष का फल चाहते हैं तो हर शनिवार को हनुमान जी की उपासना करिएगा। हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें। मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ भी जरूर करिए। अगर पाठ करना कठिन लगता है तो मोबाइल पर ऑडियो पर लगाकर शांति से बैठकर सुनिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको आपकी मेहनत का बेहतर फल जरूर प्राप्त होगा। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। देखिए, अगर आपकी राशि कर्क है और आप अपनी मेहनत का फल पाना चाहते हैं, संघर्ष में सफलता चाहते हैं,
तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। खास तौर से ज्यादा कुछ ना कर सकें तो सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़िएगा और बृहस्पतिवार को निर्धनों को और बुजुर्गों को पीली मिठाई बांटिएगा, आपको लाभ होगा। सिंह राशि संघर्ष की राशि है और सिंह वाले अगर चाहते हैं कि उनको मेहनत का संघर्ष का फल मिले तो घर में एक केले का पौधा लगाएंगे, घर के पीछे की तरफ नियमित रूप से उसकी देखभाल करेंगे। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे। नियमित रूप से संकट मोचन पढ़ते रहें, हनुमान जी की शरण में रहें, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कन्या राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल आपको मिले, संघर्ष आपका सफल हो, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करिएगा। खास तौर से रोज नहीं कर पाते तो हर बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करें और शनि देव की यथाशक्ति पूजा करें। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, काम में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों की समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि तुला वृश्चिक धनु वाले ऐसा क्या करें जिससे उनको उनकी मेहनत का फल मिले। तुला की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल आपको मिले तो आप रोज शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। उसका पूरा नाम है
दशरथ कृत शनि स्तोत्र रोज शाम को पढ़िए या सुनिए। भगवान विष्णु को रोज सुबह तुलसी दल भोग के रूप में अर्पित करिएगा और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संघर्ष का, मेहनत का बेहतर फल जीवन में प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले, संघर्ष कम हो, तो अपने घर में खास तौर से पीछे की तरफ एक केले का पौधा जरूर लगाइएगा और उसकी देखभाल करिएगा। शिव जी को हर सोमवार को जल और बेलपत्र मंदिर में जाकर अर्पित करिएगा और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको सही समय पर आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। धनु राशि, इनके जीवन में भी संघर्ष बहुत होता है, इनको मेहनत का फल मिलने में विलंब होता है, तो अगर आपकी राशि धनु है, आप चाहते हैं कि आपको आपके मेहनत का फल मिले, जीवन का संघर्ष कम हो, तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और पानी पीने के लिए, प्रयोग करने के लिए

समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, देखिए आपके जीवन में संघर्ष कम हो, मेहनत का फल आपको मिले, इसके लिए एक चांदी का कड़ा या एक चांदी का छल्ला, चांदी का छल्ला किसी भी उंगली में पहन लीजिए या चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण करें। जब भी मौका मिले पीपल के पौधे लगाएं या लगवाएं। कुंभ राशि, आपकी मेहनत सफल हो, आपका संघर्ष कम हो, इसके लिए शिव जी को पंचामृत अर्पित करिएगा। और अगर रोज ना भी कर पाए तो सोमवार को थोड़ा सा पंचामृत शिवलिंग पर लगाइए और उसके बाद जल अर्पित करिए, बाकी पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। मीन राशि, मेहनत का फल मिले, जीवन में संघर्ष कम हो, इसके लिए पूर्णिमा का व्रत रखिए, केवल जल और फल ग्रहण करके। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का व्रत रखें और रोज हनुमान जी की पूजा करिए भगवान राम के साथ। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, शादी होने वाली है, गृह प्रवेश होने वाला है, मुंडन होने वाला है, तो उसकी शुरुआत के पहले हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को नारियल अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके घर का शुभ और मंगल कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनको छोटी छोटी चीज पाने में संघर्ष करना होता है। दुकान पे छोटी सी चीज खरीदने जाएंगे, उनके जाने के पहले ही खत्म होगी वो। तो अगर आपको हर छोटी चीज पाने में संघर्ष करना पड़ता है तो इसको कैसे बेहतर करें। रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। दीपक जलाने के बाद दीपक को हाथ जोड़कर उसके बाद आसपास के हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, उनसे कृपा की प्रार्थना करिए। ऐसा करने से हर मामले में जो संघर्ष करना पड़ रहा है वो समाप्त होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।
मंगल

इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए उपमा लिखी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अच्छा, तेते पे एक बात कहें हम। तेते का अर्थ उपलब्ध कराना, तेते इसके दो तीन अर्थ होते हैं, पर एक अर्थ पे बात करें। जो आपको कठिन लगे वो हनुमान जी की चरण शरण में आप छोड़ दो। हम वचन देकर कह रहे, कोई काम किसी भक्त का साधक का ना हो रहा हो, यदि सच्चे मन से आप हनुमान चालीसा के 40 दिनों तक 100-100 पाठ का अनुष्ठान करोगे, हनुमान जी को करना ही पड़ेगा। जो सतबार पाठ कर कोई छूट है बंदी, महासुख होई। तो हनुमान जी तेते का अर्थ, हनुमान जी सरलता के साथ उसको उपलब्ध कराते हैं जिसकी आवश्यकता है, जो चाहिए। आहा, उत्तर प्रदेश की एक घटना है। ट्रेन गाड़ी रेलगाड़ी चलाने वाला एक बालक, उसका नाम पवन था, ट्रेन का ड्राइवर पवन नाम, गांव में जन्म हुआ, रेलवे का पायलट, रेल का पायलट बना, ट्रेन चलाता, ट्रेन से आता जाता, लेकिन हनुमान जी की भक्ति कर करके वो रेलवे का ड्राइवर बना। हनुमान जी की भक्ति में बड़ा मन लगता उसका, रातों भर हनुमान जी के लिए बैठा रहता, सुबह से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता, दर्शन करता, फिर स्टेशन जाता, फिर रेल चलाता, शाम को आता, फिर दर्शन करता, चाहे जितने बज जाए, समय बदलता रहता, रात को भी पूजन जप तप करता। धीरे धीरे उसका मन संसार से दूर होने लगा। आहा, हुआ क्या? कुछ दिन बाद उसके मन में वैराग्य जागृत हुआ, तो गांव जंगल में था, जंगल के बीच में हनुमान जी का मंदिर था, वो मंदिर में जाके बैठ गए। अब उठाई नहीं, एक दिन दो दिन तीन दिन वहीं बैठा रहा, नींद आए सो जाए, वहीं बैठ के जप करे। घर वाले बड़े परेशान, गालियां देवे। अच्छा, घर वाले तो घर ही वाले होते हैं, उनका तो एक ही काम है, हाँ, कमाओ धमाओ, काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के, कुछ कमाओ जाओ भाई, नौकरी करने जाओगे तभी तो मिलेगा, जब मिलेगा तभी तो हम लोगों का पेट चलेगा, तो खूब गाली गलौज करें। पर वो बेचारा सीधा सरल सज्जन आदमी कुछ बोला नहीं, प्रतिदिन भगवान का भजन करे, हनुमान जी का भजन करे, रेलगाड़ी चलाने नहीं गया। घर वाले रोने लगे, माता जी रोने लगी, गाली दी, मारपीट की, पर वो घर ही ना जाए, मंदिर में हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गया। 5-6 दिन बाद उसे होश आया, बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे, 5-6 दिन बाद उसको होश आया कि हम रेलगाड़ी चलाने नहीं गए, सरकार की वेतन मिलेगी, व्यर्थ की वेतन होगी, एक काम करते हैं, इस्तीफा दे देते। स्टेशन मास्टर के पास गया, जेब से इस्तीफा निकाला कि क्षमा करो, हम अब रेलगाड़ी चलाने नहीं आ पाते हैं, 6 दिन छुट्टी रही, अचानक से आ नहीं पाए, आगे भी हम आ नहीं पाएंगे, हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो, हमसे भूल हो जाती है, इसलिए हम व्यर्थ की बेफिजूली की वेतन नहीं लेना चाहते, आप हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो। पता है क्या बोले स्टेशन मास्टर? बोला, पागल हो क्या तुम? कह रहे 6 दिन से रेलगाड़ी चलाने नहीं आए? अरे रोज तो तुम रेलगाड़ी चलाने आते हो, अभी अभी तो थोड़ी देर पहले तुम रेलगाड़ी छोड़कर गए हो, इंजन को छोड़ करके गए हो, अभी अभी तुम हस्ताक्षर करके गए हो, और तुम कह रहे हम 6 दिन से नहीं आ पाए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी अभी तो गए, यही कपड़े पहन के गए। उसने कहा, आपको गलत फहमी हुई होगी, हमारा शरीर आपको दिखाई पड़ रहा कि हम रेलगाड़ी, देखो दाढ़ी बढ़ गई, हमें ध्यान ही नहीं है, हम आए ही नहीं, मंदिर पर रहे। स्टेशन मास्टर बोला, तुम पागल हो गए? तुम्हारा मानसिक स्थिति ठीक है जो इस्तीफा लेके आ गए? अरे रोज तुम रेलगाड़ी चलाने आते हो। उसने कहा, जरा रजिस्टर दिखाओ, हम अपने हस्ताक्षर चेक करें। जैसे ही रजिस्टर उठाया, उसने अपने हस्ताक्षर देखे, उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। कोई और नहीं, हम मंदिर में हनुमान जी की पूजा करते रहे और हमारे बदले हनुमान जी ड्यूटी निभाते रहे। वाह, धन्य है।
धन्य धन्य। इतना सुनते ही जब उसने रजिस्टर में छहों दिन के हस्ताक्षर देखे, ये हस्ताक्षर हमारे अलावा कोई नहीं बना सकता, ये हमारे साइन है, लेकिन इनको हमारे अलावा यदि कोई बना सकता तो केवल हनुमान जी बना सकते हैं। शायद उनसे रहा नहीं गया होगा, हम वहां पूजा करते रहे, वो यहाँ रेलगाड़ी चलाने आ गए। ऐसी अनेक घटनाएं, सत्य घटनाएं कलयुग की है, कलयुग की, जहां हनुमान जी साक्षात दर्शन दिए। भैया जितने भी श्रोता यहां बैठे, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, भैया सात चिरंजीव हैं पृथ्वी पर, अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। सात चिरंजीवियों में एक हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा, हनुमान जी उनको आभास भी देंगे, दर्शन भी देंगे, मिलेंगे भी। हनुमान जी तो कलयुग में भी है, साक्षात है। हम औरों की क्या कहें, अपनी सुनाते हैं। भैया जिनकी तुम कथा सुनने आए ना, जिनको आज बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा कहा जाता, पूरी दुनिया के लोग जानते, टीवी में आ जाते, हम चाहे जहां पहुंच जाते, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे धाम आ रहे, मिल रहे, पर भैया हम अपनी औकात जानते हैं। हमें, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले है। आज जरूर बड़ा नाम हो गया, ये है प्रवीण जी ने हमको यहाँ बुला लिया, हमें हेलीकॉप्टर भेजे जाते, हवाई जहाज भेजे जाते लेने के लिए। भैया हमें अपनी औकात पता है, टूटी साइकिल नहीं हमारे पिताजी को जूझी, टूटी साइकिल से चप्पल नहीं खरीद पाए, लाइलॉन की चप्पल आती थी 20 रुपया 22 की, वो नहीं खरीद पाए, कुर्ता नहीं कभी खरीद पाए, एक ही कुर्ता में हमने 3-3 साल गुजारे। हमारी माता जी, ये कोई हम तुमको 20-40 साल पुरानी बात नहीं सुना रहे, मात्र 15 साल पुरानी बात सुना रहे भैया। हमारी माताजी अभी भी है, भैया एक साड़ी पहन के रहती थी, और जब साड़ी फट जाती थी ना, रस्सी से बांध लेती थी, दूसरी साड़ी नहीं होती थी, उसी से बांध लेती थी, पर कभी शिकायत नहीं करती। भैया 3-3 दिन भूखे रहे, किसी ने नहीं पूछा। हमारे गांव वाले, हमारे अपने जिनको हम कहते थे ना, आज भी हम उनको अपना कहते, वो हमारे पिताजी का नाम कार्ड में नहीं लिखवाते थे कि हम फटे कपड़ा पहन के आ जाएंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। भैया ये हमारी औकात थी, इतने नालायक थे, ये हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है कि आज कथा कहने लायक हो गए, दरबार लगाने लगे, अस्पताल बनने लगा, बेटियों का विवाह होने लगा, जगह जगह बुलाया जाने लगा। भैया ये हमारा चमत्कार नहीं है, ये कलिकाल के देवता बजरंग बली का चमत्कार है। अच्छा भैया दूसरी बात, बाकी तो तुम मजाक में लेते, हम भी मजाक में ही बोलते, पर सच बता रहे, हमारे पिताजी कभी सपने में हमने नहीं सोचा कि विदेश जाएंगे, आज 12-12 देश जा रहे। अंग्रेजों के जो वहां के प्रेसिडेंट होते, वो प्रधानमंत्री मिलने आते, हमें अंग्रेजी नहीं आती। भैया ये प्रत्यक्ष चमत्कार हनुमान जी का है, हम प्रार्थना करेंगे बांदा के पागलो, तुम दुनिया से आशा मत करना, आशा करनी ही है तो बजरंग बली से करना, ये कभी धोखा नहीं देते। जब कोई नहीं होता यही साथ देते, तुम दुनिया वालों के भरोसे मत रहना, ये दुनिया बहुत विचित्र है, ये दुनिया सिर्फ बड़ों बड़ों को देखती है। तुमने मंच पे नहीं देखा, जो प्रसिद्ध होते हैं, पैसा वाले होते हैं, वही मंच पे आते हैं, गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आता है। गरीबों का कोई नहीं होता, गरीबों का तो भैया सिर्फ भगवान होता, सिर्फ भगवान होता। हमने वो दिन देखे हैं, हमने वो रातें देखी हैं, हमारी दीपावली में पूरी नहीं बनती थी, कभी यदि डालडा मिल जाए ना तो पूरी बन जाती थी ना, तो पता है जिस दिन पूरी बनती थी उसी दिन दीपावली कहलाती थी। भैया कली काल के देवता हनुमान जी हैं, बुंदेलखंड वासियों, बांदा के पागलो, जितने भी लोग जहां जहां हमारी कथा सुन रहे, हम तुमसे हाथ जोड़ करके कहेंगे, हमने वो अंधेरी रातें, वो बुरे दिन, वो भीख मांग कर हमने दिन गुजारे। भैया हम प्रार्थना करेंगे, तुम भी दुनिया पर भरोसा मत करना, बजरंग बली पर भरोसा करना, ये तुम्हारे दिन बदलेंगे, तुम्हारे बच्चों के दिन बदलेंगे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम काम छोड़ो, खूब काम करो, खूब कमाओ, भगवान जय जय करे। भैया पता है हम बेटियों का विवाह क्यों करवाते, हमारी खुद की बहन की शादी में हमें 20,000 रुपया उधार नहीं मिले,
आज लोग हमको दानी समझते, हम कोई दानी वानी नहीं है, कोई परोपकारी मत समझना। हिंदू हमें रुपया देते, हमारे चेले हमें चढ़ोतरी देते, हम बेटियों के विवाह में लगा देते, हमारा नहीं है कुछ, लोग हमें दे देते उसी को हम लगा। कोई आता जैसे अभी आई ये कर्नाटका से, तो हमने इनको कहा बड़े आदमी, हमने कहा कि कुछ बेटियों का कन्यादान कर देना। बोले गुरुजी हम 11 बेटियों का कर देंगे, ऐसे ही जोड़ लेते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं। हाँ, पर हमको संतुष्टि ये रहती कि भगवान हमारे हाथों से करवा रहा है। तो हमको तुम बहुत ज्यादा दानी वानी मत समझना, हम देखो साफ आदमी है, साफ कहते हैं। हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते, क्योंकि माया छोड़ने के प्रवचन इसलिए नहीं सुनाते कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुना रहे, तुम्हें कहां से सुनाए हैं? हम खुद दक्षिणा लेके आए हैं, तुम्हें कहां से सुनाए कि माया बेकार है, काय में बेकार है। भारत को यदि ताकतवर बनाना है तो पहले अर्थ संपन्न बनाना पड़ेगा। देखो जो है सो मुंह पे है, हम साफ साफ कहते हैं, हमें लाग लपेट, तुम आओ हमारे पास या ना आओ, हम तो सीधी

हम तो सीधी सीधी भैया, इसलिए हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते कि माया बेकार है, ये है ना ना माया ही। पैसा सब कुछ नहीं होता, ऐसा कहने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए। भैया एक बात बोले, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला, मनुष्य तन पाकर हम लोगों का भाग्य तो देखो, बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया, पर उससे बड़ा भाग्य तो ये है भारत जैसा वतन पाया है? बड़ा भाग्य मनुष्य तन और बड़ा भाग्य भारत जैसा वतन। लेकिन भैया उससे भी बड़ा भाग्य और है, बोले क्या? सनातन जैसा धर्म पाया। पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम जी की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता। भैया देखो कई लोग ऐसे हैं, इसी बांदा में, हमीरपुर में, करतल में, नरेनी में, चित्रकूट में, महोबा में, सतना में, रीवा में, पन्ना में, छतरपुर में, सब नहीं आ पाए। कौन आ पाया? जिसे भगवान ने बुलाया है। इसी बांदा में कई लोग घर पे टीवी पे देख रहे और रीलें डाल रहे और पोस्ट डाल रहे। पहले के जमाने में कुछ राक्षस होते थे, यज्ञ होती थी तो हड्डी डालते थे, आज के जमाने में पोस्ट डालते। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे? इसे हमारी अंग्रेजी में कहते हैं सेम टू यू माई बेटा। तो सब नहीं आ पाए। कौन आ पाया? जिसे भगवान ने बुलाया। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा

राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना राम जी की कृपा के बिना भैया सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संग को पाने के लिए राम जी की कृपा जरूरी है। मेरे पागलो, जितने भी आज बांदा की इस कथा के महामहोत्सव महाकुंभ में विराजमान हैं, खड़े हैं, आए हैं, बैठे हैं, भैया एक बात मान लो, हमारी गांठ बांध लेना, तुम पे भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा। पर एक बात बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो, हम लोग भगवान से प्रेम करें ये आस्था है। क्या है? भक्ति नहीं है, आस्था। तुम यहां आ गए ये आस्था है। हम तो कुछ और ही चाहते, पूछो क्या चाहते। तुम भगवान को प्रेम करते हो ये आस्था है, पर भगवान तुमसे प्रेम करने लगे ये भक्ति है, है? तो आप कथा में आ गए ये कृपा है, लेकिन प्रभु तुम्हारे जीवन में आ जाए ये महाकृपा है। आप कथा में आ गए ये भाग्य है, लेकिन प्रभु तुम्हारे जीवन में आ जाए ये परम भाग्य है। बोलो है कि नहीं? तो कथा में इसलिए नहीं बैठो कि हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, इसलिए बैठो कि भगवान को भी हमसे प्रेम हो जाए। किसी शायर ने लिखा है, आज नहीं तो कल इकरार होगा, हमें इस बंसी वाले से प्यार हुआ है, इसको भी कभी हमसे प्यार होगा। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आहा, आज के भाग्य की क्या सराहना करें। चौथे दिन की कथा, हनुमान जी का चरित्र चल रहा। कल की कथा में कौन कौन आया था? चौपाई याद है हनुमान चालीसा की? आहा।

0: जब दुनिया में कोई कठिन काम तुम्हारे जीवन में आ जाए तो हनुमान जी की शरण मांग लेना, ले लेना। मेरे पागलो, ये दुर्गम काज करने में सक्षम है, ये सुगम कर देते, दुर्गम को सुगम कर देते, कठिन को सरल कर देते, इसलिए तो इन्हें हनुमान जी कहा जाता। जो कठिन को सरल कर दे वो हनुमान है, और जो सरल को उपलब्ध कर दे वो हनुमान है। हनुमान जी कठिन को सरल और सरल को उपलब्ध। कई चीजें सरल होती हैं, दिखती हैं, पर मिलती नहीं है। जैसे कई लोग हमसे कहते, गुरु जी तुम मिलते ही नहीं। अच्छा, चाहे जिसको मिल जाते हैं, पर एक बात बोले, कई बार बहुत कठिन काम जब आ जाए तब हनुमान जी की शरण पहले ही ले लो, कठिनता आवे ही ना। हमारे गांव में एक अच्छी बात कहते थे, बहुत प्राचीन प्रचलित दोहा है,
1: दुख में सुमरन सब करें

हम लोग भगवान का भजन कब करते हैं? जब घुटना दर्द करने लगे तब बागेश्वर धाम याद आते हैं। हाँ, अब घुटना जब भूत लग जाए बोले कहाँ, बोले चलो बागेश्वर धाम चलो, वहीं हटेंगे वहीं जाएंगे। बताइए, पहले ही हनुमान जी के चरण पकड़ लो, क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन हम लोग कब, जब मुसीबत आती है तब भगवान याद आते हैं, जब विपत्ति आती तब भगवान याद आते। कोई बात नहीं, मुसीबत पे भी भगवान को भज रहे, कोई बुराई नहीं, कम से कम ना भजने से तो बेहतर है भज रहे। पर भैया कभी तुम्हें लगे कि ये काम कठिन है, ये काम हो नहीं पाएगा, हम वचन देकर कह रहे तुम हनुमान चालीसा का आधार ले लेना, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते।

0: TuneIn has the music.
1: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
2: TuneIn Poolside has the music I love.
1: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डाल।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: सरकार अपनी नई नई पहल से देश के विकास को नई रफ्तार दे रही है। ठीक उसी तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्रैफिक की रफ्तार को एक नई गति प्रदान करती है और ये गति है बैरियर लेस प्लाजा की। जी हाँ, जिससे मल्टी लेन हाईवे होने के बावजूद टोल पर लगने वाले जाम से आपको छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि ईंधन बचाने में भी ये टोल काफी मददगार साबित होंगे।

0: दिल्ली और आसपास सफर करने वाले लोगों के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की परेशानी और घंटों लाइन में लगने का झंझट अब जल्द ही गुजरे जमाने की बात होने वाली है। केंद्र सरकार ने अब देश में एक नया और हाईटेक टोल सिस्टम शुरू करके दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर लगने वाले ब्रेक को खत्म कर दिया है, जिसमें गाड़ियों को टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इस नई तकनीक का नाम है मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम, जिसकी शुरुआत हुई है मुनका बकरवाला टोल प्लाजा से, जिसका उद्घाटन केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है।
1: हम लगातार टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करेंगे, हम अच्छे से अच्छे हाईवे जनता को देंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हमारा लगातार प्रयास रहेगा। आपको पता है कि बहुत बार लोग ये तकरार करते थे कि टोल नाके पर एक एक घंटे तक हमको रुकना पड़ता है। ये केवल रुकना में समस्या नहीं थी, पर गियर बदल कर वहाँ जो डीजल पेट्रोल का खर्चा होता था उसके कारण फ्यूल के लिए भी बहुत अड़चन आती थी, खर्चा होता था, पोल्यूशन होता था। इन सब से मुक्ति मिली है और एक प्रकार से जनता को भी राहत मिली है।
0: इस नए सिस्टम

0: की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब टोल प्लाजा पर बैरियर नहीं होंगे, यानी गाड़ियों को रुकने या स्पीड कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हाईवे पर खास कैमरे, सेंसर और फास्टैग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही कोई गाड़ी टोल पॉइंट से गुजरेगी, कैमरा उसकी नंबर प्लेट और फास्टैग को स्कैन करेगा और तुरंत टोल की रकम खाते से कट जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इससे पहले गुजरात के सूरत में इस तकनीक को लागू कर चुकी है। वहां सफलता मिलने के बाद अब दिल्ली के मुनका बक्करवाला टोल प्लाजा पर भी ये सिस्टम शुरू किया गया है। ये सिस्टम पूरी तरह मॉडर्न तकनीक पर बेस्ड है। इसमें ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरा लगे हैं। ये कैमरे चलती गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं। दावा किया गया है कि ये तकनीक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ियों को भी आसानी से पहचान सकती है। इसके साथ फास्टैग और AI आधारित सिस्टम मिलकर काम करेंगे ताकि टोल वसूली पूरी तरह ऑटोमेटिक हो सके।
1: इस टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं सभी गाड़ियां जो है सरपट दौड़ रही हैं और लाइन फ्री है। यहां पर किसी गाड़ी को ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो बैरिकेड लगता था, टोल कटता था, उसके बाद गाड़ियां निकलती थी, लेकिन अब पूरी तरह से लाइन फ्री है और सारी गाड़ियां यहां से सरपट निकल रही हैं और लोग इस जो मल्टी लाइन फ्री फ्लो की सुविधा से सभी खुश हैं। OP शुक्ला, दिल्ली।
2: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के कुछ ऐसे वायरल वीडियोस जो कभी आपको हंसाएंगे और कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
3: जीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल यहाँ एक महिला पुलिसकर्मियों के भरोसे अपना बच्चा छोड़कर टॉयलेट चली जाती है, जो ये दिखाता है कि यहाँ के लोग पुलिस वालों पर कितना भरोसा करते हैं। वीडियो में महिला गोद में बच्चा लिए आती है और दो पुलिसकर्मियों को आता देख रुक जाती है। फिर वो महिला पुलिसकर्मी को अपना बच्चा थाम लेती है और खुद टॉयलेट चली जाती है। इस दौरान महिला

0: मीडिया पर डांस का ये वीडियो लाखों लोगों का दिल जीत रहा है। एक पिता और उसकी बेटी की ये जुगलबंदी लोगों को पसंद आ रही है। वीडियो की सबसे खास बात ये कि जिस अंदाज में ये मासूम हर बीट को समझकर परफॉर्म कर रही है, उसे देख लोग हैरान हैं।
1: Why did you come to the police station?
2: Will you marry me?
0: सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा सीधे एक पुलिस कर्मी के पास पहुंचकर उसे रिंग के साथ प्रपोज कर देता है। वीडियो में बच्चा बेहद कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस कर्मी के सामने खड़ा होकर रिंग आगे बढ़ाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ब्लिंकिट एजेंट को कैश की जगह दूल्हे के नोटों वाली माला दे दी। 2100 रुपए की इस माला को देख एजेंट की खुशी देखने लायक थी। उसने मुस्कुराते हुए माला पहन ली और पल को खुलकर एंजॉय किया। ये छोटा सा वाकया सोशल मीडिया पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आया। हाथी इंसानों के सबसे बड़े साथी होते हैं और जब बात दो बच्चों की हो तो फिर कहना ही क्या। यहाँ देखिए बेबी एलिफेंट और इस बच्ची की दोस्ती कितनी गहरी है। ये उसके लिए आइसक्रीम लाई है और बदले में हाथी उस पर खूब सारा प्यार बरसा रहा है। हाथी की बच्ची के साथ ही बॉन्डिंग देख लोग मुस्कुरा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
7: गुड न्यूज टुडे
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी

0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: अब से कुछ देर में असम में हेमंत बिस्वा की ताजपोशी, 4 मंत्रियों के साथ लेंगे सीएम पद की शपथ। समारोह में पीएम और कई राज्यों के सीएम हो रहे हैं शामिल। ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार, सुबह से ही मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। तेजी से आगे बढ़ रही है जगन्नाथ

विक्षोभ, बारिश और आंधी का अलर्ट, पहाड़ों में भी बदला मौसम, जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बारिश। ब्राजील के सेंट्रो कल्चरल विश्वविद्यालय में वैदिक मंत्रों और पारंपरिक अनुष्ठान के साथ हुई भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना, ब्राजील में रह रहे भारतीयों के लिए ऐतिहासिक पल। आज से कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज, फ्रांस के कांस शहर में 23 मई 2026 तक होगा इसका आयोजन। आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ कई भारतीय हस्तियां होंगी। को ही हुआ था हनुमान जी का भगवान राम से मिलन। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। सुबह से राम मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतार, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। अयोध्या में बड़ा मंगल पर भक्तों ने बंदरों को खिलाया खाना, बंदरों के खिलाने के लिए सुबह से मंदिर पहुंच रहे लोग। भक्तों ने बंदरों को परोसा केला, फल, चना और गुड़, बंदरों को तरबूज भी खिलाया गया। प्रयागराज के बंदवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के दूसरा बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का जन सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से विशेष तौर पर सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य पूरा। प्रत्येक रथ के लिए 11-11 साल गुज, 30 तिक गुज, 9-9 जल यंत्र, कुल 32 कुडुका, 12 उरा तथा प्रथम और द्वितीय भूई खम्बों के 4-4 सेट से किया गया है तैयार। 200 से अधिक कुशल कारीगर तीनों रथों का कर रहे हैं निर्माण, बिना लोहे की कील के बन रहा है ये रथ। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर 15 लाख से लेकर 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात के पुख्ता इंतजाम। जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार में लिस्टिंग का काम भी हुआ शुरू, लिस्टिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने इस पल के साक्षी। आरती से पहले भगवान महाकाल का हरिओम जल से किया गया विशेष तौर पर अभिषेक, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई पूजा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, भस्म आरती में लिया हिस्सा। पूरी तरह शिव भक्ति में लीन नजर आई एक्ट्रेस, ये भगवान शिव के निराकार स्वरूप को साकार में बदलने की एक जीवंत परंपरा है। चारधाम यात्रा पर लगातार बढ़ रही है भक्तों की संख्या, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास परिषद के मुताबिक अब तक 21,000 से ज्यादा श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवाओं से कर चुके हैं यात्रा। आंकड़ों के मुताबिक फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से संचालित शटल सेवाओं से 17,976 यात्रियों ने की यात्रा, जबकि चार्टर्ड सेवाओं के जरिए 3,974 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं चार धाम के दर्शन, लगातार बढ़ रही है संख्या। बाबा केदार के दरबार में देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा उत्साह, अब तक 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, कपाट खुलने से अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 3 लाख श्रद्धालु ले चुके हैं बद्री विशाल का आशीर्वाद। गुवाहाटी पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मां कामाख्या मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर के दरबार में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन, परिवार के साथ किए दर्शन पूजा। गुवाहाटी पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मां कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने मां कामाख्या मंदिर के किए दर्शन, कहा देश और राज्य में शांति की कामना की।

अयोध्या में सोमनाथ अमृत महोत्सव को लेकर शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, मंदिरों में किया गया रुद्राभिषेक और ओंकार जाप। यूपी के गोंडा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही प्रतियोगिता में 1400 से ज्यादा पहलवान ले रहे हिस्सा। गिर के जंगलों में पर्यटकों को रोमांचित करने वाली न्यूज आई सामने, पर्यटकों के सामने आते ही शेरनी ने शिकार पर किया हमला, बाद में दूसरे शेर भी हुए शामिल, पर्यटकों ने बनाया इस खास पल का वीडियो। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को सशक्त बना रहा सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगम 88.8 लोगों को सूचना देने के साथ ही उपलब्ध करा रहा है रोजगार के मौके। राजस्थान के पुष्कर में 43 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में विदेशी महिला की अनोखी तपस्या की हो रही है चर्चा, महिला भक्त ने 10 साल पहले अपनाया था नाथ संप्रदाय। पुष्कर में 9 धोनी अग्नि तप कर रही विदेशी भक्त, रोज करीब 3 घंटे से ज्यादा अग्नि के बीच बैठकर करती है तपस्या, 3 मई से शुरू हुई यह अग्नि तपस्या 25 मई तक चलेगी। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पालघर के गुहिर गांव में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का किया शुभारंभ, सौर ऊर्जा से रोशन होगा पूरा गांव। 130 परिवारों को मिलेगी मुफ्त बिजली, खेती के लिए भी मिलेगी सोलर पावर, सोलर सिस्टम से होगी पानी की सप्लाई। गांव को मिली सौर ऊर्जा वाली आटा चक्की, क्लीन एनर्जी से बदलेगी गांव की तस्वीर, गांव के विकास में प्रोजेक्ट निभाएगा अहम भूमिका। पालघर में आदिवासी बच्ची का भाषण सुन भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, बच्ची के आत्मविश्वास ने जीता सभी का दिल, सचिन ने बच्ची को गले लगाकर बढ़ाया उसका हौसला। सचिन तेंदुलकर ने बच्ची को किया सम्मानित, बोले सचिन गांव में छुपी है असली प्रतिभा, स्कूली छात्राओं के साथ सचिन ने खिंचवाई तस्वीर। मुंबई में TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस कन्वेंशन सेंटर में टिस ग्लोबल कोलोक्वियम साल 2026 का आयोजन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए इसमें शामिल। गोवा के खांडेपार स्थित रामकृष्ण मठ में प्रस्तावित रामकृष्ण मिशन गोवा परियोजना के रखे गए आधारशिला, सीएम सावंत ने लिया इस आयोजन में हिस्सा। दिल्ली में ICAR और ICMR के एक संयुक्त राष्ट्रीय मिशन सेहत का हुआ शुभारंभ, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने, केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। स्वच्छ दिल्ली अभियान को लेकर सरकार हुई सख्त, NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने खान मार्केट में रात की सफाई और पुनर्विकास कार्यों का किया निरीक्षण।

0: फिर धर्मेंद्र प्रधान हुए इसमें शामिल। गोवा के खांडेपार स्थित रामकृष्ण मठ में प्रस्तावित रामकृष्ण मिशन गोवा परियोजना के रखे गए आधारशिला, सीएम सावंत ने लिया इस आयोजन में हिस्सा। दिल्ली में आईसीएआर और आईसीएमआर के एक संयुक्त राष्ट्रीय मिशन सेहत का हुआ शुभारंभ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। स्वच्छ दिल्ली अभियान को लेकर सरकार हुई सख्त, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने खान मार्केट में रात की सफाई और पुनर्विकास कार्यों का किया निरीक्षण। बाजार में स्वच्छता बनाए रखने के लिए रोजाना रात के समय की जा रही है सफाई और धुलाई, इलाके का सौंदर्यकरण और लोगों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित कराना है इसका मकसद। अब यूपी को बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ाने की बारी। देसी जुगाड़ देखकर दंग रह गए सचिन तेंदुलकर, बच्चों की अनोखी देसी कार का वीडियो किया गया शेयर, बोले सचिन परिस्थितियां किसी का भी इंतजार नहीं करती, बस मौका चाहिए। पंजाब बोर्ड ने 10वीं के परीक्षा परिणाम के जारी, एग्जाम में बेटियों ने एक बार फिर से मारी बाजी, फरीदकोट में किसान की बेटी हरलीन शर्मा ने किया टॉप। हरलीन शर्मा 650 में से 646 अंक लाकर बनी पंजाब बोर्ड की टॉपर, स्कूल में ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया जश्न, मिठाई बांटकर मनाई गई खुशी। माता पिता ने बेटी की सफलता पर जताया गर्व, हरलीन ने पेरेंट्स और टीचर्स को दिया श्रेय, जज बनकर देश की सेवा करना चाहती है हरलीन। मादा कछुआ धवल लक्ष्मी ने तय किया 4000 किलोमीटर का अनोखा सफर, समंदर के रास्ते पालघर से ओमान पहुंची धवल लक्ष्मी, फिर ओमान से भारत की ओर की वापसी। मादा कछुआ धवल लक्ष्मी बनी समुद्री रिसर्च की स्टार, देश की पहली सैटेलाइट टैग्ड मादा कछुआ है धवल लक्ष्मी, कछुए के सफर से समुद्री जैव रिसर्च को मिलेगी नई दिशा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज

देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित

और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है, लेकिन इसकी

संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स होते हैं, फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल,

ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये

0: काम दिया करती है। ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फले वो ना मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: अब से कुछ ही देर में असम में हिमंत बिस्वा सरमा की ताजपोशी, चार मंत्रियों के साथ लेंगे सीएम पद की शपथ। समारोह में पीएम और कई राज्यों के सीएम भी हो रहे हैं शामिल। ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार, सुबह से ही मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। तेजी से आगे बढ़ रही है जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी। मंदिर सूत्रों के अनुसार अब तक तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य हुआ पूरा।

0: बड़े मंगल की। जी हाँ, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और इस महीने में बजरंग बली की भक्ति पूरे उत्तर भारत में खास रंग में नजर आ रही है। देखिए, हनुमान मंदिरों की अगर हम बात करें तो मंदिरों में जयकारे गूंजते हैं, शहर शहर भंडारे लगते हैं और हर गली मोहल्ले में सुनाई देती है एक ही नाम, यानी कि जय बजरंग बली। दरअसल ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगल पर किस तरीके से सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें जो है मंदिरों में देखने को मिल रही है और इस पवित्र पावन दिन को लेकर देश भर में बजरंग बली के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं भंडारे जो है वो सज रहे हैं, उनका आयोजन हो रहा है, कहीं सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है।
1: जयकारे और दिलों में अटूट आस्था के जयकारे और दिलों में अटूट आस्था। आज दूसरा बड़ा मंगल है और पूरे देश में भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक हनुमान मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। भक्त हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो वहीं जगह जगह विशाल भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। लखनऊ का बड़ा मंगल तो खास तौर पर अपनी परंपरा और भव्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ सड़क से लेकर गलियों तक हर तरफ सेवा और श्रद्धा का माहौल नजर आता है। लखनऊ में हनुमान जी के कई प्राचीन और विशाल मंदिर हैं, जिनमें अलीगंज हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर और लेटे हुए हनुमान जी का खास महत्व है। लखनऊ में जगह जगह भक्तों के लिए शरबत, पूरी सब्जी, हलवा और प्रसाद के भंडारे लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में युवा और सामाजिक संगठन सेवा कार्यों में जुटे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ सुबह से संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई है, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हनुमान मंदिर में श्रद्धालु सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं।
2: यहाँ बाबा बैठे हैं, कलयुग के देवता हैं, कलयुग में हनुमान जी ही हैं जो सबका कल्याण कर रहे हैं। बाबा यहाँ विराजमान है, लाखों लाखों भक्तों का कल्याण कर रहे हैं।
3: नॉर्मली भीड़ यहाँ मंगलवार को हमेशा रहती है, लेकिन ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार का मतलब दूसरा बड़ा मंगलवार है, इसलिए ज्यादा भीड़ है थोड़ा। ठीक है, भगवान यहाँ पे लेटे हुए अवस्था में हैं, सब आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है।
1: रामनगरी में हनुमान जी के शुभ दिन पर भक्तों में भारी उत्साह है। यहाँ के मंदिरों में सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ ही भक्त बजरंगबली की सेना यानी वानरों की सेवा में भी जुटी है। राम भक्तों ने बंदरों को केले और खाने की दूसरी चीजें बांटी। बड़ी संख्या में बंदर यहाँ मौजूद थे। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी में सुबह से भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। यहाँ दूर दूर से पहुँचे भक्त दर्शन और पूजन कर रहे हैं। भक्तों के लिए यहाँ मीठे शरबत और भंडारे का भी आयोजन किया गया। लोग लगातार भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस दिन सच्चे मन से बजरंग बली की उपासना करता है और गरीबों को भोजन दान करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है।
4: प्रभु की इतनी असीम अनुकंपा से कि हमको अयोध्या वास मिल गया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की भी बात है और मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि प्रभु ने इतना मुझे सम्मान दिया कि आज मैं यहाँ पे आ पाई हूँ, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ लगी हुई है।
5: बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ है, लगभग हजारों लोग हैं, लेकिन दर्शन बहुत अच्छा हुआ।
6: बहुत ही दिव्य और अलौकिक दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। और जहाँ तक कहा जाए कि हनुमान जी की कृपा है और इनकी कृपा ऐसे सभी के ऊपर बनी रहे, सबके ऊपर कल्याण अपना करते रहे।
1: भक्ति, सेवा और समर्पण का ये उत्सव

0: कर्तव्य सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और मानव सेवा का भी संदेश देता है। दूसरे बड़े मंगल पर पूरा देश बजरंगबली की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: ज्येष्ठ माह में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। मंगलवार तो माना ही जाता है हनुमान जी की उपासना के लिए। हम आपको बताने वाले हैं बड़ा मंगल पर आपको कैसे करनी है वीर बजरंगी की उपासना, हनुमत उपासना में कैसे चढ़ाना है चोला, साथ ही जानेंगे हनुमान जी से जुड़े कुछ खास महाप्रयोग। आज के इस शो में बड़ा मंगल से जुड़ी तमाम जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे।

0: कल्याणकारी है ज्येष्ठ का मंगलवार। बड़ा मंगल की तिथि के स्वामी है वीर हनुमान। बुढ़वा मंगल की तिथि पर बनेंगे सारे बिगड़े काम। क्योंकि इसी दिन बजरंगबली से मिले थे श्री राम। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवारों को भगवान हनुमान की विशेष आराधना की जाती है और भक्त राम कथा सुंदरकांड के साथ भंडारे जैसे मांगलिक काम करवाते हैं। यह पर्व भगवान हनुमान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्टों का अंत होता है।
1: ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही भगवान राम के वन में आने के बाद पहली बार हनुमान जी ने दर्शन किए थे, तो ऐसा माना जाता है कि बड़ा मंगलवार इसलिए, और बड़ा नाम या बुढ़वा नाम भी कई जगह बड़े के लिए बुढ़वा भी कहते हैं ना, बड़े का अर्थ है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगल

0: कर लेगा।
1: माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में जितनी भी मंगलवार की तिथि आती है उन सभी को बड़ा मंगल ही कहा जाता है। मान्यता है कि मंगलवार को विधि विधान से महावीर की उपासना करने से साधक के सभी कष्टों का अंत हो जाता है। इस दिन देश भर के हनुमान दरबार को भक्तों के लिए सजाया जाता है।
0: अगर आप आज हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वहां पर उनको चोला आदि चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं उनका, और उनके गंगा जल और तुलसी दल अर्पण करके उनके समक्ष बैठ के भगवान राम के चरित्र का पाठ करते हैं और साथ में हनुमान जी का जो वो है सुंदर कांड उसका पाठ करते हैं, तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, मन की आपकी इच्छित कामनाएं पूर्ण होती हैं।
1: संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से सारे संकट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आपको कैसे करनी है बड़े मंगल पर हनुमान उपासना। बड़े मंगल को व्रत रख कर हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का भी पाठ करना लाभकारी होता है। स्नान करके हनुमान जी को रोली चंदन का तिलक लगाएं। हनुमान जी को लाल वस्त्र से अत्यधिक प्रेम है, इसलिए लाल वस्त्र का दान करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि हनुमान जी श्री राम के बिना नहीं रह सकते, माता सीता ने उनको अजर अमर होने का वरदान दिया है, इसलिए कलयुग में भी भगवान हनुमान चिरंजीवी हैं। भगवान राम की आराधना भी जरूर करनी चाहिए, हो सके तो राम दरबार की उपासना करनी चाहिए।
0: जब माता सीता ने एकमात्र अपने मस्तक पर सिंदूर धारण करने पे राम की प्रीति प्राप्त होती है यह सुन के पूरे शरीर में सिंदूर धारण कर लिया था और राम अति प्रसन्न हुए थे, इसलिए कि राम की प्रसन्नता जैसे हनुमान जी को प्राप्त हुई, हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो, इसलिए हम राम जी के प्रेम में हनुमान जी को पड़े हुए पाकर उनको सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं।
1: मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के बड़ा मंगल के दिन भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को चोला चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं को महावीर पूर्ण करते हैं। सिंदूर में चमेली का तेल और गाय का शुद्ध देसी घी मिलाने से जो लेप बनता है उसे चोला कहते हैं। सिंदूरी चोले को ही भगवान को लेपा जाता है।
0: चोला चढ़ाने का विशेष विधान बताया गया है, उनके सामग्री विशेष तौर पे। यदि आप केवल हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो तो उनको चोला घी में चढ़ाया जाता है, और यदि आप अपने मन की कोई कामना या रोग शांति शत्रु नाश या शत्रुओं से होने वाली पीड़ा या भय आपके मन में रहता है तो चमेली के तेल में चढ़ाने का विधान बताया गया है।
1: वीर बजरंगी पवन पुत्र हनुमान को चोला चढ़ाने का विशेष शास्त्रीय विधान है, जिससे कुछ परंपराएं जुड़ी हैं तो कुछ मान्यताएं। बड़ा मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला और सिंदूर चढ़ाने से वह प्रसन्न होकर भक्तों के सारे संकटों को दूर करते हैं।
0: इसके विधान में सबसे पहले हनुमान जी को गंगा जल आदि पवित्र जल से स्नान कराने के पश्चात उनको पूर्ण रूपेण एक श्वेत वस्त्र या साफ वस्त्रों से साफ करने के पश्चात सबसे पहले या तो चमेली के तेल से स्नान कराएं या घी से स्नान कराएं या फिर हनुमानी सिंदूर और घी या चमेली का तेल आपस में मिला के एक पेस्ट बनाएं उनको, और सबसे पहले इस चोले का विधान है कि वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है, अर्थात पांव से सिर की ओर लेके जाते हैं। सबसे पहले उनके बाएं पांव पे वो सिंदूर का चोला बनाया हुआ चढ़ाते हैं, फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते उनके दाएं पांव, फिर उनके कटी भाग, फिर पूंछ, फिर हृदय पे स्थान पे जाके और फिर सिर के ऊपर लगाया जाता है।
1: चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का ही उपयोग करें। चोला चढ़ाते समय एक दीपक हनुमान जी के सामने जला कर रखें। दीपक में भी चमेली के तेल का ही उपयोग करें। चोला चढ़ाने से पहले प्रतिमा को स्नान करवाएं, देसी घी लगाकर उस पर सिंदूर का चोला चढ़ा दें। चोला कभी भी एक या दो नहीं चढ़ाया जाता। चोला चढ़ाने के पहले संकल्प करना चाहिए 5, 11, 21, 51 या फिर 101 चोला चढ़ाना चाहिए। भगवान को सबसे पहले बाएं पैर में चोला चढ़ाएं। चोला हमेशा पैर से सिर की ओर चढ़ाना चाहिए, कभी भी चोला सिर से पैर की ओर ना चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को साफ वस्त्र और जनेऊ पहनाएं। रेशम का लाल धागा अर्पित करके उसे गले में धारण करें, लाभकारी होगा। आखिर में भगवान को भोग लगाकर आरती करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के उतरे हुए चोले को चांदी की डिब्बी में भर कर रख सकते हैं या फिर उसे बहते पानी में प्रवाहित भी कर सकते हैं, लेकिन डिब्बे में भरे पुराने चोले को हर महीने की पूर्णिमा पर हनुमान जी के सामने रख कर धूप दीप दिखाना जरूरी होता है।

0: मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। मंगलवार के दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए, मान्यता है कि बड़ा मंगल की तिथि पर बजरंग बलि की उपासना परम फलदायी होती है, लेकिन ये परंपरा आखिरकार पड़ी कैसे, इसके पीछे पौराणिक कहानियां भी हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली ही आ रही है।
1: मंगल ही करते मंगलमय भगवान, क्योंकि ये दिन समर्पित माना जाता है बजरंग बलि की उपासना के लिए। मान्यता है कि ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार के दिन बड़ा मंगल उत्सव सदियों से मनाने की परंपरा रही है, जिसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। लेकिन ये परंपरा अलग अलग युगों में अलग अलग पौराणिक कहानियों से जुड़ती चली गई। सबसे पहले आपको उस युग में लेकर चलते हैं जिस युग में अयोध्या में श्री राम का अवतरण हुआ, यानी त्रेता युग में। बुढ़वा मंगल से जुड़ी त्रेता युग की कहानी। रामचरितमानस कहती है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के ही दिन सीता हरण के बाद ऋषि मुख्य पर्वत पर जंगल में भटकते सीता की खोज करते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भाई लक्ष्मण से भगवान हनुमान विप्र भेष में मिले थे। भक्त और भगवान के इसी मिलन के उपलक्ष्य में आज तक ये परंपरा चली आ रही है। बुढ़वा मंगल से जुड़ी द्वापर युग की कहानी। बुढ़वा मंगल से जुड़ी एक पौराणिक कहानी उस दौर की भी है जहां द्वापर युग में कौरव पांडव आपस में युद्ध कर रहे थे। कहते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी के कहने पर भीम कमल पुष्प लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर स्थित कमल सरोवर के पास पहुंच गए। कथा कहती है कि वही मार्ग में हनुमान जी लेटे हुए थे और उनकी पूंछ रास्ते को घेरे हुई थी। भीम उसे लांग कर जाना नहीं चाहते थे। भीम ने हनुमान जी से कहा कि वे अपनी पूंछ को रास्ते से हटा ले ताकि वे आगे जा सके। कथा कहती है कि हनुमान जी मुस्कुराते हुए भीम की बातों को अनसुना कर देते हैं।

0: बुढ़वा मंगल से जुड़ी द्वापर युग की कहानी। बुढ़वा मंगल से जुड़ी एक पौराणिक कहानी उस दौर की भी है जहां द्वापर युग में कौरव पांडव आपस में युद्ध कर रहे थे। कहते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी के कहने पर भीम कमल पुष्प लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर स्थित कमल सरोवर के पास पहुंच गए। कथा कहती है कि वहीं मार्ग में हनुमान जी लेटे हुए थे और उनकी पूंछ रास्ते को घेरे हुई थी। भीम उसे लांघकर जाना नहीं चाहते थे। भीम ने हनुमान जी से कहा कि वे अपनी पूंछ को रास्ते से हटा ले ताकि वे आगे जा सके। कथा कहती है कि हनुमान जी मुस्कुराते हुए भीम की बातों को अनसुना कर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम तो बलशाली हो, खुद ही मेरी पूंछ हटा दो और आगे चले जाओ। कथा है कि भीम वेश बदल कर बैठे हनुमान जी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि बड़ा मंगल की तिथि पर अगर कुछ महाप्रयोग किए जाएं तो साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। माना जाता है कि बड़े मंगल के दिन भगवान हनुमान के समक्ष तेल का दीपक जलाकर चालीसा का पाठ किया जाए तो जीवन से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में आर्थिक लाभ के योग बनते हैं।
1: देश भर में हनुमान जी के भक्त ज्येष्ठ माह का बड़े मंगल को बहुत ही धूमधाम से इसे मनाते हैं। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। माना जाता है कि इस महीने में बजरंग बली से जुड़े कुछ महाप्रयोग करने से आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है।

0: अष्ट सिद्धियों के दाता हैं रुद्र अवतार। जीवन की हर परेशानी से निजात दिलाते हैं हनुमान। महाबली बजरंगबली का एक ऐसा ही सिद्ध दरबार बसा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां हनुमान जी के इस दरबार को कहते हैं सेतु बजरंगबली का दरबार। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सफेद प्रतिमा में बजरंगबली की शक्ति प्राण प्रतिष्ठित है। पौराणिक मान्यता है कि माता सीता ने भगवान हनुमान को अजर अमर होने का वरदान दिया था। माना भी जाता है कि कलयुग में हनुमान जी जागृत देव हैं। वो आज भी संकट में रहने वाले अपने भक्तों पर कृपा करते हैं।
1: श्रृंगार के लिए सोने या चांदी का वर्क उनको चढ़ाया जाता है, पश्चात विशेष मंत्रों से उनको यज्ञोपवितम परमम पवित्रम आदि मंत्रों से हनुमान जी को एक यज्ञोपवित चढ़ाया जाता है। उनको आज लाल रंग का लंगोट का वस्त्र धारण करा के गुलाब आदि की मालाओं से उनको आच्छादित करते हैं, तुलसी दल शहद में भिगो के उनको भेंट करते हैं राम राम कहते कहते, और उनकी अति प्रसन्नता के लिए यदि रोग शांति या ग्रह गोचर की शांति के लिए चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष पे के पत्तों पे लाल सिंदूर से हनुमान जी के प्रसन्नता के लिए राम राम राम लिख के 10 21 या 31 पत्तों की माला भी हनुमान जी को चढ़ाएं, उनके निमित्त बैठ के आरती गाएं उनकी और उनको भोग निवेदन करें। जो भोग निवेदन करें वो प्रसन्नार्थ लोगों को बांट दें। विद्यार्थी विशेष तौर पे जो चंचलता अधिक रखते हैं, एकाग्रता की कमी है जिनको पूजा अपने है ना विद्याध्ययन में, तो हनुमान जी की पूछ का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है, उनको जीवन में सफलता मिलती है।
0: माना जाता है कि हनुमान जी के इस दरबार में भक्त अपने आराध्य का वंदन करते हैं और अपने मन में मांगी गई मुराद चिट्ठियों में लिखकर बजरंग बली तक पहुंचाते हैं। यानी कह सकते हैं कि अंजनी पुत्र इस दरबार में पत्राचार से भी भक्तों की कामना को पूरी कर देते हैं। दावा किया जाता है कि मंदिर में भगवान हनुमान की करीब 6.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बसी लक्ष्मणपुरी आज लखनऊ बन गई है। इसी लखनऊ में बजरंगबली भक्तों को श्वेत वर्ण में दर्शन देते हैं।
2: तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए JNT के साथ।
3: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: What if you could see what's happening inside your body?

0: Prenuvo's whole body scan screens for hundreds of conditions, including many solid tumors as early as stage one, all in under an hour. And now you can go beyond imaging with 80-plus blood biomarkers that help complete the picture. Proactive health starts here. This Mother's Day, save $400 off your scan when you book at Prenuvo.com. That's Prenuvo.com to get $400 off for Mother's Day, now through May 12th. Terms and conditions apply.
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
5: Aur durbhagya kehta hai
6: ki bhagya kahin dur nahi.
7: Avishwas mein vishwas basta hai.
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: गुड न्यूज टुडे.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को.
11: चलिए आगे बढ़ते हैं, बात ब्राजील की कर लेते हैं. ब्राजील में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक तस्वीर तब नजर आई जब लैटिन अमेरिका में पहली बार भगवान गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई. ये प्रोग्राम सेंट्रो कल्चरल विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था. इस मौके पे ब्राजील में भारत के राजदूत और ब्राजीलियाई वैदिक शिक्षक भी मौजूद रहे. दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं. वैदिक मंत्रों, पूजा अर्चना और पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया. ये आयोजन दक्षिण अमेरिका में बढ़ते हिंदू समुदाय की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मील का पत्थर इसे बताया जा रहा है. आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका में लगभग 4 से 3 लाख हिंदू जो है इसमें रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी आबादी गुयाना और सुरियान में है, जबकि ब्राजील समेत दूसरे देशों में भी छोटे समुदाय मौजूद हैं. फिलहाल तो गणपति बप्पा का ये प्रतिमा इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय में लगाई गई है, जिसे जोनास मसेटी ने स्थापित किया था. विश्वनाथ के नाम से मशहूर मसेटी उदय वेदांत संस्कृत और योग के शिक्षक हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य भी रहे हैं. साल 2025 में उन्हें वैदिक संस्कृति, वेदांत और संस्कृत के वैश्विक प्रचार प्रसार में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें.
12: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड. दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में.
13: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
9: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
13: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
14: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
16: दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हिमंता बिस्वा सरमा। सीएम के साथ चार मंत्रियों ने भी ली शपथ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार। सुबह से ही मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। तेजी के साथ आगे बढ़ रही है जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी। मंदिर सूत्रों के मुताबिक अब तक तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। ब्राजील के सेंट्रो कल्चरल विश्वविद्या में वैदिक मंत्रों और पारंपरिक अनुष्ठान के साथ हुई भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना। ब्राजील में रह रहे भारतीयों के लिए ऐतिहासिक पल। कांस 2026 में जलवा बिखेरेंगे अभिनेत्री आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय बच्चन। आज से हो रहा कांस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ, 23 मई तक होगा ये।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग
16: सज गई है, खबरों की प्लेट तैयार है। गुड न्यूज का मेन्यू, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गुप्ता साहिल देव।
17: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
16: अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब। दर्शनों के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। अयोध्या में बड़ा मंगल पर भक्तों ने बंदरों को खिलाया खाना। बंदरों के खिलाने के लिए सुबह से मंदिर पहुंच रहे लोग। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब। दर्शन के लिए लगी कतारें। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य और दिव्य श्रृंगार।
17: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, भस्म आरती में लिया हिस्सा। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही। तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य पूर्ण। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही है भक्तों की संख्या। अब तक 21,000 से ज्यादा श्रद्धालु उठा चुके हैं हेली सेवा का लाभ।
16: यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं चारधाम के दर्शन, लगातार बढ़ रही है संख्या। राजस्थान के पुष्कर में 43 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में विदेशी महिला की अनोखी तपस्या की हो रही है चर्चा, महिला भक्त ने 10 साल पहले अपनाया था नाथ संप्रदाय। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पालघर के गुहिर गांव में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का शुभारंभ किया, सौर ऊर्जा से रोशन होगा पूरा गांव, 130 घरों को मुफ्त में मिलेगी बिजली। मुंबई में TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस कन्वेंशन सेंटर में TISS ग्लोबल कोलोकियम 2026 का आयोजन किया गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। दिल्ली में ICAR और ICMR के एक संयुक्त राष्ट्र मिशन सेहत का शुभारंभ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ शिरकत की। गिर के जंगल में पर्यटकों को रोमांचित करने वाली न्यूज, पर्यटकों के सामने ही शेरनी ने शिकार पर किया हमला, बाद में दूसरे शेर भी हुए शामिल, पर्यटकों ने बनाया वीडियो। JNK के राजौरी में लोगों को सशक्त बना रहा सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगम 88.8, लोगों को सूचना देने के साथ उपलब्ध करवा रहा रोजगार के मौके। 18 से 19 मई 2026 को नॉर्वे के ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे प्रधान। नैरोबी में फ्रांस के राष्ट्रपति मैलन मैक्रो का दिखा खिलाड़ी अंदाज, युवा फुटबॉलर्स के साथ मैदान में फुटबॉल खेलते आए नजर। किंग चार्ल्स ने लंदन में गाइज हॉस्पिटल के कैंसर सेंटर का किया दौरा, संस्थान की 300वीं वर्षगांठ के तहत यह दौरा आयोजित किया गया था।
18: धुरंधर के बाद अब बड़े पर्दे पर महादेव बनेंगे रणवीर सिंह, फिल्म प्रलय में शिव के किरदार में नजर आएंगे रणवीर सिंह। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 का जलवा जारी, फिल्म ने 54 दिनों में की 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई। रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया, फिल्म में रूपनखा का किरदार निभाएंगी एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह। अठारह मई को रामचरण और जानवी कपूर की पैडी का ट्रेलर होगा रिलीज, 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म दृश्यम 3 के हिंदी वर्जन की शूटिंग पूरी, 2 अक्टूबर को रिलीज होगी ये फिल्म।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
16: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए, खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार पर हनुमान मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार।
18: चारधाम यात्रा में बढ़ता जा रहा भक्तों का उत्साह, 11 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए भगवान के दर्शन।
16: भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, भस्म आरती में शामिल होकर लिया भगवान का आशीर्वाद।
18: सात समंदर पार सनातन आस्था की अद्भुत झलक, ब्राजील के सेंट्रो कल्चर विश्वविद्यालय में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गणपति की प्रतिमा की स्थापना की गई।
16: आज से शुरू हो रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल, दुनिया भर के फिल्मी सितारों की सजेगी महफिल, भारत से आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बच्चन होंगे शामिल।

0: और चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात फ्रांस में आज से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल की करते हैं, जहां रेड कार्पेट पर एक बार फिर से भारतीय सितारों का जलवा देखने को मिलने वाला है। एक दौर हुआ करता था जब कांस में भारत की मौजूदगी सिर्फ ग्लैमर और रेड कार्पेट तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है।
1: जी हाँ, कांस फिल्म फेस्टिवल में अब फिल्में ही नहीं, भारतीय सितारों का फैशन और ग्लैमर के साथ फिल्मों की भी खूब चर्चा होती है। पिछले कई सालों से ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट समेत कई सितारों ने रेड कार्पेट

0: पर अपने शानदार अंदाज से दुनिया भर का ध्यान खींचा। इस साल भी भारतीय सितारे कांस के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरने वाले हैं। फ्रांस में ये फेस्टिवल 23 मई तक चलने वाला है। 79वें संस्करण में इस बार भारत की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और रंगों से भरी नजर आने वाली है।
1: और देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार कांस में सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि भारत की अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों की कहानियां भी कांस के मंच पे चमक बिखेरते हुए आप सबको नजर आएंगी। तो इंडियन स्टार्स पहुंचेंगे कांस के लिए, वो तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे जैसे ही वो तस्वीरें बाहर आएंगी।

0: दुनिया की सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में से एक कैन का मंच सज चुका है। फैशन और ग्लैमर के इस महामंच पर दुनिया भर के दिग्गज जुट चुके हैं। आज से 23 मई तक कैन का ये मंच चुनिंदा फिल्मों और हस्तियों से गुलजार रहने वाला है। फ्रांस के फ्रेंच रिवेरे में आयोजित 79वें कैन में अगले 12 दिनों तक दुनिया भर की फिल्मों की स्क्रीनिंग रखी जाएगी, तो कैन के भव्य रेड कार्पेट पर दुनिया भर की हस्तियां अपने स्टाइल और लुक से छाप छोड़ेंगी, जिनमें भारत की नुमाइंदगी करती बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस भी शुमार होंगी। इस साल भारत से आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय, मौनी रॉय, अदिति राव हैदरी और एहसास चन्ना कैन के रेड कार्पेट पर पहुंचेंगी। तारा सुतारिया कान रेड कार्पेट पर डेब्यू करने वाली हैं। जबकि आलिया लॉरियल पेरिस की तरफ से कान में शिरकत कर रही हैं। कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1946 में हुई थी और उसी साल भारत ने अपनी मौजूदगी प्रमुखता के साथ दर्ज कराई। चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर को पहले कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था। जहां तक कान के रेड कार्पेट पर भारतीय एक्ट्रेसेस के शिरकत करने का सवाल है, तो उसकी शुरुआत 2002 में ऐश्वर्या राय ने की। ऐश्वर्या ने अपनी फिल्म देवदास के प्रीमियर के लिए पहली बार रेड कार्पेट पर शिरकत की। उस वक्त ऐश्वर्या के साथ देवदास में उनके को स्टार शाहरुख खान और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी साथ थे। ऐश्वर्या ने तब नीला लुला की डिजाइन की गई सुनहरी पीली साड़ी और भारी आभूषण पहने थे। तब से भारतीय एक्ट्रेसेस के कान रेड कार्पेट पर शिरकत करने का सिलसिला चल पड़ा।
1: चलिए देखिए, मेट गाला के बाद अब बारी है कान्स फिल्म फेस्टिवल की और हमें इंतजार है कि कौन कौन से इंडियन सेलिब्रिटीज यहां पर अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। नाम देखिए सामने आने शुरू हो गए हैं। आलिया भट्ट का नाम चर्चा में है, ऐश्वर्या राय बच्चन जो हर वक्त कान्स में पहुंचती हैं, इस बार उनका लुक क्या होगा, कौन सा वार्डरोब वो पहनने वाली हैं, कैसा ड्रेसअप वो करने वाली हैं, सब पर चर्चा होगी।
2: बिल्कुल, तो देखिए आज से कान्स फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है। रेड कार्पेट पर एक बार फिर से भारतीय सितारों का जलवा देखने को मिलेगा, उसकी तस्वीरें भी सामने आएंगी। आपको याद होगा कि एक दौर था जब कान

0: चलिए देखिए, मेट गाला के बाद अब बारी है कांस फिल्म फेस्टिवल की, और हमें इंतजार है कि कौन कौन से इंडियन सेलिब्रिटीज यहां पर अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। नाम देखिए सामने आने शुरू हो गए हैं। आलिया भट्ट का नाम चर्चा में है, ऐश्वर्या राय बच्चन जो हर वक्त कांस में पहुंचती हैं, इस बार उनका लुक क्या होगा, कौन सा वार्डरोब वो पहनने वाली हैं, कैसा ड्रेसअप वो करने वाली हैं, सब पर चर्चा होगी।
1: बिल्कुल, तो देखिए आज से कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है। रेड कार्पेट पर एक बार फिर से भारतीय सितारों का जलवा देखने को मिलेगा, उसकी तस्वीरें भी सामने आएंगी। आपको याद होगा कि एक दौर था जब कांस में भारत की मौजूदगी सिर्फ ग्लैमर रेड कार्पेट तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब कहानी जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि भारतीय सितारों का
0: कपूर, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट समेत कई सितारे रेड कार्पेट पर अपने ग्लैमरस लुक में आपको इस बार नजर आने वाले हैं।
1: बिल्कुल, और ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि इस बार वो क्या कुछ नया अवतार लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंचेंगी। तो काफी बस बना हुआ है ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम को लेकर। हालांकि आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा भी वहां पर नजर आएंगी। कई सितारे हैं जो रेड कार्पेट पर अपने शानदार अंदाज से दुनिया भर का ध्यान खींचेंगे, जैसे कि पिछले साल भी हुआ था, और इस साल भी भारतीय सितारे कांस के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। फ्रांस में ये पूरा फेस्टिवल होने वाला है जो कि 23 मई तक चलने वाला है। 79वें संस्करण में इस बार भारत की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और रंगों से भरी नजर आने वाली है।
0: बिल्कुल देखिए, और पूजा एक और चीज की, कई स्टार्स का इस बार डेब्यू होने वाला है। तारा सुतारिया का नाम फ्लोट हुआ है। इसके अलावा और कौन कौन से स्टार्स हैं जो आपको रेड कार्पेट पर वॉक करते हुए नजर आएंगे, अपने स्टाइल्स को बिखेरते हुए नजर आएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ऐश्वर्या, जिसकी चर्चा हर साल हम करते हैं, पिछले 24 सालों से आपको बता दें कांस फिल्म फेस्टिवल का वो अहम हिस्सा रही हैं, और हर बार उनके लुक को लेकर चर्चा होती रही है। और देखिए, हर साल दुनिया भर के चुनिंदा लोगों को कांस की ज्यूरी में भी शामिल किया जाता है। लगातार आशुतोष गोवारिकर इस साल भारत के ऑफिशियल डेलीगेट बनकर कांस का हिस्सा पहली बार बनेंगे। 2021 और 2024 में कांस के दो अवार्ड, ग्रैंड प्री और गोल्डन आई अवार्ड जीत चुकी पायल कपाड़िया इस साल ज्यूरी बनकर कांस में शामिल हो रहे हैं।
1: वो क्रिटिक्स वीक कैटेगरी की ज्यूरी रहेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कांस में भारतीय हस्तियों को कब कब ज्यूरी में शामिल किया गया है। मृणाल सेन पहले भारतीय थी जिन्हें 1982 में जूरी में शामिल किया गया था। वहीं जूरी बनने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर मीरा नायर थी। मीरा ने 1990 में जूरी सदस्य के रूप कांस में शिरकत की थी।
0: बिल्कुल, राइटर अरुंधति रॉय 2000 में कांस की जूरी में शामिल हुई। ऐश्वर्या राय पहली इंडियन एक्ट्रेस हैं जिन्हें कांस में जूरी बनाया गया। ऐश्वर्या 2003 में जूरी बनी थी। इसके दो साल के बाद 2005 में नंदिता दास बतौर जूरी मेंबर शामिल की गई। 2009 में शर्मिला टैगोर, 2010 में डायरेक्टर शेखर कपूर जूरी का हिस्सा बने।
1: 2013 में एक्ट्रेस विद्या बालन, 2022 में दीपिका पादुकोण को कांस में जूरी बनने का मौका मिला। 2023 की बात की जाए तो क्रिकेट मीनाक्षी शेट्टी क्रिटिक्स, और पिछले साल 2025 में डायरेक्टर पायल कपाड़िया को जूरी बनाया गया था। अब इस साल पायल कपाड़िया फिर से जूरी मेंबर में शामिल हो गई हैं।
0: तो देखिए, जूरी की लिस्ट में भारतीयों का दबदबा काफी लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं। इस बार कौन कौन इसका हिस्सा बनेगा वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
1: और अब बात कर लेते हैं दिशा पाटनी की, जो कि हॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं। प्रियंका, दीपिका और आलिया के बाद दिशा पाटनी भी हॉलीवुड में धमाका करने वाली है।
0: बिल्कुल, उनकी अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर भी देखिए रिलीज हो गया है। इस फिल्म में एक्ट्रेस दमदार एक्शन अवतार में आपको नजर आ रही है। क्या खास है इस फिल्म में और कौन सी है ये फिल्म, देखिए।

0: प्रियंका, दीपिका और आलिया की राह पर एक और हसीना। हॉलीवुड में छाने को तैयार दिशा पाटनी। एक्शन अवतार में मस्त तलवारबाजी करती नजर आई दिशा।
1: Is it magic?
2: Channel the mana, shape the matter, control the power.
0: बॉलीवुड स्टार्स अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा तो पहले ही ग्लोबल स्टार का तमगा हासिल कर चुकी है और दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट भी हॉलीवुड फिल्मों

में अपने अभिनय का जादू बिखेर चुकी हैं। प्रियंका, दीपिका और आलिया के बाद अब एक और एक्ट्रेस हॉलीवुड में धमाके के लिए तैयार है, जिनकी अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो गया है। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस हसीनाओं में से एक दिशा पाटनी है। दिशा पाटनी ने बॉलीवुड के

0: उनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म द पोर्टल ऑफ फोर्स है और इसका ट्रेलर भी जारी हो चुका है। इस ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
1: These warriors, 12 on each side, fight to reign over the people of Earth as we know it. Get ready.
0: दिशा पाटनी द पोर्टल ऑफ फोर्स में एक्शन अवतार में नजर आने वाली हैं और जबरदस्त अंदाज में तलवारबाजी करती दिखाई देंगी, जिसकी झलक ट्रेलर में भी देखने को मिल चुकी है। फिल्म की बात करें तो ये एक काल्पनिक और रहस्यमय दुनिया की कहानी होगी। वहीं दिशा के फैंस भी उनके हॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी एक्साइटेड है। द पोर्टल ऑफ फोर्स की बात करें तो इसकी कहानी लाडो ओखोटनिकोव ने लिखी है। फिल्म में दो प्राचीन शक्तियों के बीच भारी टकराव देखने को मिलेगा, जिनमें से एक पक्ष दुनिया में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है तो दूसरा पक्ष एक अलग ही सोच और रास्ते में चलता है। वो दुनिया के संतुलन पर नहीं, शक्ति पर विश्वास रखता है। फिल्म में दिशा पाटनी की बात की जाए तो वो जेसिका के रोल में नजर आएंगी, जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है।
1: These warriors, 12 on each side.
0: दिशा पाटनी के किरदार को दो विरोधी गुटों के नेताओं की बेटी के तौर पर देखा गया है। वो दो आपस में लड़ रही दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करती है। उसके सामने किसी दुश्मन से लड़ने, उसे हराने की चुनौती नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने और सही रास्ता चुनने की जिम्मेदारी है।
2: Channel the mana, shape the matter, control...
0: ट्रेलर में दिखाया गया है कि दुनिया का भविष्य काफी हद तक जेसिका के फैसलों पर टिका हुआ है। वो अपनी शक्तियों को समझने, कंट्रोल करने और सही रास्ता चुनने की कोशिश करती नजर आती है। दिशा पाटनी ट्रेलर में कई दमदार एक्शन सीक्वेंस करती दिखाई दे रही है, कभी तलवारों के साथ तो कभी रहस्यमय शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनका अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। वहीं दिशा पाटनी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो लंबे समय से ट्रेलर रिलीज होने का इंतजार कर रही थी। पहली इंटरनेशनल फिल्म में काम करना उनके लिए एक्साइटमेंट होने के साथ थोड़ा डराने वाला अनुभव भी रहा।
3: She's not ready.
0: इसी के साथ दिशा को नए अंदाज में देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो फिल्म के रिलीज डेट के अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए, मई के महीने में फिल्मी दुनिया में खासी हलचल दिखाई दे रही है। इस हफ्ते भी कई धमाकेदार फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं। एक तरफ आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो है, तो दूसरी तरफ है संजय दत्त की आखिरी सवाल।
5: थिएटर्स ही नहीं, ओटीटी पर भी दर्शकों को कई ऐसी फिल्में और सीरीज देखने को मिलेंगी जिनका काफी समय से इंतजार किया जा रहा था।
6: अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोच है विकी। डिबेट यानी विवाद, भारत विवाद नहीं, संवाद यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इसमें भरोसा लगता है।
7: सच। धुरंधर में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद संजय दत्त एक बार
4: वो है, तो दूसरी तरफ है संजय दत्त की आखिरी सवाल।
5: थिएटर्स ही नहीं, ओटीटी पर भी दर्शकों को कई ऐसी फिल्में और सीरीज देखने को मिलेंगी जिनका काफी समय से इंतजार किया जा रहा था।
6: अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोच है विकी। डिबेट यानी विवाद, भारत विवाद नहीं, संवाद यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इसमें भरोसा लगता है।
7: सच। धुरंधर में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद संजय दत्त एक बार फिर पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने को तैयार है,
6: वरना आजकल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट।
7: उनकी फिल्म आखिरी सवाल पर भी काफी चर्चा हो रही है।
8: बटोर सके और हमें इमोशनल,
9: ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना सर, ताकि आप अपने आरएसएस को बचा सके।
7: रिलीज से पहले राजधानी में फिल्म का एक प्रीमियर रखा गया है। इस प्रीमियर में कई नामी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।
8: कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
7: फिल्म में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बड़े प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है।
8: और आरएसएस वायलेंट है।
3: वो तब गिरा जब इस देश के बहुसंख्यक समाज का विश्वास टूट गया।
7: संजय दत्त की इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।
10: आदमी शिष्टाचारी हैं, पति आज्ञाकारी हैं, और तो और वन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी हैं। समस्या? अबे हमारे जीवन में कहां से आएगी समस्या?
11: कीप काम बे।
7: संजय दत्त की आखिरी सवाल को पर्दे पर टक्कर देने के लिए आयुष्मान खुराना हंसी ठहाकों का फुल डोज लेकर आ रहे हैं।
12: जानवर काजे भूल गए, घर को पिंजरा का ये पकड़ लिया।
11: अरे चंचल को।
7: उनकी फिल्म पति पत्नी और वो दो भी 15 मई को रिलीज हो रही है।
13: खातून कौन थी? Who was the ladies?
10: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
13: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
7: इस फिल्म में आयुष्मान, रकुल प्रीत सिंह, वामिका गाबी और सारा अली खान के साथ कॉमेडी का तड़का लगाएंगे।
14: कैसे है आपका मानसी?
7: ये फिल्म 2019 में कार्तिक आर्यन और भूमि पडनेकर की फिल्म पति पत्नी और वो की सीक्वल है। टीजर रिलीज होने के बाद से इस फिल्म को लेकर दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई है। फिल्म में आयुष्मान खुराना का लुक भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।
15: धर्म करते हैं कर्म छूटता है, कर्म करते हैं धर्म छूटता है, कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुँचती।
16: 8 साल में तो आम का पेड़ भी फल देने लग गए, तेरे में तो कैरी भी ना फूट रही।
7: बड़े पर्दे के साथ साथ इस महीने OTT पर भी जबरदस्त फिल्में रिलीज हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा सैफ अली खान की कर्तव्य की है।
17: चोरी हुई थी
18: जी?
17: क्या बात है?
18: मारी बहन प्रीति ने लेके भाग गया तेरा भाई।
17: के?
7: ये एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसमें सैफ अली खान ने पुलिस इंस्पेक्टर पवन की भूमिका निभाई है।
17: दिन रात चामड़ी की मुसीबत सुलझाओ।
7: सैफ एक ऐसे अफसर बने हैं जो हर हाल में पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाने में जुटे रहते हैं।
19: हरपाल है जी, मेरा छोरा।
17: हरपाल
19: आनंद श्री के साथ है जी। हरपाल
7: सैफ अली खान के साथ इस फिल्म में रशिका दुग्गल, संजय मिश्रा और जाकिर खान भी अहम किरदार में हैं। फिल्म का ट्रेलर भी दर्शकों को खूब पसंद आया। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है 15 मई का, जब ये फिल्म OTT पर रिलीज होगी।
20: अविनाश मिश्रा, हमने इतने क्रिमिनलों को ढोका है, हमें सब कहते हैं महाकाल, यही रेपुटेशन है हमारी।
21: हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार
7: रणदीप हुड्डा की मोस्ट पॉपुलर सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 भी 15 मई को ही OTT पर स्ट्रीम होने जा रहा है।
22: ये है अभय गुज्जर, बियड़ों का राजा।
23: कल रात तक पैसे नए न लल्ला
24: तो बियड़े लगा तुम पर।
7: हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था।
25: बिल्कुल बड़ा प्लान कर रहे हैं,
26: देवी के सर पर शेख साहब का हाथ है।
27: यहाँ का बादशाह सिर्फ एक है और वो है हम।
7: ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सीरीज क्राइम, पॉलिटिक्स और करप्शन की दिलचस्प कहानी लेकर आ रही है।
28: हम तो महादेव के भक्त हैं, एक ही बार में दिल, आत्मा।
7: यानी ये हफ्ता सिनेमा के शौकीनों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बड़े पर्दे के साथ साथ OTT पर भी उन्हें कई ऑप्शन मिलने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
29: हर हर महादेव।
4: चलिए बात अनन्या पांडे की एक

0: रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल की कर लेते हैं, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस न्यू एज लव स्टोरी के ट्रेलर में इश्क, इंटेंस केमिस्ट्री, ड्रामा, दिल टूटने का दर्द दिखाई दे रहा है। ट्रेलर को काफी शानदार रिस्पांस मिल रहा है
1: और इस
0: फ्रेश पेयर को लेकर लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड।
2: मेरी बात सुन,
3: कैसी लग रही?
2: मेरी लग रही चांदी, सॉरी यार प्लीज, सुन गलती हो गई यार, प्लीज ओपन द डोर यार, प्लीज चांदी सुन, दरवाजा खोल यार।

0: इतने बड़े फ्यूचर में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं, तू रह लेगी मेरे बिना? पर मैं नहीं रह पाऊंगा यार, ऐसा फ्यूचर जिसमें तू ना हो नहीं चाहिए मुझे।
1: मम्मी ये चांदनी है।
2: लो चांदनी।
3: तो वही एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया आज भगवान महाकाल के दरबार में पहुंची। तमन्ना ने सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। सुबह करीब 3 बजे वो मंदिर पहुंच गए और मंदिर पहुंचने के बाद नंदी हॉल में बैठकर वो पूजा में शामिल हो।
4: देखिए इस दौरान वो पूरे भक्ति भाव में दिखाई दी। करीब 2 घंटे तक उन्होंने भगवान की दिव्य आरती के दर्शन किए।

0: खुश हूँ एक्चुअली. मैं बुलावा जब आता है तभी यहाँ पर कोई आ पाता है. तो श्री माँ कालेश्वर की का बुलावा आया तो हम आ गए यहाँ पर. बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत आनंदित है, बहुत बहुत अच्छी आरती. बस थैंक यू बोलने आई थी बिकॉज बहुत बहुत बहुत बहुत सब उन्होंने दिया है. हर हर महादेव.
1: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है, क्योंकि इस अपील का मुख्य उद्देश्य भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है और इसके लिए सोने से जुड़ा आयात बिल को कम करना जरूरी है. ऐसे में शादी के सीजन की वजह से सोने खरीद रहे ग्राहकों के लिए क्या विकल्प है, ये समझना भी अहम है. देखिए
2: तो हम कितने भी उपाय कर ले, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है. मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के संकट और वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए देशवासियों से सोना ना खरीदने या उसकी खरीद को टालने की अपील की है. इसका मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है.
1: ये क्या विकल्प है, ये समझना भी अहम है. देखिए
2: तो हम कितने भी उपाय कर ले, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है. मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के संकट और वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए देशवासियों से सोना ना खरीदने या उसकी खरीद को टालने की अपील की है. इसका मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है.
4: मोदी जी का कहना है कि जो इन्वेस्टर है गोल्ड के रूप में खरीदते हैं, डेड मनी कर देते हैं, जिसे देश के अंदर में
3: उसकी खरीद को टालने की अपील की है. इसका मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है.
4: मोदी जी का कहना है कि जो
5: गोल्ड पर 6 लाख करोड़ टन सोना तो हमारा इन हाउस ही पड़ा है जो रिसाइकल होना बाकी है. यदि हम 10 रुपए का भी इम्पोर्ट नहीं करते हैं, 1 ग्राम का भी इम्पोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाली 10 पीढ़ियां भी व्यापार के लिए मोहताज नहीं रहेगी.
2: घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे.
3: हालांकि प्रधानमंत्री की इस अपील का मुख्य मकसद आम लोगों की जरूरत से ज्यादा उन लोगों के लिए है जो सोने में निवेश करते हैं. लेकिन अगर आप सोने में निवेश करना ही चाहते हैं या अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सोने के अलावा भी कई विकल्प हैं जिनमें निवेश किया जा सकता है. इनमें सबसे सुरक्षित विकल्प है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें न चोरी का डर होता है और न मेकिंग चार्ज की टेंशन. साथ ही सरकार इस पर सालाना 2.5% ब्याज भी देती है. इसके अलावा डिजिटल गोल्ड लैब ग्रोन डायमंड भी

0: बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
1: कोई भी आदमी जो शादी ब्याह में गिफ्ट वगैरह बड़ी जो आइटम देता है वो गोल्ड के रूप में नहीं देखे, उस लिक्विड मनी के रूप में भी उसे गिफ्ट करते तो ज्यादा बेस्ट है, या अदर कोई आइटम में करते हैं तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो आदमी।
0: फिलहाल देश में शादी का सीजन जारी है। अप्रैल का महीना बीत जाने के बाद भी 14 मई तक कई शुभ मुहूर्त हैं। भारत में शादियों के सीजन में भी सोने की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर होती है, ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील का असर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।
2: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सजेशन दिया है देशवासियों को कि एक साल तक गोल्ड बिल्कुल भी ना खरीदे, जितना हो सके इन चीजों से बचे, क्योंकि इस समय अर्थव्यवस्था भारत की बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है और उसे देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए सजेशन दिया। हालांकि आधिकारिक तौर से नहीं है, लेकिन अब इसका खामियाजा गोल्ड बेचने वाले ज्वेलरी शॉप्स को कितना ज्यादा होने वाला है ये हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखें, यहाँ पर गोल्ड जब दिखता है तो दिखता है बिल्कुल इसी तरीके से चमकता है।
0: सोना खरीद को पारंपरिक रूप से एक बेहतरीन, सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश माना गया है, जो महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षा कवच देने का भरोसा देता है। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से वैश्विक तनाव अभी भी बना हुआ है। आमतौर पर ऐसे वक्त में सोना और चांदी जैसे कीमती धातुओं में निवेश सुरक्षित माना गया है। सराफा व्यापार से जुड़े कारोबारी भी निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदने से बचने की सलाह दे रहे हैं।
3: बेसिकली जो इस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भी सोना नहीं लेना है, वो भी सहमत है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सरकार को उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, देश के लिए काम आएगा। डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन इन्वेस्टरों से जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोना लेते हैं वो रुक जाए, कहीं ना कहीं सरकार को फायदा करना है। ये भी हम भी हमारी इच्छा है कि हम सरकार को फायदा करें।
0: भारत की गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाले देशों में होती है। ईरान अमेरिका युद्ध संकट के चलते कच्चा तेल पहले ही आसमान छू रहा है, ऐसे में सोने के ज्यादा आयात से विदेशी मुद्रा पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, और ये दबाव बना रहा तो देश के सामने ज्यादा महंगाई का संकट पैदा होगा। भारत में हर साल सोने के आयात पर 6 लाख करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। 2024-25 में यह आंकड़ा 4.89 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2025-26 में 6 करोड़ 40 लाख आयात बिल था। प्रधानमंत्री मोदी के इस अपील का सबसे बड़ा उद्देश्य आयात खर्च को कम करना है। सोने के आयात में कमी आने से विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। अगर सोने के इंपोर्ट यानी आयात में 30 से 40 फीसदी की गिरावट दर्ज की जाती है तो देश के लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर की बचत तय है। ये बचत चालू खाता घाटा को कम करने और रुपए को स्थिर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
4: देखिए, 1000 टन सोना इंपोर्ट होता है, 800 टन सोना तकरीबन एक साल में इंपोर्ट होता है और चांदी भी होती है, तो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है या जो फॉरेन करेंसी जाती है उसको बचाने के लिए अभी तेल में 60 रुपए का जो तेल का भाव था और जो 100 रुपए हो गया है, तो करीबन दुगना फॉरेन करेंसी सरकार को खर्च करनी पड़ रही है। उसको करंट अकाउंट डेफिसिट में ना आए सरकार, या सोना गिरवी ना रखना पड़े या बेचना ना पड़े, इसलिए सरकार ने ये अपील की है।
0: भारत में शादियों के सीजन में भारी सोना खरीदा जाता है, ऐसे में ये अपील गैर जरूरी सोने की खरीदारी को कम करने के लिए ही है, जो सालाना खपत का लगभग 60-70% हिस्सा माना जाता है। सोना सिर्फ एक धातु भर नहीं, हमारी परंपरा है, लेकिन बदलते दौर में समझदारी इसी में है कि निवेश डिजिटल हो और सोना फिजिकल ना हो। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, जयपुर से रिदम जैन और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की महातैयारी।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
7: इट नेवर हैपेंस एट अ गुड टाइम, द पाइप बर्स्ट एट मिडनाइट, द हीटर क्विट्स ऑन द कोल्डेस्ट नाइट, सडनली यू आर ओवरवेल्म्ड। That's when Home Serve is here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
8: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more. All in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्व शर्मा. सीएम के साथ चार मंत्रियों ने भी ली शपथ. कार्यक्रम में पीएम समेत बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल.
2: ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार. सुबह से ही मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़.
1: तेजी के साथ आगे बढ़ रही है जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी. मंदिर सूत्रों के अनुसार अब तक तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य हुआ पूरा.
2: ब्राजील के सेंट्रो कल्चरल विश्वविद्यालय में वैदिक मंत्रों पारंपरिक अनुष्ठान के साथ हुई भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना. ब्राजील में रह रहे भारतीयों के लिए ऐतिहासिक पल.
1: बॉलीवुड के बाद अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रही है अभिनेत्री दिशा पाटनी. उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म द पोर्टल फोर्स का ट्रेलर जारी.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम.
2: और चलिए अब बात पूरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की कर लेते हैं. इस महाआयोजन को लेकर तैयारी तेज है. अलग अलग विभाग में तालमेल को लेकर आला अधिकारियों की अहम बैठक भी हुई,
1: जिसमें तीर्थ यात्रियों की सेहत, सुरक्षा और बाकी सुविधाओं को लेकर मंथन हुआ है.

0: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। एक ओर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों का निर्माण परंपरागत विधि विधान के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर प्रशासन ने 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात और स्वच्छता संबंधी व्यापक इंतजाम शुरू कर दिए हैं। रथ निर्माण कार्य और प्रशासनिक तैयारियों ने श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और श्रद्धा का वातावरण और अधिक बढ़ा दिया है।
1: हम इसीलिए यहाँ आते हैं कि दौड़े तू दौड़ो गोविंदं, चापे तू मधुसूदनं, रथे तू बामन दृष्ट्वांग पुनर्जन्मंग नविर्दते। भगवान जगन्नाथ को दौड़ बेदिरे दौड़ गोविंद रूप से देखिबा, और चापे तू मधुसूदनं, रात में आज जो नौका विहार करेंगे उसमें मधुसूदन रूप में रहेंगे, और रथ में बामन दृष्ट्वांग, रथ में बामन अवतार में देखने से उनको बामन रूप में मुक्ति लाभ हो जाएगा।
0: भव्य रथ निर्माण कार्य में जबरदस्त तेजी आई है। मंदिर सूत्रों के अनुसार अब तक तीनों रथ के लिए कुल 18 पहियों का निर्माण पूरा हो चुका है। हर साल की तरह इस बार भी रथ निर्माण कार्य धार्मिक परंपराओं और निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करते हुए किया जा रहा है। रूपकार सेवक तीनों रथों के लिए 11-11 साल लकड़ी के ब्लॉकों पर बारीक नक्काशी कर रहे हैं। वर्तमान में लकड़ी के हिस्सों पर भगवान नरसिंह की आकृतियां उकेरी जा रही है। ये लकड़ी रथों की प्रमुख सजावटी और धार्मिक विशेषताओं में शामिल होती है। इन कलाकृतियों में ओडिशा की समृद्ध शिल्प परंपरा और सदियों पुरानी कारीगरी की झलक देखने को मिलती है। वहीं रथ निर्माण के लिए जरूरी लौह उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पंडारी, तुम्बाला, आर कांटा और पंडारी चाबी जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों को बनाया जा रहा है। ये सभी उपकरण विशाल रथों को मजबूती और स्थायित्व देने में अहम है।
2: रथ यात्रा के लिए जो जो लेवल में जिस जिस डिपार्टमेंट का लोगों के लिए

0: जो फैसिलिटीज करना होगा इसके लिए कड़ी तरह से तैयारी हो रहा है। हम आशा करते हैं इस बार रथ यात्रा बहुत बढ़िया तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा और सबका कोऑपरेशन हमें मिलेगा।
1: इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी विशेष तैयारी है, पेयजल, स्वच्छता और यातायात पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वहीं जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार में लिस्टिंग का काम भी शुरू हो गया है, जिसके निरीक्षण के लिए न्यायमूर्ति रथ खुद जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। न्यायमूर्ति रथ के निरीक्षण दौरे के वक्त मंदिर परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
2: सब तैयारी हो चुका है सरकार की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से। मैं तो अभी आ गया हूँ, तो आशा करते हैं अभी 3 घंटे में कुछ काम हम आगे बढ़ा लेंगे। अभी तीसरा संदूक का काम, संदूक भरा जा रहा है, तो ये काम फिर आगे होगा। जो काम बाकी रह गया है वहाँ तो बहुत सारे गहना है भगवान का, तो जितना तक हम खत्म किए उससे शुरू करेंगे।
1: निरीक्षण के वक्त अधिकारी निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सूचीकरण प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। सूचीकरण के काम का उद्देश्य यहाँ के रत्न भंडार में रखी गई कीमती चीजों के बारे में उचित दस्तावेजीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पर रिपोर्ट गुड टुडे।
3: चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। वहीं उत्साह का आलम यह है कि केदारनाथ में 4.5 लाख तो बद्रीनाथ में 2,70,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं।
4: और देखिए, राज्य सरकार और प्रशासन भी यात्रियों के लिए सुविधाएं बनाए रखने, उनको दुरुस्त करने में लगातार लगा हुआ है।

0: चारधाम आस्था देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा उत्साह बाबा केदार के दरबार में देखने को मिल रहा है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु लंबी पैदल यात्रा तय कर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। अब तक यहां पर 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है और कपाट खुलने से अब तक बद्रीनाथ धाम में 2,70,000 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 1,65,000, यमुनोत्री में 1,69,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा यहां पंजीकरण की संख्या 32,75,000 पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है।
1: हमने चारों धाम की यात्रा करनी है हमें, जिसमें यमुनोत्री की यात्रा कर चुके हैं, गंगोत्री की यात्रा कर चुके हैं, केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं। काफ़ी भीड़ श्रद्धालुओं की इन धामों पे चल रही है और रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक चल रहा है। यात्रियों का बहुत ही उत्साह से चारधाम की यात्रा हो रही है।
0: गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और सरकार भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैफिक और ठहरने की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।
2: आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से तीर्थयात्रियों के जो वाहन है वो लगातार यमुनोत्री धाम की ओर रुख किए हुए हैं। पुलिस कर्मी यहाँ पर जो तैनात हैं, किसी तरह से तीर्थयात्रियों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आईटीबीपी है, आईटीबीपी के जवानों के द्वारा भी मोर्चा संभाला गया है।
0: चारधाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह मेडिकल कैंप, पुलिस सहायता केंद्र और हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
2: यहाँ तक की यात्रा कैसे रही?
3: बहुत अच्छी।
2: कोई दिक्कत
3: नहीं? नहीं।
2: इस बार की यात्रा में कुछ आपको लग रहा है, कुछ बदलाव है?
3: नहीं, पहली बार आए हम तो।
2: अच्छा, पहली बार आए हैं?
3: पहली बार आए।
2: ओके ओके। यहाँ तक की यात्रा यानी कि ऋषिकेश से लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप निर्बाध रहे?
3: हाँ,
2: ओके। तो ये तीर्थयात्रियों की फीलिंग थी जिसके द्वारा वो बता रहे हैं कि ऋषिकेश से यहाँ तक ये पहुँचे थे, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।
0: मई का महीना है, लेकिन मौसम भी चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का पूरा साथ देता दिखाई दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों सुहावना मौसम यात्रियों के सफर को और भी सुखद बना रहा है। कहीं हल्की ठंडी हवाएं श्रद्धालुओं को राहत दे रही हैं, तो कहीं बादलों और बर्फ से ढके पहाड़ यात्रा के अनुभव को और भी दिव्य बना रहे हैं। यही वजह है कि श्रद्धालु बिना किसी बड़ी परेशानी के उत्साह और भक्ति के साथ चारधाम की यात्रा पूरी कर रहे हैं। UCADA के अनुसार 21,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने हेलीकॉप्टर सेवाओं का इस्तेमाल किया है। फाटा, गुप्तकाशी समेत तमाम जगहों पर यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हेली सेवाओं पर निगरानी भी रखी जा रही है, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार से परेशानी न हो। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए GNT।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

0: खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रोबोट अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का नमूना ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए रोबोट मददगार बनते जा रहे हैं। इंसान और मशीन का यही संगम देखने को मिला 28वें चीन बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हाईटेक एक्सपो में, जहां पर एक से बढ़कर एक आधुनिक तकनीक और कार्यकुशलता से लैस रोबोट्स प्रदर्शित किए गए। ये रोबोट्स रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा अब महत्वाकांक्षी अंडर वाटर मिशन के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं।
4: नाचते गाते रोबोट तो कहीं पियानो पर हाथ आजमाते रोबोट, कहीं घरेलू कामकाज में माहिर रोबोट तो कहीं समुद्र की गहराइयों में उतरने को तैयार रोबोट। ये नजारा है 28वें चीन बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हाईटेक एक्सपो का, जहां एआई और आधुनिक तकनीक से लैस कई रोबोट्स और रोबो पार्ट्स को प्रदर्शित किया गया। इसमें आकर्षण का केंद्र बना एक्सपो में डेब्यू करने वाला मरीन रोबोट ऑर्का, पानी के नीचे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी यूनिवर्सल बॉडी और इंटरचेंजेबल रोबोटिक आर्म्स हैं, जिसकी बदौलत ये पानी के नीचे सफाई, ऑफशोर फोटोवोल्टिक मेंटेनेंस और ऑफशोर विंड फार्म ऑपरेशन जैसे जटिल काम कर सकता है। बीजिंग ई टाउन के ह्यूमनॉइड रोबोट या रोबोट्स, ये नजारा है 28वें चीन बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हाईटेक एक्सपो का, जहां एआई और आधुनिक तकनीक से लैस कई रोबोट्स और रोबो पार्ट्स को प्रदर्शित किया गया। में आकर्षण का केंद्र बना एक्सपो में डेब्यू करने वाला मरीन रोबोट ऑर्का, पानी के नीचे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी यूनिवर्सल बॉडी और इंटरचेंजेबल रोबोटिक आर्म्स हैं, जिसकी बदौलत ये पानी के नीचे सफाई, ऑफशोर फोटोवोल्टिक मेंटेनेंस और ऑफशोर विंड फार्म ऑपरेशन जैसे जटिल काम कर सकता है। बीजिंग ई टाउन के ह्यूमनॉइड रोबोट ने भी भीड़ का ध्यान खींचा, जहां रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाने वाले रोबोट्स प्रदर्शित किए गए हैं। इनके तहत 800 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन इस एक्सपो में शामिल हुए। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे।
3: स्विट्जरलैंड में एक अनोखी परंपरा का आयोजन किया गया। यहां क्वीन फाइट प्रतियोगिता में गायों ने मैदान में अपना वर्चस्व साबित किया। परंपरा, ताकत, भावनाओं के इस अनोखे संगम को देखने के लिए बड़ी तादाद में दर्शक मौजूद रहे। करीब एक सदी

0: स्विट्जरलैंड के वलाइस में इस वीकेंड एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ पारंपरिक क्वीन फाइट प्रतियोगिता में गायों के बीच ताकत की जोर आजमाइश हुई। ये मुकाबले प्राकृतिक रूप से झुंड में वर्चस्व तय करने की प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। मैदान के चारों तरफ भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे, कुछ तो अपने मोबाइल फोन से इस रोमांचक मुकाबले को रिकॉर्ड करने लगे। कुछ गायें अपनी बारी का इंतजार करते हुए मैदान के किनारे खड़ी नजर आईं, तो कुछ को उनके मालिक मुकाबले से पहले संभालते दिखे। ब्रीडर्स के लिए ये मुकाबला सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। कई लोग इसे बचपन से चली आ रही परंपरा मानते हैं। कुछ ब्रीडर्स का कहना है कि गायों के साथ उनका रिश्ता सिर्फ काम का नहीं बल्कि भावनाओं और लगाव से जुड़ा है।
1: Ça va, mais c'est pas non plus. Bah, disons que moi je suis aux études et puis les personnes avec qui je garde les vaches travaillent aussi à côté à 100%, donc c'est. En plus, le matin de 4h à 6h, le soir de 6h à 8h, enfin, c'est des journées, c'est des triples journées. Donc, des journées comme aujourd'hui, ça redonne le moral.
0: स्थानीय लोगों के लिए यह आयोजन भी बेहद खास है। 1920 के दशक से शुरू हुई ये परंपरा आज अल्पाइन संस्कृति की पहचान बन चुकी है। यहाँ जीतने वाली गायों को क्वीन ऑफ द क्वीन का खिताब मिलता है, जिससे उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। हालांकि मुकाबला गायों के बीच होता है, लेकिन इसके पीछे जुड़ी परंपरा, भावनाएं और संस्कृति इसे एक अनोखा आयोजन बनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ हम तमाम खबरों के बाद लंच टाइम मैच के लिए बस इतना ही। और चले हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लो।
4: What if you could see what's happening inside your body? Prenuvo's whole body scan screens for hundreds of conditions, including many solid tumors as early as stage 1, all in under an hour. And now you can go beyond imaging with 80+ blood biomarkers that help complete the picture. Proactive health starts here. This Mother's Day, save $400 off your scan when you book at Prenuvo.com. That's Prenuvo.com to get $400 off for Mother's Day. Now through May 12th. Terms and conditions apply.
5: You use AI every day, but what if you built what it runs on? At WGU, you'll earn your software engineering degree online, on your schedule, and packed with certifications from AWS, CompTIA, and more. With training in Java or C#, hands-on experience, and a focus on AI-powered systems, you won't just learn to code, you'll learn to build what's next. Learn more at WGU.edu.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Your Saturday nights will never be the same.
8: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
9: The Tailgate Block Party.
7: The Tailgate Block Party.
8: 6 hours non-stop. Non-stop.
9: The best DJs from around the world.
7: The Tailgate Block Party.
8: Saturday night.
7: 8 p.m. Eastern.
9: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
8: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
18: पेपर लीक के बाद एनटीए ने नीट 2026 की परीक्षा की रद्द।

0: transforming your passion into profession.
1: पेपर लीक के बाद एनटीए ने नीट 2026 की परीक्षा की रद्द। पेपर लीक की होगी सीबीआई जांच। 3 मई को हुई थी नीट परीक्षा। परीक्षा में बैठे थे 22 लाख छात्र। दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्व शर्मा। सीएम के साथ 4 मंत्रियों ने भी ली शपथ। कार्यक्रम में पीएम समेत बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर अब पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी की भी तैनाती। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में पुलिस की करेंगे मदद। अब तक 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब। दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मंगलवार को ही हुआ था हनुमान जी का भगवान राम से मिलन। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। सुबह से राम मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतार। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। अयोध्या में बड़ा मंगल पर भक्तों ने बंदरों को खिलाया खाना। बंदरों के खिलाने के लिए सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं लोग। भक्तों ने बंदरों को परोसा केला, फल, चना और गुड़। बंदरों को तरबूज भी खिलाया। प्रयागराज के बंधुआ हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब। दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारें। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज। रथ निर्माण का काम चल रहा है जोरों पर। तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य पूरा। रथ निर्माण के लिए कुल 818 लकड़ियों की होती है जरूरत। से अधिक कुशल कारीगर तीनों रथों का कर रहे हैं निर्माण। बिना लोहे की कील के बना रहा है रथ। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर 15 लाख से 20 लाख श्रद्धालुओं की संभावना। सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात का पुख्ता इंतजाम। जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार में लिस्टिंग का काम भी शुरू। लिस्टिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती। भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे।

भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। आरती से पहले भगवान महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक, दूध दही घी शक्कर शहद और फलों के रसों से बने पंचामृत से की गई पूजा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे अभिनेत्री तमन्ना भाटिया,

पूरी तरह शिव भक्ति में लीन दिखी एक्ट्रेस, ये भगवान शिव के निराकार स्वरूप को साकार में बदलने की एक जीवंत परंपरा है भस्म आदि। चारधाम यात्रा पर लगातार बढ़ रही है भक्तों की संख्या। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास परिषद के मुताबिक अब तक 21,000 से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवाओं से कर चुके हैं यात्रा। आंकड़ों के मुताबिक फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से संचालित शटल सेवाओं से 17,976 यात्रियों ने की यात्रा, जबकि चार्टर्ड सेवाओं के जरिए 3,974 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं चारधाम के दर्शन, लगातार बढ़ रही है संख्या। बाबा केदार के दरबार में देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा उत्साह, अब तक 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, कपाट खुलने से अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 3 लाख श्रद्धालु ले चुके हैं बद्री विशाल का आशीर्वाद। गुवाहाटी पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मां कामाख्या मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर के दरबार में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन, परिवार के संग दर्शन पूजन किए। गुवाहाटी पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मां कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने मां कामाख्या मंदिर में दर्शन किए, कहा देश और राज्य में शांति की कामना। अयोध्या में सोमनाथ अमृत महोत्सव को लेकर शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, मंदिरों में किया गया रुद्राभिषेक और ओमकार जाप। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही प्रतियोगिता में 1400 से ज्यादा पहलवान ले रहे हैं हिस्सा। गीर के जंगल में पर्यटकों को रोमांचित करने वाली न्यूज, पर्यटकों के सामने ही शेरनी ने शिकार पर किया हमला, बाद में दूसरे शेर भी हुए शामिल, पर्यटकों ने बनाया वीडियो।

हल्के के रजौरी में लोगों को सशक्त बना रहा है सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगम 88.8, लोगों को सूचना देने के साथ साथ उपलब्ध करा रहा है रोजगार के मौके। राजस्थान के पुष्कर में 43 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में देशी महिला की अनोखी तपस्या की हो रही है चर्चा। महिला भक्त ने 100 साल पहले अपनाया था नाथ संप्रदाय। पुष्कर में 9 धोनी अग्नि तप कर रहे हैं विदेशी भक्त। रोज करीब 3.25 घंटे अग्नि के बीच बैठकर करती हैं तपस्या। 3 मई से शुरू हुई अग्नि तपस्या 25 मई तक चलेगी। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पालघर के गुहीर गांव में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का किया शुभारंभ। सौर ऊर्जा से रोशन होगा पूरा गांव। 130 परिवारों को मिलेगी मुफ्त बिजली। खेती के लिए भी मिलेगी सोलर पावर। सोलर सिस्टम से होगी पानी की सप्लाई। गांव को मिली सौर ऊर्जा वाली आटा चक्की। क्लीन एनर्जी से बदलेगी गांव की तस्वीर। गांव के विकास में प्रोजेक्ट निभाएगा अहम भूमिका।

ने पालघर के गुहिर गांव में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का किया शुभारंभ। सौर ऊर्जा से रोशन होगा पूरा गांव। 130 परिवारों को मिलेगी मुफ्त बिजली। खेती के लिए भी मिलेगी सोलर पावर। सोलर सिस्टम से होगी पानी की सप्लाई। गांव को मिली सौर ऊर्जा वाली आटा चक्की। क्लीन एनर्जी से बदलेगी गांव की तस्वीर। गांव के विकास में प्रोजेक्ट निभाएगा अहम भूमिका। पालघर में आदिवासी बच्ची का भाषण सुन भावुक हुए सचिन तेंदुलकर। बच्ची के आत्मविश्वास से जीता दिल। सचिन ने बच्ची को गले लगाकर बढ़ाया हौसला। दिल्ली में आईसीएआर और आईसीएमआर के एक संयुक्त राष्ट्रीय मिशन सेहत का शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। स्वच्छ दिल्ली अभियान को लेकर सरकार सख्त। एनजीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने खान मार्केट में रात की सफाई और पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। बाजार में स्वच्छता बनाए रखने के लिए रोजाना रात के समय की जा रही है सफाई और धुलाई। इलाके का सौंदर्यीकरण और लोगों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करना है मकसद। दिल्ली में शुरू हुआ बैरियरलेस टोल सिस्टम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू किया नया सिस्टम। मुंडका बकरवाला टोल पर नहीं रुकेंगी गाड़ियां। बिना रुके कटेगा टोल टैक्स। एमएलएफएफ सिस्टम से सफर हुआ आसान। एआई टेक्निक से बदला टोल सिस्टम। हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ी गाड़ियां। यात्रियों के समय की होगी बचत। नए सिस्टम से बचेगा ईंधन। दिल्ली में सीआईआई समिट में बोले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। पिछली सरकारों के गड्ढों को हमने भरा। अब यूपी को बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ाने की बारी। देसी जुगाड़ देखकर दंग रह गए सचिन तेंदुलकर। बच्चों की अनोखी देसी कार का वीडियो किया शेयर। बोले सचिन परिस्थितियां किसी का इंतजार नहीं करती, बस मौका चाहिए। पंजाब बोर्ड ने 10वीं के परीक्षा परिणाम किए जारी। एग्जाम में बेटियों ने फिर मारी बाजी। फरीदकोट में किसान की बेटी हरलीन शर्मा ने किया टॉप। हरलीन शर्मा

0: माता पिता ने बेटी की सफलता पर जताया गर्व। हरली ने पेरेंट्स और टीचर्स को दिया इसका श्रेय। जज बनकर देश की सेवा करना चाहती है हरली।
1: बहुत बड़ी गल है।
0: मादा कछुआ धव लक्ष्मी ने तय किया 4000 किलोमीटर का अनोखा सफर। समंदर के रास्ते पालघर से ओमान पहुंचे धवल लक्ष्मी, फिर ओमान से भारत की ओर वापसी। मादा कछुआ धवल लक्ष्मी बनी समुद्री रिसर्च की स्टार। देश की पहली सैटेलाइट टैग मादा कछुआ है धवल लक्ष्मी। कछुए के सफर से समुद्री जैव रिसर्च को मिलेगी नई दिशा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द की नीट यूजी परीक्षा 2026। सीबीआई करेगी पेपर लीक की जांच। 3 मई को हुई परीक्षा में बैठे थे 22 लाख छात्र। असम में नई सरकार का हुआ शपथ ग्रहण। हिमंता बिस्व शर्मा ने दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। हिमंता के साथ 4 नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन नवीन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा को हाथ मिलाकर दी बधाई। पीएम ने सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। रणजीत कुमार दास बनाए गए असम विधानसभा के स्पीकर। पहले मंत्री रह चुके हैं रणजीत कुमार दास। उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर से बदलाव। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों

आईएमडी का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश, गरज चमक और धूल भरी आंधी चलने की संभावना। कई इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं तेज हवाएं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर राजस्थान में भी मौसम बदलने के संकेत, आंधी और बिजली गिरने की भी आशंका। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को लेकर भी अलर्ट, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में आज कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश। केरल तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में फिर करवट लेगा मौसम, 5 जिलों में बारिश, आंधी पानी का अलर्ट। हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बारिश के साथ गिरेंगे ओले। हिमाचल प्रदेश में मई महीने में अब तक 9 जिलों में दर्ज की गई सामान्य से ज्यादा बारिश। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बारिश, आसमान में छाई धुंध। अयोध्या में मौसम हुआ सुहाना, श्रद्धालुओं को गर्मी से मिली राहत।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
2: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: पेपर लीक के बाद एनटीए ने नीट 2024 की परीक्षा रद्द की। पेपर लीक की होगी सीबीआई जांच। 3 मई को हुई थी नीट परीक्षा, परीक्षा में बैठे थे 22 लाख छात्र। दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्व शर्मा, सीएम के साथ 4 मंत्रियों ने भी ली शपथ। कार्यक्रम में पीएम समेत बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर अब पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी की भी तैनाती। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में पुलिस की करेंगे मदद। अब तक 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन।

0: ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगलवार, सुबह से ही मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। तेजी से आगे बढ़ रही है जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी। मंदिर सूत्रों के अनुसार अब तक तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य हुआ पूरा। बॉलीवुड के बाद अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रही अभिनेत्री दिशा पाटनी, उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म द पोर्टल फोर्स का ट्रेलर रिलीज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: वाओ, इस फेस मिस ने तो कर दिया है मुझे रिफ्रेश। वैसे जिस तरह हमारी बॉडी थक जाती है काम कर कर, उसी तरह हमारा फेस भी फील करता है टायर्ड। तभी तो हैं ये फेस मिस्ट, और बिल्कुल इन्हीं की तरह तरोताजा और रिफ्रेश कर देता है आपको हमारा शो सास बहू और पेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो लेकर हाजिर हैं फिर से एक बार हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मनोरंजन का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
1: हम प्यार में पड़े हैं, तुम्हारे पागल नहीं हुए, तो हमारा ये बेवकूफ बनाना बंद करो।
2: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, रूहानी के लिए दिखेगी गुरु की नफरतें, रिश्ते में पड़ेगी दरार, होगा विक्रांत का एक्सीडेंट, मन्नत और घर वालों का होगा हाल बेहाल,

0: प्यार के रंग में रंगेंगे पति ब्रह्मचारी सूरज और ईशा।
1: हमारी हर चोट के साथ उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है विश्वास। उसे हम
0: होगी अवंतिका और विश्वास की प्लानिंग, परेशान होगी आरंभी।
2: कोई परवाह नहीं, तुम वही करती हो जो तुम्हें करना होता है, ना किसी से पूछती हो ना बता।

0: का नया ट्विस्ट, जेल जाएगी परी।
1: मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है और मैं आपको अब मिलने आ रहा हूँ।
2: तू कहाँ आ रहा है?
1: शांति निकेतन।
0: और मिलेंगे नए सीरियल की नई कास्ट से, देखेंगे कैसे गिरिजा तन्वी के किरदार में ढलती है, क्योंकि आने वाला है नया शो 30 के पार जब मिला प्यार, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
3: तो क्या कह रही है आज गुरु और रूहानी की ये कहानी? ऑब्वियसली ये तो स्प्रे कर रही है एंटरटेनमेंट का फेस मास्क
0: के लिए। गुरु की नफरतें
4: अधूरी कहानी।
0: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आए दिन कोई ना कोई तमाशे होते रहते हैं, लेकिन आज तो तमाशा बढ़ गया है क्योंकि घर वाले फिर एक बार हो गए हैं कामयाब गुरु और रूहानी के रिश्ते में दरार डालने के लिए। गुरु के हाथ चिट्ठी लगी है जिसमें है रूहानी के हैंडराइटिंग और उसमें कुछ गलत बातें लिखी हुई हैं, जिस वजह से आज गुरु भड़क गया है और रूहानी को खरी खोटी सुना रहा है। इतना ही नहीं, रूहानी ने जो गुरु के लिए कार्ड बनाए थे उसे भी वो जला रहा है।
5: तुम प्यार में पड़े हैं, तुम्हारे पागल नहीं हुए, तो हमारा ये बेवकूफ बनाना बंद करो। क्या सब जानते हैं तुम का लिखी थी, का करी हो हमारे साथ? तो तुम्हारा ये झूठ ना किसी काम नहीं आने वाला है। जो तुम हमें तोहफा दी थी वो तोहफा नहीं था, हमारे मुंह पर तमाचा था। यहां तो तुम्हें किसी पे भरोसा होगा नहीं। हमारी मां, हमारे भैया भाभी, उन्हीं से पूछ लो। जो चिट्ठी छोड़कर गई थे ना हमारे लिए, उसका आखिरी टुकड़ा है। चोरी ऊपर से सीना चोरी, बस यही उम्मीद थी तुमसे। लिखावट तो तुम्हारी है ना, अपने मरीजों को दवा लिखी हो तुम। हम पागल नहीं है कंपाउंडर, जो बिना जांच पड़ताल किए सच मान ले किसी भी चीज को। अंग्रेजी नहीं जानते हैं पर लिखावट समझ में आती है हमें।
0: भाई रूहानी गुरु को समझा रही है कि ये हैंडराइटिंग उसकी नहीं है, किसी और ने ये चिट्ठी लिखी है। ऐसे में मामी भी देखिए आग में घी डालने का काम कर रही है, जिस बात से गुरु और भी ज्यादा भड़क गया है और रूहानी को खरी खोटी सुना रहा है, वो भी सभी घर वालों के सामने। और इस बात से मामी तो काफी खुश हो गई है क्योंकि गुरु का प्यार नफरत जो बनता जा रहा है।
6: देखो ये हमारे दाएं हाथ का, बायां हाथ से भी
5: घर के अंदर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारे पापा का नाम है मर्यादा है, उस मर्यादा का मान रखकर ही तुम्हें घर में वापस लेकर आए, वरना हमारी कहानी तो वहीं खत्म हो गई थी जहां तुम्हें हम छोड़कर आ गए थे।
6: कहानी तुमने शुरू की थी ना, इसे खत्म मैं करूंगी। मैं नहीं जानती कि ये किसने और क्यों किया, लेकिन हाँ मैं तुमसे वादा करती हूं तुम्हारी आंखों में जो ये पर्दा लगा है इसे हटा कर रखूंगी, तुम्हें सच दिखा कर रहूंगी मैं।
7: सो एग्जैक्टली अभी ये हो रहा है कि बहुत कोशिश की है पिछले दिनों गुरु और रूहानी को अलग अलग करने की, लेकिन अब रूहानी वापस से घर में आ गई है और इस बार नागेश्वर जी ने ये चाल चली थी, जीजा जी ने, कि उन्होंने चिट्ठी लिखवाई थी और ये चिट्ठी लिखवाई थी उन्होंने बंटी से और जसलीन से। और कि इन दोनों के बीच में गलत फहमियाँ आ जाएं और फिर ये दोनों कभी ना मिले, लेकिन अब रूहानी आ गई है और वो जिस नाम से बुलाना चाहती थी वैसे इशारे दे रही है क्यू कार्ड।

0: दे रही है वो गुरु को। तो गुरु कह रहा है कि ये जो सब नाटक चल रहा है उसको बंद करो, क्योंकि असली चेहरा जो है वो मेरे सामने आ गया है। अब क्या हुआ है कि वो जो लेटर लिखा था, वो लेटर का एक टुकड़ा है जो गुरु ने जला करके अपने पास रख लिया था बुझाकर, वो उसने दिखा दिया है और रूहानी पहचान गई है। तो मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा इस बार भी हमारी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी, कहीं हम पकड़े ना जाएं। लेकिन गुरु ने क्रॉस चेक करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की भी एक कॉपी रखी थी और उस कॉपी की राइटिंग ऑलमोस्ट उस लेटर की राइटिंग जैसी थी। तो रूहानी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई है और वापस से उन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है।
1: भाई तमाशा यही खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रूहानी तो सच प्रूफ करना चाहती है जो वो कर नहीं पा रही। ऐसे में वो अपनी भाभी से भी सच बोलने को कहती है, लेकिन वो भी चुप हो जाती है। ऐसे में कुछ घर वाले हैं जो उसके साथ थे, वो भी अब रूहानी के खिलाफ हो चुके हैं।
2: ये क्या बोलने जा रही है? कुछ नहीं छुपे, अपने छुप को सच प्रूफ करने के लिए कुछ भी बोल रही है।
0: प्रिस्क्रिप्शन की भी एक कॉपी रखी थी और उस कॉपी की राइटिंग ऑलमोस्ट उस लेटर की राइटिंग जैसी थी। तो रूहानी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई है और वापस से उन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है।
1: भाई तमाशा यही खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रूहानी तो सच प्रूव करना चाहती है जो वो कर नहीं पा रही। ऐसे में वो अपनी भाभी से भी सच बोलने को कहती है, लेकिन वो भी चुप हो जाती है। ऐसे में कुछ घर वाले हैं जो उसके साथ थे, वो भी अब रूहानी के खिलाफ हो चुके हैं।
2: ये क्या बोलने जा रही है? कुछ नहीं छुपे, अपने छुप को सच प्रूफ करने के लिए कुछ भी बोल रही है।
3: नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैंने वो चिट्ठी नहीं लिखी है।
4: ये सब क्या हो रहा है?
1: और भी ज्यादा गुस्सा हो गया है और सारा गुस्सा वो रूहानी पर निकाल रहा है। ऐसे में देखिए कैसे उसने साथ हीरे का ये कार्ड भी रूहानी के सामने फाड़ दिया। यानी कि अब मोहब्बत तो हो नहीं सकती, लेकिन नफरत बेशुमार है।
5: गुरु, क्यों लेके आए इस लड़की को यार? ये अपने नफरत के आग में हमें भी जला दे। इसे
6: हमें सता के तुम्हारा मन नहीं भरा तो हमारी माँ के पीछे पड़ गई, हमारी माँ के करीब भी गई तो बोला
0: वोल्टेज ड्रामा है। आई एम श्योर जो हमारे शो के व्यूअर्स हैं उनको बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज आप जो सोच नहीं सकते ना, उतना सब कुछ राइटर्स ने लिखा है, हमारे क्रिएटिव्स ने सोचा है और हम परफॉर्म करके आपके सामने लाने वाले हैं। बट अभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि इस गलत फहमी की वजह से जो दूरियाँ हैं वो कितनी बढ़ेंगी, क्योंकि अब गुरु जो रूहानी की तरफ से कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।
1: रूहानी और गुरु के प्यार के दुश्मनों का काम और भी ज्यादा आसान हो रहा है। अब देखना होगा कि ये नफरत कम होकर फिर एक बार प्यार कब होता है, या फिर कहानी लेगी कोई अलग ही मोड़। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: डॉक्टर आनंद भी मुझसे कह रही हैं कि उनके भी फेवरेट हैं फेस मिस्ट, क्योंकि देखिए किसी भी सिचुएशन में कभी भी आप थक जाएं, बस स्प्रे करें इस फेस मिस्ट को अपने फेस पे, आहा यू मिनटों में ताजगी। और स्पेशली अगर आपके फेस मिस्ट में हो रोज, या फिर आप एक रेगुलर स्किन टोनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इमीडिएटली इनफैक्ट सेकंड्स में हो जाएंगी आप रिफ्रेश। वैसे रिफ्रेश तो हो रही है यहाँ पर डॉक्टर आनंद भी की कहानी भी, चलिए लेकर चलते हैं आपको इनके पास।
8: तुम्हें इस घर परिवार के नाम की इज्जत की कोई परवाह नहीं, तुम वही करती हो जो तुम्हें करना होता है, ना किसी से पूछती हो, ना बताती हो, ना किसी की सुनती हो।
9: मैं कुछ भी कर लूं विश्वास, डांट तो हमेशा मुझे ही पड़ती है, चाहे किसी की भी गलती हो, मुझे ही हमेशा गलत समझा जाता है और मुझे ही सुनाया जाता है। इंसान हूं मैं, मुझे भी बुरा

0: लगता है कोई चीज नहीं हूँ कि जब जरूरत हो तो यूज कर लिया और जब जरूरत नहीं है तो फेंक दिया।
1: आरंभी की बगावत,
0: हमारी हर चोट के साथ उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। विश्वास, उसे हम जितना जोर से धक्का देंगे ना उतनी ही दुगनी ताकत के साथ वापस आकर हमसे ही टकराएगी।
1: बड़े डॉक्टर विश्वास और अवंतिका की परेशानी।
0: मत
2: विश्वास। तो क्या करूं अवंतिका, क्या करूं मैं?
3: हमारा परिवार डॉक्टर
1: सासुमा के सवालों से परेशान हुई बहुरानी। कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आरंभी अब डॉक्टर बन चुकी है। ऐसे में डॉक्टर विश्वास पूरी कोशिश कर रहे हैं आरंभी की राहों में अड़चने पैदा करने की और उसे रोकने की, लेकिन आरंभी ने तो अब रुकने का नाम ही नहीं लिया। बस फिर क्या, ऐसे में डॉक्टर विश्वास के पास पहुंच जाती है अवंतिका और देखिए कैसे वो अपना डर विश्वास के सामने बयां करती है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि आरंभी को रोकना नामुमकिन है।
0: हमारी हर चोट के साथ उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। विश्वास, उसे हम जितना जोर से धक्का देंगे ना उतनी ही दुगनी ताकत के साथ वापस आकर हमसे ही टकराएगी। Can you imagine? हमें पता भी नहीं चला कि वो कब कैसे डॉक्टर बन गई। हमें आरंभी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए था नीचे कैसे उसने सबको अपने बातों के जाल में फंसा लिया और सब उसकी बात सुन रहे थे। तुम अभी उसे कुछ भी कहोगे ना तो पता है वो तुम्हें क्या बोलेगी? विश्वास, मैं तो टंडन परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। उससे बहस करके उसे उकसाओ मत विश्वास।
2: तो क्या करूं अवंतिका, क्या करूं मैं, क्या करूं जिससे वो इतनी नीचे गिर जाए कि कभी उठकर उभर ही ना पाए, क्या करूं?
1: विश्वास तो आगे की प्लानिंग के बारे में सोच ही रहे थे कि अवंतिका ने अपना प्लान बना लिया आरंभी को बदनाम करने का। इसी बीच वहां पर आरंभी भी आ जाती है जो अवंतिका को अल्टीमेटम देती है, लेकिन विश्वास अवंतिका का साथ देते हुए आरंभी पर ही नाराज होता है। लेकिन इस बार आरंभी ने विश्वास का भी करारा जवाब दिया है।
2: तुम तो मेरी वाइफ हो, इस परिवार की भूमि, लेकिन तुम्हें इस घर परिवार के नाम की इज्जत की कोई परवाह नहीं। तुम वही करती हो जो तुम्हें करना होता है, ना किसी से पूछती हो, ना बताती हो, ना किसी की सुनती हो।
0: मैं कुछ भी कर लूं विश्वास, डांट तो हमेशा मुझे ही पड़ती है चाहे किसी की भी गलती हो।
2: तुम्हें इस घर परिवार के नाम की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तुम वही करती हो जो तुम्हें करना होता है, ना किसी से पूछती हो, ना बताती हो, ना किसी की सुनती हो।
0: मैं कुछ भी कर लूं विश्वास, डांट तो हमेशा मुझे ही पड़ती है चाहे किसी की भी गलती हो। मुझे ही हमेशा गलत समझा जाता है और मुझे ही सुनाया जाता है। इंसान हूं मैं, मुझे भी बुरा लगता है। कोई चीज नहीं हूं कि जब जरूरत हो तो यूज कर लिया और जब जरूरत नहीं है तो फेंक दिया।
2: प्लीज, मेरे पास फिजूल समय नहीं है हर बार तुमसे लड़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे, बहुत जरूरी काम है मुझे।
1: विश्वास ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन आरंभी उसने भी अपनी कमर कस ली है। लेकिन अगले ही दिन आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि डरी सहमी सी आरंभी पहुंचती है अपने घर। असल में उसके बेटे विहान का हो गया है किडनैप। इसी बीच उसे देखकर आरंभी की सासुमा डिंपल उस पर अपना हुक्म झाड़ती है और तभी वहाँ पर नंदिता आकर देती है शॉकिंग न्यूज, क्योंकि उसे विहान घर में नजर नहीं आता।
4: घर से गायब,

0: बुरा लगता है। कोई चीज नहीं हूँ कि जब जरूरत हो तो यूज कर लिया और जब जरूरत नहीं है तो फेंक दिया।
1: मेरे पास फिजूल समय नहीं है हर बार तुमसे लड़ने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट काम है मुझे, बहुत जरूरी काम है मुझे।
2: विश्वास ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन आरंभी उसने भी अपनी कमर कस ली है। लेकिन अगले ही दिन आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि डरी सहमी सी आरंभी पहुंचती है अपने घर। असल में उसके बेटे विहान का हो गया है किडनैप। इसी बीच उसे देखकर आरंभी की सासू माँ डिंपल उस पर अपना हुक्म झाड़ती है, और तभी वहाँ पर नंदिता आकर देती है शॉकिंग न्यूज, क्योंकि उसे विहान घर में नजर नहीं आता।
1: बताने की विहान की यहाँ पर कैमरा वगैरह तो
3: डिंपल इज द वर्स्ट मॉम, तो वो उसको यही डांट रही है कि विहान कहाँ है, मुझे बताओ विहान कहाँ है।
2: आरंभी को तो किडनैपर्स का मैसेज तक आ गया। ऐसे में आरंभी जवाब तक नहीं दे पा रही और डिंपल सवाल पर सवाल कर रही है कि इसी बीच घर में विश्वास और अवंतिका भी आ जाते हैं। और देखिए कैसे विश्वास अपनी माँ को समझाते हैं और बताते हैं कि विहान तो अपनी नानी के यहाँ गया है। असल में ये सारा किया धरा तो विश्वास और अवंतिका का ही है, क्योंकि वो आरंभी के पैरों में बेड़ियां जो डालना चाहते हैं। अब देखना होगा क्या आरंभी इनसे लड़ पाएगी।
1: आरंभी, खाना रेडी हुआ कि नहीं?
2: मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: वैसे हमारी अभीरा भी बिल्कुल इस फेस मिस की तरह है, जो लेकर आती है घर वालों की जिंदगी में खुशियों वाली फ्रेशनेस। ना लगे इन्हें किसी की भी बुरी नजर, लेकिन इनके सामने रोजाना इतनी परेशानियां, नए नए चैलेंजेस, ओ माय गॉड। चलिए फिर पता कर आते हैं ऐसा क्या हो रहा है इस कहानी में। आज लेकर चलते हैं आप सबको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर।

0: सायरा और मुक्ति संग झूम कर नाची अभीरा।
1: प्यार के बंधन बांधे जाती है
0: में। खास मौके पर सुलझते रिश्ते
1: खिले जाते हैं, रिश्तों की बगिया महक जाती है।
2: कोई मर रहूं कर।
0: क्या मिट पाएंगी सास बहू की गलत फहमियाँ?
2: वो शर्ट मैंने पहले बनाई।
0: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज पोदार हाउस में हो रहा है सेलिब्रेशन मदर्स डे का, जहां पर सभी मिलकर माँ के दिन को खास बना रहे हैं। जरा देखिए कैसे हर बेटा और हर बेटी अपनी माँ को सलाम कर रहे हैं, उन पर प्यार निछावर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बारी आई अभीरा की, तो देखिए कैसे मायरा और मुक्ति दोनों ने ही अपनी माँ का हाथ थामे, जमकर अपनी माँ के साथ ताल से ताल मिलाई और खूब डांस भी किया। इतना ही नहीं, अपनी माँ पर अपना प्यार भी जताया, वो कितनी खास है ये भी बताया। ऐसे में भला अभीरा कैसे पीछे हटती, वो भी अपनी दोनों बेटियों संग खूब नाची गाई और पूरे परिवार को अपने प्यार के रंग में रंग लिया।

0: है और मां और उसकी माँ विद्या की। विद्या तो इस सेलिब्रेशन में शामिल नहीं है क्योंकि रसोई में वो इस बात का गम बना रही है कि उसके बेटे अरमान ने उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया है। ऐसे में देखिए कैसे बेसुध हाल में विद्या रसोई में काम कर रही है, कभी गैस जलाकर खाली छोड़ रही है तो कभी बर्तन में तेल के बजाय पानी डाल रही है। इतना ही नहीं, जलती गैस में कभी हल्दी डाल रही है तो कभी तेल। वो तो शुक्र है कि सही समय पर वहाँ पर अभीरा आ गई जिसने विद्या को जलने से बचा लिया। ऐसे में विद्या ने बिना देखे ये समझा कि उसका बेटा अरमान आ गया है, इसलिए देखिए कैसे वो इमोशनल होकर अपने बेटे अरमान से अपना हाल दिल बयां कर रही है।
1: पता है माँ, एक माँ सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन अपने बेटे की नफरत कभी सहन नहीं कर पाती है। अरमान, अगर तू मुझे छोड़ देगा ना, मुझसे नफरत करता रहेगा ना, तो मैं मर जाऊंगी, मैं सच में मर जाऊंगी। अरमान, मुझसे नफरत मत कर। पता मुझे शर्ट तू कब से ढूंढ रहा था ना, वो शर्ट मैंने तेरे बनाई।
0: विद्या का ये रवैया तो लाजमी था क्योंकि अरमान नहीं वहाँ तो अभीरा निकली। ऐसे में विद्या नाराज होकर वहाँ से चली तो गई, लेकिन देखना होगा कि कैसे सास बहू की ये दूरियाँ मिटेंगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अल्कोहल बेस्ड फेस मिस्ट का और वो चला जाए आपकी आंखों में तो डेफिनेटली आएगा आपकी जिंदगी में ट्विस्ट। प्लीज आप तो अल्कोहल बेस्ड फेस मिस्क का इस्तेमाल करना बंद करें क्योंकि यूजली हम इन्हें स्प्रे करते हैं पूरे फेस पर और आंखों में वो फेस मिस्क चला ही जाता है। इनफैक्ट जो रेगुलर रोज वाटर होता है ना उसका इस्तेमाल करें, आपकी स्किन हो जाती है इमीडिएटली रिफ्रेश। तो चलिए नजर डालते हैं उन तमाम ट्विस्ट पर जो आप पहुंचे हैं हमारे एंटरटेनमेंट की कहानियों में।
3: चिंता मत कर, तुम
0: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में बढ़ने वाली है मिहिर और तुलसी की परेशानी क्योंकि परी पर लगने वाला है रणविजय के खून का इल्जाम, जिसके चलते परी सलाखों के पीछे पहुंचने वाली है। इसी के साथ हो गई है अंश के बेटे रियो की एंट्री जो लेकर आने वाला है रिश्तों में कलह।
3: चिंता मत कर,
4: केस रजिस्टर हुआ है और ये केस अदालत में जाएगा और अदालत तय करेगा कि इस केस का क्या करूं। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं।
5: आर्यो, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है और मैं आपको अब मिलने आ रहा हूँ। तू कहाँ आ रहा है? शांति निकेतन।
0: एक तरफ करण और तुलसी पूरी कोशिश कर

अब पूरा परिवार एक हो गया है, इसी खुशी में सेलिब्रेशन भी हो रहा है और तो और धीरे धीरे सभी के रिश्ते सुलझ रहे हैं। जो रिश्तों में दूरियां थी वो भी मिट रही हैं, लेकिन एक दूरी अब भी बरकरार है और वो

0: आप किसी और के साथ दिन कल करें।
1: मैंने जो किया वो गलत है, पर पूरी तरह नहीं। घर में सबको ये सच नहीं पता था, पर एक इंसान ऐसा है जो इस सच से वाकिफ था, तेजस देशमुख। उसे पता था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। सर, मेरी सास रेणुका देशमुख से मुझे डर लगता है। वो मुझे ऐसे मेंटली टॉर्चर भी करती है। ना सिर्फ मुझसे वो रोज दहेज मांगती थी, बल्कि मुझसे घर के सारे काम करवाती थी।
2: भाई रोशनी की ये इल्जाम सुनकर तो रेणुका भी परेशान है। उसने तो भरी अदालत में आवाज भी उठाई, ये भी बताया कि उसने अपने इस बहू को रानी की तरह घर में रखा है। लेकिन रेणुका की अदालत में कहाँ चलेगी। रेणुका ही नहीं बल्कि आज तो रोशनी ने अपने ससुर जी को भी कटघरे में घसीट लिया है और सामने ऐसी बातें रखी कि ना चाहते हुए भी सारा इल्जाम रेणुका के मथे मड़ गया है। इतना ही नहीं, बाबूजी के बाद रोशनी ने निशाना साधा है साइली के ऊपर।
1: मेरी जैसी उस घर में एक और विक्टिम है जिसके साथ यही सब होता आ रहा है। अब मैं मिसेस साइली देशमुख को स्टैंड पे बुलाने की परमिशन चाहूंगी। तुम मुझे बीच में मत लाओ, मैं तुम्हारे चाल में नहीं फंसूंगी। उस घर में क्या तुम भी नौकरों की तरह महसूस करती हो? क्या काकू तुम्हारे साथ भी गलत व्यवहार करती है? चुप रहने से सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे। मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या नहीं?
2: जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में जल्द ही वीर और माही की शादी होने वाली है, जिसके चलते वीर दूल्हा बनकर पहुंच गए हैं मंदिर और उसी मंदिर में पहुंच गई है राधिका अपने मम्मी पापा के साथ। जुलाएगा कहानी में ट्विस्ट।
3: मेरे बाबूजी का श्राप लगा तेरी बेटी को।
4: सॉरी वीर, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बाधा आए।

के सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में आज शिव प्रसाद के घर पहुंच गए हैं गुंडे, लेकिन घर में अकेला हर्षित है जो गुंडों का निशाना बन जाता है। ऐसे में गुंडे हर्षित पर बंदूक का निशाना साध देते हैं और हर्षित उसका तो डर डर कर बुरा हाल हो रहा है कि इसी बीच हो जाती है शिव प्रसाद की एंट्री, जिसकी नजर पड़ जाती है उन बदमाशों पर। बस फिर क्या, अपने बेटे को ये खतरे में देख शिव प्रसाद को वक्त नहीं लगता मिस्टर परशुराम बनने में। और देखिए कैसे मिस्टर परशुराम बनकर वो सभी बदमाशों को सिखाते हैं जोरदार सबक।

0: बस शिव प्रसाद ने तो अच्छे से बदमाशों की बैंड बजाई, इतना ही नहीं उन बदमाशों को ठिकाने भी लगाया। और तो और उसे ये भी पता चल गया है कि ये सब करण कुलकर्णी का किया धरा है। हालांकि इस बात से शालिनी अनजान है, लेकिन अब भी उसने ठान रखी है कि वो अपना केस वापस नहीं लेगी।
1: करण कुलकर्णी क्या कर सकता है?
2: मैं समझना भी नहीं चाहती, कोई केस विथड्रॉ नहीं करूंगी मैं।
1: शिव प्रसाद समझाओ इसे।
3: मेरी पत्नी शालिनी जो डिसाइड करेगी वो सर आंखों पर है मेरे। बोलो शालिनी क्या करना है?
2: हम किसी भी कीमत पे हार नहीं मानेंगे। और डैडी जिन्होंने मेरे बच्चों को किड

0: की थी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
1: आज तो हमारा ये एपिसोड ही है फेस मिस्ट स्पेशल। वैसे उतनी ही स्पेशल है हमारी ये स्पेशल स्टोरी जिसे संभाल कर रखा है हमने खास आपके लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
2: आ गई टीवी की नई बहुरानी,
3: जन्म जन्म जन्म साथ चलना ही कसम तुम्हें।
2: तन्वी और युग की अनोखी प्रेम कहानी,
3: एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही।
2: नया सीरियल नई दास्तान,
3: मेरी सुबह हो तुम्हें।
2: टीवी पर शुरू हो चुका है नया सीरियल जिसका नाम है 30 के पार जब मिला प्यार, जिसमें दिखाई जाएगी तन्वी और युग की अजब गजब प्रेम कहानी। और बीती शाम हुआ शो का लॉन्च जिसमें शामिल है सभी कलाकार, और इस लॉन्च में है डांस मस्ती, इंट्रोडक्शन और बहुत कुछ। सभी नज़ारे आपके लिए लेकर आया है सास बहू और बेटियां। लेकिन बात करें शो की हीरोइन तन्वी की, तो यहाँ पर आज कैसा होगा तन्वी का लुक, गिरिजा कैसे तन्वी के किरदार में ढलेंगी, ये सब हम देखेंगे।
4: ये बाबा की इलाज के लिए, ये परी की शादी के लिए।
2: दंगल टीवी पर ये शो शुरू हो चुका है, लेकिन इसका फैमिली बैकग्राउंड महाराष्ट्र है। वैसे आपको बता दे कि ये प्रेम कहानी अजब गजब इसलिए है क्योंकि तन्वी उम्र में बड़ी है और युग उम्र में छोटा, और कैसे होगी इनकी प्रेम कहानी ये देखना होगा क्योंकि इनके प्यार के तो कई दुश्मन होने वाले हैं।
5: हेडफोन हटाओगे तो पता चलेगा, दुनिया में किसी को कहीं पहुंचना भी होता है।
6: रोड पे मुस्कुराते हुए एकदम बेफिक्री से जाओगी ना तो किसी से नहीं टकराओगी।
2: तो भाई आज तन्वी अपना लुक बताएंगी, अपनी रियल फैमिली से मिलवाएंगी और लॉन्च के सभी नज़ारे हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम तन्वी यानी गिरिजा के मेकअप रूम में और देखते हैं कि कैसे गिरिजा तन्वी के किरदार में ढलती है। वैसे आपको बता दे कि गिरिजा ने पहले कई मराठी सीरियल्स में काम किया है और हिंदी सीरियल में ये इनका डेब्यू है। तो चलिए सीधा करते हैं गिरिजा से ये खास मुलाकात और देखते हैं इनका मेकओवर।
7: इसके पार जब मिला प्यार, और यही पार और प्यार में जो है फंस के रह गई है गिरिजा भी, या बोले तन्वी फंस चुकी है।
8: बोल सकते हैं तन्वी, बोल सकते हैं तन्वी जो 32 साल की दिखाई है, तो क्या बोल सकते हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसे बोलते हैं कि अभी हो गई 28 की, अब कब होगी शादी, तो तन्वी तो 32 साल की हो गई है और अभी शादी का कुछ है ही नहीं इसके लाइफ में। तो यही चल रहा है उसकी लाइफ, उसके कुछ प्रॉब्लम्स है और फिर शादी क्यों करनी है ऐसे इस ख्यालों में है, सोच में है, तो ऐसी ये लाइफ है उसकी।
7: तो यहाँ पर जो है गिरिजा को जब ऑफर आया, जब ये पता लगा कि ये प्ले कर रहा है, तो पूछना नहीं चाहिए बट गिरिजा ने अपनी उम्र एक बार चेक की और फिर सोचा कि अरे मैं ये प्ले करूं।
8: बहुत ही अच्छा सवाल है। होता है ऐसे कि मेरी उम्र तो ये है नहीं इतने बड़े उम्र, हाँ, लेकिन हम आर्टिस्ट हमेशा बोलते हैं कि हम बहुत ग्रेटफुल है क्योंकि हमें एक्टर होने के नाते बहुत अलग अलग रूल्स करने मिलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करने मिलती है जो हम अपने लाइफ में नहीं करते, जैसे कुछ स्टंट्स हो, किसी को डॉक्टर बनना होता है, पुलिस बनना होता है, तो ये सब चीज़ें एज एन आर्टिस्ट हम कर सकते हैं। तो यही मैं सोचती हूँ कि भले वो कैरेक्टर मेरी उम्र से बहुत बड़ा हो लेकिन मुझे उससे कुछ सीखने मिलेगा। जो मेरी उम्र है उसमें और तन्वी की उम्र में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो तन्वी की मैच्योरिटी है, उसने जो कुछ भी फेस किया उस वो उसकी वजह से वो मैच्योरिटी उसमें आई है। तो वो मैच्योरिटी, वो कैसे सोचती होगी, कैसे सिचुएशंस डील करती होगी, ये मुझे सीखने मिलेगा। और ऑफ कोर्स ये मेरा पहला हिंदी शो है तो मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना था। मराठी ऑडियंस का तो बहुत प्यार मिला है, मिल रहा है, और अभी मैं मांगती हूँ कि ये अपना जो हिंदी प्रेक्षक है वो भी उतना ही प्यार दे और बहुत आशीर्वाद दे।
7: चलिए तो और भी हम बातें करेंगे, गिरिजा और तन्वी दोनों से जुड़ी बातें और जानेंगे। फिलहाल जो है मेकअप के लिए, यस, तन्वी बनने में कितना टाइम जाता है और तन्वी के जो ड्रेस की ज्वेलरी की स्पेशलिटी जो है तन्वी पाटिल है तो कितना पाटिलनेस आएगी उसमें देखते हैं।
8: ये तन्वी महाराष्ट्रियन फैमिली दिखाई है तो तन्वी और सिंपल, बहुत सिंपल सी लड़की है मिडिल क्लास फैमिली के, तो इसका लुक थोड़ा सिंपल ही है और मुझे वैसे वैसा ही लुक पसंद है, थोड़ा सिंपल। तो मेकअप भी ज़्यादा है नहीं, ड्रेस भी बहुत कंफर्टेबल है, उसमें थोड़े अपनी महाराष्ट्रियन टच है उसमें, जो आप देखोगे जब मैं ड्रेस पहनूंगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल हम रेडी होते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है।
2: तो भाई अब शुरुआत करते हैं रेडी होने की। वैसे तो गिरिजा झटपट से रेडी हो जाती है क्योंकि इनका लुक काफी सिंपल है। तो मेकअप की शुरुआत हुई स्किन प्रेप से। स्किन की देखभाल करना भी जरूरी है क्योंकि मेकअप लगता है, ऐसे में इससे पहले स्किन प्रिपरेशन काफी जरूरी है जो गिरिजा कर रही है।
8: सो अभी हम मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। मेकअप के पहले अगर मेकअप नहीं भी करते हो तो भी बहुत ज़रूरी जो होता है वो है स्किन प्रेप करना। और अभी बाहर बहुत धूप है, हमारे सीन्स बहुत बाहर शूट होते हैं। इन जनरल भी अभी अगर आप बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन लगाना, मॉइस्चराइज़र लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं अपना स्किन प्रेप करके घर से निकलती हूँ तो क्या है वो सेट होने में थोड़ा टाइम जाता है, तो आते ही अगर मैं लगाती हूँ फिर उतना टाइम नहीं मिलता है स्किन प्रेप होने में और फिर तुरंत मेकअप करना पड़ता है, तो इसलिए मैं घर से निकलती हूँ तो प्रेप करके निकलती हूँ। फिलहाल फिर भी मैं फिर से अभी एक स्किन प्रेप करती हूँ। अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगाने वाली हूँ।

0: मॉइस्चराइज हो गई है, लेकिन इसके साथ मैं और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं रोज़ करती हूँ और सब लोग ही करते लेकिन इतना ध्यान नहीं देते, वो है पानी पीना। पानी पीना भी उतना ही ज़रूरी है, बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो। जैसा मैंने कहा, बाहर बहुत धूप है तो खुद को अंदर से थोड़ा हेल्दी रखने के लिए, या बहुत धूप है तो हम बहुत जल्दी ड्रेन भी हो जाते हैं, तो इसके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत पानी पीती हूँ, मैं बॉटल लेके हर जगह घूमती हूँ। तो यस, स्किन प्रेप हो चुकी है, अभी हम स्टार्ट करते हैं मेकअप।
1: तो भाई, सबसे पहला स्टेप था स्किन प्रिपरेशन जो हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, शुरू हो चुका है इनका मेकअप, और मेकअप की शुरुआत हुई बेस लगाने से, जहां पर डार्क सर्कल्स, फेस के डार्क स्पॉट्स छुपाए जाते हैं। तो आ गए हैं मेकअप दादा और शुरू हो चुका है गिरिजा का मेकअप।
0: हमारे सागर दादा है जो मेरा मेकअप करते हैं, जो मुझे सुंदर दिखाते हैं। अभी बहुत साल हो चुके हैं लेकिन मैं खुद से मेकअप नहीं करती, मतलब मुझे आना चाहिए बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम जाता होगा अगर मैं खुद का मेकअप करती हूँ तो, और उतना टाइम होता नहीं है, तो सीखना तो चाहिए बट कोई बात नहीं, सीख लूँगी। अभी हमारा शूट तो वैसे 13-14 घंटे होता है, तो कभी छुट्टी नहीं मिलती है, कभी एक्सटेंड हो जाती है शिफ्ट, तो नींद पूरी नहीं होती है, अंडर आइज़ आ जाते हैं, पफ़ी हो जाते हैं आइज़, तो कभी कभार मैं आइसिंग करती हूँ। रोज़ नहीं करती क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं होता, कभी कभार कर लेती हूँ, और फिर रोलर होता है वो, और कंसीलर होता है जिससे अंडर आइज़ हाइड करते हैं। बाकी तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा मेकअप ना करूँ, ज़्यादा टचअप ना करूँ, मुझे वो लेयर पसंद नहीं है, तो मैं बस अगर पसीना आता है तो मलमल होता है या टिश्यू से डैप करती हूँ, अगर बेस चला जाए तो फिर से बेस करते, वरना हम अवॉइड करते ज़्यादा टचअप एंड ये सब चीज़ें। और जब पैकअप होता है तब अच्छे से मेकअप रिमूव करना, ये बहुत ज़रूरी है। मेकअप रिमूव करके ही मैं घर जाती हूँ और उसके बाद फिर से वॉश करती हूँ, तो मेकअप पूरे दिन में जितने बार टचअप होता है तो लेयर पर लेयर हो ही जाता है, इसीलिए ध्यान देती हूँ कि मेकअप अच्छे से निकले और फेस मेरा क्लीन रहे। सोते वक्त अगर कुछ आयुर्वेदिक ऑयल होता है वो लगाती हूँ। बाकी कभी कभार मैं क्लीनअप के लिए जाती हूँ, मुझे फेशियल वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, उसमें एक तो कभी कभार छुट्टी मिलती है उसमें से पूरा दिन पार्लर में चला जाता है, तो नींद पूरी करना मैं उस दिन प्रेफर करती हूँ, अच्छे से नींद लेती हूँ और फिर घर पे ही रहती हूँ और घर का खाना खाती हूँ।
2: हम लोग उनका जो स्किन टोन है वो FS 28 जो बेस है वो यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग कंसीलर करते हैं पहले, क्योंकि उनकी आंखों के नीचे थोड़ा डार्क सर्कल है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा उनको कंसील कर लेते हैं पहले। 303 और 075 करके दो स्टिक्स है, मतलब रेड और येलो मिलके ऑरेंज हो जाती है, तो आंखों के नीचे थोड़ा और जो भी आपका पोर्स जो है थोड़ा सा डार्क वो हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, कंसील कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर उनका नॉर्मल जो स्किन टोन बेस करते हैं। इसके बाद फिर बेस शुरू किया है, इसके बाद फिर हल्की आई शेडो है, बहुत नेचुरल, बहुत नॉर्मल उनका लुक्स है, ऐसा कुछ हेवी मेकअप है नहीं उनका, तो बहुत नॉर्मल नेचुरल ऐसा लुक है उनका।

तो देखा आपने कैसे मेकअप करते करते आपको टिप्स भी मिल रही हैं। और अब बारी इस बेस को इस पाउडर के जरिए सेट करने की, ताकि मेकअप लंबा चले।

0: बेस हो चुका है, अभी दादा ये बेस सेट कर रहे हैं अच्छे से। तो आप कुछ कहना चाहोगे?
1: अभी बेस हो चुका है, अभी इसके ऊपर हम लोग पाउडर लगाएंगे, उसके बाद फिर आई शेडो और ये सब रहेगा।

0: और अब अगला स्टेप है आई मेकअप। भाई आई मेकअप में कई सारी चीजें होती हैं, आई शेडो, आई लाइनर, लैशेस और आईब्रोज, जिनकी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है जिससे आंखों का लुक ही बदल जाता है।
1: आ गई हमारी आशा तई जो मेरे बाल बनाती है रोज।

0: आई शेडोज एकदम नेचुरल है, एकदम हेवी नहीं है. आज हमारा शूट नहीं है तो हमें टाइम है, हमें कोई आके पूछेगा नहीं कितना टाइम लगेगा. ये जो है वो आके पूछती है कितना टाइम लगेगा. आज शूट नहीं है तो कोई है ही नहीं.
1: वैसे मेकअप तो चल ही रहा है, आई मेकअप के बाद अब ब्लश लगाकर बाकी का मेकअप किया जाएगा. लेकिन इसी के साथ साथ हो रही है हेयर स्टाइलिंग भी, क्योंकि झटपट से रेडी भी तो होना है. ऐसे में आज गिरिजा को दिया जा रहा है सॉफ्ट गर्ल्स का लुक.
0: जो हमारा शो आपका होने वाला है, आज हमारा शो लॉन्च हो रहा है और एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, सब कुछ है. सो यस, आपके ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है. सो प्लीज़ हमारा शो देखिए, 30 के पार जब मिला प्यार, रात 9:30 दंगल टीवी पे. और सबने बहुत मेहनत की है, सबको उतना ही प्यार देना, बस मुझे नहीं सबको उतना ही प्यार देना, उतना ही आपके आशीर्वाद देना.

सो हमारा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है, बस लिपस्टिक बाकी है जो हम चेंज के बाद लगाएंगे। अभी फिलहाल हेयर स्टाइल चल रही है, इसके पहले दीदी ने हेयर प्रोटेक्टर लगाया जो बहुत ज़रूरी है, रोज़ मशीन अप्लाई होता है तो हेयर प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ इस्तेमाल करना चाहिए, तो हेयर प्रोटेक्टर दीदी ने यूज़ किया है। और अभी जो मेरे बाल हैं उसे दीदी टोंग कर रही है, सॉफ्ट टोंग्स।

0: अभी हमने वीग लगाया लेंथ बढ़ाने के लिए, थोड़ा वॉल्यूम दिखाने के लिए. और अभी दीदी वीक के जो बाल हैं उनको टोंग कर रही है. ये टोंग हम करते लेकिन थोड़ा इसे बाद में खोल देते ताकि वो नेचुरल लगे. वो एकदम हेवी टोंग नहीं होते. जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही सिंपल है. जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सिंपल लड़की है, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की है, तो इसे इतना रेडी होना और ये सब टाइम भी नहीं उसके पास खुद के लिए, खुद के पास उतना ध्यान देने के लिए. और बहुत उसके लाइफ में भी बहुत उसके कुछ प्रॉब्लम्स है और उसे बहुत काम है, घर का काम करती है, जॉब जाना होता है, जॉब करना होता है उसे, तो इसलिए उसके पास उतना टाइम नहीं है. तो बहुत ही नेचुरल लुक है.
1: तो भाई हेयर स्टाइलिंग और मेकअप हुआ पूरा, लेकिन अब तक तन्वी का लुक कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि चेंज कर अभी एक्सेसरीज पहनना बाकी है. लेकिन आज तो तन्वी अपने कोस्टार संग रूम शेयर कर रही हैं और आज इन्होंने यहीं पर अपनी इस रियल फैमिली से हमें मिलवाया. नया शो है, नए किरदार है, तो नई फ्रेंडशिप भी तो होनी चाहिए ना.
0: सो यस, अभी मेकअप तो डन हुआ, हो ही गया था, अभी हेयर भी डन हो गया. बस इसे हमें इसे लूज करते हैं. जैसे हम चेंज करते हैं हम ये ऐसे खोल देंगे, अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं. बाकी आप देख रहे होगे बाहर पीछे बहुत. यस, चलो हम मिलते हैं सबको. सब लोग रेडी हो रहे हैं. यहाँ पे है वैष्णवी आई, जो युग की आई है, माँ है. क्या कहना चाहोगे आप आज हमारा शो लॉन्च होने जा रहा है?
2: बहुत बहुत बहुत खुश हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा शो बहुत अच्छा जाएगा. हमारी स्टोरी बहुत अच्छी है, हमारे हीरो हीरोइन, मेरी बहुत बहुत प्यारी बहू है, मेरा बेटा भी
0: है, बहू है,
2: हाँ हाँ होने वाली हो. तो थोड़ा मैं पहले से इनको जानती भी हूँ और मेरा जो बेटा है वो बहुत प्यारा है. हमारा पूरा फैमिली अच्छा है, तो 100% शो जाएगा. हाँ, मस्त.
0: और यहाँ है,
3: हाय,
0: ये हमारी भाभी है, भाभी है,
3: भाभी है. एक्चुअली मैं भाभी तो हूँ बट शो पे ये मेरी बड़ी देवरानी है. ये थोड़ा सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लगेगा लेकिन ये हमारी स्टोरी है कि हमारी जो देवरानी है, प्यारी देवरानी होने वाली, वो है उम्र में बड़ी और मैं हूँ जेठानी होकर छोटी. तो ये छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको देख के बहुत मजा आने वाला है. और वैसे तो हम सेम एज के हैं.
0: yes. और यहाँ है काकू. स्वाति ताई.
4: हाय.
0: कैसा लग रहा है आज हमारा शो लॉन्च होने वाला है?
4: बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स है. मैं तो इसकी काकू हूँ लेकिन माँ जैसा प्यार करती हूँ. क्वेश्चन मार्क, यही ट्विस्ट है.
1: तो भैया बारी चेंज कर पूरी तरह से तन्वी के किरदार में ढलने की. वैसे तन्वी के लुक में कुछ कुछ खास चीजें हैं जिसमें दिया गया है थोड़ा सा महाराष्ट्रियन टच, जैसे कि ये बिंदी, ड्रेस का ये बॉर्डर और कोल्हापुरी चप्पल, जिससे पूरा होता है तन्वी का लुक.

तो हमारा चेंज हो चुका है और इतना सिंपल लुक है मेरा, लेकिन अभी ज्वेलरी बाकी है. मैं सबसे पहले लगाती हूँ बिंदी, बहुत ज़रूरी है. मुझे ऐसा अपना फेस अच्छा नहीं लग रहा है देखते वक्त, लेकिन बिंदी जो है आप देख सकते हो, ये चंद्रकोर बिंदी है. आपने देखा होगा जितने महाराष्ट्रियन लुक्स है, फिर वो अपनी नॉर्मल साड़ी हो या फिर पैठनी हो, अपने चंद्रकोर बिंदी देखी होगी. बट मुझे लगता है ड्रेस पे पहली बार चंद्रकोर बिंदी लगाई है मैंने खुद भी. ज़्यादा हैवी नहीं है ये, इसे छोटे छोटे है, छोटे और बहुत प्यारे से हल्के. घड़ी है, ये पायल है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत नाजुक और बहुत प्यारी चीज़ है, सरस्वती लॉकेट है. सरस्वती का, जिसे हम बुद्धि की देवता बोलते हैं, कला कले की देवता बोलते हैं.

0: और भी दो चीजें हैं जिससे एक महाराष्ट्रियन टच आपको दिखाई देगा. जो ये लेस देख रहे हो ना, ये हर ड्रेस पे ऐसी लेस है जिस जो महाराष्ट्रियन ब्लाउजेस पे होती है, साड़ी जो आप देखते हो उसमें होती है. और ये है कोल्हापुरी चप्पल. तो हमने कोल्हापुर में जाके शूट भी किया है और ये कोल्हापुरी चप्पल. तो ये बहुत लोगों को लगता होगा कितनी अनकंफर्टेबल है, बट एक बार आप पहन लो. वो कहते हैं ना कि जब वहाँ के लोग भी उतने प्यारे हैं, आप वहाँ जाओ तो बहुत प्यार करते, ढेर सारा प्यार देते हैं, वो अपना लेते हैं. वैसे इसी का इसका भी है, एक बार आप पहन लो तो वो अपने आप कंफर्ट दे देती है. तो ये है मेरी चप्पल और ये ओवरऑल लुक है तन्वी का, एकदम सिंपल सा, प्यारा सा. और ऐसे मैं रेडी होती हूँ. अभी बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत सब लोग एक साथ रेडी हो रहे हैं, लेकिन वैसे तो हमें टाइम नहीं होता है, शूट रुका होता है, तो 45 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं वैसे तो.
1: तो भाई फाइनली अब पूरी तरह से गिरिजा तन्वी के किरदार में ढल गई है. अब बारी शो के लॉन्च की. यहाँ पर सभी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बारी बारी कर रहे हैं डांस, चाहे फिर वो चाची हो, सास हो या

वैसे इस लॉन्च में चार चांद तब लग गए जब हीरो हीरोइन का डांस शुरू हुआ, यानी तन्वी और युग का नाच। पूरी फैमिली आज मौजूद है और जल्द ही तन्वी युग की दुल्हन बनेगी।

बैठी हूँ जिसकी उम्र 32 साल है, जो सुशील है, समझदार है, अपनी जिम्मेदारियों की उसे समझ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ अच्छा है तो 32 की उम्र

0: आई गुजर गई, काका गुजर गए, और मेरी जो बहन है परी, मेरा भाई अक्षय, वो तो उनसे भी तब छोटे थे, मैं 22-23 साल की थी। और मेरे बाबा हैंडीकैप्ट हो गए, अपाहिज हो गए, तो उसके कारण पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। घर संभालना था, बाबा की दवाई हो, जो कुछ भी हो, लाइट का बिल, पानी का बिल, सब जो कुछ खर्चा था सब देखना था। तो किसी को काम करना ज़रूरी था, तो इसीलिए बहुत जब छोटी तब से ही काम करना शुरू किया।
1: योगी इज मोर अबाउट दिस जेन जी, जो बहुत टेंशन की है, सबसे प्यार करता है, बट सिवाय अपने पापा से, वो जानने के लिए ओनली वॉच 30 के बाद जब मिला प्यार सिर्फ दंगल।
2: घर वाले मुझे बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, घर की बड़ी समझते हैं, मेरी राय मानी जाती है, लेकिन उतना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ मुझे मिले, कुछ ऐसा ना हो कि मेरे और बहनों के हाथ से बाहर रहे। तो ये कैसे करूँगी मैं, ये जानने के लिए आप सबको 30 के बाद मिलेगा प्यार 9:30 बजे दंगल टीवी पे जरूर देखना है।
3: अब करते हैं मुलाकात अक्का साहब से, यानी कि जिनका किरदार निभा रही हैं अनन्या, जो कहानी में ट्विस्ट का तड़का लाती रहेंगी, यानी कि युग और तन्वी को वो किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए यूज करेंगी, ये देखना शो में काफी दिलचस्प होगा। तो आइए अनन्या से ही जानते हैं उनके किरदार और उनके लुक के बारे में कुछ खास बातें।
4: किस तरह से उस चीज का जिम्मेदार समझती है, क्यों समझती है, उस तरह का एक कैरेक्टर है जो अपनी तरफ से अपने फर्ज पूरे करता है, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा है वो ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं कि वो एक्चुअली उनके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या दर्द है, क्या किस चीज़ से वो लड़ रही हैं। ब्राह्मणी नवारी का लुक है ये, और ये मैंने पहली बार किया है ये लुक, तो मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ग्रेसफुल, बहुत डिग्निफाइड लुक है। इसके साथ इसमें इन्होंने ये सब महाराष्ट्रन ज्वेलरी दी है, तो महाराष्ट्र में लाल चूड़ियाँ विडोज पहनती हैं, तो मैं विडो हूँ क्योंकि, लेकिन मैं क्योंकि एक रिच विडो हूँ इसलिए मैं सोना बहुत पहनती हूँ, मुझे शौक है सोना पहनने का। मैं कहीं भी जाऊँ ये जैसे लक्ष्मी वाला पहनी है, और ये है, दीज आर वेरी टिपिकल थिंग्स ऑफ महाराष्ट्रंस, श्रीमंत जो क्लास होती है।
3: अब बारी बाकी के किरदारों से मिलने की, जहाँ पर तन्वी यानी कि गिरिजा मिलवा रही है युग से और अपने बाकी को स्टार्स से, जिनके साथ बॉन्ड रियल जैसा होने वाला है।
5: अभी तो फैमिली का पार्ट है नहीं और बहुत खड़ूस है, मिलते हैं उससे अभी, क्या क्या ही करे। बोलो
6: व्हाट्स अप,
5: अब बोलो
6: क्या बोलो,
5: वो लोग आए तो।
6: हेलो जी, नमस्ते, वेलकम। इतना क्यों टोकती हो यार, लेट मी एंजॉय मैन। या
5: आज हमारा शो लॉन्च हो रहा है, तो कैसे लग रहा है तुम्हें?
6: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है, तुम्हें कैसा लग रहा है?
5: सेम यार,
6: इसे मौका चाहिए था बस डांस करने।
5: बात तो सही है।
6: बहुत
5: जैसे प्रोमो में देखी वैसी।
6: जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं पहले, है ना, उन्हें पता नहीं चलता कि प्यार है बीच में, बट फिर धीरे धीरे पता चलता है, उन्हें खुद को रियलाइजेशन नहीं होता इस चीज का, बस ऐसे ही हमें भी रियलाइजेशन नहीं होगा, और कब हो जाएगा हमें खुद को नहीं पता।
5: हम उनसे बात करते हैं। अक्का साहब, कैसा लग रहा है आज हमारा शो लॉन्च हो रहा है?
4: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटे, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड फॉर पुलकित, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एंटायर टीम, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड आई रियली प्रे कि हमारा शो बहुत अच्छा चले और सब लोगों के लिए, हम लोग सब सीखे भी और ऑडियंस भी इस शो से सीखे, बिकॉज ये शो एक्चुअली सीखने वाला शो है, इट्स नॉट जस्ट अ टाइम पास शो, इट्स अ वेरी नाइस शो स्टोरी।
5: और मुझे आप जैसी बड़ी कलाकारा के साथ काम करने, मुझे भी बहुत कुछ सीखना मिलेगा, सीखने मिलेगा।
4: नहीं है बेटा, देयर इज नोबडी बड़ा छोटा, सिर्फ कुछ लोग पहले पैदा हुए हैं, कुछ लोग बाद में पैदा हुए हैं, दैट्स ऑल। और सीखने के लिए तो सभी सबसे सीखते हैं और सीखना ही चाहिए, अगर नहीं सीखेंगे जिस दिन ना हम लोग, उस दिन हमारी डेथ है समझ लो।
5: मेरी बहन है परी, सिंदूरा है, हेलो, आप क्या कर रहे हो?
7: मैं
5: फोन पे लगे,
7: मैं आपका वेट कर रही थी कि कब आएगी मेरी वही नहीं होने वाली।
5: कैसा लग रहा है आज हमारा शो लॉन्च हो रहा है?
7: आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत, हम सबकी मेहनत आज रंग लाने वाली है, आज रात 9:30 बजे हमारा शो आ रहा है।

0: एक्साइटेड।
1: परी कैसी हो?
2: ताई मैं अच्छी हूँ।
1: कैसा लग रहा है जब हमारा शो लॉन्च हो रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है लेकिन मजे आ रहे हैं।
1: हम तो बहुत मजा करते हैं सीन में।
2: हाँ, हम लोग ऑफ सीन में ज्यादा मजा करते हैं, सीन में तो बस।
1: सब लोग बहुत एक्साइटेड है, गप्पे लड़ा रहे एक दूसरे के साथ। तो आप भी हमारा शो जरूर देखिए आज से रात 9:30 बजे 30 के पार जब मिला प्यार सिर्फ दंगल टीवी पे, और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।
3: तो आप सभी हो जाइए तैयार दंगल टीवी पर 30 के पार जब मिला प्यार की ये अजब गजब युग तन्वी की प्रेम कहानी देखने के लिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: तो क्या कह रही है मन्नत और विक्रांत की ये कहानी? क्या फिर से आए हैं इसमें भी कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको मन्नत के पास। एक्चुअली देखिए, मन्नत की कहानी में भी रोजाना आता है हमारे लिए कुछ ना कुछ नया। या तो कोई रिश्ता है, कोई नया षड्यंत्र करता है, प्लानिंग प्लॉटिंग, जिसमें मन्नत और विक्रांत फंस जाते हैं, फिर उन दोनों के बीच हो जाता है कन्फ्यूजन, फिर किसी तरह ये कन्फ्यूजन होता है दूर और कहानी यूं ही एक विशेष सर्कल में चलती रहती है। लेकिन फिर भी है हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। लेकर चलते हैं आप सबको मन्नत के पास।
5: ये अपनी अपनी मनमानियां, अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकती है, बिना इस बात को जाने कि उसका अंजाम क्या होगा। ये अपनी मनमानी करती जा रही है। जो कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ आप, ये आपकी वजह से।
3: घर में छाया दुख का माहौल। खतरे में पड़ी विक्रांत की जान।
5: तुम्हारी सच की वजह से हुआ है। अगर तुम इस घर में रहने के लिए राजी हो जाती तो विक्रांत क्या ही होता? उसका
3: फिर नीतू और याशिका ने मन्नत पर लगाया इल्जाम।
5: वो दुआ को अपने आप से दूर होते हुए नहीं देखना चाहता था।
3: कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में आज कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया है, जहां पर मन्नत को ये पता चल गया है कि विक्रांत का एक्सीडेंट हो गया है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ऐसे में देखिए कैसे घर वाले हो गए हैं काफी परेशान, क्योंकि अब तक विक्रांत किस अस्पताल में है इसका पता नहीं चला है। ये खबर सुनकर नीतू का तो हाल ही बेहाल हो गया है, रो रो कर उसका बुरा हाल है। ऐसे में मन्नत नीतू को समझा रही है, लेकिन याशिका यहाँ भी खेल खेल देती है। देखिए कैसे वो विक्रांत के एक्सीडेंट का इल्जाम भी मन्नत पर ही लगा रही है।
5: विक्रांत इस घर से गया ही इसलिए क्योंकि वो दुआ को अपने आप से दूर होते हुए नहीं देखना चाहता था। विक्रांत का एक्सीडेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है मन्नत, तुम्हारी।
3: और नीतू भी याशिका की बातों में आ जाती है और मन्नत को खरी खोटी सुनाने लगती है।
5: सही तो कह रही
6: हूँ। चुप करो नीतू, बस करो।
5: नहीं बस करूंगी, नहीं बस करूंगी। क्यों चुप हूँ मैं?
3: थी। लेकिन ये तमाशा अब धैर्य से बर्दाश्त नहीं होता और उसके सब्र का बांध टूट जाता है और देखिए कैसे वो नीतू को खरी खोटी सुना रहा है, यानी कि सच का आईना दिखा रहा है। जो नीतू को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर नीतू के पति रोनी भी उसको ही गलत ठहरा देते हैं।
0: तो फिर क्या परेशानी थी?
7: परेशानी आप है। नहीं मन जी, मैं आज नहीं रुकूंगा। मेरी कोई गलती नहीं, ना आपकी गलती, गलती विक्रांत की थी। उसको कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, कोर्ट का सम्मान वो लेकर आया। लेकिन इनके कहने पे किया ना, उसने किया तो है ना। मैं क्या गारंटी है कि हर बार ये यही सब करती है, कि तो दोबारा से मुझे और दुआ को दूर करने के लिए दोबारा से विक्रांत को कन्विंस कर लेंगे और हम लोग फिर दोबारा भैया के खड़े हो जाएंगे। क्या गारंटी है? ये कुछ भी कर सकती है, ये अपनी अपनी मनमानियां अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकती है, बिना इस बात को जाने कि उसका अंजाम क्या होगा। ये अपनी मनमानी करती जा रही है। जो कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आज भी जो हुआ है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। हम दोनों के बीच में आप आए, विक्रांत और मेरे बीच में आप आए, आज आपकी वजह से दुआ कंफ्यूज, उसको पता ही नहीं है कि रहना किसके साथ है।
0: देखा जी किस तरह की भाषा बोल रहा है मेरे और मेरे पुत्र के लिए, और माँ बहन कि अपने पुत्र को छोड़कर इसका साथ दे रहे हैं। आप
6: क्या गलत कह रहे हैं? कुछ गलत नहीं कहा है, और तुम अपनी गलतियां दूसरों पे डालना बंद करो।
0: अरे क्या गलती की मैंने? अपने पुत्र की खुशियां।
6: अरे क्या खुशियां? कौन सी खुशियां? कौन खुश है यहाँ पे? देखो
0: तो उसकी वजह ये है।
2: अरे बस कीजिए, विक्रांत की जान मायने रखती है, आप लोग क्या कर रहे हैं?
8: तो हम लोग निकल रहे हैं वापस इंदौर जाने के लिए। सब तैयारी हो चुकी है, बैग्स पैक हो चुके हैं। धैर्य आके बोलता है कि ट्रेन की टिकट मिल गई है, हमें निकलना है और वो सब। और उतने में नीतू जी और मेरी थोड़ी सी तूतू मैं हो जाती है। मैं नीतू जी को रोकता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आप परिवार से बात मत कीजिए, क्योंकि मैंने उनको एक वादा दिया होता है जो वादा वो तोड़ चुकी हैं। और अब इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता है नहीं। ये सब हो रहा होता है, ये सब ड्रामा हो रहा होता है, हम निकल रहे होते हैं, उतने में ही हमें पता चलता है कि विक्रांत का एक्सीडेंट हो चुका है। तो सब लोग बहुत टेंस हो जाते हैं। ऑब्वियसली नीतू जी गिर पड़ती है, मन्नत गिर जाती है, मैं भी बहुत टेंस हो जाता हूँ, सब लोग परेशान हो जाते हैं। पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, किस हॉस्पिटल में है। उतने में फिर से नीतू जी ताने मारती है, धैर्य को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोलती है। तो मैं धैर्य का स्टैंड लेता हूँ, नीतू जी को मैं थोड़ा बहुत सुनाता हूँ। उतने में मन्नत फिर हमें शांत करती है और कहती है कि भाई इस वक्त हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पता करना कि विक्रांत कौन सी हॉस्पिटल में है, वो ठीक है या नहीं, और उस तक पहुँचना इम्पॉर्टेंट है।
3: भाई मन्नत को तो बस विक्रांत के जान की चिंता सता रही है, और ऐसे में अस्पताल का पता भी चल चुका है। अब मन्नत दौड़कर विक्रांत के पास गई है। भाई इसके बाद अब क्या मन्नत और विक्रांत की जोड़ी बन जाएगी या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: ईशा, ये फेस मास्क तो है 2-in-1। एक तो ये आपको रिफ्रेश कर देगा, दूसरा आपके मेकअप को भी सेट कर देगा। क्योंकि देखिए, हमेशा रहते हैं आपकी आंखों में आंसू, तो हम नहीं चाहते कि आपका एक खूबसूरत मेकअप यूं बह जाए। जोक्स अपार्ट, हम तो सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो जाए सब कुछ ठीक। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सूरज और ईशा के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में। आज कहानी का लेखक फिर लेकर आया है इस कहानी में एक नया ड्रामा।
9: क्या बात है? मेरा
3: शुरू हुआ पति ब्रह्मचारी और पत्नी का खट्टा मीठा रोमांस।
9: अगर जाने प्यारी तो चश्मा उतारो वरना।
3: सूरज पर प्यार लुटा दी ईशा, कभी झाड़ू से पीटती। हार्ट बनाकर फ्लाइंग किस देती, यही तो है ईशा का प्यार। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज प्यार का मौसम आ गया है, जहां पर सूरज आंखों पर काला चश्मा लगाकर घर में आ गए हैं और ऐसे में ईशा देखिए कैसे सूरज को छेड़ रही है

0: क्या बात है, मेरा पति ब्रह्मचारी
1: लेकिन यहाँ पर सूरज तो अपने ही टशन में है। ना वो ईशा के हाथ से कुछ खा रहे हैं, ना ही ईशा को देख रहे हैं। ऐसे में ईशा का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
2: मुझे ना आपके हाथ का कुछ खाना है ना पीना है, और आज के बाद मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं।
0: जानते हो ना मैं कौन हूँ तुम्हारी?
2: बुरा वक्त, बुरी यादें, बुरे हाथ से भुला देना ही बेहतर समझता हूँ।
0: अच्छा, तो ये शादी फेरे बुरी यादें तुम्हारी, हमारा पति पत्नी होना एक हादसा है तुम्हारे लिए। बुरा तो अब होगा तुम्हारे साथ।
1: ईशा तो ईशा ठहरी, देखिए कैसे वो अपने पति ब्रह्मचारी पर भड़क गई है और ले आई है झाड़ू और कर रही है सूरज की झाड़ू से पिटाई, ताकि वो चश्मा उतारे और उससे प्यार भरी बातें करे।
0: पूरे शहर में गुंडे बने फिरते, गुंडा घर में फिरता अच्छा
2: रहेगा? इसके मौत आई है जो मुझे
0: पिटेगा। अच्छा अच्छा, तो मारा है ईशा, तुम क्या चीज हो? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो मेरे पति ब्रह्मचारी, अगर जाने प्यारी तो चश्मा उतारो वरना।
1: तो भाई लगता है झाड़ू की मार रंग लाई और सूरज ने सच बता ही दिया कि असल में उन्हें आई इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से वो चश्मा नहीं उतार रहे। ऐसे में ईशा का दिल पिघल गया और वो अपने पति ब्रह्मचारी पर प्यार लुटाने लगी।
2: मुझे कंजक्टिवाइटिस हुआ है ना, इसलिए चश्मा नहीं उतार रहा, इन्फेक्शन ना फैले।
0: पहले बता दे तो कम से कम

0: थोड़ा सा मौका मिला नहीं, रोमांस करना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी तरह से पता है ना कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, फिर भी ये सब करते रहे।
1: तो देखा, कुछ ऐसा था सूरज और ईशा का खट्टा मीठा प्यार, जो लोग देखने को तरस रहे हैं, क्योंकि अब तो इनमें दूरियां हैं। और ये है फ्लैशबैक सीन, जब ईशा और सूरज एक दूसरे के साथ थे, लेकिन अब इनके बीच गलतफहमियों के चलते दूरियां बढ़ चुकी हैं।
2: एक्चुअली इट्स अ फ्लैश। एक्चुअली ईशा जी को मतलब अभी करंट प्रेजेंट में मतलब कंजक्टिवाइटिस हुआ है, ऐसा वो बताती हैं सूरज को। एंड जबकि झूठ बोल रही हैं ईशा जी। तो सूरज घर में बैठा रहता है एंड ऑफिस में बैठा रहता है, तो अचानक से उसे एक फ्लैश आता है। उस फ्लैश में ये पता चलता है कि जब सूरज को कंजक्टिवाइटिस हुआ था, तो ईशा जी वो सूरज चश्मा नहीं निकाल रहा था, और वो बता भी नहीं रहा था ईशा जी को कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो इन्फेक्शन फैले ना इसलिए। और ईशा जी को लग रहा था ये गुंडागर्दी कर रहा है, घर में भी बन के हीरो बन के घूम रहा है। तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में दौड़ाती हैं उसको, मतलब बताना चाहती हैं कि मतलब ये गुंडागर्दी बाहर ही चढ़ेगा, पिटाई खाओगे घर में, ये करोगे वो करोगे। ये बोलता है कि जो मतलब आप मेरी पत्नी नहीं है, काइंड ऑफ थिंग, मतलब इन शॉर्ट जो हमेशा से सूरज बोलते आए। और ईशा जी गुस्से में आती है, उसे झाड़ू लेके दौड़ाती है, मारती है, पीटती है, एंड बाद में वो बताता है कि मुझे कंजक्टिवाइटिस हुआ है, इसलिए मैं चश्मा नहीं निकाल रहा हूँ कि आप सभी को फैल जाएगा। फिर वो प्यार से, वही पुरानी वाली ईशा जी जो प्यार से सूरज के पास गाल करती थी, एंड सूरज पैनिक हो जाता था कि क्या कर रही है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा मत करो। तो वही सारे क्यूट बैंटर्स थे। या ये फ्लैश है, जितना ऑडियंस को देखने में मजा आएगा कि यार पुराने सूरज ईशा में मजा था, अभी वाले सूरज ईशा में भी मजा है, बट पुराने वाले में ज्यादा था, लोगों को ये लगेगा। सो डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहता हूँ, सी ये फ्लैश पुराना है, लेकिन सूरज ईशा आपके वही है। तो सूरज ईशा का अभी भी बैंटर आप सभी को देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा अलग अंदाज में मिल रहा है, थोड़ा सीरियस वे में है। सूरज सीरियस रहता है, लेकिन ईशा जी एज इट इज है। तो इमेजिन कीजिए, जब सूरज को सच्चाई पता चल जाएगी कि आकाश का क्या, आकाश क्या है, तो सूरज जब वापस ईशा जी से मिलेगा, तो इन दोनों की बॉन्डिंग क्या बनेगी, ये तो देखने में ही मजा आएगा।
1: तो भाई अब देखना होगा कि कैसे सूरज और ईशा फिर एक बार एक दूसरे के करीब आते हैं। मुंबई से रोशन अडाजानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: आज तो इन फेसमस के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, और देखिए इनमें है कितनी सारी वैरायटी। एक्चुअली बिल्कुल इन फेसमस की तरह हैं हमारे लक्ष्मी निवास के घर वाले। बताइए कैसे, सब एक दूसरे की तरह हैं, लेकिन फिर भी हैं एक दूसरे से अलग। तभी तो आता है इस कहानी में हमारे लिए इतना सारा एंटरटेनमेंट। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको लक्ष्मी निवास के सेट पर, और देखते हैं क्या कुछ कहानी में हो रहा है आज।
1: वीर और राधिका की सुहाग रात,
4: नहीं लगता तू है तो डर नहीं लगता तू है तो गम,
1: प्यार के रंग में नगा नया नवेला जोड़ा,
4: मुस्कुराते हैं कि तेरे बिन सो नहीं सकते किसी के हो नहीं,
1: शुरू हुई मोहब्बतें
4: तू है

जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में आज आ गया है मौसम रोमांस का। भाई धोखे से राधिका और वीर की शादी हो चुकी है। वीर के नाम का मंगलसूत्र राधिका पहन रही है और ऐसे में बारी आई है सुहागरात की। और देखिए आज तो वीर खुशी से फूले नहीं समा रहा और राधिका को दुल्हन के रूप में देखकर आज वो काफी खुश है।

0: मुंबई आज तो वीर अपने दिल की बात भी कहेगा और राधिका संग रोमांस भी करेगा और लगता है इस रोमांस की शुरुआत हो चुकी है। देखिए कैसे दोनों डांस कर रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में खो गए हैं और इनका प्यार परवान चढ़ रहा है। भाई आज तो वीर और राधिका की ये जोड़ी एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है।
1: हाँ, मंगलवार गया था ना तो यहाँ पे वीर तो सातवें आसमान में है कि मतलब ये तो बिल्कुल लव स्टोरी मतलब पूरी होती नजर आ रही है उसको। राधिका जी के साथ शादी हो गई है, वो उसके कमरे में है, पूरा वो सीक्वेंस। वीर तो मतलब आखिर में कह भी रहा हूँ कि वीर गजेंद्र चौहान तुम तो पूरे ही प्यार में पड़ गए राधिका जी के, तो वैसा ही हो रहा है वीर के साथ। वीर बिल्कुल मदहोश है, खुशी से पागल है। कहीं ना कहीं ये भी है कि धोखे से मंगलसूत्र पहना दिया है, पर ठीक है ना, पहना तो दिया, इसी बात में बहुत खुश है।
0: राधिका शादी के बंधन में तो बन चुके हैं, लेकिन आपको बता दे कि फिर एक बार वीर ये रोमांस का सपना ही देख रहा है। जी हाँ, वीर के ख्यालों में राधिका संग प्यार जता रहा है और राधिका भी उस पर प्यार लुटा रही है। भाई हकीकत में तो अब भी वीर और राधिका के बीच प्यार का इजहार नहीं हुआ है और जब सपना टूटता है तो वीर हो जाता है बिल्कुल अकेला।
2: सीक्वेंस अगेन, वीर कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह कोई भी सपना देख सकते हैं राधिका से रिगार्डिंग। अब उन्होंने क्योंकि ऐसा सपना देखा है तो उसके लिए मैं सिर्फ दुल्हन के गेटअप में रेडी हूँ। उन्होंने एक सपना देखा है कि हमारी शादी हो गई है और अभी फाइनली गुड मोमेंट टुगेदर। सपना ही है,
1: सपनों का सौदागर हैशटैग।
2: मैं जज रहा है
1: ना, मतलब पहली बार महंगे लग रहे हैं तो
2: जोड़ा जोड़े में
1: जज रहा है। जोड़ा जोड़े पे, सो या मतलब
2: जोड़े पे नहीं, जोड़ा जोड़े में।
1: अच्छा, जोड़े में। ओ,
2: जोड़ा
1: एज ए कपल,
2: जोड़ा जोड़े में।
1: अच्छा, ओके,
2: कपल इन दिस आउटफिट।
1: या
2: जोड़ा जोड़े में,
1: या वी डू लुक नाइस। सो
0: तो भाई प्यार का ये सपना कब हकीकत में बदलेगा, इसका इंतजार दर्शकों को जरूर है, क्योंकि वीर और राधिका के प्यार की गाड़ी जल्दी ही चल पड़नी चाहिए। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: देखिए, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप इस्तेमाल करें नेचुरल फेस मिस्क का, वो रहेंगे आपकी स्किन के लिए एकदम रॉकिंग, जैसे कि रोज वाटर। और अगर आप इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल बेस्ड फेस मिस्क का तो डेफिनेटली हो जाएंगे ये आपके लिए शॉकिंग, स्किन के लिए भी और आंखों के लिए भी। कुछ ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग रंग, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज। लेट्स चेक इट आउट।
0: बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें मिले जब हम तुम के बाद फिर एक बार बनने जा रही है मोहित सहगल और सनाया ईरानी की जोड़ी। फिर एक बार ये दोनों ऑन स्क्रीन लौट रहे हैं कई सालों के बाद। खबरों की माने तो ये नजर आने वाले हैं आने वाली वर्टिकल ड्रामा सीरीज कुबूल है में, जहाँ इन दोनों की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। भाई रियल लाइफ में तो ये हस्बैंड वाइफ है ही, अब रियल लाइफ में भी इनकी जोड़ी फिर एक बार फैंस देख पाएंगे। पति ब्रह्मचारी के आशीष दीक्षित और प्राप्ति शुक्ला कोलैबोरेट कर रहे हैं डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन से। ये दोनों नजर आने वाले हैं टॉक शो में, जहां होगी मस्ती अनलिमिटेड
4: और ही शर्मा गई कॉफी। तो बाय, सी यू, स्टे ट्यून्ड।
5: आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने श्रुति का एक वीडियो देखा जहाँ वो कह रही थी कि औरतों का अपना कोई घर नहीं होता, और ये बात ना मेरे मन में रह गई।
0: श्वेता तिवारी खड़ी हुई श्रुति झा के साथ। असल में श्रुति झा के नए सीरियल तुम देना साथ मेरा में एक ऐसा डायलॉग था जिसने श्वेता तिवारी के दिल को छू लिया। ऐसे में देखिए कैसे वो कर रही है विमेंस को सपोर्ट।
5: और जब भी वो कहती थी कि माँ मैं यहाँ घूमने जाऊँ, तो माँ कहती थी नहीं बेटा, जब अपने घर जाना ना तब घूमने जाना, ये सब इन सब जगहों पर जाना। कहती थी माँ मैं ये कलर करवा लूँ, ये कुछ कर दूँ, तो कहती नहीं बेटा, जब अपने घर जाना ना तो अपने घर में करना।
0: शाम हुई अशोक पंडित की बर्थडे पार्टी, जिसमें आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी के साथ नजर आए।

0: बनाती
1: हूँ। आते मेरे को आते, बस बचपन में बन गया ना।
2: लाफ्टर शेफ्स का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर खास मेहमान बनकर आने वाली है टीम है जवानी तो इश्क होना है, जहां पर मस्ती के साथ साथ चल रही है कुकिंग भी।
1: ट्रॉमा है।
0: What the hell is this, वरुण?
3: ये पूजा खराब करके गई हमारी जिंदगी।
4: पूजा ने दिल बना दिए, आज से हमारा पूजा का दिल का रिश्ता।
5: तुम्हें नया कुछ नहीं सीखना चाहिए,
6: मुझे ऐसी ही जिंदगी पसंद है।
2: देख लीजिए पति अनाड़ी के सेट से ये बिहाइंड द सीन नजारे, जहाँ पर शिनचैन बन गए हैं लाला।
6: समझो मैं भी फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ।
5: क्या?
6: अभी स्वीट्स खाने का समय हो गया है, इसलिए अभी मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। रात को मैं घर दही लेकर जाऊँगा ताकि मैं लस्सी पी सकूँ।
5: क्या इसी को तुम फ्यूचर के बारे में सोचना कहते हो?
6: और नहीं तो क्या, हमारा फ्यूचर खाने से ही तो बनेगा, समझे तुम?
2: रूपाली गांगुली ने शेयर किया है ये वीडियो अपने बेटे संग, जहां वो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आई।
7: यहां पे हमने छोटे छोटे
2: सचिन तेंदुलकर पहुंच गए लोकल विलेज में, जहां देखिए कैसे इन बच्चों को देखकर उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए।
7: गाड़ी बघून आम्ही आमची गाड़ी थांबवली, तर आम्हाला ही गाडी बघाय त्यांच्या घरी जाऊन आहे ना बोलवलं इकडे पर
8: रेलवे स्टेशन। आइकॉनिक सीन ऑफ एन आइकॉनिक फिल्म वॉज शॉट हियर 36 इयर्स बैक। इट इज इन इंडियन सिनेमाज हिस्ट्री दैट Every Indian all over the world
2: अनुपम खेर ने शेयर किया है ये वीडियो, क्योंकि ये पहुंच गए हैं उस जगह जहां पर DDLJ का आइकॉनिक सीन शूट हुआ था, जा सिमरन जा वाला। देख लीजिए इनका ये वीडियो।
8: दुल्हनिया ले जाएंगे, सिमरन रन्स, अमरीश जी से जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, एंड सिमरन रन्स फ्रॉम हियर, एंड द ट्रेन इज देयर, शाहरुख इज देयर, एंड देन शाहरुख extends his hand and Simran runs in this lehenga and gets into it, and the fight that took place between me and the goons, not the goons, there were no goons in that film, Bittu, Archana's husband, was happening here, you know, just, at that time the structure was not there. But I remember Yashji was there, Adi was there, Adi Chopra, and we had a great time. Wow, it's like going to Sicily for a sequence of Godfather. These are iconic places, and yeah, all the memories of our good times with Chopras came back together. Lovely time we had. We were all innocent people at that time, and then life took over. But then it's beautiful. It's beautiful to be here. I'm thankful to Adi, SG and everybody for making me part of that iconic film, Dil Wale Dulhaniya Le Jayenge.
2: Actress Tamanna Bhatia पहुंच गई है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, जहां उन्होंने भस्म आरती अटेंड की और लिया महादेव का आशीर्वाद।

0: देर शाम हुआ, बैटल ग्राउंड का शूट। और शूट के दौरान सेट के बाहर नजर आए प्रियंका चहर चौधरी, निकी तंबोली, बुकरा इंसान यानी अभिषेक, खेसारी लाल यादव, लवकेश कटारिया और संयुक्ता हेगड़े। इसके साथ यहाँ खास मेहमान बनकर आए हैं टीम लुके यानी किंग पलक तिवारी और शिवांकित। देख लीजिए शूटिंग के ये नजारे। बन गई है तेजस्वी और करण की जोड़ी। आने वाला है इनका नया शो देसी ब्लिंग, जिसका प्रोमो सामने आया है। आप भी डाल लीजिए इस पर एक नजर।
1: इफ यू हैव एन इशू विद मी जस्ट टेल मी।
2: आई डोंट हैव एन इशू विद यू।
1: ऑफ कोर्स यू हैव एन इशू।
2: वी मेट बिफोर।
3: डोंट थिंक सो। आई विल शो यू द ट्रू कलर्स।
1: व्हाई वुड यू नॉट ट्रस्ट मी?
3: तेजस्वी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू।
4: रियली जस्ट वांटेड टू पैक माय बैग्स एंड लीव।

शेखर सुमन लेकर आ रहे हैं नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है शेखर टुनाइट। बीती शाम हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च, जिसके नजारे आपके लिए लेकर आया है सास बहू और बेटियां।

शिखा ने स्टार्ट किया है अपना नया वेंचर और ऐसे में इन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंचे कई सारे सितारे जैसे कि आमिर अली, अनूप सोनी, अंगद बेदी, अरबाज शूरा, अर्जुन कपूर, आशीष चौधरी, मीका सिंह, विवेक ओबेरॉय, माही विज, देबीना, सुनील शेट्टी, रितेश जेनेलिया, रजत बेदी और कई और सितारे जो इस शो में हुए शामिल।

0: देखा आपने, इस फेस मिस्ट ने कर दिया ना मुझे एकदम रिफ्रेश और तरोताजा। और बिल्कुल ऐसा ही किया आज हमारे शो सास बहू और बेटियां ने, जहां हम लेकर आए आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज। लेकिन क्या करें, आप तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां एक बार फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Your Saturday nights will never be the same.
3: The biggest hits back-to-back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
4: The Tailgate Block Party.
2: The Tailgate Block Party.
3: 6 hours non-stop. Non-stop.
4: The best DJs from around the world.
2: The Tailgate Block Party.
3: Saturday night.
2: 8 p.m. Eastern.
4: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
3: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: पेपर लीक के बाद एनटीए ने नीट 2026 की परीक्षा की रद्द। पेपर लीक की होगी सीबीआई जांच, 3 मई को हुई थी नीट परीक्षा, परीक्षा में बैठे थे 22 लाख छात्र। दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हेमंता बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री के साथ 4 मंत्रियों ने भी ली शपथ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर अब पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी की भी तैनाती, ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में पुलिस की करेंगे मदद। अब तक 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन। तेजी से आगे बढ़ रही है जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी। मंदिर सूत्रों के अनुसार अब तक 3 रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य हुआ पूरा। बॉलीवुड के बाद अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं अभिनेत्री दिशा पाटन, उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म द पोर्टल फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
13: अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारें। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन करके चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मंगलवार को हुआ था हनुमान जी का भगवान श्री राम से मिलन। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। सुबह से राम मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतारें। सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम। अयोध्या में बड़ा मंगलवार पर भक्तों ने बंदरों को खिलाया खाना। बंदरों के खिलाने के लिए सुबह से मंदिर में पहुंच रहे हैं लोग। भक्तों ने बंदरों का परोसा केला, फल, चना और गुड़, बंदरों को तरबूज भी खिलाया गया। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़ा मंगलवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। दर्शन करने के लिए लंबी कतारें लगी। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारें। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन किए, जयकारे लगाए। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज। रथ निर्माण का काम चल रहा है जोरों पर। तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य हुआ पूरा। रथ निर्माण के लिए कुल 818 लकड़ियों की होती है जरूरत। 200 से ज्यादा कुशल कारीगर तीनों रथों का कर रहे हैं निर्माण। बिना लोहे के कील के बनता है यह रथ। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर 15 लाख से ज्यादा और 20 लाख के आसपास श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम। जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार में लिस्टिंग का काम भी हुआ पूरा। लिस्टिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती। भक्तों ने जमकर लगाया हर हर महादेव के जयकारे। भगवान महाकाल का अभिषेक करने के बाद भव्य दिव्य हुआ उनका श्रृंगार। बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। आरती से पहले भगवान महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक। दुग्ध, दही, घी, शक्कर, शहद, फूलों से किया गया श्रृंगार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पहुंची अभिनेत्री तमन्ना भाटिया भस्म आरती में शामिल। पूरी तरीके से शिव भक्ति में ली नजर आई एक्ट्रेस। ये भगवान शिव के निराकार स्वरूप को साकार में बदलने की एक जीवन परंपरा भस्म आरती होती है। भगवान बद्री विशाल के धाम में बदल गया मौसम का मिजाज। मौसम बदलने के बाद भी बड़ी संख्या में दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम इलाके में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माणा गांव से लेकर बद्रीनाथ धाम तक जगह जगह श्रद्धालुओं का तांता। बद्रीनाथ धाम में व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किए गए आईटीबीपी के जवान। जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का तैनात किए गए आईटीबीपी के करीब 25 जवान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नशे के खिलाफ पदयात्रा और साइकिल रैली का आयोजन किया गया। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नशा मुक्ति के खिलाफ आयोजित रैली में शामिल हुए हजार लोगों का राज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। गुवाहाटी पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मां कामाख्या मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर के दरबार में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन। परिवार के संग दर्शन पूजन। गुवाहाटी पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मां कामाख्या के मंदिर में दर्शन पूजन किए। देश और राज्य की शांति की कामना की। अयोध्या में सोमनाथ अमृत महोत्सव को लेकर शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। मंदिर में किया गया रुद्राभिषेक। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत। नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे हैं ये प्रतियोगिता। गिर के जंगल में पर्यटकों को रोमांचित करने वाली न्यूज निकल कर आई है। पर्यटकों के सामने ही शेरनी ने शिकार पर किया हमला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को सशक्त बना रहा है समुदाय का रेडियो सेशन स्टेशन संगम 88.8। राजस्थान के पुष्कर में 43 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में विदेशी महिला की अनोखी तपस्या की हो रही है खूब चर्चा। महिला भक्त ने 10 साल पहले अपनाया था नाथ संप्रदाय। पुष्कर में धोनी अग्नि तप करके विदेशी भक्त कर रहे हैं लगातार सेवा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दरबार में लगाई हाजिरी। दोनों नेताओं ने दर्शन पूजन करके कामाख्या मां का आशीर्वाद लिया। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच देश में एलजीबी उत्पादन से जुड़ी गुड न्यूज। 35 से 36,000 टन से बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ देश का एलपीजी उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद साइकिल पर कोर्ट पहुंचे जबलपुर के हाईकोर्ट के जज। प्रधानमंत्री की अपील का असर, भोपाल में लघु उद्योग निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण ने ई रिक्शा से दफ्तर पहुंचकर संभाला पदभार। राजस्थान के सवाई माधोपुर से आया भालू की मस्ती का वीडियो, प्रचंड गर्मी से बचने के लिए पानी भरे गड्ढे में नहाता हुआ नजर आया। बांग्लादेश सीमा पर लोगों के साथ बेहतर संबंधों के लिए बीएसएफ की खेल कूटनीति। कूच बिहार में स्थानीय युवाओं के साथ एक दोस्ताना वॉलीबॉल मैच। कोन मुक्ता प्राइमरी स्कूल के मैदान में हुए इस मैच में स्थानीय टीम ने बीएसएफ की टीम को 2-0 से हराया। एशियाई शेरों के लिए मशहूर गुजरात का गीर अब अपनी अनोखी कला के लिए भी बन रहा है पहचान। यहां पर यूनिक थ्रेड आर्ट से तैयार की जाती है अद्भुत कलाकृतियां। इलाके में पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से बनाई है यह स्पेशल आर्ट। 600 रुपए से लेकर 15,000 तक में बिकती है एक कलाकृति, पर्यटकों को आकर्षित कर रही है लगातार। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बालघर में गुहिर गांव में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का शुभारंभ कर दिया। सौर ऊर्जा से रोशन होगा पूरा गांव। 130 परिवारों को मिलेगी मुफ्त बिजली, खेती के लिए भी मिलेगा सोलर पावर। गांव को मिली और सौर ऊर्जा वाली आटा चक्की, क्लीन एनर्जी से बदलेगी गांव की तस्वीर। पालघर में आदिवासी बच्ची का भाषण सुनकर भावुक हो गए सचिन तेंदुलकर, बच्ची के आत्मविश्वास का जताया दिल से आभार। सचिन ने बच्ची को किया सम्मानित, बोले सचिन गांव में छुपी है असली प्रतिभा। पंजाब बोर्ड ने 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए। एग्जाम में बेटियों ने फिर से मारी बाजी, फरीदकोट में किसान की बेटी हरलीन शर्मा ने टॉप किया। अरलीन शर्मा ने 650 में से 646 अंक लाकर पंजाब बोर्ड में टॉप कर लिया। स्कूल में ढोल नगाड़ों के साथ मना जश्न, माता पिता ने बेटी की सफलता पर जताया गर्व। हरलीन ने पेरेंट्स और टीचर्स को श्रेय दिया। मादा कछुआ धवल लक्ष्मी ने तय किया 4,000 किलोमीटर का अनोखा सफर। मादा कछुआ धवल लक्ष्मी बनी समुद्री रिसर्च की स्टार, देश की पहली सैटेलाइट टैक्ट मादा कछुआ है धवल लक्ष्मी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द की नीट यूजी परीक्षा 2026, सीबीआई करेगी पेपर लीक की जांच। असम में नई सरकार का हुआ शपथ ग्रहण समारोह, हेमंत बिस्वा सरमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन नवीन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को हाथ मिलाकर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं दी।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो। नहीं फायदा।

छुट्टा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस

का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो।

पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है, और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा, जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद, यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड,
ये सारे गुण इसमें होते हैं।

0: हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: क्या है अपरा एकादशी की महिमा? अपरा एकादशी पर क्या होगा पूजा विधान? अपरा एकादशी पर किन पापों का होगा प्रायश्चित और मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
5: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
4: Big 12 Radio.
6: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
4: down. And talk sports.
7: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
4: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Good news today.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: पेपर लीक के बाद एनटीए ने नीट 2026 की परीक्षा की रद्द। पेपर लीक की होगी सीबीआई जांच। 3 मई को हुई थी नीट परीक्षा, परीक्षा में बैठे थे 22 लाख छात्र। दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्वा सरमा। मुख्यमंत्री के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर अब पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी के भी तैनाती हुई। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में पुलिस की करेंगे मदद। अब तक 3 लाख से ज्यादा भक्तों के लिए बद्री विशाल के हुए दर्शन। तेजी से आगे बढ़ रही है जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी। मंदिर सूत्रों के अनुसार अब तक 3 रथों के लिए 18 पहियों का हो चुका है निर्माण। बॉलीवुड के बाद अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रही हैं अभिनेत्री दिशा पाटनी। उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म द पोर्ट ऑफ फोर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। और आज हम बात करेंगे एकादशी की दिव्य तिथि की, यानी कि ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी की। श्री हरि की कृपा का सबसे उत्तम दिन है एकादशी। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को परम प्रिय है। कहते हैं श्री हरि की कृपा से हर परेशानी का अंत हो सकता है। फिर चाहे आप पापों से मुक्ति चाहते हो या धन प्राप्ति का वरदान, या फिर आपको चाहिए एक उत्तम संतान, या किसी मानसिक समस्या से आप हो रहे हैं परेशान, अपरा एकादशी पर श्री हरि आपके सभी संकटों का अंत कर देंगे।

0: अपरा एकादशी की महिमा गाता है पद्म पुराण। श्रीहरि को समर्पित व्रत की गाथा सुनाता है ब्रह्म पुराण। अपरा एकादशी पर मिलेगा गोदान का फल। परम प्रतापी व्रत को करने से आपके सारे मनोरथ होंगे सफल। मान्यता है कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी यानी अपरा एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा था कि हे राजन, ये एकादशी दो नामों से जानी जाती है, एक अपरा एकादशी और दूसरी अचला एकादशी। ये एकादशी अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखते हैं, वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं।
1: पुराणों में अनेक जगहों पर वर्णन मिलता है, जिसमें दो मुख्य कथाएं हैं। एक तो जो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि किस एकादशी का व्रत करने से सर्वाधिक लाभ है, तो विष्णु जी के पूजन के लिए भगवान कृष्ण ने बताया कि जो अपरा एकादशी है यह अत्यंत पूर्णदायी है। इसी प्रकार एक दूसरी कथा मिलती है कि एक जो है राजा महेंद्र ध्वज जो है थे, और वह अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे, वो अपना राज कर रहे थे, तो उनके जो छोटे भाई थे वज्रध्वज, वह जो है उनसे ईर्ष्या करने लगे, तो उन्होंने धोखे से उनकी हत्या करके उनके शव को एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया था। तो बाद में जिसके कारण वह राजा प्रेत योनि में चले गए, तो फिर बाद में जब एक ऋषि वहां से गुजरे, उनको जब ज्ञान हुआ कि यहां पे प्रेत योनि है, तो उन्होंने जो है अपने तप बल से जान करके अपरा एकादशी का व्रत किया, और उस एकादशी का जो पुण्य था वह पुण्य उन्होंने उस राजा की प्रेतात्मा को प्रदान किया, जिसके पुण्य के प्रभाव से वह राजा जो है प्रेत योनि से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हुए, जिसके कारण जो है इसका अत्यंत महत्व है।
0: ये है ज्येष्ठ महीने का परम कल्याणकारी व्रत, जिसके प्रभाव से व्यक्ति का नाम और यश बढ़ सकता है। माना तो यहाँ तक जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से साधक के पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होती है।
1: हमारे धर्मशास्त्रों में एकादशी को अत्यंत पूर्ण तिथि माना गया है, और यह भगवान विष्णु की उपासना एकादशी तिथि को की जाती है मुख्य रूप से। और अपरा एकादशी जो हमारी पूरे वर्ष में 24 एकादशियां पड़ती हैं, उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी का दूसरा नाम अचला एकादशी भी है, इसको अत्यंत पूर्णदायी माना गया है। यह ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उसी को हम अपरा एकादशी कहते हैं।
0: भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। ज्योतिष में एकादशी व्रत को बहुत महत्ता दी जाती है। माना जाता है कि ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। शास्त्रों में एकादशी की महिमा का बखान किया गया है, और इस दिन श्रीहरि की कृपा भक्तों पर विशेष रूप से बरसती है।
1: एकादशी का व्रत मुख्य रूप से व्यक्ति के मानसिक शुद्धि, चित्त में स्थिरता और भगवान विष्णु की प्रीति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जो दोष हैं उन दोषों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। इस व्रत के दिन व्यक्ति को जो है वाद विवाद, असत्य और इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए।
0: एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी का लाभ तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। श्रीहरि से मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत और पूजन सबसे फलदायी है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। वैसे तो एकादशी मन और शरीर को एकाग्र कर देती है, परंतु अलग अलग एकादशियां विशेष प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अचला या अपरा एकादशी कहा जाता है। इसका पालन करने से व्यक्ति की गलतियों की क्षमा मिलती है, खास तौर से झूठ बोलने के पाप और पाखंड से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का नाम यश बढ़ता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। हर व्रत और उपवास का अपना महत्व है, उसमें भी एकादशी व्रत सबसे उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि अगर आप इस तिथि पर किसी कारणवश उपवास नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल उपासना कर लेने से आप नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सकता है, क्योंकि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। अगर एकादशी का व्रत नहीं रख पाए तो इस दिन अन्न और भारी भोजन करने से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे, तो आप भी इस पवित्र एकादशी व्रत का लाभ उठाइए। अपरा एकादशी से जुड़े नियम हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना साधक की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं और हर एकादशी का अपना महत्व है। वही हर व्रत और उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां भी होती हैं। अगर उनका ध्यान रखकर व्रत रखा जाए तो फल कई गुना ज्यादा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत में किन बातों का ध्यान रखने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना।

0: सौभाग्य को बढ़ाने वाला है श्रीहरि का जाप। अन्न और धन के दान से बढ़ेगा आपका प्रताप। अपरा एकादशी लाएगी सुख समृद्धि। उत्तम होगी सेहत और धन कोष में होगी वृद्धि। जीवन में वैभव और यश का वरदान देने वाला कल्याणकारी व्रत है अपरा एकादशी। साथ ही ये एकादशी सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है। इसे मनोकामना पूर्ति का महाव्रत माना गया है। मान्यता है कि एकादशी का ये व्रत श्रीहरि की कृपा दिला सकता है और आपके सभी संकटों का नाश हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अपरा एकादशी पर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम हैं और सही विधान से पूजन करके आप भगवान को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी पर कैसे करें उत्तम उपासना।
1: अपरा एकादशी का व्रत सामान्य व्रतों जैसे अन्य व्रत होते हैं। इस दिन प्रातः स्वच्छ होकर के स्नान इत्यादि करके व्यक्ति को भगवान विष्णु का जो है एक प्रतिमा या चित्र अपने सामने रख करके उनकी तुलसी जल अक्षत इत्यादि से पूजन करना चाहिए और जो है उपवास करते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि में उस व्रत का पारण करना चाहिए।
0: अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। पूजा के लिए एक चौकी लें, उस पर पीले रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। गंगा जल या शुद्ध जल से प्रतिमा को स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं या अर्पित करें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को अक्षत पुष्प फल तुलसी दल पंचमेवा धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी किया जा सकता है। श्रीहरि विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। संपूर्ण विश्व श्री विष्णु की शक्ति से संचालित है। वे निर्गुण निराकार और सगुण साकार सभी रूपों में व्याप्त हैं। तो एकादशी पर विधि विधान से करें श्रीहरि विष्णु का ध्यान, जिससे आपका होगा कल्याण। चलिए अब आपको वो कथा भी बताते हैं कि भगवान त्रिविक्रम कौन है, जिनकी उपासना अपरा एकादशी में करने का विधान बताया गया है। असुर राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। तब भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने दान देने का वचन दिया और श्रीहरि के स्वरूप वामन ने अपने 2 कदमों से धरती और स्वर्ग को माप लिया। जब तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची तो बलि ने अपना सिर वामन के पैर के नीचे रख दिया। वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रखा और उसे पाताल लोक में धकेल दिया। इस प्रकार विष्णु को त्रिविक्रम कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है 3 चरणों वाला। चलिए अब आपको बताते हैं कि अपरा एकादशी व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत में फल और जल का भोग लगाया जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है ये एकादशी व्रत। इस दिन किए गए विशेष उपाय से आपको अच्छी सेहत के साथ साथ उत्तम सौभाग्य का वरदान भी मिल सकता है। अब जानते हैं आज अपरा एकादशी पर किन चीजों से आपको बचना चाहिए।
1: अपरा एकादशी में व्यक्ति को सात्विक रहते हुए अपने आप को वाद विवाद से दूर रख करके, गलत कार्यों से दूर रख करके भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भागवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो उसे विष्णु गायत्री अर्थात ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, इस प्रकार से विष्णु गायत्री का भी जप करना चाहिए। इससे भगवान का कृपा प्राप्त होती है।
0: तामसिक आहार व्यवहार तथा विचार से दूर रहे। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत न करें। मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में लगाए रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपवास न रखें, केवल प्रक्रियाओं का पालन करें। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केले, चने की दाल और केसरिया मिठाई का दान करें, जिससे आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है। माना जाता है कि इस तिथि पर व्रत रखने से पितृ दोषों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और तेल का दीपक जलाएं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आप भी ये उपाय करके देखिए। अगर सच्चे मन से इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से ही मिल सकती है श्रीहरि की कृपा। श्रीहरि की उपासना में पाठ और मंत्र जाप का महत्व खास होता है। श्रीहरि की कृपा पाने के लिए किस पाठ से होता है लाभ और किस मंत्र के जाप से होंगे सभी कार्य सिद्ध, और इस दिन कौन से करें प्रयास जिससे श्रीहरि पूरी करेंगे आपकी हर आस, आइए जाने श्रीहरि की कृपा देने वाला महामंत्र।

0: विष्णु गायत्री मंत्र से होगा आपका कल्याण, श्री हरि की कृपा से मिलेगा खुशियों का वरदान। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे कारगर उपाय है एकादशी का व्रत। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसके प्रभाव से आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विष्णु गायत्री मंत्र को भी अचूक माना जाता है। इस महामंत्र के स्मरण मात्र से सारे कार्य, बाधा, दुख और संताप दूर हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं विष्णु गायत्री मंत्र और विष्णु पूजा की आसान विधि।
1: हरि की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए और वह मंत्र है ओम नमो भागवते वासुदेवाय, अथवा जो दूसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करें, अथवा विष्णु गायत्री का जो है व्यक्ति को जप करना चाहिए। मुख्य रूप से जो इसका सबसे बड़ा लाभ है वह हमारे जो पितृ शांति के लिए और मानसिक शुद्धि के लिए और आर्थिक स्थिरता के लिए यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: श्री हरि कृपा के सबसे सरल उपाय, श्री हरि की प्रतिमा को गंगा जल स्नान कराएं, श्री हरि को केसर, चंदन, फूल, तुलसी की माला, पीले वस्त्र, कलावा फल चढ़ाएं, भगवान विष्णु को खीर या दूध से बने पकवान का भोग लगाएं, धूप और दीप जलाकर पीले आसन पर बैठे, तुलसी की माला से विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें। पूजा और मंत्र जप के बाद भगवान की धूप, दीप और कपूर से आरती करें, चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करें। वैसे तो विष्णु गायत्री मंत्र भगवान विष्णु की कृपा के लिए अचूक माना जाता है, पर उनकी साधना और उपासना के लिए और भी कई मंत्र बताए गए हैं जो और भी सरल है और कारगर भी है। तो चलिए दिखाते हैं उनमें से एक सरल मंत्र और उसके जप की विधि। भगवान श्री हरि की प्रतिमा को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान को फल, फूल, केसर, चंदन और पीला फूल चढ़ाएं। पूजन के बाद श्री हरि की आरती करें। ओम नमो नारायणा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपे। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहें। माना जाता है कि इस तिथि पर कुछ महा उपाय करने से भी आपकी बाधाओं का अंत हो सकता है। माना जाता है कि अगर आपकी आर्थिक उन्नति रुकी हुई है तो अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ये कार्य दक्षिणाव्रती शंख में केसर दूध भरकर करें। श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का भी अभिषेक करें। इससे दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही श्री हरि श्रोत का पाठ करना न भूलें। इसके अलावा भी आप एकादशी के शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। तो आप भी अपरा एकादशी का व्रत और पूजन कीजिए। नारायण निश्चित ही आपके दुखों को दूर करेंगे।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
8: देखिए, सरकार अपनी नई नई पहल से देश के विकास को नई रफ्तार दे रही है। ठीक उसी तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ट्रैफिक की रफ्तार को एक नई गति प्रदान की है। ये गति है बैरियर लेस प्लाजा की, जिससे मल्टीलेन हाईवे होने के बावजूद टोल पर लगने वाले जाम से अब छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि ईंधन बचाने में भी ये टोल मददगार साबित होगा।

0: आसपास सफर करने वाले लोगों के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की परेशानी और घंटों लाइन में लगने का झंझट अब जल्द ही गुजरे जमाने की बात होने वाली है। केंद्र सरकार ने अब देश में एक नया और हाईटेक टोल सिस्टम शुरू करके दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर लगने वाले ब्रेक को खत्म कर दिया है, जिसमें गाड़ियों को टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इस नई तकनीक का नाम है मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम, जिसकी शुरुआत हुई है मुनका बकरवाला टोल प्लाजा से, जिसका उद्घाटन केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है।
1: हम लगातार टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करेंगे, हम अच्छे से अच्छे हाईवे जनता को देंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, यह हमारा लगातार प्रयास रहेगा। आपको पता है कि बहुत बार लोग ये तकरार करते थे कि टोल नाके पर एक एक घंटे तक हमको रुकना पड़ता है। ये केवल रुकना में समस्या नहीं थी, पर गियर बदल कर वहाँ जो डीजल पेट्रोल का खर्चा होता था उसके कारण फ्यूल के लिए भी बहुत अड़चन आती थी, खर्चा होता था, पोल्यूशन होता था। इन सब से मुक्ति मिली है और एक प्रकार से जनता को भी राहत मिली है।
0: इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब टोल प्लाजा पर बैरियर नहीं होंगे, यानी गाड़ियों को रुकने या स्पीड कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हाईवे पर खास कैमरे, सेंसर और फास्टैग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही कोई गाड़ी टोल पॉइंट से गुजरेगी, कैमरा उसकी नंबर प्लेट और फास्टैग को स्कैन करेगा और तुरंत टोल की रकम खाते से कट जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इससे पहले गुजरात के सूरत में इस तकनीक को लागू कर चुकी है। वहां सफलता मिलने के बाद अब दिल्ली के मुनका बकरवाला टोल प्लाजा पर भी ये सिस्टम शुरू किया गया है। ये सिस्टम पूरी तरह मॉडर्न तकनीक पर बेस्ड है। इसमें ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरा लगे हैं। ये कैमरे चलती गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं। दावा किया गया है कि ये तकनीक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ियों को भी आसानी से पहचान सकती है। इसके साथ फास्टैग और AI आधारित सिस्टम मिलकर काम करेंगे ताकि टोल वसूली पूरी तरह ऑटोमेटिक हो सके।
2: इस टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं सभी गाड़ियां जो है सरपट दौड़ रही हैं और लाइन फ्री है। यहां पर किसी गाड़ी को ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो बैरिकेड लगता था, टोल कटता था, उसके बाद गाड़ियां निकलती थी, लेकिन अब पूरी तरह से लाइन फ्री है और सारी गाड़ियां यहां से सरपट

0: निकल रही हैं और लोग इस जो मल्टी लाइन फ्री फ्लो की सुविधा से सभी खुश हैं। ओपी शुक्ला, दिल्ली।
1: तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं सोशल मीडिया के कुछ वायरल वीडियोस जो कभी आपको हंसाएंगे, कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
2: जीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल यहाँ एक महिला पुलिसकर्मियों के भरोसे अपना बच्चा छोड़कर टॉयलेट चली जाती है, जो ये दिखाता है कि यहाँ के लोग पुलिस वालों पर कितना भरोसा करते हैं। वीडियो में महिला गोद में बच्चा लिए आती है और दो पुलिसकर्मियों को आता देख रुक जाती है। फिर वो महिला पुलिसकर्मी को अपना बच्चा थाम लेती है और खुद टॉयलेट चली जाती है। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी बच्चे को प्यार से पुचकारती रहती है, जब तक कि वो महिला आ नहीं जाती। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर डांस का ये वीडियो लाखों लोगों का दिल जीत रहा है। एक पिता और उसकी बेटी की ये जुगलबंदी लोगों को पसंद आ रही है। वीडियो की सबसे खास बात ये कि जिस अंदाज में ये मासूम हर बीट को समझकर परफॉर्म कर रही है, उसे देख लोग हैरान हैं।
3: Why did you come to the police station?
4: Will you marry me?
2: सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा सीधे एक पुलिसकर्मी के पास पहुंचकर उसे रिंग के साथ प्रपोज कर देता है। वीडियो में बच्चा बेहद कॉन्फिडेंस के साथ पुलिसकर्मी के सामने खड़ा होकर रिंग आगे बढ़ाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग बच्चे की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों में होता है। वहीं कई यूजर्स ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई, ये बच्चा आखिर किसका है जिसने सीधे पुलिस वाले को ही प्रपोज कर दिया।
5: घर में ना शादी है, एक्चुअली ब्लिंकिट का आया 2000 रुपए बिल, तो अब ब्लिंकिट वाले भैया कह रहे टूटे पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्लिंकिट वाले भैया को पैसे दे दो।
2: शादी के माहौल में एक साधारण डिलीवरी उस समय खास बन गई जब परिवार ने ब्लिंकिट एजेंट को कैश की जगह दूल्हे के नोटों वाली माला दे दी। 2100 रुपए की इस माला को देख एजेंट की खुशी देखने लायक थी। उसने मुस्कुराते हुए माला पहन ली और पल को खुलकर एंजॉय किया। ये छोटा सा वाकया सोशल मीडिया पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आया। हाथी इंसानों के सबसे बड़े साथी होते हैं और जब बात दो बच्चों की हो तो फिर कहना ही क्या। यहाँ देखिए बेबी एलिफेंट और इस बच्ची की दोस्ती कितनी गहरी है। ये उसके लिए आइसक्रीम लाई है और बदले में हाथी उस पर खूब सारा प्यार बरसा रहा है। हाथी की बच्ची के साथ ही बॉन्डिंग देख लोग मुस्कुरा रहे हैं।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: क्या है अपरा एकादशी की महिमा? अपरा एकादशी पर क्या होगा पूजा विधान? अपरा एकादशी पर किन पापों का होगा प्रायश्चित और मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
9: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
8: Smartless.
10: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
8: Marketplace.
11: Big three on the program today, or you know, the big three of them.
8: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
12: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: आराम से सुनने को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: भीषण गर्मी के बीच बड़ी खुशखबरी, देश में मॉनसून तय समय से 4 दिन पहले दे सकता है दस्तक। 25 से 27 मई के बीच केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन का ले रहे रोमांच। पेपर लीक के बाद एनटीए ने नीट 2026 की परीक्षा रद्द की, पेपर लीक की होगी सीबीआई जांच। 3 मई को हुई थी नीट परीक्षा, परीक्षा में बैठे थे 22 लाख छात्र। जेठमलानी ने कहा आज दूसरा बड़ा मंगल, अयोध्या प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक मंदिरों में आस्था का सैलाब, भक्तों ने की सुख समृद्धि की कामना। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर अब पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी की भी तैनाती, ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में पुलिस की करेंगे मदद। अब तक 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन।

0: संतोष रंधावा, गोल्ड बाय नहीं बाय बाय, आज इसको लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक साल तक तो ऐसा ही करना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की है और अपील फिर से दोहराई भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश हित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो तो हम सोने के गहने नहीं खरीदें, क्योंकि सोने का काफी हिस्सा विदेश से आता है और उसके लिए विदेशी करेंसी खर्च करनी पड़ती है, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आती है। ईरान अमेरिकी जंग से तेल, सोना खरीदना महंगा हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सोना खरीदने के बजाय संयम चुनने की सलाह दी है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने और भी बहुत सी सलाह इसको लेकर दी है। तो प्रधानमंत्री की अपील पर क्या है सराफा बाजार का रुख, गोल्ड के बजाय ग्राहक अब क्या खरीद सकते हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो चलिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि सोना नहीं संयम चुनिए। प्रधानमंत्री की इस अपील के पीछे मकसद क्या है, क्या संदेश है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कहना क्या चाह रहे हैं। दरअसल भारत दुनिया में चीन के बाद गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। हमारे देश में सालाना 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। भारत में गोल्ड का क्रेज ऐसा है कि जरूरत का करीब 90% हमें आयात करना पड़ता है। मतलब यह है कि हमें दूसरे देशों से सोना खरीदना पड़ता है और बीते एक साल में भारत में गोल्ड का इंपोर्ट 24% बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वैश्विक उथल पुथल की वजह से घटकर 691 अरब डॉलर रह गया है, जबकि 3 महीने पहले ये 728 अरब डॉलर था। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि चालू खाता घाटा बढ़कर 84.5 अरब डॉलर हो सकता है, जबकि GDP का करीब 2% है ये। CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट की स्थिति तब बनती है जब कोई भी देश वस्तुओं, सेवाओं और निवेश निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा करता है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो ये हालात तब पैदा होते हैं जब कोई देश जितना कमा रहा है उससे ज्यादा खर्च करता है। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और इसी स्थिति से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से फिलहाल एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। और जानकारों के मुताबिक मौजूदा हालात में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर बनाने की दिशा में अहम कदम ये साबित हो सकता है।
1: मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें।
0: चलिए, अब सवाल यह है कि इस अपील का सराफा बाजार पर असर क्या होगा। ज्वेलरी इंडस्ट्री पर इसका सीधा असर दिख सकता है। दरअसल शादियों और त्योहारी सीजन की अगर बात की जाए तो गहनों की डिमांड काफी ज्यादा होती है, लेकिन इस अपील के बाद खबर यह है कि इसमें कमी आ सकती है। कहीं छोटे कारोबारियों के रोजमर्रा पर भी इसका असर हो सकता है। ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता भी अपनाया जा सकता है, इस संभावना पर भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। अब आप ये भी जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का सराफा बाजार की प्रतिक्रिया किस तरह की आ रही है इस अपील को लेकर, और ग्राहकों का इसके बारे में क्या कहना है।
2: यहाँ तक मोदी जी का कहने का है, ये इकोनॉमिक कंडीशन जो पूरे संसार में चल रही है, भारत में चल रही है, इस रिफॉर्म होना डिजर्व करता है, इस तरह के बात आना डिजर्व करता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सारी बेस्ड है गोल्ड पर। हालांकि ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है वो केवल 6% ही ज्वेलरी बनती है, टोटल जितना गोल्ड माइन होता है, जितना गोल्ड प्रोड्यूस होता है, उसका 6% ही ज्वेलरी इंडस्ट्री में आता है। आधी आबादी, यदि भारत की आबादी 140 करोड़ है तो महिलाएं 65 करोड़ हैं, 65 करोड़ महिलाओं के पास, सभी के पास यदि एक तोला सोना होता है ना, तो 6.5 लाख करोड़ टन सोना तो हमारा इन हाउस ही पड़ा है जो रिसाइकल होना बाकी है। यदि हम 10 रुपए का भी इम्पोर्ट नहीं करते हैं, 1 ग्राम का भी इम्पोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाली 10 पीढ़ियाँ भी व्यापार के लिए मोहताज नहीं रहेगी किसी भी तरह की ज्वेलरी से, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में।
3: अच्छा, एज अ व्यापारी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे ही आपने ये चीज सुनी कि ऐसा कुछ बोला गया है, ऐसा कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, तो एज अ व्यापारी आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था?
2: देखिए, एक बार कुछ भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या कुछ नई चीज आई है। हम ज्वेलर को और ज्वेलरी इंडस्ट्री को इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कब कोई नया नियम आ जाए, हो सकता है GST को लेके आ जाए, हो सकता है इम्पोर्ट ड्यूटी को लेके आ जाए, लेकिन जहाँ नारी है वहीं आभूषण है, और जब तक नारी है तब तक आभूषण जरूर है, और हम आभूषण में ही व्यापार करते हैं, ज्वेलरी में व्यापार करते हैं, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव साइन है। हाँ, हमें इम्पोर्ट कम करना चाहिए, और केवल इस अपील से कम भी 20% इम्पोर्ट कम होना चाहिए, हमारा घरेलू सोना रिसाइकल होगा।
3: अच्छा, हम भारतीय सोसाइटी में रह रहे हैं और यहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो ऐसे में सोने की आम खरीदार तो खरीदारी अचानक से नहीं रोक सकते हैं, तो ऐसे में चाहे वो खरीदार हों चाहे वो निवेशक हों, उनके लिए आप क्या कुछ सुझाव अभी दे सकते हैं?
2: ये उनका मोदी जी का डायरेक्ट इंडिकेशन निवेशकों के लिए ही है, एंड यूज़र के लिए नहीं है। एंड यूज़र जैसे आप मान लीजिए मेरी बेटी की शादी है, उसको ज्वेलरी देनी है, तो वो तो ज्वेलरी पहनेगी। ज्वेलरी हमारे अंग मतलब कल्चर का एक हिस्सा है, हमारे रिवाज का एक हिस्सा है। हम अननेसेसरी जो फंड जो पार्किंग कर रहे हैं वो हमारी विदेशी मुद्रा को खर्च करके यदि पार्किंग कर रहे हैं वो गलत है।
3: आपने जैसे बोला अलग अलग व्यूज हों, तो अलग अलग व्यूज देने के लिए मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुंबई के काफी बड़े ज्वेलर हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि मनीष जी आपका क्या कहना है इस चीज में, क्या हलचल जयपुर के भी आप देख रहे हैं और मुंबई के भी, महाराष्ट्र के भी बाजारों में क्या हलचल है?
4: नहीं देखिए, ऐसा एक्चुअली क्या है कि कभी भी कोई न्यूज आती है इस तरह की तो इमीडिएटली तो हर कोई आदमी रिएक्शन देता है, लेकिन उसके लिए हमें ये जरूर सोचना है कि ये न्यूज आई है तो इसकी कुछ ना कुछ पॉलिसी होगी, कुछ वजह होगी जो हमें आज की आज पता ना चले, लेकिन 2-4 दिन बाद जब गवर्नमेंट उसे डिक्लेयर करेगी तो हमें पता चलेगा। हम खाली व्यापार से लेके सोचते हैं, लेकिन मोदी जी जैसे जिन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया उनका तो बहुत विजन बड़ा रहता है, और विजन इसलिए बड़ा है क्योंकि उन्हें देश चलाना है और उनको पता है कि भैया 95 रुपीज बैंक रेट डॉलर चला गया है, तो ये कहीं बढ़ते बढ़ते इसकी वजह से कहीं 100 ना आ जाए, क्योंकि ये अगर 100 आ गया तो हमारी आर्थिक नुकसान बहुत हो जाएगा और जनता को इसका भार सहन करना पड़ेगा। तो ये इनका एक लंबा विजन है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं पर आने वाले सप्ताह के अंदर इनकी कोई नई पॉलिसी आएगी, क्योंकि देखिए एक बात है ना कि हर एक जन जानता है कि सोना जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी आदमी इन्वेस्ट करता है जो भविष्य में कभी भी इमरजेंसी खुद को पड़े तो उसके काम में आता है, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये नई पॉलिसी आने के बाद ही हम तय कर सकते हैं क्या करें। आज का आज रिएक्ट करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आज तो बहुत सारे हमको सवाल जवाब करने वाले सलाह देने वाले मिलेंगे, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच।
5: हम भारत में रहते हैं और भारत में गोल्ड को बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है, लोग छोटे छोटे ओकेजन होते हैं उसमें खरीदते ही हैं, ज़्यादा ना खरीद के थोड़ी कम मात्रा में खरीद लेंगे, बट वो पूरी तरह से तो रुकना भारत में हो नहीं पाएगा, वो होता भी नहीं है, छोटे छोटे अवसर होते हैं उसमें बहाने से हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। हालांकि मोदी जी की जो भी है उस चीज़ को हम मानेंगे, प्राथमिकता देंगे उस चीज़ को, और हम ज़्यादा ना खरीद के कम खरीदेंगे।
6: जितनी आवश्यकता उतने खरीदो, ज़्यादा खरीदने से भी नुकसान होता है इसमें सोने का जब मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही दिन दिन, इसलिए आवश्यकता हो उतना ही खरीदें, अनावश्यक न खरीदें अपन।
0: अब यहाँ सवाल ये भी है कि अगर भारत के लोग एक साल तक, जो कि प्रधानमंत्री ने अपील की है कि एक साल तक सोना ना खरीदे, अगर नहीं खरीदते हैं या फिर हम कहें कि कम खरीदारी होती है, तो इससे होगा क्या, इसका देश की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर एक साल तक सोना नहीं खरीदा जाता है तो विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, चालू खाता घाटा यानी CAD कम होगा, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा और अनुमान है कि इस एक कदम से 30 से 35 अरब डॉलर की बचत हो सकती है, जो कि चालू खाता घाटे का तकरीबन आधा है, यानी कि आज के समय में ये बचत बेहद जरूरी है। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ योगेश सिंगल जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बुलिन ज्वेलर एसोसिएशन मौजूद हैं, प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, शशांक गुप्ता मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ योगेंद्र कपूर जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको ये भी बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी साक्षी भी जुड़ चुकी हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की इस अपील के मायने क्या हैं। तो सबसे पहले कैसे इस अपील को देखा जाए, साक्षी क्या मायने हैं, क्या समझाएंगी? साक्षी मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, सवाल मेरा सबसे पहला यही कि सोना ना खरीदने की जो प्रधानमंत्री की अपील है या फिर कहा है कि एक साल तक थोड़ा वेट कर ले, रुक जाए, ना खरीदे, समझ इसको किस तरीके से समझें?
7: जी नवजोत, आपने सही कहा, प्रधानमंत्री ने जो सोना खरीदने की बात कही है कि एक साल के लिए सभी देशवासियों को सोना खरीदना पोस्टपोन करना चाहिए, उसका कारण केवल यही है कि हर साल इंडिया 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है, जिसमें इंडिया के लगभग 7 लाख करोड़ रुपए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इंडिया को ये सारा सोना अपनी डिमांड पूरी करने के लिए इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। बाहर के देशों से हम भारत में सोना लाते हैं केवल अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए, और क्योंकि ये केवल डिमांड कंजम्पशन की होती है, एक तरीके से इसे इंडिया का ऑब्सेशन माना गया है। पूरे दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा देश है इंडिया, जहां पर इतना ज्यादा सोना कंज्यूम होता है, और इसलिए यहां पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि वेस्ट एशिया के क्राइसिस को देखते हुए इस समय जिस तरीके से क्राइसिस सिचुएशन हर इकोनॉमी के लिए बढ़ती चली जा रही है, जहां पर फॉरेक्स रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इंडिया के इंपोर्ट बिल को कम करना जरूरी है, इसलिए सरकार ने और प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इस समय अगर हम सोना एक साल तक के लिए ना ले, जिसकी वजह से इम्पोर्ट कम हो सकेगा और इम्पोर्ट बिल कम हो पाएगा, उससे इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो गैप है वो कम हो जाएगा और इंडिया की इकोनॉमी को काफी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हर साल हम लगभग 7 लाख करोड़ रुपए केवल बाहर भेजते हैं सोने को खरीदने के लिए।
0: जी, जी। बने रहिए। प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ आपके पास अब सबसे पहले आऊंगी। प्रधानमंत्री ने जब से ये अपील की है तब से बहुत ज्यादा हलचल है कि खरीदे नहीं खरीदे, सोना नहीं खरीदे, कहीं सरकार आने वाले समय में कोई और पॉलिसी तो नहीं ला रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा गोल्ड खतरे में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोना बिल्कुल ही सस्ता हो जाएगा, हमने जो अभी तक निवेश किया है वो बिल्कुल पैसा डूब जाएगा। सर थोड़ी सी पिक्चर क्लियर कीजिए प्रधानमंत्री के ये कहने के कि एक साल तक ना खरीदिए, इसको आम जनता को किस तरीके से, किस नजरिए से लेना चाहिए?
8: जी नवजोत जी, बहुत बहुत सादर प्रणाम। विषय व्यापक है और ये चिंता का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को केवल राजनीतिक चश्मे से देखना, जो कि देख रहे हैं और उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उनका धर्म है, लेकिन अर्थशास्त्र के नज़रिए से देखें और उसको समझने की कोशिश करें तो वर्तमान स्थिति में इस वक्त पूरा विश्व एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, और हो क्या रहा है स्पेशली भारत देश के एक संदर्भ में, कि भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसको हम लोग कहेंगे कि 691 अरब डॉलर, जैसा कि आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, वो हो गया है। अब मैं इसको आपके दर्शकों को इसको सरलीकरण करके बताता हूँ कि उसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली है क्या कि जब हम, जैसा कि साक्षी जी ने भी कहा कि 7 लाख करोड़ हम केवल इसी बात के लिए खर्च कर देते हैं गोल्ड को आयात करने में। तो वर्तमान स्थिति में रुपया बहुत डेप्रिशिएट हो चुका है, कमजोर हो चुका है, लगभग 95 से आसपास हम लोग जो है ना जा चुके हैं डॉलर के मुकाबले। तो जब हम कोई चीज आयात करते हैं, किसी भी देश में कोई भी चीज आयात की जाती है, तो निश्चित रूप से जब डॉलर मजबूत स्थिति में और उसका करेंसी खासतौर पर भारत की करेंसी 95 तक पहुंच गई है, तो ऐसी स्थिति में भारत की इकोनॉमी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रधानमंत्री चूंकि भारत देश के केवल प्रधानमंत्री नहीं, उन्हें पॉलिसी मेकर्स के नजरिए से देखना चाहिए। हमें एक अर्थशास्त्री होने के नाते और एक समझदार नागरिक होने के नाते ये यहाँ समझने की जरूरत है कि गोल्ड को खरीदना, प्लस वो कह रहे हैं केवल गोल्ड की ही बात नहीं कर रहे नवजोत जी, वो ये भी कह रहे हैं साथ के साथ कि जो पेट्रोलियम आयात की जो निर्भरता है, लगभग 89% से अधिक कच्चे तेल का आयात भारत करता है, और ऐसी स्थिति में अगर मान लो वो कह रहे हैं कि ईवीज पे शिफ्ट हो जाएं, या वो कह रहे हैं कि कार के अंदर पूल कर लें, या वो यहां तक कह रहे हैं कि आप जो है ना निजी वाहनों को छोड़ करके
0: वर्क फ्रॉम होम भी एक ऑप्शन उन्होंने दिया है,
8: वर्क फ्रॉम होम, तो उनको हमें क्रिटिसाइज करना, मैंने कहा जैसा कि अपनी बात की शुरुआत में कहा नवजोत जी, एक राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनका एक अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विचित्र, केवल भारत की नहीं विश्व की अर्थव्यवस्था एक अनिश्चितता के दौर से चल रही है।
0: प्रोफेसर धीरेश, देखिए ये कार्यक्रम करने का मकसद, हम यहाँ पर इसको पॉलिटिकली बिल्कुल नहीं देखेंगे, आप सब लोग को बुलाने का मकसद यही है कि एक आम भाषा के लिए, आम नागरिक के लिए बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझा दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बात कही, इसके बाद तरह तरह की बयानबाजियां हो रही है, पैनिक भी कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है, हम इसको समझाते चले कि इसका असर कितना पॉजिटिव होगा हमारे देश के लिए और इसके पीछे के मायने क्या है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर योगेश सिंघल जी आपके पास आती हूँ, देखिये सोना खरीदने की बात, हालांकि सुझाव और बहुत सारे भी दिए हैं तेल को लेकर, तेल कैसे बचाया जाए उसको लेकर भी बातचीत की गई है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस वक्त सराफा व्यापारी, सराफा बाजार में इसको किस तरीके से लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री की इस राय को? योगेश सिंघल जी आपका ऑडियो म्यूट है शायद।
9: प्रधानमंत्री जी की जो अपील है ये बहुत ही गंभीर समस्या है देश के लिए, और ये पहली बार नहीं हो रही है युद्ध के कारण से, ये पहली सरकारों में भी अपील आई है, 2013 में भी अपील हुई है, और इससे पहले भी मोरारजी देसाई के समय में सोना गिरवी रखा गया था आयात बिल को भुगतान करने के लिए, तो ये समस्या गंभीर है। लेकिन इसके उलट अगर हम देखें कि ज्वेलरी इंडस्ट्री एक साल तक कैसे सर्वाइव करेगी, करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके रोजगार का क्या होगा, कैसे उस संकट से बाहर आएंगे, एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जहां देश में अगर सभी लोग सोना नहीं खरीदते हैं तो ज्वेलरी इंडस्ट्री कहां पहुंचेगी, एक ये भी एक चिंता का विषय है।
0: तो इसका कोई ऑप्शन, क्योंकि देखिए आपने यही सवाल मैं यही जानना चाह रही थी, स्पेशली अगर हम छोटे कारोबारी की बात करें तो उसके लिए तो यकीनन ये चिंता की बात होगी, तो क्या ऑप्शन इसका हो सकता है?
9: देखिए इसके लिए हमारी ज्वेलरी

0: भागीदारी देके और इस स्कीम को दोबारा से लॉन्च करे और प्रभावी रूप से करे, तो जो हमारा घरेलू सोना पड़ा है महिलाओं के पास में जिसको वो पहनती नहीं है, सिर्फ लोकर में रहता है, तो रिसाइकल के रूप में उसको हम ला सकते हैं। और जो ये समस्या है इम्पोर्ट की एक साल की, मैं समझता हूँ 2-3 साल तक हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सरकार ज्वेलरों के साथ में मिलके इस स्कीम को लॉन्च करेगी, तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी निकलेगी।
1: ठीक है, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जल्दी से प्रोफेसर धीरेश, देखिए ये बहुत ही जेन्युइन एक तरीके से कंसर्न है ज्वेलर्स का भी, स्पेशली जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की अपील का असर होता है, लोग गोल्ड नहीं खरीदते हैं, लेकिन फिर वो व्यापारी कहां जाएगा, उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? छोटा सा जवाब सर।
2: मुझे लगता है कि उनके लिए जैसा कि सिंगल साहब ने कहा, उस 2015 की स्कीम पर वापस आना होगा और सरकार को कुछ पॉलिसीज, अभी चूंकि ये प्रधानमंत्री का एक दिया हुआ वक्तव्य है और उन्होंने 7 डिफरेंट आर्थिक संकल्प की बात की है मैडम, तो मुझे लगता है कि वो पॉलिसीज को और रिवील होने की जरूरत है। कुछ ना कुछ सरकार जरूर सोच रही होगी, क्योंकि वो एक छोटा वर्ग जो छोटे व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी हैं, निश्चित रूप से वो सफर करेंगे, इसको मैं सहमत करता हूँ, तो उसके लिए जरूर पॉलिसीज की आवश्यकता है मैम।
1: बिल्कुल। अब शशांक जी आपके पास आती हूँ। देखिए सोना जो है वो केवल हमारे देश में, बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं सोने के साथ जुड़े हुए, त्योहार है सोना खरीद लो, शादी है सोना खरीद लो, निवेश करना है सोना खरीद लो, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है, स्पेशली अगर हम महिलाओं की बात करें तो। वैसे इसके पीछे आप बताइएगा, क्या ये भी सोच हो सकती है कि जो लोगों के पास सोना रखा हुआ है लॉकर्स में या दूसरी जगह, उसको बाहर निकाला जाए? तो अगर इसको साथ ही साथ शशांक जी हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के तौर पर देखते, तो क्या फिर हम ये माने कि एक साल तक हम जो सोने में इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें भी हम फिलहाल ब्रेक लगा दें?
3: देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसको हम दो भाग में समझ सकते हैं। पहला तो ये है कि हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हम हमारा देश और हमारे लोग, ये एक बहुत पुरानी प्रथा है, परंपरा है और रीति रिवाज का भी हिस्सा है कि अगर किसी घर में शादी है, ब्याह है, या हमारे यहाँ पर कोई स्पेशल फंक्शंस हैं या स्पेशल ओकेजन्स हैं, जैसे अक्षय तृतीया है, तो हर परिवार को एक कुछ ना कुछ उसको गोल्ड खरीदना है, कुछ ना कुछ गोल्ड का आभूषण लाना है, घर के अंदर ये प्रथा रही है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील है वो इस समय राष्ट्र हित के लिए और वैश्विक जो अनिश्चितताएं हैं, जो युद्ध हो रहे हैं, उनको देखकर ये प्ली है। तो आई थिंक इसको एक, जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि आपदा में अवसर, हम लोग यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ही बहुत सारे सोने के भंडार पाए गए हैं कुछ पर्टिकुलर जगह पर, तो हमें जरूरी है कि हम इस समय को यूटिलाइज करें और उनमें से माइनिंग शुरू करें जल्दी से जल्दी के, जो वहां पर गोल्ड और रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा ये सही समय है कि देखिए, एक ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि आज तक ये बाजार भरोसे पे चलता था, पर आज ग्राहक जागरूक हो चुका है, ग्राहक समझता है कि मैं क्या ले रहा हूं। आज हमारे पास हॉलमार्क है, ब्रांडिंग है, आज हमारे पास BIS के मानक हैं, तो बहुत जरूरी है। देखिए गोल्ड मोनेटाइजेशन में सिर्फ इसलिए भी जरूरी है कि जो भंडारण करके एक परिवार में रहता है कि साहब हम भंडारण कर लें और हमारे पास इतना सोना है उसका, उसको जो हम लाएंगे मार्केट में इंटरनली जब हम यूज करेंगे तो हमारे सामने भी आएगा कि कितनी प्योरिटी का है, मार्केट में मोशन भी होगा हमारे को सामने, उसका रियलाइजेशन भी होगा और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा। तो इसको दो तरह से लिया जाए कि हमें बाहर से आयात ना करना पड़े, जो उसके पीछे का मोटिव है, उसके लिए जो हमारे भंडार हैं उनको जल्दी से जल्दी मोबिलाइज किया जाए, उनकी टेंडरिंग की जाए, और जो भंडारण सामान्य परिवारों ने कर रखा है उसको कैसे सुनारों के साथ मिलकर कैसे हम उस गोल्ड को मोबिलाइज कर सकते हैं। कुछ परिवार आगे आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ किसी हद तक आएंगे, बट आई थिंक एक उससे जो मूवमेंट क्रिएट होगा उससे कहीं ना कहीं हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को और इंडिजिनियसली हमारे देश को बहुत फायदा इस पर्टिकुलर कठिन समय में जरूर हो।
1: ठीक है, योगेंद्र कपूर जी आप इसको किस नजरिए से देखते हैं?
4: देखिए मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसमें एक कॉशन भी है और पॉजिटिव्स भी हैं। कॉशन जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो हम ये देख रहे हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर जो स्ट्रेन पड़ रहा है, और देखिए स्ट्रेन पड़ने के इस टाइम दो कारण इंपोर्ट्स में नजर आ रहे हैं कि क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो हमें देखी जा रही हैं उसकी वजह से देखिए आपकी लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी बढ़ी है, और उसके साथ साथ जो है जहां आपका डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स

0: की वजह से जो रुपी का डेप्रिसिएशन है, तो हमारे को दो तरीके की मार जो है वो झेलनी पड़ी है। फिर चाहे वो आप किसी प्रोडक्ट या गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं या ऑयल को कर रहे हैं, हम सब समझते हैं और जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ टोटल इंपोर्ट्स जो है इंडिया की, उसमें ऑयल का जो प्रोपोर्शन है वो मेजर है। एट द सेम टाइम जब मैं ये देखता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कहना चाह रहे हैं अपने मैसेज के थ्रू कि देखिए आप इन्वेस्टमेंट्स जो करते हैं लोग जो है, अल्टीमेटली वो जरूरी है कि वो उसका चैनलाइजेशन बहुत जरूरी है इकोनॉमी के अंदर। देखिए जब हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो भले उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से आप जो है ऑयल का कंजम्पशन जो है कम कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से समझते हैं और जानते हैं ये चीज को कि ऑयल जो है अगर हम उसे इंपोर्ट करते हैं तो कई जगह जो है वो आपका एक इंग्रेडिएंट है टुवर्ड्स चैनलाइजेशन ऑफ आउटपुट जो है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज है वो ये है कि फॉर द टाइम बीइंग जो है वो ये देखते हैं कि ये जो डिसरप्शंस वर्ल्ड के अंदर जो हम देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो नजर आ रही है और जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है,
1: ठीक
0: और
1: है।
0: उसकी वजह से और जब गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है कि किस तरीके से आज अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड जो है मेजरली जो है नेशंस ने अपनी ऑयल की कॉस्ट को जो है इंक्रीज कर रहा है,
1: ठीक है।
0: इंडिया आज भी जो है अगर अपनी तरफ से जो है जितना बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं उन्होंने करें कि इंक्रीज ना करी जाए कॉस्ट जो है, ऐसे में बहुत जरूरी ये हो जाता है कि जो उनका अंडरलाइंग मैसेज है वो ये है कि जहां पे सिर्फ जहां जरूरी और या इम्पोर्टेंट अनअवॉइडेबल परचेज है आप सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कीजिए,
1: बिल्कुल
0: लेकिन जहां पे अवॉइडेबल परचेज है उसमें आप गोल्ड को जो है फॉर द टाइम बीइंग अपने डिसीजंस को जो है पोस्टपोन कीजिए।
1: पोस्टपोन कर दें 1 साल के लिए उन्होंने कहा है। एक बार साक्षी के पास चलते हैं। साक्षी, अगर मान लीजिए कि 1 साल तक प्रधानमंत्री की इस अपील को मान लिया जाता है, नहीं खरीदा जाता है सोना, तो ये बताइए कि इसका असर कितना होगा, कितना फायदा भारत को होगा इससे?
2: जी, तो अगर 1 साल तक इंडियन सोना परचेज नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पहला कच्चे तेल की जो बढ़त हो रही है, जिस प्राइसेस में हमें तेजी देखने को मिल रही है, पिछले 3 से 4 महीनों में ही कच्चा तेल जो था $60 प्रति बैरल था, आज ये $110 प्रति बैरल के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इंपोर्ट बिल ऑलरेडी इसकी वजह से डबल होता हुआ नजर आ रहा है। रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी चीजें महंगी होती चली जा रही है। बाहर से कोई भी आप चीज खरीदेंगे तो कमजोर रुपए की वजह से आपको ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं कोई भी चीज बाहर से खरीदने के लिए। तो इंडिया की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ रहा है उसको कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है अगर हम अपनी गोल्ड की डिमांड को कम कर सकते हैं, जो कि पूरी ग्लोबल कंजम्पशन का 20 से 25% है। पूरी दुनिया में भी से जितना भी सोना कंज्यूम होता है, इंडिया केवल उसका 25% कंजम्पशन का हिस्सा ले लेता है। खासतौर पर जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो अराउंड $700 बिलियन के आसपास के हैं, अब उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, वहां पर कहीं कमी ना हो जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार ने ये कदम उठाने के लिए कहा है और वहां पर डेफिनेटली फायदा मिल सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कमजोर हो सकता है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हमें फेस हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है कच्चे तेल के दाम की वजह से और लगातार रुपए के वीकनेस की वजह से और जो हम इम्पोर्ट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं उनकी वजह से भी, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों पर असर पड़ सकता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का समय है और ये फायदा मिल सकता है अगर हम अपना गोल्ड को कंज्यूम करना कम कर दें, क्योंकि ये कोई एसेंशियल नहीं है। मान लीजिए अगर कोई खाने के पदार्थ होते या कोई रोजमर्रा के जीवन के लिए इस्तेमाल वाली चीजें होती हैं जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सरकार कभी भी उसके ऊपर असर कभी भी आपको रोक करने के लिए नहीं करती। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया में काफी चीजें सिर्फ शौक के लिए पूरी की जाती हैं, ओकेजन्स में यूज की जाती हैं, वेडिंग्स और फेस्टिवल्स में एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए की जाती हैं, तो वहां पर कंट्रोल करने के लिए सरकार आपको कह रही है। और इस समय अगर इंडियंस ने मिलकर ऐसा कर दिया तो इंडिया की इकोनॉमी पर एक बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा।

यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो क्या होगा और यदि युद्ध जल्दी खत्म हो जाता है तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तुरंत लौटते हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रधानमंत्री की अपील, सोना फिलहाल एक साल तक न खरीदें, इससे बचें। इसका असर कहाँ कहाँ किस किस तरीके से होगा, सोने का ऑप्शन क्या हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
3: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president.
2: It was to live sports action.
4: To the near side corner, to wrap around, he scores!
2: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
5: की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में.

0: गुड बाय नहीं बाय बाय इसी को लेकर आज चर्चा कर रहे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, मेरे सहयोगी साक्षी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ आपके पास आते हुए, ब्रेक पर जाने से पहले हमने समझा साक्षी से कि क्या इसका असर होगा अगर लोग एक साल तक सोना नहीं खरीदते और प्रधानमंत्री की अपील पर काम करते हैं, बात करते हैं, उनकी अपील को मानते हैं। सर दो सवाल मेरे, पहला तो ये, जंग के हालात के बीच में स्थिति पैदा हुई, मान लीजिए कि जंग लंबी चलती है तो क्या होगा, जंग जल्दी खत्म होती है तो क्या होगा, और मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं या फिर अगर हम बाहर से सोना खरीदते हैं हम पर भारत देश पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है, तो एक साल के लिए अगर ये डिसीजन लिया जाता है कि सोना खरीदना बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, तीनों परिस्थितियां समझाइए सर
1: जी। बहुत अच्छा प्रश्न है नवजोत जी आपका कि देखिए जंग के बीच में अगर ये स्थिति उत्पन्न हुई है तो भारत के पास ऑप्शन क्या। तो जंग के बीच में जब गोल्ड पे मैं आऊंगा, लेकिन अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने की कोशिश करें मैडम, तो लगभग इस वक्त जो है ना 2% से ज्यादा जीडीपी का घाटा जो है ना हमारे ऊपर आ रहा है, खासतौर से जो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत है। इससे क्या हो रहा है, और क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो रोज का मैडम क्रूड ऑयल का कोई प्राइसेस अभी तक बढ़ा नहीं है, 1,000 करोड़ पर डे का नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये जंग के बीच में हो रहा है तो ये कितने दिन जंग खिंचेगी, आप समझ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि 1,000 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से कितना लगेगा और कितने दिन चलेगी कोई नहीं जानता है। कारण यह है कि दोनों ही अपनी जगह पर एडामेंट हो गए, खासतौर पर यूएस भी मानने को राजी नहीं है और ईरान भी, कोई ना कोई एक व्यक्ति को जो खासतौर से मजबूत जो बीच का जिसको कहेंगे ना मिडिलमैन की आवश्यकता, जिससे कि ये युद्ध जरूरी रूप से आवश्यक है, केवल भारत के लिए नहीं विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए ये रुकना ही चाहिए। अब बात आती है कि अब दूसरी जो आपका प्रश्न है कि आखिर ऑप्शन क्या, आपने ये क्वेश्चन किया कि अगर मान लो इस पे नहीं जाते तो किधर जाए, कहाँ पर कर सकता है। देखिए वर्तमान स्थिति में अगर ऑप्शन की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे, चांदी पर जा सकते थे, चांदी भी टूट रही है। रीजन यही है कि युद्ध, क्योंकि युद्ध से जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई है। रियल इस्टेट मार्केट भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में, सिप में जा सकते थे, म्यूचुअल फंड में जा सकते थे, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जैसे ही ये अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वहाँ पर उसके लिए मार्केट खुला हुआ और वो करेक्शन का टाइम और वो बढ़ेगा, ये निश्चित रूप से दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन गोल्ड का कोई जगह दूसरा ले लेगा ये पॉसिबल नहीं है। अगर प्लैटिनम की तरफ जाएं तो गोल्ड से वो महंगा है, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो सोने का कोई विकल्प इसलिए नहीं क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जिसका हर कोई उपयोग किया जा सकता है, किया करता है, और वो एक सम्मान से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर से जुड़ी हुई चीज है। तो निश्चित रूप से भारत के अंदर अभी इस वक्त जो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था ये निश्चित चिंता में है
0: जी।
1: और अगर हम छोटे कारोबारी और ये जो स्थितियों को देखते हैं कि भाई अगर ये लंबा खिंच गया, हाँ। अगर मान लो युद्ध ये 15 दिन और चल गया, 2 वीक्स 3 वीक्स जैसा कि नजर आ रहा है, जैसा कि हम समझ भी पा रहे हैं, लास्ट वीक ऑफ फरवरी से मैडम और आज तक जो स्थिति आ रही है, 1.5% से अगर जीडीपी से ज्यादा, मतलब जीडीपी से 1.5% से ज्यादा, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको ये कैलकुलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आपके दर्शकों को खास तौर पर, तो 2% हो चुका है, यानी कि अर्थव्यवस्था खतरे की स्थिति में है।
0: सर, और हम प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ देखिए अभी योगेश जी ने एक और अच्छी बात कही थी कि देखिए इससे इसका असर मानिए ना मानिए कि जो सोने का कारोबारी है उस पर तो व्यापारी उस पर तो छोटे व्यापारी पर पड़ेगा, और उन्होंने एक आइडिया भी दिया था कि ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिससे कम से कम जो लोगों के पास बैंक रखा हुआ है सोना, जो जो उनके पास है वो निकलना चाहिए कहीं ना कहीं, मकसद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये भी है। और एक ऑप्शन और एक उन्होंने आइडिया ये भी दिया था कि अगर इतना है तो सरकार नहीं खरीदे एक साल के लिए सोना, उस स्थिति में ये होगा कि कम से कम लोग अपना सोना बाहर निकालेंगे, क्या ये ऑप्शन बन सकती है।
1: देखिए ये ऑप्शन पहले आया था 2015 में, लेकिन उससे क्या हुआ कि सोना जो है ना लगभग 25-26 हजार से बढ़ के 84 हजार के आसपास पहुंच गया था। और जो दूसरा ऑप्शन है कि भाई हम अपने यहाँ पे सोने की नई खदानों माइंस को देख लें, हाँ। तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसीज बनाई जा सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हाल फिलहाल एकदम क्या किया जाए, क्योंकि मई और जून में नवजोत जी आपको पता है कि सीजन है, शादियों का टाइम है, तो एकदम एक महीने में या 15 दिन में या 2 महीने में वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती है, हम विकल्प की ओर सोच रहे हैं। तो अब वर्तमान स्थिति में अगर हमें इसको कंट्रोल करना है और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है, तो केवल और केवल सरकार के सामने यानी कि पॉलिसी मेकर्स के सामने एक ही विकल्प है, वो विकल्प ये है कि हम कैसे मेड इन इंडिया और आयात को, मतलब कुल मिलाकर के अगर पूरे लब्बो लबाब को समझें, प्रधानमंत्री जी के पूरे वक्तव्य को समझने की कोशिश करें, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आयात को किसी भी कारण से कम कर दो,
0: किसी कारण से कम कर दो, बिल्कुल। लेकिन सर ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम तो इतना सोना खरीदते नहीं, इतनी बचत ही नहीं होती। एक बार जल्दी से साक्षी के पास चलते हैं। साक्षी, अब सवाल यहां पर यह है कि ऑप्शन क्या बचता है, गोल्ड नहीं तो क्या? शादियां भी हैं, सीजन भी है, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत बल्क में सोना नहीं खरीदते, कुछ लोग बहुत छोटी छोटी चीजें भी खरीदते हैं, तो क्या वो भी खरीदना बंद करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं?
2: जी आपने सही कहा, अक्सर इंडिया में खास तौर पर जो गोल्ड का निवेश है इसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो जेनरेशन से जेनरेशन पास ऑन होता है सोना, इसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें पूंजी जो हमारी माताओं से, ग्रैंड मदर से मिलती है वो उनका सोना होता है, और यही उनकी भी सबसे बड़ी पूंजी थी, फिर आपकी भी सबसे बड़ी पूंजी होती है जो आप अपने आगे परिवार में भी आगे देते चले जाते हैं, और उसको एक मेमोरी की तरह भी देखा जाता है, हमेशा एक रहने वाली चीज, जो सदैव रहने वाली चीज है उसे माना जाता है। इसलिए सोने में निवेश, इंडिया का भरोसा हमेशा से सोने के निवेश पर था, लेकिन इस समय अगर आप गोल्ड के अलावा कहीं और निवेश के लिए सोच रहे हैं तो बहुत सारे विकल्प आपके लिए हैं। गोल्ड ना खरीद के आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स और सरकार की जितनी स्कीमें हैं वहां पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल आपको गोल्ड में ही निवेश करना है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। गोल्ड के ETFs आते हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, आप वहां निवेश कर सकते हैं। हाल ही में जो लॉन्च हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। और बाकी जो ऑप्शंस हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, वो तो आपके लिए है ही, जैसे कि आपने FDRD में निवेश किया, PPF में निवेश किया, NPS में किया, सरकारी स्कीमों में निवेश किया, म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में किया, रीट्स या रियल एस्टेट में, इन सभी तरीके के ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए।
0: बिल्कुल, शशांक गुप्ता जी, इसी से सवाल को आगे आप बढ़ाती हूं और आपसे पूछना चाहूंगी, क्या पोर्टफोलियो में फिर कुछ चेंज करना चाहिए? हम क्या अपने पोर्टफोलियो में इस तरह का बदलाव ला सकते हैं जिससे कम से कम जो इस वक्त प्रधानमंत्री का कंसर्न है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अपना योगदान दे पाए?
3: देखिए, बिल्कुल ला सकते हैं, और आई थिंक ये बहुत सही उपयुक्त समय है अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करने का। मार्केट्स बहुत डीपली करेक्ट हो रहे हैं और ये बिल्कुल सही समय है कि जहां पर हम अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स अवेलेबल हैं तो हम डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट्स को और बढ़ाएं, अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, एनालिसिस करें, और अगर हम ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीअलाइन करें। मैं समझता हूं कि आज ये वो समय है, जो आज यहां पर सही से अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेगा कमिंग टाइम में ही विल मेक सर्टनली अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, सो दिस इज एब्सोल्युटली द राइट टाइम टू इन्वेस्ट।
0: योगेश जी, एक बार आपके पास आती हूँ, प्रधानमंत्री की अपील के बाद कुछ असर आपको नजर आ रहा है बाजार में? लोगों के का गोल्ड के प्रति रुझान कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? क्योंकि एक धारणा ये भी चल रही है, एक चर्चाएं इसको लेकर भी चल रही है कि सोना और सस्ता हो सकता है।
4: ये सवाल महंगे सस्ते का नहीं है, सवाल है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री वर्सेस देश का क्राइसिस। अगर हम सोने को दो भागों में बांट दे, एक तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो 4 मई को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट लॉन्च की है, उसमें सोना डिजिटल रूप में आदमी खरीद सकता है जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, तो कुछ तो इम्पोर्ट उससे गिर सकता है। लोग जो भी सोना फिजिकल खरीदते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिसीट, गोल्ड रिसीट में जा सकते हैं। लेकिन जो गृहणियां जो शादी ब्याह में ये जो ज्वेलरी सजाने के काम में आती है, बहन बेटियों को देने के काम में आती है, उसका क्या होगा? उसके लिए तो इंपोर्ट पर ही निर्भर है। जैसा मैंने बताया कि इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट और एक गोल्ड के जेवर। गोल्ड के जेवर के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये अगर सरकार ज्वेलरों के साथ में मिलकर लाती है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा कदम होगा, और इससे सरकार का इंपोर्ट का जो बिल है, जो उस पर खर्चा होता है वो भी खत्म हो जाएगा, और ज्वेलरी इंडस्ट्री या महिलाएं हमारी जो जेवर खरीदने से वंचित रहती है वो भी खरीदती रहेंगी, तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। तो ये चीज सरकार के हाथ में है कि सरकार इस समस्या को कैसे देखती है, क्योंकि ज्वेलर कहाँ जाएगा? जो करोड़ों लोग इसमें रोजगार पाए हुए हैं, जो ज्वेलर हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, करोड़ों बंगाली कारीगर इसमें ज्वेलरी बनाते हैं, उनके बारे में हमारे को जो समझ में आया कि सिर्फ इसको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो ओल्ड गोल्ड है जो महिलाओं के पास में पहनने काम में नहीं आता है, वो कम से कम बाहर आएगा और वो सोना सरकार के पास भी जाएगा, महिलाओं की आमदनी भी बनेगी मंथली 2-3% अगर सरकार महिलाओं को देगी सोने के बदले में ब्याज के रूप में, और सरकार का ही फायदा होगा, सरकार उस सोने को ज्वेलरों को ही लोन के रूप में दे सकती है, गोल्ड लोन के रूप में दे सकती है, तो सरकार की इनकम भी बनेगी और जो डेड मनी है वो वर्किंग कैपिटल में भी कन्वर्ट हो जाएगी। जो सरकार चाहती है कि घरों में पड़ा हुआ सोना है वो काम में नहीं आ रहा, देश के विकास में नहीं काम में आ रहा, उल्टा हमारी करेंसी खर्च हो रही है, तो ये सारी समस्याओं का हमें लगता है यही हल है, इंडस्ट्री के साथ में बैठ के सरकार को इसकी स्कीम के कामयाब होने के बारे में बात करनी चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में हमारे बहुत पैनिक है और गोल्ड के जो ऑर्डर हैं वो भी कैंसिलेशन की खबर आ रही है। कुछ हमारे दुकानदारों से बात हुई है तो एक दो लोगों ने फोन करा है कि भाई अभी हम विचार करते हैं, मोदी जी की अपील है तो अभी हम सलाह करेंगे तब हम ऑर्डर फाइनल करेंगे, तो ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी अगर सरकार इसमें आगे बढ़ती पहल नहीं करेगी। इंडस्ट्री सरकार के साथ है, सरकार को हर वक्त हर जगह सपोर्ट करने के लिए ज्वेलर हमारे तैयार है।
0: ठीक है, दोनों चीजें। अब योगेंद्र जी, इस पर एक जवाब आपका। देखिए, इस वक्त जरूरत देश को भी है और इस वक्त अगर देखा जाए एक बहुत बड़ा तबका है जो कि ज्वेलरी कारोबार से भी जुड़ा हुआ है, जिनका अपना कंसर्न है।
5: देखिए, एक चीज को हमें बहुत क्लियरली समझना है कि जब हम डिजिटाइज जो स्टॉक मार्केट में जब हम बात करते हैं कि गोल्ड क्रेडिट फंड्स की, उसका प्रपोर्शन और उसके कंपैरिजन में जो फिजिकल गोल्ड है उसका जो कंपैरिजन अगर हम करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, तो आप ये समझिए कि जो फिजिकल गोल्ड में आज भी जो ट्रेड होता है वो मोर देन 10 times है एज कम्पेयर टू जो आपका स्टॉक मार्केट के थ्रू जो गोल्ड क्रेडिट फंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, एक चीज को हमें क्लियरली समझना है कि आज भी जो है गोल्ड जो है वो एक सेफ एसेट माना जाता है इंडिया के अंदर, और उसकी जो एक ब्यूटी है वो ये है कि हर तबका, मतलब उसमें एक आप ये देखिए कि एक रूरल से रूरल एरिया में भी जो लोअर स्टेट है वहां से लेके राइट अप टू रिच क्लास जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करने में जो है सक्षम है, और उसमें इवन एक लोअर तबके का भी जो आदमी है वो अगर एक मेजर इन्वेस्टमेंट ना करके गोल्ड में 1-2 grams के भी अगर सिंपल कॉइन भी रखता है तो वो उसके लिए एक अपने आप में एसेट क्रिएट होता है। अब इसमें मेरा एक सजेशन मैं जरूर देना चाहूंगा कि देखिए, क्योंकि आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि जो फिजिकल गोल्ड है, जो आज अगर हम ये देखें कि अगर इंडिया के अंदर 10 साल पहले और आज के कंपेरिजन में, तो आप ये देखेंगे कि जो मुथूत फाइनेंस जैसा इंस्टीट्यूशन है उससे शुरू होते हुए आज जो है मेजरली ये सिचुएशन है कि वो जो है उसका जो लोन देने का जो क्राइटेरिया और जो सिस्टम है वो एक्सपैंड किया है। तो अभी जो बात हो रही थी कि किस तरीके से लोगों का जो उनके पास गोल्ड जो आइडल फॉर्म में पड़ा है उसको कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं और चैनलाइज कर सकते हैं, तो उसका एक मीडियम ये भी है कि अगर हमारी गवर्नमेंट की और बैंक्स की पॉलिसीज इस तरीके से, और खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर उसमें फिनटेक्स को और ज्यादा एम्पावर कर दें, तो आप ये देखिए कि उसमें आप लोगों के फिजिकल गोल्ड को एज सिक्योरिटी रख के उनको जो है एक लोअर कॉस्ट पे जो है इंटरेस्ट पे आप उनको फंड्स जो है दे सकते हैं जिसको वो आगे चैनलाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट।
0: ठीक है, आखिरी सवाल जल्दी से, वक्त की कमी है सर 30 seconds में, प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ, अब देखिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग खरीदते थे, अब क्या हमें अपने पोर्टफोलियो में बदलने की जरूरत है, क्या उसको चेंज करने की जरूरत है, क्या आने वाले समय में एक बेस्ट ऑप्शन है अभी भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट का?
1: निश्चित रूप से, अगर मैडम मैं संक्षिप्त में ही बोलूंगा, 2022 में जो कुल मांग थी वो 774 tons थी, 24 में 802 तक गई, अभी भी 600 से 700 टन है, मैं एनुअल बात कर रहा हूँ भारत के अंदर गोल्ड की खपत की, यानी कि वर्तमान स्थिति में भी गोल्ड की खपत की मांग है, सेफ हेवन है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये जो समय है ना, ये अनिश्चितता का समय है नवजोत जी, और अनिश्चितता केवल और केवल ये इसराइल, ईरान और यूएस के वॉर के कारण है, और कोई कारण नहीं है
0: जी।
1: ये बादल छटेंगे और आने वाले एक क्वार्टर तक मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही कुछ रास्ता बीच का निकलेगा और निश्चित रूप से हम लोग इससे उभरेंगे।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री की अपील की एक साल तक सोना खरीदने से थोड़ा सा बचे, इसका असर बाजार पर कितना होगा, क्या खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, इसको लेकर तमाम सवाल जिनका जवाब एक्सपर्ट से हम जान रहे थे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहे हमारे साथ।

0: क्या है अपरा एकादशी की महिमा, अपरा एकादशी पर क्या होगा पूजा विधान, अपरा एकादशी पर किन पापों का होगा प्रायश्चित और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: स्पेन के ऐतिहासिक शहर गिरोना में इन दिनों फूलों का जादू छाया हुआ है। जेम्स जे फ्लोरल्स फेस्टिवल के दौरान पूरा शहर रंग बिरंगी कलाकृतियों और खुशबुओं से महक उठा। सदियों पुरानी गलियां, चर्च और सीढ़ियां फूलों से गुलजार हैं।
3: स्पेन का खूबसूरत शहर गिरोना इन दिनों फूलों की खुशबू और रंगों से सराबोर है। यहाँ शुरू हुआ है मशहूर टेम्पस डे फ्लोर्स फेस्टिवल, जहाँ ऐतिहासिक इमारतों और गलियों को फूलों से सजाया गया है। गिरोना कैथेड्रल की सीढ़ियों पर फूलों से बना विशाल सलामेंडर यानी छिपकली जैसी कलाकृति लोगों का ध्यान खींच रही है। रंग बिरंगे फूलों और कलात्मक डिजाइन ने पूरे इलाके को किसी सपनों की दुनिया जैसा बना दिया है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद कर रहे हैं। किसी को यहाँ की सजावट पसंद आ रही है तो कोई गेम ऑफ थ्रोन से जुड़ी इस लोकेशन को देखने के लिए खास तौर पर पहुँचा है। फेस्टिवल में शहर की पुरानी इमारतों, गलियों और सीढ़ियों को फूलों की थीम से सजाया गया है। हर सजावट में कला और परंपरा की खूबसूरत झलक दिखाई देती है। फूलों से सजी सीढ़ियों और प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। इस फेस्टिवल में परंपरा और आधुनिक कला का अनोखा मेल देखने को मिलता है। इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय परिवार पीढ़ियों से हिस्सा लेते आ रहे हैं। कोको हुगुएट और उनका परिवार भी कई सालों से इस आयोजन का हिस्सा है।
4: The first memory, well, he was too young to participate because he was still a toddler, but he was still, and we had a shape of him on a swing in our floral exhibit. So yes, that's the first memory I have of doing things with him.
3: फेस्टिवल की तैयारी आसान नहीं होती। कलाकार और परिवार कई दिनों तक मेहनत करके इन खूबसूरत डिजाइनों को तैयार करते हैं। फूलों से बने चेहरे, ड्रैगन और अलग अलग कलाकृतियाँ इस फेस्टिवल को और भी खास बना रही हैं। लोग हर कलाकृति के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। गिरोना प्रशासन के मुताबिक हर साल करीब 400,000 लोग इस फेस्टिवल को देखने पहुँचते हैं। 9 मई से शुरू हुआ ये फेस्टिवल 17 मई तक चलेगा। आखिरी दिन खास नाइट एग्जीबिशन भी आयोजित की जाएगी। फूलों, कला और इतिहास का ये संगम गिरोना को इन दिनों दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए दिखाते हैं अब तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
5: जीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल यहाँ एक महिला पुलिसकर्मियों के भरोसे अपना बच्चा छोड़कर टॉयलेट चली जाती है, जो ये दिखाता है कि यहाँ के लोग पुलिस वालों पर कितना भरोसा करते हैं। वीडियो में महिला गोद में बच्चा लिए आती है और दो पुलिसकर्मियों को आता देख रुक जाती है। फिर वो महिला पुलिसकर्मी को अपना बच्चा थाम लेती है और खुद टॉयलेट चली जाती है। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी बच्चे को प्यार से पुचकारती रहती है, जब तक कि वो महिला आ नहीं जाती। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर डांस का ये वीडियो लाखों लोगों का दिल जीत रहा है। एक पिता और उसकी बेटी की ये जुगलबंदी लोगों को पसंद आ रही है। वीडियो की सबसे खास बात ये कि जिस अंदाज में ये मासूम हर बीट को समझ कर परफॉर्म कर रही है, उसे देख लोग हैरान हैं।
6: Why did you come to the police station?
7: Will you marry me?
5: Yes! सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा सीधे एक पुलिसकर्मी के पास पहुंचकर उसे रिंग के साथ प्रपोज कर देता है। वीडियो में बच्चा बेहद कॉन्फिडेंस के साथ पुलिसकर्मी के सामने खड़ा होकर रिंग आगे बढ़ाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग बच्चे की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों में होता है। वहीं कई यूजर्स ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये बच्चा आखिर किसका है जिसने सीधे पुलिस वाले को ही प्रपोज कर दिया।
7: मेरे घर में ना शादी है एक्चुअली, ब्लिंकिट का आया 2000 रुपए बिल, तो अब ब्लिंकिट वाले भैया कह रहे टूटे पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्लिंकिट वाले भैया को पैसे दे दो।
5: शादी के माहौल में एक साधारण डिलीवरी उस समय खास बन गई जब परिवार ने ब्लिंकिट एजेंट को कैश की जगह दूल्हे के नोटों वाली माला दे दी। 2100 रुपए की इस माला को देख एजेंट की खुशी देखने लायक थी। उसने मुस्कुराते हुए माला पहन ली और पल को खुलकर एंजॉय किया। ये छोटा सा वाकया सोशल मीडिया पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आया। हाथी इंसानों के सबसे बड़े साथी होते हैं और जब बात दो बच्चों की हो तो फिर कहना ही क्या। यहाँ देखिए बेबी एलिफेंट और इस बच्ची की दोस्ती कितनी गहरी है। ये उसके लिए आइसक्रीम लाई है और बदले में हाथी उस पर खूब सारा प्यार बरसा रहा है। हाथी की बच्ची के साथ ही बॉन्डिंग देख लोग मुस्कुरा रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
9: somebody save me,
8: to timeless favorites,
9: and life is like a song,
8: and new discoveries.
9: So much more than a history. Wake up.
8: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: क्या है अपरा एकादशी की महिमा? अपरा एकादशी पर क्या होगा पूजा विधान? अपरा एकादशी पर किन पापों का होगा प्रायश्चित और मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट कैंस का आगाज हो चुका है। फ्रेंच रिवेरा में महफिल सज चुकी है और इस इवेंट में देश दुनिया से बड़े बड़े सितारे पहुंच रहे हैं। तो इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, खासतौर पर बॉलीवुड का जलवा कैसा वहां दिखेगा, ये सब आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं अशोक गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। धुरंधर के बाद रणवीर सिंह की आंधी फिर से चलने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार रणवीर कुछ अलग करने के लिए तैयार हैं। पहली बार रणवीर भगवान शिव के भक्त के किरदार में दिखाई दे सकते हैं। तो क्या है इस फिल्म को लेकर अपडेट, रणवीर की तैयारी कैसी है, ये सब बताएंगे।
6: बिल्कुल शगुप्ता, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। देखिए बात आज के कार्यक्रम में एंटरटेनमेंट की तो होगी ही, साथ ही में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी चर्चा से बात करेंगे। मौसम जिसकी तपिश फिर से लोगों को एक बार फिर से परेशान करने लगी है, लेकिन इस गर्मी के बीच हम आपके लिए मानसून वाली गुड न्यूज भी लेकर आगे हैं। तो कैसे इस बार सुपर स्पीड में आगे बढ़ेगा मानसून, इसके बारे में भी विस्तार से आगे आपको बताएंगे।
7: नमस्कार, मैं हूं खुशी गुप्ता। बुलेटिन में आपको झारखंड की एक ऐसी जगह लिए चलेंगे जिसे कहा जाता है मनाली, झारखंड का मनाली। तो कौन सी ये जगह है और आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: भीषण गर्मी के बीच आई बड़ी खुशखबरी, देश में मानसून तय समय से चार दिन पहले दे सकता है दस्तक। 25 से 27 मई के बीच में केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन का ले रहे रोमांच। पेपर लीक के बाद एनटीए ने नीट 2026 की परीक्षा की रद्द, पेपर लीक की होगी सीबीआई जांच। 3 मई को हुई थी नीट की परीक्षा, परीक्षा में बैठे थे 22 लाख छात्र। ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार, अयोध्या प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक के मंदिरों में लगा आस्था का मेला, भक्तों ने की सुख और समृद्धि की कामना। बद्रीनाथ धाम में अब तक 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, यात्रा मार्ग पर आईटीबीपी की भी तैनाती, ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में कर रही पुलिस की मदद।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
5: भाई अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने मेट गाला का बहुत सारा ग्लैमरस अवतार आपको दिखाया था, अब कैंस की बारी आ गई है. कान कांस कैंस, थोड़ी सी कंफ्यूजन है कैसे प्रोनाउंस करें.
10: कैंस
11: कैंस
5: कैंस है
11: लिखने में, कैंस
5: बोलती थी हमेशा से.
11: कांस
5: मतलब आई हैव बीन प्रोनाउंसिंग इट
11: इनकरेक्टली, इट्स लाइक कैंस.
10: देखिए जब तक हमें जाने को ना मिले कैसे भी कह सकते
11: हैं. हाँ, मतलब मैं कह रही हूँ ये नया ट्रेंड चढ़ गया है. लेकिन चर्चा ये है कि देखिए जो पुराने चेहरे हमें नजर आते रहे हैं, ऐश्वर्या राय 24 साल से कैंस में पहुंचती रही हैं, वो इस बार कैसी लगेंगी, और कुछ डेब्यू भी करने वाले हैं तो कौन कौन से नाम होंगे वो आपको सब बताएंगे. किसको लेकर एक्साइटेड हैं?
5: तारा सुतारिया के डेब्यू को लेकर. जैसा आप बोल रहे हो ना कि ऐश्वर्या राय को तो देखने की अब आदत सी हो गई थी मुझे. आलिया
11: मतलब नहीं भी आएंगी तो भी चल जाएगा हमारा.
5: नहीं, ऐश्वर्या को मैं जरूर
11: मिस नहीं. कुछ लोग हैं डाई हार्ड फैंस, किसको देखने मतलब ऐश्वर्या
10: ऐश्वर्या को देखना पसंद करेंगे. आई थिंक अदिति राव है, दीपिका के मैंने लुक्स मुझे बहुत पसंद है तो दीपिका मुझे पसंद है.
5: दीपिका को लेकर क्या जानकारी है? विल शी बी देयर? वो शायद
11: शायद भी आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन दोनों चीजें हो सकती हैं. लेकिन देखिए एक ऐसे फेस्टिवल का जिक्र हम कर रहे हैं जहां ना सिर्फ दुनिया भर की फिल्में स्क्रीनिंग के लिए रखी जाती हैं, बल्कि ये फेस्टिवल खास तौर से इंडियन स्टार्स के फैशन और ग्लैमर को लेकर खूब चर्चा में है.
5: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की जिसकी यहाँ पर चर्चा हो रही थी. देखिए इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, जानवी कपूर जैसे कई खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस और सेलिब्रिटीज इस बार रेड कार्पेट पर नजर आने वाले हैं. आपका कौन सा फेवरेट है? तारा सुतारिया इस बार डेब्यू करने वाली है. क्या खास रहने वाला है इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में? लेट्स हैव अ लुक.

0: दुनिया की सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में से एक कैन का मंच सज चुका है। फैशन और ग्लैमर के इस महामंच पर दुनिया भर के दिग्गज जुट चुके हैं। आज से 23 मई तक कैन का ये मंच चुनिंदा फिल्मों और हस्तियों से गुलजार रहने वाला है। फ्रांस के फ्रेंच रिवेरे में आयोजित 79वें कैन में अगले 12 दिनों तक दुनिया भर की फिल्मों की स्क्रीनिंग रखी जाएगी। तो कैन के भव्य रेड कार्पेट पर दुनिया भर की हस्तियां अपने स्टाइल और लुक से छाप छोड़ेंगी, जिनमें भारत की नुमाइंदगी करती बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस भी शुमार होंगी। इस साल भारत से आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय, मौनी रॉय, अदिति राव हैदरी और एहसास चन्ना कैन के रेड कार्पेट पर पहुंचेंगी। तारा सुतारिया कान रेड कार्पेट पर डेब्यू करने वाली हैं। जबकि आलिया लॉरियल पेरिस की तरफ से कान में शिरकत कर रही हैं। कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1946 में हुई थी और उसी साल भारत ने अपनी मौजूदगी प्रमुखता के साथ दर्ज कराई। चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर को पहले कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था। जहां तक कान के रेड कार्पेट पर भारतीय एक्ट्रेसेस के शिरकत करने का सवाल है, तो उसकी शुरुआत 2002 में ऐश्वर्या राय ने की। ऐश्वर्या ने अपनी फिल्म देवदास के प्रीमियर के लिए पहली बार रेड कार्पेट पर शिरकत की। उस वक्त ऐश्वर्या के साथ देवदास में उनके को स्टार शाहरुख खान और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी साथ थे। ऐश्वर्या ने तब नीला लुला की डिजाइन की गई सुनहरी पीली साड़ी और भारी आभूषण पहने थे। तब से भारतीय एक्ट्रेसेस के कान रेड कार्पेट पर शिरकत करने का सिलसिला चल पड़ा। रेड कार्पेट डेब्यू के ठीक एक साल बाद 2003 में ऐश्वर्या राय कान के जूरी में शामिल हुई। 2004 में ऐश्वर्या ब्यूटी ब्रांड लॉरियल की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। तब से वो लगातार कान के रेड कार्पेट पर भारत की नुमाइंदगी कर रही हैं। ऐश्वर्या राय इस साल अपनी 23वीं कान अपीयरेंस दर्ज कर रही हैं। 2013 में सोनम कपूर कान के रेड कार्पेट पर अपने अंदाज से खूब छा गई। उन्होंने अपने भारतीय पारंपरिक लुक को वेस्टर्न टच दिया था। इसके साथ ही उन्होंने जैकेट कैरी की थी। 2017 में दीपिका पादुकोण ने पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा। इसके 5 साल बाद 2022 में 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में दीपिका ने ज्यूरी मेंबर के तौर पर शिरकत की। ब्लैक एंड गोल्डन कलर की सब्यसाची की डिजाइन की हुई साड़ी में वो खूब छाई थी। प्रियंका चोपड़ा ने 2019 में कैन फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट डेब्यू किया था। शाइनिंग ब्लैक और रेड कलर की ड्रेस में उन्होंने लोगों का खूब ध्यान खींचा। 2023 में अनुष्का शर्मा ने अपना ऑफिशियल डेब्यू कैन में किया था। क्रीम कलर के गाउन में जब वो रेड कार्पेट पर उतरी तो नजरें उन पर ठहर गई थी। 3D फूलों के डिजाइन और बारीक कढ़ाई वाले इस गाउन की खूब चर्चा रही। बीते साल जाह्नवी कपूर, आलिया भट्ट और अदिति राव हैदरी ने भी कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर डेब्यू किया। जाह्नवी ने कस्टम गुलाबी आउटफिट के साथ सिर पर पल्लू अटैच किया था, तो वहीं आलिया की साड़ी पर जड़े क्रिस्टल ने लोगों का ध्यान खींचा था। जबकि लाल रंग की साड़ी में अदिति राव हैदरी खूब छा गई, वो भी अपना सिंदूर फ्लॉन्ट करती नजर आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए बात करते हैं दिशा भाटनी की, जो हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। प्रियंका, दीपिका और आलिया के बाद दिशा भाटनी भी अब हॉलीवुड में धमाका करने वाली है।
2: बिल्कुल, उनकी अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर भी आ गया है। इस फिल्म में एक्ट्रेस धमाकेदार एक्शन अवतार में नजर आने वाली है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है इस फिल्म में।

0: प्रियंका, दीपिका और आलिया की राह पर एक और हसीना। हॉलीवुड में छाने को तैयार दिशा पाटनी। एक्शन अवतार में मस्त तलवारबाजी करती नजर आई दिशा।
1: Is it magic?
2: Channel the mana, shape the matter, control the power.
0: बॉलीवुड स्टार्स अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा तो पहले ही ग्लोबल स्टार का तमगा हासिल कर चुकी है और दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट भी हॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेर चुकी हैं। प्रियंका, दीपिका और आलिया के बाद अब एक और एक्ट्रेस हॉलीवुड में धमाके के लिए तैयार है, जिनकी अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो गया है। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस हसीनाओं में से एक दिशा पाटनी है। दिशा पाटनी ने बॉलीवुड के बाद ग्लोबल मंच पर अपनी पहचान बनाने की शुरुआत कर दी है। उनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म द पोर्टल ऑफ फोर्स है और इसका ट्रेलर भी जारी हो चुका है। इस ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
3: These warriors, 12 on each side, fight to reign over the people of Earth as we know it.
4: Get ready.
0: दिशा पाटनी द पोर्टल ऑफ फोर्स में एक्शन अवतार में नजर आने वाली हैं और जबरदस्त अंदाज में तलवारबाजी करती दिखाई देंगी, जिसकी झलक ट्रेलर में भी देखने को मिल चुकी है। फिल्म की बात करें तो ये एक काल्पनिक और रहस्यमय दुनिया की कहानी होगी। वहीं दिशा के फैंस भी उनके हॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी एक्साइटेड है। द पोर्टल ऑफ फोर्स की बात करें तो इसकी कहानी लाडो ओखोटनिकोव ने लिखी है। फिल्म में दो प्राचीन शक्तियों के बीच भारी टकराव देखने को मिलेगा, जिनमें से एक पक्ष दुनिया में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है तो दूसरा पक्ष एक अलग ही सोच और रास्ते में चलता है। वो दुनिया के संतुलन पर नहीं शक्ति पर विश्वास रखता है। फिल्म में दिशा पाटनी की बात की जाए तो वो जेसिका के रोल में नजर आएंगी, जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है।
3: These warriors, 12 on each side.
0: दिशा पाटनी के किरदार को दो विरोधी गुटों के नेताओं की बेटी के तौर पर देखा गया है। वो दो आपस में लड़ रही दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करती है। उसके सामने किसी दुश्मन से लड़ने, उसे हराने की चुनौती नहीं है बल्कि खुद को पहचानने और सही रास्ता चुनने की जिम्मेदारी है।
2: Channel the mana, shape the matter, control...
0: ट्रेलर में दिखाया गया है कि दुनिया का भविष्य काफी हद तक जेसिका के फैसलों पर टिका हुआ है। वो अपनी शक्तियों को समझने, कंट्रोल करने और सही रास्ता चुनने की कोशिश करती नजर आती है। दिशा पाटनी ट्रेलर में कई दमदार एक्शन सीक्वेंस करती दिखाई दे रही है, कभी तलवारों के साथ तो कभी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनका अलग अंदाज देखने को मिल रहा है।
1: Is it magic?
2: Channel the mana, shape the matter, control...
0: वहीं दिशा पाटनी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो लंबे समय से ट्रेलर रिलीज होने का इंतजार कर रही थी। पहली इंटरनेशनल फिल्म में काम करना उनके लिए एक्साइटमेंट होने के साथ थोड़ा डराने वाला अनुभव भी रहा।
4: She's not ready.
0: इसी के साथ दिशा को नए अंदाज में देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो फिल्म के रिलीज डेट के अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: धुरंधर के बाद अब रणवीर सिंह की एक और फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है। फिल्म से ज्यादा उनके रोल को लेकर ज्यादा बातचीत हो रही है।
6: ऑफ कोर्स होगी, वो कंपैरिजन जो हमने रणवीर कपूर को लेकर किए थे, अब ये कंपैरिजन सेम कंपैरिजन इनको लेकर शुरू हो गए हैं। एक पोस्टर में इनकी एक मूवी दिखाएंगे, दूसरे में दिखाएंगे भोलेनाथ, तो सूट करेगा नहीं करेगा, दैट्स द चर्चा। आप बताइए, एक्साइटेड है?
7: मैं बताती हूँ, मुझे ना मोहित रैना भोले बाबा के किरदार में इतने अच्छे लगे ना कि मैं किसी और को इमेजिन ही नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह जो भी काम करते हैं ना उसमें अपना 100% देते हैं।
6: तो
8: मुझे ये लगता है कि ये कंपैरिजन जायज नहीं है। एक एक्टर वो अलग अलग तरह के किरदार निभाएगा। अब वो उनको आपने धुरंधर में भी देखा, अब यहाँ पर अगर आप शिव के अवतार में देखोगे वो उसको कितना जस्टिस करते हैं, उसके बाद जजमेंट करना।
6: सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया पे चर्चा तो छिड़ेगी ही, लोग
5: चाय पर बैठे तो चाय पे भी चर्चा
6: तो करेंगे।
5: चर्चा क्यों
6: एक्साइटेड है?
5: नहीं, मैं मेरा तो यही मानना है कि देखिए एक्टर का काम होता है खुद को उस किरदार में ढाल लेना,
6: किसी भी किरदार।
5: हमने रणवीर सिंह को देखा है, वो खुद को हर किरदार में ढाल लेते हैं, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि हम अपनी ओपिनियन बना लें। अब तो चलिए फिलहाल खबर दिखाते हैं आपको।
0: नाम तय नहीं, डायरेक्टर का पता नहीं, स्क्रिप्ट आधी अधूरी, लेकिन एक चीज फाइनल है, फिल्म के लीड एक्टर धुरंधर रणवीर सिंह, जिनकी फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 ने मिलकर दुनिया भर में 3100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। और अब कामयाबी के शिखर पर काबिज रणवीर ने फ्यूचर के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान फिल्म फ्रेंचाइजी को लेकर है, मतलब सिर्फ एक फिल्म बनाने का नहीं बल्कि एक फिल्म के 3 पार्ट बनाने का है, और वो भी एक माइथोलॉजिकल फिल्म, जिसका ट्रेंड इन दिनों खूब चल रहा है। और रणवीर सिंह इसी ट्रेंड पर चलकर कामयाबी के रथ पर सवार रहना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी माँ कसम फिल्म के जरिए अमीश त्रिपाठी के नॉवल द इमॉर्टल्स ऑफ महलुआ के राइट्स खरीद लिए हैं। रणवीर इस माइथोलॉजिकल कहानी को बड़े स्केल के साथ पर्दे पर पेश करने की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्होंने अनन्या बिरला की कंपनी बिरला स्टूडियोज के साथ सुपर डील की है। रणवीर सिंह इस फिल्म में भगवान शिव के रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 3 पार्ट में रिलीज की जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। स्क्रिप्ट पूरी होने पर तसल्ली से स्क्रीन प्ले पर काम किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2028 में पहले पार्ट की शूटिंग शुरू हो जाएगी। रणवीर सिंह ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने का टारगेट 2028 इसलिए रखा है कि वो अगस्त में प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे। मार्च 2027 में धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर की अगली फिल्म पर काम करेंगे। उसके बाद रणवीर सिंह अपनी इस नई माइथोलॉजिकल फिल्म का हिस्सा बनेंगे। हालांकि अभी ना तो फिल्म का नाम तय हुआ है और ना ही डायरेक्टर का। फिल्म की कास्टिंग भी अभी तय नहीं है सिवाय रणवीर सिंह के। बताया जा रहा है कि स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद ये सारा काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: देखिए फिल्मों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। मई के महीने की अगर हम बात करें तो मई में फिल्मी दुनिया में खासी हलचल जो है वो देखने को मिलने वाली है। इस हफ्ते भी कई धमाकेदार फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं। एक तरफ आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो है, तो दूसरी तरफ संजय दत्त की आखिरी सवाल है जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है।
8: बिल्कुल, थिएटर ही नहीं बल्कि ओटीटी पर भी दर्शकों के लिए कई ऐसी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली है जिनका काफी वक्त से इंतजार था।
9: अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोच है विकी। डिबेट यानी विवाद, भारत विवाद नहीं, संवाद यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इसमें भरोसा लगता है।
8: सच।
0: धुरंधर में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद संजय दत्त एक बार फिर पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने को तैयार है।
9: वरना आजकल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट।
0: उनकी फिल्म आखिरी सवाल 15 मई को थिएटर में रिलीज होने वाली है।
9: तो हैशटैग बनाते विल शिवाजी बेंड द नी।
10: देखिए डिबेट नहीं है, ये दंगा है।
9: इतिहास कब आया, जब भी भगवे के और कोई कालिक बिकता है तो उसी स्याही से इतिहास लिखा जाता है।
11: लेफ्ट इज ऑलवेज राइट।
12: सारा मुझे अपने लक्ष्य तक।
0: पहले ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट में देरी की वजह से इसके रिलीज डेट को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया।
11: ये चोट निशान छोड़ेगी।
0: इस फिल्म की सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है।
13: सिंपैथी बटोर सके और हमें इमोशनल।
14: ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना सर, ताकि आप
13: अपने आरएसएस को बचा सके।
0: रिलीज से पहले राजधानी में फिल्म का एक प्रीमियर रखा गया है। इस प्रीमियर में कई नामी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।
14: कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ टेरर।
0: फिल्म में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बड़े प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है।
14: और आरएसएस वायलेंट है,
15: वो तब गिरा जब इस देश के बहुसंख्यक समाज का विश्वास टूट गया।
0: संजय दत्त की इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।
16: आदमी शिष्टाचारी है, पति आज्ञाकारी है, और तो और वन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी है। समस्या? अबे हमारे जीवन में कहां से आएगी समस्या?
17: Keep calm, babe.
0: संजय दत्त की आखिरी सवाल को पर्दे पर टक्कर देने के लिए आयुष्मान खुराना हंसी ठहाकों का फुल डोज लेकर आ रहे हैं।
18: जानवर काजे भूल गए, घर को पिंजरा का चिप पकड़ लिया।
17: अरे चंचल,
0: उनकी फिल्म पति पत्नी और वो दो भी 15 मई को रिलीज हो रही है।
19: खातून कौन थी? Who was the ladies?
20: Actually, वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, domestic violence.
19: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
0: इस फिल्म में आयुष्मान, रकुल प्रीत सिंह, वामिका गाबी और सारा अली खान के साथ कॉमेडी का तड़का लगाएंगे।
21: कैसे है आपका मानची?
0: ये फिल्म 2019 में कार्तिक आर्यन और भूमि पडनेकर की फिल्म पति पत्नी और वो की सीक्वल है। टीजर रिलीज होने के बाद से इस फिल्म को लेकर दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई है। फिल्म में आयुष्मान खुराना का लुक भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।
22: धर्म करते हैं कर्म छूटता है, कर्म करते हैं धर्म छूटता है, कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुंचती।
23: 8 साल में तो आम का पेड़ भी फल देने लग गए, तेरे में तो कैरी भी ना फूट रही।
24: हमारी इन्वेस्टिगेशन के
0: रणदीप हुड्डा की मोस्ट पॉपुलर सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 भी 15 मई को ही OTT पर स्ट्रीम होने जा रहा है।
25: ये है अभय गुज्जर, बियड़ों का राजा।
26: कल रात तक पैसे नए न लल्ला
27: तो बियड़ लगा दूंगा।
0: हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था।
28: बिल्कुल बड़ा प्लान कर रहे हैं।
29: देवी के सर पर शेख साहब का हाथ है।
30: यहाँ का बादशाह सिर्फ एक है और वो है हम।
0: ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सीरीज क्राइम, पॉलिटिक्स और करप्शन की दिलचस्प कहानी लेकर आ रही है।
31: हम तो महादेव के भक्त हैं, एक ही बार में दिल, मन और आत्मा।
0: यानी ये हफ्ता सिनेमा के शौकीनों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बड़े पर्दे के साथ साथ OTT पर भी उन्हें कई ऑप्शन मिलने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
32: करेंगे हम आज
33: हर हर महादेव।
5: देखिए धुरंधर सबने देखी है,
7: बिल्कुल,
5: और उसके गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं।
7: यस।
5: और आपने देखा कि सतेंद्र सरताज ने एक लाइन गाई थी
6: और महफिल को लूट के ले गए,
5: बिल्कुल,
6: है ना।
5: और जैस्मिन सैंडलास और उन दोनों की एक लाइन है, दोनों के सुरों में और आवाज में वेरिएशंस हैं, लेकिन इन दोनों की आवाज को कंबाइन करके 13 साल के बच्चे ने गाया है, जिसके बाद जैस्मिन सैंडलास ने एक हार्ट इमोजी के तौर पर उनको भेजा और उसके बाद वो बहुत फेमस हो रहा है।
6: यकीन मानिए इंटरनेट सेंसेशन बन गया ये लड़का। आपको इंस्टा पे देखा है?
5: दोनों को सुनना चाहिए,
6: बहुत सुंदर आवाज है। हाँ, मुझे लगता है ओवरनाइट बोलते हैं ना, ओवरनाइट स्टार्स कैसे बनते हैं, तो ऐसे बनते हैं। दिस इज अ लाइव एग्जांपल आई गेस।
7: खुशी आपने देखी ये वीडियो?
8: मैंने ये वीडियो नहीं देखी, लेकिन

0: अपना नाम बना सकता है।
1: बहुत बहुत ब्यूटीफुल वो वीडियो है।
2: नहीं, आप देखिए ना, जैस्मिन सैंडलर्स की अच्छी एकदम हाई पिच पे आवाज है और फिर उसके बाद सतेंद्र सरताज जी
3: हैं, बीच में सरताज जाके तड़का लगा ना,
1: वो जो माइल्ड सी और आवाज का वो जो उसका रॉनेस है ना, वो भी बहुत खूबसूरत है। और अगर मुझे लगता है दर्शकों ने नहीं देखा है तो उनको,
3: आपने अगर मिस कर दिया है ना, तो हमारी बातचीत तो हो गई, अब आपको सुना देते हैं।

पिछले एक साल से बहुत ही शौक रहा है कि मैं गाऊं, और इसमें मेरे भैया ने एक मेरे नाम से एक इंस्टाग्राम चैनल खुलाई रसिक मीर के नाम से, और जहां पर मैंने आसपास 70 पोस्ट डाले, और उसके बाद मेरी एक रील वायरल हुई जय सजना दुरेंद्र मूवी का सॉन्ग, यही मेरा वायरल हुआ, आसपास 50 मिलियन पहुंच गए मेरा सॉन्ग।

जी जब मेरे पापा को पता चला कि ये इतनी ज़्यादा वायरल हो गई है, पहले मेरे पापा को एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ये इतनी वायरल हो जाएगी। वो डांटते थे रोज़ मुझे कि इससे कुछ नहीं होगा, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो। और जब जब मेरी रील वायरल हो गई तो पापा बहुत सब घर वाले खुश, मेरे भैया सबसे पहले मेरे बड़े भैया का सपोर्ट रहा है इसमें, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। उन्हें नहीं बोला, उन्होंने चैनल भी खुलाई, उन्होंने बोला कि आप सॉन्ग अच्छे, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है। और ऐसे ही हमने एक ऐसे ही हम कामयाब

0: पर म्यूजिक का कोई की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई म्यूजिक इंस्टीट्यूशन है मुझे, कोई म्यूजिक कोचिंग नहीं है जहाँ पर बच्चे सीख सके और मेरे जैसे बच्चे आगे बढ़ सके अपनी जर्नी में. ऐसे ही मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर एक म्यूजिक इंस्टीट्यूशन कायम करे जिसमें बच्चे सीखे और म्यूजिक क्लासेस लें. मेरी होप है कि मैं अपने माँ बाप के साथ साथ जम्मू कश्मीर और पूरे इंडिया का नाम रोशन करूँगा. थोड़ा सा मुझे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, तो इंशाल्लाह आई होप कि मैं इस साल मैं इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करूँगा.
1: देखिए पहले भी कई सेलेब्स उज्जैन महाकाल के दरबार में हाजिर लगाने आते रहे हैं, तस्वीरें आप देखते रहे हैं. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी आज महाकालेश्वर मंदिर में पहुंची. यहां उन्होंने आम लोगों के साथ भस्म आरती में हिस्सा लिया और बाबा के दर्शन किए. तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. बाबा महाकाल के दर्शन पूजन के दौरान लाल साड़ी में वो नजर आई, बेहद खूबसूरत वो लग रही थी. उनके लिए महाकाल दर्शन का अनुभव आध्यात्मिक और ऊर्जा से भर देने वाला रहा.
2: खुश हूँ. एक्चुअली मैं बुलावा जब आता है तभी यहाँ पर कोई आ पाता है, तो श्री माँ कालेश्वर की का बुलावा आया तो हम आ गए यहाँ पर. बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत आनंदित है, बहुत बहुत अच्छी आरती. थैंक यू बोलने आई थी बिकॉज बहुत बहुत बहुत बहुत सब उन्होंने दिया है. हर हर महादेव.
3: फिलहाल वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे मॉनसून इस बार जल्दी आने वाला है.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
7: It's college football.

0: time. College basketball feels
1: Pardon
0: like
1: my take.
2: The Rams catching the Commanders.
1: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: स्वागत है आप सबका चाय पर चर्चा में। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: भीषण गर्मी के बीच आई बड़ी खुशखबरी, देश में मानसून तय समय से चार दिन पहले देगा दस्तक। 25 से 27 मई के बीच केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन का ले रहे हैं रोमांच। ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार, अयोध्या प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक मंदिरों में लगा आस्था का मेला। बिहार के समस्तीपुर में AI और रोबोटिक्स सेमिनार, 280 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। 14 प्रतियोगिताओं में छात्रों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कैन फिल्म फेस्टिवल से पहले बिछाया गया रेड कार्पेट, उद्घाटन से पहले रोबोट शो ने खींचा लोगों का ध्यान। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने दिखाया जिम्नास्टिक।
8: तो कैसा मौसम है आज बाहर का?
9: गर्मी है बहुत,
8: है
9: टेम्परेचर,
8: ह्यूमिडिटी,
9: हाँ बहुत ज्यादा
8: गर्मी है, पर मुझे अभी ऐसा लगा था कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी, उतनी नहीं है, हो सकता है आने वाले वक्त में बढ़े, बट अभी स्टिल बियरेबल।
9: लेकिन
10: नहीं, दोपहर के टाइम अगर निकलोगे तो फिर आप बेयर नहीं कर पाओगे।
9: कुछ एक बात बताओ ना कि गर्मी का इंतजार करते करते मई आ गया और अब कह रहे मानसून आ रहा है, तो फिर गर्मी आई कब थी?
8: तो बढ़िया है ना, यही तो चाहिए।
10: चाहिए क्यों?
8: कुछ नहीं, कुछ महीने, मतलब क्या, कुछ दिनों बाद ही जब बारिश होने लगेगी फिर आप कहोगे चाय अब दो दो कप पीनी है, तो अच्छा है ना, बारिश आनी चाहिए।
11: वैसे नहीं, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो रही थी, तो अब मुझे लग रहा है कि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शायद पहाड़ों पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये तीनों तस्वीरें आप देखिए कि एक तो राहत के बाद वापस से गर्मी की वापसी हुई है, जैसा कि यहाँ पे चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं, एटलीस्ट दिल्ली NCR, लेकिन पहाड़ों पर अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो बारिश हो रही है वहां पर, तापमान में हल्की गिरावट है, और एक अच्छी और गुड न्यूज ये भी है कि मॉनसून भी 4 से 5 दिन पहले दस्तक देने वाला है।
5: देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक तापमान लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मॉनसून को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है।
9: बिल्कुल, देखिए मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल मॉनसून समय से पहले ही केरल तट पर दस्तक दे सकता है और इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में जो मॉनसून है वो आगे बढ़ेगा। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
12: तपती जमीन पर लू के थपेड़ों के बीच मई जून की गर्मी में सिर खुद ब खुद आसमान की ओर उठ जाते हैं। आंखों में बादलों से राहत की बूंदों की उम्मीद लिए लोग मॉनसून की राह देख रहे हैं। ऐसे में मॉनसून लोगों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं, जिसका सभी को इंतजार है। इन दिनों उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की चेतावनी दी है। राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। जैसलमेर और पाली में तापमान नए रिकॉर्ड बनाने में जुटा है, तो वहीं महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भी गर्मी अपने चरम पर है। इस कड़ी गर्मी के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। खबर है कि इस साल मॉनसून ने समय से पहले आने के संकेत दिए हैं। देश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से होने वाली मॉनसून की दस्तक अब महज 2 हफ्ते की दूरी पर है। कहा जा रहा है कि जो मॉनसून केरल में 1 जून के आसपास दस्तक देता है वो इस बार 4 दिन पहले ही केरल तट पर आ सकता है। अनुमान है कि इस बार 25 से 27 मई के बीच केरल तट पर मॉनसून पहुंच जाएगा। वहीं अभी मॉनसून की बेल्ट मालदीव को पार कर चुकी है और श्रीलंका और अंडमान निकोबार की ओर बढ़ रही है। मॉनसून के पहले आने के इशारे भी प्री मॉनसून की तेज बारिश में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक सिस्टम बन गया है जो अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है। इससे दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश बढ़ेगी। ये सिस्टम मॉनसून को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बंगाल की खाड़ी से बने सिस्टम के चलते दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। साथ ही देश के कई राज्यों में तो बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर लू चलने की भी आशंका है। साथ ही मध्य भारत, गुजरात और महाराष्ट्र में भी अगले 4-5 दिनों के दौरान लू चलने के पूरे आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर उड़ीसा में भी नजर आ सकता है। राज्य के कई हिस्सों में अगले 6 दिन तक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 20 जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट दिया है। फिलहाल तो देश के कई हिस्सों में गर्मी अपने चरम पर है तो कई इलाकों में बेमौसम बरसात देखने को मिल रही है। इन सब के बीच सबको मॉनसून के आने का ही इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कल से बारिश हो रही है।
13: और देखिए, इस बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश के आसार हैं।

0: मई के महीने में मौसम का ये बदला रुख पहाड़ों से लेकर मैदानों तक एक अबूझ पहेली बन गया है। एक नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने से पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही है। कश्मीर में डोडा और भलेसा में बारिश की वजह से पारा भी गोते लगाने लगा है। गर्मी के इस मौसम में आमतौर पर इन इलाकों में मौसम सुहाना रहता है, लेकिन मौसम का ये बदला तेवर मई के महीने में भी ठंड का एहसास करा दे रहा है। कश्मीर ही नहीं, हिमाचल में भी मौसम ने करवट ले ली है। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। शिमला में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के कुछ जगहों पर गरज के साथ बिजली भी गिरी। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और कुल्लू, मंडी, शिमला के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया है। आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर ओले गिरने से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।
1: कल के लिए डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ में इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में तेज हवाएं चलने की संभावना है। और जो हमारे क्षेत्र है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का येलो कैटेगरी में अलर्ट जारी किया है। तो ओवरऑल 13 मई तक प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए 14 मई से वेदर एक्टिविटी थोड़ी कमी जरूर आएगी, परंतु 14 मई से लेकर 16 मई तक स्पेशली लेट इवनिंग और आफ्टरनून में जो हमारे जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश का क्रम जारी रहेगा। जो मेजर जो रिडक्शन है देखिए 17 मई के उपरांत प्रदेश में देखने को मिलेगा।
0: मौसम की बदलती चाल का असर पहाड़ों के साथ साथ मैदानों पर भी नजर आ रहा है। राजधानी में मई का महीना आमतौर पर चिलचिलाती गर्मी का एहसास कराता है, लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर ने गर्मी की तपिश को नदारद कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश के आसार हैं।
2: तो हमने जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, बाकी उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, वेस्ट यूपी, इनके लिए हमने येलो अलर्ट दे रखा है, जहां पे रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की उम्मीद है। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए हम हिल स्टॉर्म भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये एक्टिविटी कल पंजाब, हरियाणा में थोड़ा बढ़ सकती है, उसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है।
0: अनुमान जताया जा रहा है कि मौसम की इस आंख मिचौली से आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ों में तो ठंड बढ़ेगी ही, मैदानी क्षेत्रों को भी गर्मी से राहत मिलेगी। यानी उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अभी कुछ और दिन गर्मी नहीं सताएगी। शिमला से विकास शर्मा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने अब एक खास कूलिंग जोन तैयार कर दिया है। तो चलिए आज आपको तस्वीर दिखाते हैं पुरानी दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले इलाके की। इस कूलिंग जोन के जरिए लोगों को गर्मी से बचाने के लिए कई जरूरी सुविधाएं फ्री में मुहैया कराई जा रही है।
4: बिल्कुल, आपको बता दें जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास बनाए गए इस कूलिंग जोन में एक समय में करीब 70 से 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जहां लोगों को ठंडा पानी, ओआरएस और आराम करने की सुविधा दी जा रही है, ताकि तेज गर्मी और लू के असर से लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल तो आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ती है तो राजधानी के दूसरे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी कुछ ऐसे ही कूलिंग जोन और हीट रिलीफ वैन की सुविधा जो है मौजूद की जाएगी।

0: देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि कैसे लोगों को इस गर्मी से राहत दी जा सके, और उसी कड़ी में कूलिंग जोन जो है वो अब जगह जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बनाए जा रहे हैं। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली में मौजूद है और ये एक ऐसी जगह है जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के हम इस वक्त पास है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही देखी जाती है, क्योंकि जामा मस्जिद भी पास है और साथ ही साथ चांदनी चौक का जो इलाका है वो भी पास है। तो ऐसे में लोगों की भीड़ यहां पर होती है और जब लोग बाजारों का रुख करते हैं गर्मी में तो लोगों को थोड़ी सी राहत देने के लिए इस तरीके के कूलिंग जोन जो है वो बनाए जा रहे हैं। और ये सबसे पहला कूलिंग जोन में हम आपको लेकर आए जहां पर आपको हर एक सुविधा जो है वो दिखने वाली है। आप देख सकते हैं कि ORS का घोल जो सबसे ज्यादा आवश्यक है इस चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए, तो इस तरीके से लोगों को ORS पिलाते हुए लोग जो है वहां पर आपको नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ ये कुछ कैब्स जो है वो आपको नजर आएगी, लोगों को जितने भी ऑटो चालक होते हैं या फिर बैटरी रिक्शा चालक होते हैं वो तेज गर्मी में जो है काम कर रहे होते, तो उनको बचाने के लिए इस कैब का जो है यहाँ पर बंदोबस्त किया गया ताकि उनको इस कैब की जो है वो दी जाए ताकि वो गर्मी से उनका थोड़ा बहुत बचाव जो है वो हो सके। साथ ही साथ गमचा देख सकते हैं, सूती गमचा है और ये सबसे ज़्यादा गर्मी में जो है आरामदायक होता है क्योंकि ये पसीना जो है वो सबसे ज़्यादा सोखता है। तो इस तरीके के गमचे जो है वो भी यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं गर्मी से परेशान होकर उनको इस तरीके की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दी जाए।
1: पानी है
2: जी,
0: आप पहले पीए, पानी पीजिए आप पहले, क्योंकि आप अभी गर्मी से आए तो ठंडा पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने राहत की सांस ली यहाँ?
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा मुझे आन के।
3: मैं यहाँ मार्केट आया था चांदनी चौक, गर्मी लग रही थी, मैंने अपनी बाइक खड़ी करी और यहाँ आराम से एक डेढ़ घंटे से बैठा हूँ, थोड़ा रिलैक्स करके यहाँ से फिर निकलूंगा।
0: तो सही है?
4: हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मार्केट में आए थे सामने, हमें गमछा भी मिला है, टोपी मिली है और हमको बैठने के लिए कूलर फूलर लगा के यहाँ पर, कूलर पंखा।
0: कोई और इंतजाम लगता है होना चाहिए या फिर ये काफी है? बेसिक
5: ये काफी है, बेसिक काफी है जी।
6: बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बुराड़ी से आई थी शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पे देखा पानी के लिए की भी सुविधाएं है, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, ठंडक है जगह जगह, मतलब ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट ने अच्छा किया।
0: कैब भी दी जा रही है?
6: हाँ जी, ये कैब भी दी जा रही है और ये मैम टॉवल भी दिया जा रहा है पसीने वगैरह के लिए, अच्छा है गमछा है, बहुत अच्छा करा है मैम इस बार।
0: माँ बाप को सबसे ज्यादा बच्चों की टेंशन रहती है कि बच्चों को इस गर्मी में बाहर कैसे लिया लेकर जाया जाए, और लेकिन बच्चे अगर बाहर है तो उनको अब राहत देने के लिए जो है इस तरीके का कूलिंग जोन जो है वो दिख जाएगा जहाँ पर हर एक तरीके की व्यवस्था जो है वो देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह आपको कूलर्स दिख जाएंगे, फैन दिख जाएंगे, राहत की हर एक चीज जो हर एक व्यवस्था होती है वो यहाँ पर जो है देखी जा रही है। तो इस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो प्रयास है गर्मी से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार वो कदम पूरी तरीके से उठा रही है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे।
7: देखिए सनातन संस्कृति का हर कोई मुरीद है, विदेशी हमारी सनातन संस्कृति को जानने और जीने के लिए लगातार भारत आते रहते हैं। आज सनातन का प्रकाश दुनिया भर में फैल रहा है, इसका जीवंत प्रमाण इस समय राजस्थान के पुष्कर में देखने के लिए मिल रहा है।
8: बिल्कुल, राजस्थान के पुष्कर में भीषण गर्मी में विदेशी साध्वी कठिन नौ धुनी तपस्या में लीन है। रूस में जन्मे ये साध्वी 21 दिनों की कठिन साधना के दौरान रोजाना 3 घंटे से ज्यादा धुनी रमाकर बैठती हैं। नाथ संप्रदाय में धुनी रमाना एक बहुत गहन और पवित्र क्रिया मानी जाती है। इसमें साधक धुनी को अपनी माँ, गुरु या शिव स्वरूप मानकर उसकी सेवा करता है।

0: ये तप शिव का प्रत्यक्ष आह्वान है। ये साधना सनातन की शाश्वत शक्ति का प्रमाण है। इसी सनातन में आस्था रखने वाली रूस में जन्मी एक योगिनी इन दिनों नौ धुनी अग्नि तपस्या में लीन है। ध्यान में लीन ये राधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ हैं, जिन्होंने 10 साल पहले नाथ संप्रदाय अपनाया था। इन दिनों वो पुष्कर में छोटी बस्ती स्थित शमशान भूमि पर अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में नौ धुनियों के बीच बैठकर 21 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रही हैं।
1: नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो नाथ जी बनने का महत्व यही होता है कि जो हमारी धरोहर है उसको संभालना, तो यही हमारी धरोहर है। वह नाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो वह इस तपस्या को कर रही हैं। इनकी वह पहली तपस्या है।
0: ये कोई साधारण तप नहीं, नाथ संप्रदाय की प्राचीन अग्नि साधना है जो कर्मों को भस्म कर आत्मा को शुद्ध कर देती है। और इस साधना में उतरने से पहले शरीर पर भस्म का लेप लगाया जाता है, फिर धुनियों के बीच योग मुद्रा में बैठा जाता है। गोबर के कंडों से लगातार धुनी प्रज्वलित होती रहती है। धीरे धीरे धुनियों में गोबर के कंडों की संख्या बढ़ाई जाती है और अंतिम दिन 108 गोबर के कंडों का इस्तेमाल होता है।
1: कभी भी कोई भी संत महात्मा तपस्या करता है तो नगरी के भला के लिए करता है, विश्व शांति कल्याण हेतु ही करता है, कोई कार्य करता है। तो जो भी जाता है, दर्शन करता है, उसके पुण्य के भागी बनता है। यह 9 धुनी तपस्या है। कोई महात्मा 21 धुनी करता है, कोई 108 धुनी करता है, कोई 1100 करता है। यह आदि अनादि काल से हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा चली आ रही है, जो कि इस कठोर साधना को हमारे संत महात्मा करते हैं, जिसको हम धुनी तपस्या के रूप में जानते हैं।
0: रूस की महिला की इस कठिन साधना की चर्चा अब चारों तरफ है। दूर दूर से लोग इस विदेशी महिला संत को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। पुष्कर की पावन भूमि पर की जा रही ये तपस्या सनातन की अमर ज्योति को विश्व भर में फैला रही है। पुष्कर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, जुलाई में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर जो रथ के पहियों को बनाने का काम है वो शुरू हुआ था, वो पूरा हो गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन तीनों रथों को बनाने का काम फिलहाल तेजी के साथ चल रहा है। वहीं क्योंकि इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से भक्त ओडिशा पहुंचते हैं, तो वहीं देशी विदेशी पर्यटक इस रथ यात्रा के महत्व को समझने भी यहां पर आते हैं।
3: बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन की ओर से 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात समेत कई इंतजामों पर काम शुरू हो गया है।

0: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। एक ओर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों का निर्माण परंपरागत विधि विधान के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर प्रशासन ने 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात और स्वच्छता संबंधी व्यापक इंतजाम शुरू कर दिए हैं। रथ निर्माण कार्य और प्रशासनिक तैयारियों ने श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और श्रद्धा का वातावरण और अधिक बढ़ा दिया है।
1: हम इसीलिए यहाँ आते हैं कि दौड़े तू दौड़ो गोविंदंग, चापे तू मधुसूदनंग, रथे तू बामन दृष्टवांग, पुनर्जन्मंग नविद्यते। भगवान जगन्नाथ को दौड़ बेदीरे दौड़ गोविंद रूप से देखिबा, और चापे तू मधुसूदन, रात में आज जो नौका विहार करेंगे उसमें मधुसूदन रूप में रहेंगे, और रथ में बामन दृष्टवांग, रथ में बामन अवतार में देखने से उनको बामन रूप में मुक्ति लाभ हो जाएगा।
0: भव्य रथ निर्माण कार्य में जबरदस्त तेजी आई है। मंदिर सूत्रों के अनुसार अब तक तीनों रथ के लिए कुल 18 पहियों का निर्माण पूरा हो चुका है। हर साल की तरह इस बार भी रथ निर्माण कार्य धार्मिक परंपराओं और निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करते हुए किया जा रहा है। रूपकार सेवक तीनों रथों के लिए 11-11 साल लकड़ी के ब्लॉकों पर बारीक नक्काशी कर रहे हैं। वर्तमान में लकड़ी के हिस्सों पर भगवान नरसिंह की आकृतियां उकेरी जा रही है। ये लकड़ी रथों की प्रमुख सजावटी और धार्मिक विशेषताओं में शामिल होती है। इन कलाकृतियों में ओडिशा की समृद्ध शिल्प परंपरा और सदियों पुरानी कारीगरी की झलक देखने को मिलती है। वहीं रथ निर्माण के लिए जरूरी लौह उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पंडारी, तुम्बाला, आर कांटा और पंडारी चाबी जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों को बनाया जा रहा है। ये सभी उपकरण विशाल रथों को मजबूती और स्थायित्व देने में अहम है।
2: रथ यात्रा के लिए जो जो लेवल में जिस जिस डिपार्टमेंट का लोगों के लिए जो जो फैसिलिटीज करना होगा, इसके लिए कड़ी तरह से तैयारी हो रहा है। हम आशा करते हैं इस बार रथ यात्रा बहुत बढ़िया तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा और सबका कोऑपरेशन हमें मिलेगा।
0: इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी विशेष तैयारी है। पेयजल, स्वच्छता और यातायात पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वहीं जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार में लिस्टिंग का काम भी शुरू हो गया है, जिसके निरीक्षण के लिए न्यायमूर्ति रथ खुद जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। न्यायमूर्ति रथ के निरीक्षण दौरे के वक्त मंदिर परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
3: सब तैयारी हो चुका है सरकार की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से। मैं तो अभी आ गया हूँ, तो आशा करते हैं अभी 3 घंटे में कुछ काम हम आगे बढ़ा लेंगे। अभी तीसरा संदूक का काम, संदूक भरा जा रहा है, तो ये काम फिर आगे होगा। जो काम बाकी रह गया है, वहाँ तो बहुत सारे गहना है भगवान का, तो जितना तक हम खत्म किए उससे शुरू करेंगे।
0: निरीक्षण के वक्त अधिकारी निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सूचीकरण प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। सूचीकरण के काम का उद्देश्य यहां के रत्न भंडार में रखी गई कीमती चीजों के बारे में उचित दस्तावेजीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पर रिपोर्ट गुड टुडे।
4: और चलिए यहीं पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे झारखंड की उस जगह जहां की रौनक मनाली से कम नहीं।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
6: है। क्या है अपरा एकादशी की महिमा? अपरा एकादशी पर क्या होगा पूजा विधान? अपरा एकादशी पर किन पापों का होगा प्रायश्चित और मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when Home Service here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: देखिए, जंग के बीच में दुनिया चुनौतियों से जूझ रही है, तमाम दुश्वारियां हमारे सामने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से गोल्ड ना खरीदने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि लोग अभी विदेश जाने से बचें। ऐसे में हम आपके लिए घूमने फिरने की कुछ ऐसी जगहें लेकर आए हैं जो हमारे देश में ही हैं और अभी बहुत कम लोगों ने देखी हैं।
9: बिल्कुल, देखिए ऐसी ही एक जगह है झारखंड का पतरातू। ये जगह रांची से कुछ ही घंटे दूर है। इस खूबसूरत जगह को झारखंड का मनाली भी कहते हैं। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है और ये जगह अब धीरे धीरे बाइक राइडर से लेकर टूरिस्ट तक सबका पसंदीदा डेस्टिनेशन भी बनती जा रही है। तो कैसी है ये डेस्टिनेशन, कहाँ है ये, आइए जानते हैं।

0: घुमावदार सड़कें, हरे भरे पहाड़, बादलों से ढकी वादियाँ और बीच में चमकता पतरातू डैम। यहाँ का नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। यही वजह है कि लोग इसे झारखंड का मनाली कहते हैं। मानसून में झारखंड के रामगढ़ के पतरातू की खूबसूरती देखते ही बनती है। यही वजह है कि बाइक राइडर से लेकर फैमिली टूरिस्ट तक हर कोई यहाँ की शांत वादियों का आनंद लेने पहुँचता है। रांची से रामगढ़ जिले के पतरातू के बीच महज 32 किलोमीटर का सफर हर किसी को रोमांच से भर देता है। पिठौरिया घाटी की घुमावदार सड़कों के बीच लोग सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाते। पतरातू डैम यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है। पर्यटक यहां बोटिंग का आनंद लेते हैं, जबकि शाम के समय डूबते सूरज का नजारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहां बने लेक रिजॉर्ट, पार्क और लंबा वॉकवे फैमिली ट्रिप के लिए इसे और खास बनाते हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए भी पतरातू वैली किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ बाइकिंग, रोड ट्रिप और कैंपिंग का अलग ही रोमांच है। कई ट्रैवलर्स तो इसे वीकेंड राइड के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन मानते हैं। अगर आप भी भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच सुकून तलाश रहे हैं तो पतरातू वैली आपके लिए एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन हो सकती है। रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरें अभी बाकी हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: चलिए अब आपको वायरल तस्वीर दिखाते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिनका एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। वीडियो में पुतिन अपनी एक पुरानी जर्मन टीचर वेरा गुरोविच के से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने टीचर का फूल देकर स्वागत किया, उन्हें गले लगाया। वैसे रूस के प्रेसिडेंट ऑफिस की ओर से जानकारी मिली है कि पुतिन ने अपने इस बुजुर्ग टीचर को मॉस्को में विजय परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में ये बुजुर्ग टीचर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मॉस्को आई। पुतिन न सिर्फ उनसे मिले बल्कि उनके लिए एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन भी किया। गुरु शिष्य की इस मीटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर काफी इमोशनल रिएक्शंस आ रहे हैं। खासतौर से लोग पुतिन के इस जेस्चर को अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान के तौर पर देख रहे हैं। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: क्या है अपरा एकादशी की महिमा? अपरा एकादशी पर क्या होगा पूजा विधान? अपरा एकादशी पर किन पापों का होगा प्रायश्चित और मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
1: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: भीषण गर्मी के बीच आई बड़ी खुशखबरी, देश में मानसून तय समय से 4 दिन पहले दे सकता है दस्तक, 25 से 27 मई के बीच केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन का ले रहे मजा। ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार, अयोध्या प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक के मंदिरों में लगा आस्था का मेला, भक्तों ने की सुख और समृद्धि की कामना। बिहार के समस्तीपुर में एआई और रोबोटिक्स सेमिनार, 280 से ज्यादा छात्रों ने लिया हिस्सा, 14 प्रतियोगिताओं में छात्रों ने किया हुनर का प्रदर्शन। कान फिल्म फेस्टिवल से पहले बिछाया गया रेड कार्पेट, उद्घाटन से पहले रोबोट शो ने खींचा लोगों का ध्यान, ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने दिखाया जिम्नास्टिक।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार और सोमवार को लगातार दो दिन लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का असर दिखने भी लगा है। बहुत से लोग राष्ट्रहित में मोदी के इस फैसले के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। शादी ब्याह के मौसम चल रहे हैं और हिंदुस्तान में तो सोने और ज्वेलरी के बिना शादियां अधूरी सी मानी जाती हैं। कई रस्मों रिवाज सोने की ज्वेलरी के बिना पूरे नहीं हो पाते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सोना या उससे बनी हुई ज्वेलरी ना खरीदें तो भाई खरीदें क्या। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्यों एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट जरूर देखें।

0: पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
1: रविवार के बाद सोमवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना नहीं खरीदने की अपील को लेकर पूरे देश का माहौल सरगर्म है, क्योंकि सोना एक सामान्य कमोडिटी नहीं बल्कि देश की सभ्यता, संस्कृति, श्रृंगार, सुहाग और सौंदर्य का भी प्रतीक रहा है। इन सब के साथ ही सोना आपकी आर्थिक शक्ति का भी सूचक रहा है। वक्त के साथ रहन सहन से लेकर खान पान और पहनावे तक में बदलाव का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, लेकिन गुजरते वक्त के आईने में एक एक तस्वीर हजारों साल से यथावत बनी हुई है, और वो है सोने की तस्वीर। हजारों साल पहले शादियों में होने वाले कुल खर्च का तकरीबन 25 से 30 फीसदी हिस्सा सोने की ज्वेलरी पर खर्च होता था, और आज भी शादियों पर होने वाले कुल खर्च का करीब 30 फीसदी हिस्सा सोने पर ही होता है। ये है सोने की अहमियत। यूं तो पीएम ने ये अपील व्यापक देश हित को ध्यान में रखते हुए की है, फिर भी सराफा बाजार से लेकर ज्वेलरी की छोटी छोटी दुकानों और कंज्यूमर्स तक में प्रधानमंत्री की अपील को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
2: देखिए, मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया है कि सोना नहीं खरीदे, मैं समझता हूँ मोदी जी का स्टेटमेंट सही भी है, समझने के लिए फर्क भी है लोगों का। मोदी जी का कहना है कि जो इन्वेस्टर है गोल्ड के रूप में खरीदते हैं, डेड मनी कर देते हैं, जिससे देश के अंदर में बाहर से जो अपन जो सोना इंपोर्ट करते हैं उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है फॉरेन करेंसी का, उसको रोकने के लिए ये मोदी जी ने कहा है। बाकी आम उपभोक्ता जो ज्वेलरी खरीदता है, जिसके घर में शादी है हो रहा है, वो तो खरीदेगा ही। देखिए, आप मानिए, अपनी बेटी के लिए कोई भी अपने कोई ऐसा कोडियो उसको बिना खाली हाथ भेज देगा। कोई 10-5 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की ज्वेलरी खरीदते हैं नहीं, बड़े टारगेट वाले तो है नहीं, वो तो नए के बराबर होते हैं। और वैसे भी एक साल से जो हम देख रहे हैं मार्केट में इतनी मंदी आई हुई है 6-8 महीने से, तो 50% व्यापार हो चुका गोल्ड ज्वेलरी का।
1: दरअसल सोना सदियों से लोगों की भावना का भी हिस्सा रहा है। शादियों में या घर के किसी और फंक्शन में गोल्ड या उससे बनी ज्वेलरी रिश्तों की गहराई की पैमाइश का पैमाना बन जाता है। ऐसे में एक साल तक सोना ना खरीदने की पीएम की अपील पर असमंजस की स्थिति बन जाना स्वाभाविक है, लिहाजा ये जानना जरूरी है कि पीएम ने ये अपील की क्यों है। दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। हालांकि दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाबले भारत की इकोनॉमी लगातार मजबूत और स्थिर बनी हुई है, लेकिन युद्ध के असर से भारत भी अछूता नहीं है। भारत में इसका असर ये पड़ा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। रुपए की मजबूती के लिए जरूरी है कि भारत के इंपोर्ट बिल को कम किया जाए। भारत में कच्चे तेल के बाद सबसे ज्यादा आयात बिल सोने का ही होता है। भारत के कुल आयात बिल का करीब 10% हिस्सा अकेले गोल्ड का होता है, क्योंकि भारत को अपनी कुल खपत का करीब 90% सोना आयात करना पड़ता है। वित्त वर्ष 2025-2026 में भारत ने तकरीबन $72 अरब का सोना आयात किया है, जबकि वित्त 2024-25 में भारत ने $58 अरब का सोना आयात किया था। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में $45.5 अरब का सोना आयात किया गया था। इस बीच इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में आई अप्रत्याशित तेजी और रुपए के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने की वजह से सोने के आयात बिल पर निश्चित रूप से बहुत बुरा असर पड़ा। अगर सोने का आयात बिल कम हो जाए तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका सकारात्मक असर पड़ेगा और रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। अच्छी बात यह है कि कंज्यूमर से लेकर ज्वेलरी मेकर्स तक मौजूदा हालात की तासीर को शिद्दत से समझ रहे हैं, इसीलिए पीएम मोदी की अपील को सीधे तौर पर खारिज करने की जगह बीच का रास्ता अपनाने की बात कह रहे हैं।
3: जहां तक मोदी जी का कहने का है, ये इकोनॉमिक कंडीशन जो पूरे संसार में चल रही है, भारत में चल रही है, इस रिफॉर्म होना डिजर्व करता है, इस तरह के बात आना डिजर्व करता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सारी बेस्ड है गोल्ड पर। हालांकि ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है वो केवल 6% ही ज्वेलरी बनती है, टोटल जितना गोल्ड माइन होता है, जितना गोल्ड प्रोड्यूस होता है, उसका 6% ही ज्वेलरी इंडस्ट्री में आता है। और हमारे जिस समय बात करें, हमारा राजस्थान का इतिहास उठा के देख लें, भारत का इतिहास उठा के देख लें, जब भामाशाह जी ने युद्ध नहीं लड़ा था लेकिन उन्होंने अपना सारा सोना चांदी दे दिया था। इस तरह ही हमारे शेखावटी क्षेत्र में जैन फैमिली, अग्रवाल फैमिली, चौधरी फैमिली, इन्होंने अपनी सारी की सारी ज्वेलरी गला के रख दी थी विदेशियों आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए। अब आक्रमण दूसरे तरीके से होते हैं, आजकल इकोनॉमिक आक्रमण हो रहे हैं, तो इस तरह से हमें हमारे मोदी जी मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं।
1: दिलचस्प तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पहले से ही यानी बीते कुछ महीनों के दौरान सोने के इम्पोर्ट का इंडेक्स तेजी से गिरा है। इसी साल जनवरी में लगभग 100 टन सोने का आयात हुआ था जो फरवरी में गिरकर 65 से 66 टन रह गया। मार्च में तो इसकी भारी गिरावट आई और ये 20 से 22 टन तक आ गया। अप्रैल में सोने का आयात सिर्फ 15 टन रहने का अनुमान है जो पिछले कई दशकों में एक महीने में सबसे कम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल के वर्षों में हिंदुस्तान के लोगों की जागरूकता काफी बढ़ रही है। जहां तक सोने की बात है तो निश्चित रूप से इससे लोगों का, खास तौर पर महिलाओं का, भावनात्मक लगाव होता है। लेकिन खरीदारी रोकने की सूरत में ऐसा नहीं है कि लेन देन का विकल्प बंद हो जाएगा। एक तरीका ज्वेलरी के रोटेशन का भी हो सकता है।
4: जयपुर में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जितने भी ज्वेलर्स हैं वो पूरा पूरा सरकार को अभी समय पर सपोर्ट कर रहे हैं और यही माना जा रहा है कि जो मोदी जी डिसीजंस ले रहे हैं वो एक बार के लिए सही है, हाल फिलहाल उनको सपोर्ट करना चाहिए। चूंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो भारतीय महिलाओं के पास कम से कम देखा जाए तो 10 ग्राम सोना, एक तोला सोना होता ही है, तो अभी ये सुझाव दिए जा रहे हैं कि ऑलरेडी जो यहाँ पे सोना है उसी को रोटेट किया जाए, इंस्टेड ऑफ कि हम अभी नया सोना खरीदें। और निवेशकों को बोला जा रहा है कि एक बार के लिए उनको थम जाने की जरूरत है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी सोना लेना सही नहीं है, तो एक बार वो जरूर पॉज कर लें। और जो दूसरे लोग जो आम खरीदार हैं उनसे, हालांकि सराफा मार्केट का जो कहना है कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी यही सुझाव दिए जा रहे हैं कि ऑलरेडी जो घर में सोना है उसी को रोटेट किया जाए और इम्पोर्ट जो है उसको बहुत ज्यादा कम करने की अभी कोशिश की।
1: अजीब इत्तेफाक ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील तब की है जब पूरे देश में शादियों का मौसम चल रहा है। शादियों में सोना या उससे बनी ज्वेलरी का क्या महत्व है ये किसी से छिपा नहीं है। लोगों की इच्छा भी यही है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सलाह मानी जाए, लेकिन शादियों में थोड़ी बहुत भी ज्वेलरी ना खरीदी जाए। यह फैसला लेना खास तौर पर महिलाओं के लिए आसान नहीं है।
5: मई है, जून है, ये शादी ब्याह का माहौल है, तो गहने तो लोग अपने बच्चों के लिए खरीदेंगे, कस्टमर है यहाँ पर इस समय दुकान में खरीदारी इनकी चल रही है, अपने पसंद का कुछ लेने की सोच रही है। मैम, क्या मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? क्या नाम है आपका?
6: साई
5: जी। आप मुझे ये बताइए कि अब देश के प्रधानमंत्री को तो आप बहुत प्यार करते हैं, हर जगह से वो जीत भी आ रहे हैं, अभी अभी हाल ही में उन्होंने कोलकाता को भी जीत लिया, तो अब उनका ये सजेशन कि भैया एक साल मत खरीदो सोना, आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है, आप साथ हैं उनके बातें?
6: सरकार ने तो कह दिया है सोना एक साल मत खरीदो, पर घर में फंक्शन हो, कुछ भी कार्यक्रम हो तो सोना लेना जरूरी है, क्योंकि शादी में तो सोना लेडीज लोग तो बहुत ज्यादा पहनते हैं और लेडीज के लिए सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सोना थोड़ा तो लेना चाहिए।
1: गोल्ड पुराने समय से ही हमारी सभ्यता, संस्कृति, उत्सव त्योहार का हिस्सा है, इसीलिए इसे एक साल तक नहीं खरीदने का फैसला लेना कतई आसान नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर अपील करें तो उसका असर नहीं पड़े ये भी संभव नहीं। पीएम ने रविवार को अपील की और सोमवार से ही उसका असर ज्वेलरी शॉप पर दिखाई देने लगा।
7: कितना प्रभाव पड़ रहा है आज मार्केट, आपने देखा कितना असर है मार्केट में, कितना असर पड़ भी सकता है?
8: 25-30% के असर की मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना असर ये जरूर पड़ेगा शायद।
7: कितनी वॉकिंग्स हुई है अगर हम देखें इस बयान के बाद, कितनी वॉकिंग्स पे प्रभाव पड़ा है?
8: वॉकिंग्स पे प्रभाव पड़ा है, आप देख ही रहे हैं शोरूम खाली है, जबकि नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता। मंडे एक अच्छा दिन हमारे लिए होता है, संडे देहरादून का मार्केट बंद रहता है, तो मंडे जब हम आते हैं तो एक अच्छा दिन रहता है, अच्छे फुटफॉल्स रहते हैं, बट आज वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि पीएम मोदी की अपील का असर ज्वेलरी या गोल्ड इंडस्ट्री पर पड़ेगा, लेकिन व्यापक राष्ट्र हित में लोग एक साल तक इसके प्रभाव को झेलने के लिए तैयार हैं।
9: हमारा यही विचार है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को चला रहे हैं और अच्छी तरह देश को चलाया, कोरोना से निकाल रहा है, ये संकट से भी हम निकल जाएंगे। हम थोड़ा अपना विचार करें तो जो वो सोच समझ के बोलना है कुछ समझ के बोलना है, तो अपन को व्यापारियों को भी वो रखना चाहिए कि जो वो बोलना है सही बोलना है, अपन व्यापार दूसरा भी कर सकते हैं, कोई सा भी, कोई जरूरी नहीं है कि सोने का ही व्यापार करें, एक साल की तो बात है।
10: व्यापार में कोई फर्क पड़ेगा आपका?
9: नहीं, व्यापार में काफी फर्क पड़ेगा, मगर देश के साथ हैं, देश के संकट के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी बोलना है वो सही बोलना है, जो बोलना है वो सही बोलना है।
1: आपको बता दें कि साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश में भीषण खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्र के नाम अपील की थी कि लोग सप्ताह में कम से कम एक समय का भोजन त्याग दें। देशवासियों से 1 जून के उपवास की अपील करने से पहले शास्त्री जी ने स्वयं और अपने परिवार के साथ मिलकर एक समय का उपवास रखकर मिसाल पेश की थी। शास्त्री जी की अपील को देशवासियों ने काफी गंभीरता से लिया और लोगों ने सोमवार को एक समय का व्रत रखना शुरू किया, जिसका असर ये हुआ कि बाद के दिनों में न सिर्फ देश का खाद्य संकट दूर हुआ बल्कि आज भारत के पास काफी सरप्लस अनाज भी है। पीएम मोदी की अपील को भी लोग सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं, निश्चित रूप से इसके भी अच्छे प्रभाव भविष्य में दिखेंगे। जयपुर से रिदम जैन और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: हिंदुस्तान में सोने का इतिहास बड़ा रोचक है। हिंदुस्तान में बेशक सोने का उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन सोना सदियों से हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। दिलचस्प तो यह है कि हमारे प्राचीन स्क्रिप्चर्स में सोने को लेकर अलग अलग विचार प्रकट किए गए हैं। एक तरफ सोने को मोहमाया, यहां तक कि लोभ का प्रतीक माना गया, तो दूसरी तरफ सोना समृद्धि और संपन्नता का भी प्रतीक रहा। कमाल तो यह है कि सनातन के सबसे प्राचीन वाङ्मय ऋग्वेद में सोने का जिक्र कई बार मिलता है। इतना ही नहीं, वैश्विक इतिहास में सोने का महत्व साफ तौर पर दिखाई भी देता है। प्राचीन काल में सोना रुपए पैसे के विकल्प के तरह देखा जाता था और लड़ाई जीतने के बाद राजा अक्सर हारे हुए राज्य का सोना लूट लिया करते थे।

0: हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति में सोना यानी गोल्ड की अनोखी भूमिका रही है। एक तरफ सोने को माया का प्रतीक मानकर इसके मुंह में ना फंसने की सलाह हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, तो दूसरी ओर सोना समृद्धि ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक भी माना गया है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी ने एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सोने को लेकर भारतीय संस्कृति का द्वंद्व खुलकर सामने आ रहा है। फर्क बस इतना है कि लोगों की प्रतिक्रिया में गोल्ड को लेकर सनातन संस्कृति के द्वंद्व के साथ युग बोध का असर भी जुड़ रहा है।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है कि एक साल तक हमें सोना नहीं लेना है, इस फैसले में मैं उनके साथ हूँ। इससे क्या होगा कि जो हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हमारे देश में ही रहेगा, और ऐसे ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे रुपीज की वैल्यू ग्लोबली बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर हम एक साल तक सोना नहीं लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, इससे हमारा देश जो है और स्ट्रांग ही होगा, तो इसमें मैं उनके साथ हूँ।
0: सोना निश्चित रूप से सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है। सोने या इससे बनी जूलरी के साथ महिलाओं की भावनाएं खास तौर पर जुड़ी रही हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पर मानना है कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है, सुदृढ़ है, तभी हम सोने से समृद्धि का रास्ता तलाश सकते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी की अपील से जिन ज्वेलरी कारोबारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, वे भी पीएम की अपील के पक्ष में खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गोल्ड से जुड़े कारोबारी तो वैकल्पिक उपाय भी बता रहे हैं।
2: राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित सबसे बड़ा है, उसमें कोई दो मत नहीं है। हम सरकार के साथ है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि इंपोर्ट कम हो, और इसके लिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का मैं चेयरमैन भी हूँ। तो हमने ऑलरेडी एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो हम चाहते हैं कि जो इंपोर्ट हो रहा है उसको कम किया जाए, इसलिए हम लोगों ने ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया है। अगर इसे एज इट इज मान लिया जाता है तो वो एंड टू एंड सोल्यूशन है, और हम ये केवल सोल्यूशन बता नहीं रहे, हम सोल्यूशन सिर्फ सबमिट नहीं कर रहे, हम इसे ग्राउंड जीरो पे इंप्लीमेंट भी करने की तैयारी रखते हैं और हम उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अगर आ जाती है तो मोदी जी साहब तो हमारे एक साल के लिए कह रहे हैं कि सोना आप मत वापरिए और इंपोर्ट घटाइए, तो निश्चित तौर में आने वाले 5 से 10 साल भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और भी बहुत सारे इसके उपाय हो सकते हैं, जैसे कि पुराना सोना अगर कोई लेके आता है तो उस पर कैपिटल गेन ना लगे, पुराना सोना अगर कोई लेके आता है और उसके बदले में नई ज्वेलरी कोई लेता है तो जीएसटी में उसे वे ऑफ किया जा सकता है, और भी कई हमारे हाउस होल्ड में जो गोल्ड है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मंदिरों में जो सोना है उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यूज़ मतलब बिना पैसे से नहीं, उसे एज अ इंटरेस्ट करके भी हम लोग वो सर्कुलेशन में ला सकते हैं। साथ ही साथ हमारे आरबीआई में भी काफ़ी गोल्ड है तो उसको भी सर्कुलेशन में हम लोग ला सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के बहुत सारे उपाय हैं जिससे कि हम लोग हमारा इम्पोर्ट कम कर सकते हैं, और ऑलरेडी ये उपायों पे हम लोग अगर काम करते हैं तो शायद ये इंडस्ट्री फल फूल भी सकती है और बच भी सकती है।
0: पीएम मोदी की एक साल तक सोना न खरीदने की अपील पर कारोबारियों और आम लोगों की प्रतिक्रिया देखकर साफ तौर पर लगता है कि आने वाले दिनों में सोने का इंपोर्ट कम होगा। इत्तेफाक ये है कि भारत में सोने का उत्पादन कुल खपत का बमुश्किल 10% ही होता है, लेकिन प्राचीन काल से ही सोना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। दुनिया के प्राचीनतम वांग्मय माने जाने वाले ऋग्वेद में सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग बार बार आता है। इतना ही नहीं, देवताओं के रथ, आभूषण, कवच, अश्व आदि सोने से बने बताए गए हैं। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी स्वर्ण का जिक्र बार बार आता है। यजुर्वेद में यज्ञों में स्वर्णदान के लाभ गिनाए गए हैं, साथ ही सोने के बर्तन और स्वर्ण आभूषणों का जिक्र भी इसमें कई जगह मिलता है। वहीं यजुर्वेद में सोने को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। अथर्ववेद में सोने को आरोग्य और चिकित्सा से जुड़ा माना जाता है। अथर्ववेद में स्वर्ण यानी सोने को रोग नाशक, आयुवर्धक और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना गया है। अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में सोना पहनने या धारण करने से आध्यात्मिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी बताए गए हैं। वेदों के अलावा पुराणों, उपनिषदों और प्रसिद्ध महाकाव्यों में भी सोने का जिक्र बार बार देखने को मिलता है। रामायण में सोने की लंका के जिक्र से भला कौन नावाकिफ होगा। इतना ही नहीं, माँ सीता के स्वर्ण आभूषणों का जिक्र भी कई बार मिलता है। यहाँ तक कि माँ सीता के हरण वाले प्रसंग में भी सोने के मृग का वर्णन मिलता है। रामायण के अलावा भागवत पुराण में भगवान के स्वर्ण आभूषणों और सिंहासनों का जिक्र मिलता है। काबिले गौर है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास सोने यानी गोल्ड के महत्व से भरा पड़ा है। गोल्ड और उससे जुड़ी कलाकृतियों या आभूषणों का सबसे पहला इतिहास 6500 साल पहले मौजूदा दौर के बुल्गारिया में होने के प्रमाण मिलते हैं। 3600 से 2000 ईसा पूर्व सोने के इस्तेमाल का प्रमाण मिस्र में मिलता है। प्राचीन मिस्र के लोग सोने को देवताओं का अंश मानते थे, जो अलौकिक शक्ति और अमरता का प्रतीक था। गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के का पहला जिक्र 600 ईसा पूर्व लीडिया में मिलता है, जो आज तुर्की में है। लीडिया में पहली बार सोने और चांदी के मिश्रण से सिक्के बनाए गए थे। 500 ईसा पूर्व प्राचीन चीनी साम्राज्य में यिंग युआन के नाम से चौकोर सोने के सिक्के चलाए जाने का जिक्र मिलता है। 333 ईसा पूर्व सिकंदर की सेना ने पर्सिया पर हमला कर सोने का खजाना लूटा था, ऐसा जिक्र इतिहास की किताबों में मिलता है। रोमन साम्राज्य के जूलियस सीजर ने गॉल युद्ध जीतने के बाद सोना भी लूटा था और लूटे हुए सोने का इस्तेमाल रोम का कर्ज उतारने में किया था। 1489 में इंग्लैंड के राजा किंग हेनरी 7वें के शासनकाल में पहला गोल्ड सिक्का ढाला गया था। कहने की जरूरत नहीं है कि सोना प्राचीन काल से ही सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सभ्यता संस्कृति का हिस्सा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए जे एंड स्पेशल की आज के हमारे इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट कान 12 से 23 मई तक फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में आयोजित हो रहा है। देश दुनिया की कई बड़ी हस्तियां कान के भव्य रेड कार्पेट पर अपने स्टाइल से छाप छोड़ेंगी। वहीं दुनिया भर की कई फिल्मों की स्क्रीनिंग भी यहां पर रखी जाएगी, जिसको लेकर कान में रेड कार्पेट बिछाया गया है। पैलेस दे फेस्टिवल्स के बाहर तैयारियों का नजारा देखने लोगों की भीड़ लगी है। इन सब के बीच में कान में रोबोट शो ने लोगों का ध्यान खींचा, जहां ह्यूमनॉइड रोबोट ने जिम्नास्टिक दिखाया। इस करतब को देखकर लोग रोमांच से भर गए। इस हफ्ते भी कई धमाकेदार फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं। एक तरफ है आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो, और दूसरी तरफ है संजय दत्त की आखिरी सवाल। थिएटर्स ही नहीं, ओटीटी पर भी दर्शकों को कई ऐसी फिल्में और सीरीज देखने के लिए मिलेंगी, जिनका काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था।
2: अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोच है विक्की। डिबेट यानी विवाद, भारत विवाद नहीं, संवाद यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इसमें भरोसा लगता है।
3: सच। धुरंधर में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद संजय दत्त एक बार फिर पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने को तैयार है,
2: वरना आजकल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट।
3: उनकी फिल्म आखिरी सवाल 15 मई को थिएटर में रिलीज होने वाली है।
2: तो हैशटैग बनाते विल शिवाजी बेंड द नी।
4: देखिए डिबेट नहीं है, ये दंगा है।
2: इतिहास गवाह है, जब भी भगवे के और कोई कालिक देखता है तो उसी स्याही से इतिहास लिखा जाता है।
5: लेफ्ट इज ऑलवेज राइट।
6: सारा मुझे अपने लक्ष्य तक।
3: पहले ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट में देरी की वजह से इसके रिलीज डेट को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया।
5: ये चोट निशान छोड़ेगी।
3: इस फिल्म की सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है।
7: बटोर सके और हमें इमोशनल।
8: ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना सर, ताकि आप अपने आरएसएस को बचा सके।
3: रिलीज से पहले राजधानी में फिल्म का एक प्रीमियर रखा गया है। इस प्रीमियर में कई नामी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।
7: कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ।
3: फिल्म में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बड़े प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है।
7: और आरएसएस वायलेंट है,
2: वो तब गिरा जब इस देश के बहुसंख्यक समाज का विश्वास टूट गया।
3: संजय दत्त की इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।
9: आदमी शिष्टाचारी है, पति आज्ञाकारी है, और तो और वन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी है। समस्या अबे हमारे जीवन में कहां से आएगी समस्या।
3: संजय दत्त की आखिरी सवाल को पर्दे पर टक्कर देने के लिए आयुष्मान खुराना हंसी ठहाकों का फुल डोज लेकर आ रहे हैं।
10: जानवर काजे भूल गए, घर को पिंजरा का चिप पकड़ लिया।
9: अरे चंचल को।
3: उनकी फिल्म पति पत्नी और वो दो भी 15 मई को रिलीज हो रही है।
11: खातून कौन थी? Who was the ladies?
9: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
11: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
3: इस फिल्म में आयुष्मान, रकुलप्रीत सिंह, वामिका गाबी और सारा अली खान के साथ कॉमेडी का तड़का लगाएंगे।
12: कैसे है आपका मानची?
3: ये फिल्म 2019 में कार्तिक आर्यन और भूमि पडनेकर की फिल्म पति पत्नी और वो की सीक्वल है। टीजर रिलीज होने के बाद से इस फिल्म को लेकर दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई है। फिल्म में आयुष्मान खुराना का लुक भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।
13: धर्म करते हैं कर्म छूटता है, कर्म करते हैं धर्म छूटता है, कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुंचती।
14: 8 साल में तो आम का पेड़ भी फल देने लग गए, तेरे में तो कैरी भी ना फूट रही।
15: हमारी इन्वेस्टिगेशन के
3: रणदीप हुड्डा की मोस्ट पॉपुलर सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 भी 15 मई को ही ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रहा है।
16: ये है अभय गुज्जर, बियर्डों का राजा।
17: कल रात तक पैसे ना आए ना लल्ला,
18: तुझे बियर्डन लगा दूंगा।
3: हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था।
19: बड़ा प्लान कर रहे हैं,
5: देवी के सर पर शेख साहब का हाथ है।
6: यहाँ का बादशाह सिर्फ एक है और वो है हम।
3: ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सीरीज क्राइम, पॉलिटिक्स और करप्शन की दिलचस्प कहानी लेकर आ रही है।
7: हम तो महादेव के भक्त हैं, एक ही बार में।

0: यानी ये हफ्ता सिनेमा के शौकीनों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बड़े पर्दे के साथ साथ ओटीटी पर भी उन्हें कई ऑप्शन मिलने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: करेंगे हम आज हर हर महादेव।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Good news today.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
14: भीषण गर्मी के बीच आई बड़ी गुड न्यूज, देश में मॉनसून तय समय से 4 दिन पहले दे सकता है दस्तक, 25 से 27 मई के बीच केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन का ले रहे रोमांच। ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार, अयोध्या प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक के मंदिरों में लगा आस्था का मेला, भक्तों ने की सुख और समृद्धि की कामना। बिहार के समस्तीपुर में एआई और रोबोटिक्स सेमिनार, 280 से ज्यादा छात्रों ने लिया हिस्सा। 14 प्रतियोगिताओं में छात्रों ने किया हुनर का प्रदर्शन। कान फिल्म फेस्टिवल से पहले बिछाया गया रेड कार्पेट, उद्घाटन से पहले रोबोट शो ने खींचा लोगों का ध्यान। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने दिखाया जिम्नास्टिक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
14: कौसानी और बैजनाथ में उमड़ रही पर्यटकों की भारी भीड़, महानगरों की गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे सैलानी। बागेश्वर के हिल स्टेशन कौसानी में मौसम बेहद सुहाना हुआ, लगातार बारिश से साफ दिखाई दे रही हिमालय की चोटियां। जंगल की आग से फैला धुआं अब बारिश के बाद पूरी तरह से चढ़ गया, पर्यटक अब खुले आसमान और खूबसूरत वादियों का मजा ले रहे। पर्यटकों को खूब लुभा रहा बैजनाथ मंदिर में दर्शन और झील में नौकायन, यहां छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोग। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय कारोबारियों में खुशी का माहौल, होटल रेस्टोरेंट और दुकानों में लौटी रौनक। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शनों के लिए आए हजारों की तादाद में भक्त। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर, बेसन के लड्डू अर्पित किए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मंगलवार को ही हुआ था हनुमान जी का भगवान राम से मिलन। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। सुबह से राम मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अयोध्या में बड़ा मंगल पर भक्तों ने बंदरों को खिलाया खाना, बंदरों के खिलाने के लिए सुबह से मंदिर पहुंच रहे लोग। भक्तों ने बंदरों को परोसा केला, फल, चना और गुड़, बंदरों को तरबूज भी खिलाया। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़ा मंगल को उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए कतार। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। ज्येष्ठ का दूसरा बड़ा मंगलवार पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह, काशी के हनुमान मंदिरों में सुबह से लगी कतारें। मान्यता है कि बड़े मंगलवार के दिन हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था, इसी वजह से ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार का विशेष महत्व। इस साल अधिक माह के चलते भक्तों को कुल 8 बड़े मंगलवार का संयोग मिलेगा, श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। पाताल भूमि हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी, मान्यता है कि यहां हनुमान जी की स्वयं पाताल लोक से प्रकट हुए थे। भक्तों का विश्वास कि लगातार 41 दिन दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसी आस्था के साथ बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, रथ निर्माण का काम चल रहा। तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य पूरा, रथ निर्माण के लिए कुल 818 लकड़ियों की होती है जरूरत। 200 से ज्यादा कुशल कारीगर तीनों रथों का निर्माण कर रहे, बिना लोहे की कील के बना रहे रथ। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर 15 लाख से ज्यादा और 20 लाख तक श्रद्धालुओं के आने की संभावना, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात के पुख्ता इंतजाम। जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार में लिस्टिंग का काम भी शुरू, लिस्टिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकार। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। सबसे पहले भगवान महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक, दूध दही घी शक्कर शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई पूजा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, भस्म आरती में लिया हिस्सा। पूरी तरह शिव भक्ति में लीन दिखी एक्ट्रेस, ये भगवान शिव के निराकार स्वरूप को साकार में बदलने की जीवंत परंपरा। भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम, मौसम बदलने के बाद भी बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम इलाके में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, माणा गांव से लेकर बद्रीनाथ धाम तक जगह जगह श्रद्धालुओं का तांता। बद्रीनाथ धाम में व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किए गए आईटीबीपी के जवान, जोशीमठ से बद्रीनाथ तक तैनात किए गए आईटीबीपी के करीब 25 जवान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नशे के खिलाफ पदयात्रा साइकिल रैली का आयोजन, युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए आयोजन। नशा मुक्ति के खिलाफ आयोजित रैली में शामिल हुए हजारों लोग, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की अगुवाई। गुवाहाटी पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मां कामाख्या मंदिर में की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर के दरबार में पहुंची बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन, परिवार के संग किए दर्शन पूजन। गुवाहाटी पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मां कामाख्या मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने मां कामाख्या मंदिर में किए दर्शन पूजन, कहा देश और राज्य में शांति की कामना। अयोध्या में सोमनाथ अमृत महोत्सव को लेकर शिव मंदिरों में विशेष पूजा, मंदिर में किया गया रुद्राभिषेक। समस्तीपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 दिवसीय एआई रोबोटिक्स सेमिनार का आयोजन, इस टेक फेस्ट में बिहार समेत कई राज्यों के 280 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। टेक फेस्ट में रोबोटिक्स, कोडिंग, टेक क्विज, डिजाइनिंग समेत 14 प्रतियोगिताएं करवाई गई, छात्रों ने तकनीकी प्रतिभा क्रिएटिविटी का शानदार प्रदर्शन किया। एआई और रोबोटिक्स छात्रों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, ऐसे आयोजन बच्चों की क्रिएटिविटी और तकनीकी सोच को बढ़ावा देंगे। सेमिनार में 13 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज शामिल हुए, आने वाले वक्त में मेडिकल और रिसर्च फील्ड में रोबोटिक्स की होगी बड़ी भूमिका। सेमिनार में छात्रों को एआई आधारित तकनीक और रोबोटिक्स के व्यवहारिक उपयोग की जानकारी दी गई, आपदा राहत सर्जरी और मशीन डेवलपमेंट में एआई भविष्य बदलने वाला है। मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने की तैयारी शुरू, करीब 2000 पैकेट्स लीची मई के अंत में भेजी जाएगी दिल्ली। बेहतरीन बागानों से लीची चुनकर खास पैकेजिंग के साथ भेजी जाएगी दिल्ली, शाही लीची सीजन को लेकर अलर्ट मोड में मुजफ्फरपुर प्रशासन। मुजफ्फरपुर की जीआई टैग वाली शाही लीची की मिठास फिर देश के वीवीआईपी तक पहुंचेगी, हर बार की तरह इस बार भी टॉप क्वालिटी लीची भेजी जाएगी। एमपी के कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस फैलने के बाद अलर्ट मोड में नागपुर, यहां के महाराज बाग प्राणी संग्रहालय को किया जा रहा सैनिटाइज। सोमवार को वन्य प्राणियों के सभी पिंजरों को डिसइंफेक्टेड किया गया, साथ ही सुरक्षा गार्ड्स को भी सतर्क किया गया। यूपी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही प्रतियोगिता में 1400 से ज्यादा पहलवान ले रहे हिस्सा। गिर के जंगल में पर्यटकों को रोमांचित करने वाली न्यूज, पर्यटकों के सामने शेरनी ने शिकार पर किया हमला, बाद में दूसरे शेर भी शामिल हुए। जेएनके के राजौरी में लोगों को सशक्त बना रहा सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगम, 88.8 लोगों को सूचना देने के साथ उपलब्ध करवा रहा रोजगार के मौके। राजस्थान के पुष्कर में 43 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में विदेशी महिला की अनोखी तपस्या की चर्चा हो रही, महिला भक्त ने 10 साल पहले अपनाया था नाथ संप्रदाय। पुष्कर में नौ धुनी अग्नि तप कर रही विदेशी भक्त रोज करीब 3.25 घंटा अग्नि के बीच में बैठकर करती हैं तप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी ने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दरबार में लगाई हाजिरी। दोनों नेताओं ने दर्शन पूजन किया। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच में देश में एलपीजी उत्पादन से जुड़ी गुड न्यूज आई है। 35-36 हजार टन से बढ़कर 54 हजार टन प्रति दिन हुआ देश में एलपीजी का उत्पादन। प्रधानमंत्री की अपील के बाद साइकिल पर कोर्ट पहुंचे जबलपुर हाईकोर्ट के जज। 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर हाईकोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री की अपील का असर भोपाल में लघु उद्योग निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण ने ई रिक्शे से दफ्तर पहुंचकर संभाला पदभार। राजस्थान के सवाई माधोपुर से आया भालू की मस्ती का वीडियो। प्रचंड गर्मी से बचने के लिए पानी भरे गड्ढे में नहाता लोटता हुआ दिखाई दिया भालू।

0: बांग्लादेश सीमा पर लोगों के साथ बेहतर संबंधों के लिए बीएसएफ की खेल कूट नीति। कूच बिहार में स्थानीय युवाओं के साथ एक दोस्ताना वॉलीबॉल मैच का आयोजन। मुक्ता प्राइमरी स्कूल के मैदान में हुए इस मैच में स्थानीय टीम ने बीएसएफ की टीम को 2-0 से मात दी। बीएसएफ अफसरों से लोगों से सहयोग करने की अपील की। एशियाई शहरों के लिए मशहूर गुजरात का गिर अब अपनी अनोखी कला के लिए बन चुका पहचान। यहां यूनिक थ्रेड आर्ट से तैयार की जाती है अद्भुत कलाकृतियां। इलाके में पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से बनाई जा रही स्पेशल आर्ट, इसमें लकड़ी के बोर्ड पर छोटी कीलें लगाकर धागों को जोड़कर बनाई जाती है जीवंत तस्वीरें। 600 रुपए से लेकर 15,000 तक में बिकती है कलाकृति। पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ इस कला से युवाओं को मिल रहा रोजगार भी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द की नीट यूजी परीक्षा 2026। सीबीआई करेगी पेपर लीक की जांच। 3 मई को हुई थी ये परीक्षा, बैठे थे 22 लाख छात्र। असम में नई सरकार का हुआ शपथ ग्रहण। हिमंता बिस्वा सरमा ने दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन नवीन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को हाथ मिलाकर दी बधाई। पीएम ने सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। रणजीत कुमार दास बनाए गए असम विधानसभा के स्पीकर। पहले मंत्री रह चुके हैं रणजीत कुमार दास। उत्तर भारत के मौसम में फिर से बदलाव। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आईएमडी का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश, गरज चमक और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर राजस्थान में मौसम बदलने के संकेत। आंधी और बिजली गिरने की आशंका। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को लेकर भी अलर्ट। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में आज कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश। केरल तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप में बारिश का रहेगा दौर। हिमाचल प्रदेश में फिर करवट लेगा मौसम। 5 जिलों में बारिश, आंधी, पानी का अलर्ट। हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिलों में बारिश के साथ गिरेंगे ओले भी। हिमाचल प्रदेश में मई महीने में अब तक 9 जिलों में दर्ज की गई सामान्य से ज्यादा बारिश। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बारिश, आसमान में छाई धुंध। अयोध्या में मौसम हुआ सुहाना, श्रद्धालुओं को मिली गर्मी से थोड़ी राहत। धुरंधर के बाद अब बड़े पर्दे पर महादेव बनेंगे रणवीर सिंह। फिल्म प्रलय में शिव के किरदार में नजर आएंगे। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 का जलवा जारी। फिल्म ने 54 दिनों में की 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई। फिल्म दृश्यम 3 के हिंदी वर्जन की शूटिंग पूरी। 2 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। लॉरेंस ऑफ पंजाब हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार की आपत्ति के बाद बदलेगा फिल्म का नाम। बॉलीवुड के बाद अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रही अभिनेत्री दिशा पाटनी। उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म द पोर्टल फोर्स का ट्रेलर आउट। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में होगा मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा यह मैच। अंक तालिका में पहले पायदान पर पहुंच जाएगी मैच जीतने वाली टीम। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद 2 नंबर पर, गुजरात 3 नंबर पर। आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें जीटी ने 5 मैच अपने नाम किए थे। पैट कमिंस के लौटने के बाद सनराइजर्स की टीम एक बार फिर से मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। गुजरात को अपने कैप्टन शुभमन गिल से काफी उम्मीदें हैं। हैदराबाद की टीम अभिषेक शर्मा से आस लगाए बैठी है। कान फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन से पहले कान में रेड कार्पेट बिछाया गया। पैलेस दे फेस्टिवल्स के बाहर तैयारियां। मीडिया कैमरों ने रेड कार्पेट तैयारियों को अपने कैमरा में कैप्चर किया। फेस्टिवल्स के बाहर पूरे दिन हलचल। 23 मई तक चलेगा कान फिल्म फेस्टिवल। दुनिया भर के फिल्मकारों सितारे इस बार फेस्टिवल में लेंगे हिस्सा। कान में रोबोट शो ने लोगों का ध्यान खींचा। ह्यूमन रोबोट ने जिम्नास्टिक करके दिखाई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी की बिगड़ी तबीयत। बंगाल में हार का साइड इफेक्ट, ममता हुई बेहोश। तरेराह टीएमसी समर्थक की पिटाई का सच क्या? उम्र से बड़े संस्कार। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल। देखिए शुभम के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: सनातन संस्कृति का प्रकाश दुनिया भर में फैल रहा है, इसका जीवंत प्रमाण इस समय राजस्थान के पुष्कर में देखने के लिए मिल रहा है। पुष्कर में भीषण गर्मी में विदेशी साध्वी कठिन 9 धुनी तपस्या में लीन है। रूस में जन्मी ये साध्वी 21 दिनों की कठिन साधना के दौरान रोजाना 3 घंटे से ज्यादा धुनी रमाकर बैठती हैं।

0: ये तप शिव का प्रत्यक्ष आह्वान है। ये साधना सनातन की शाश्वत शक्ति का प्रमाण है। इसी सनातन में आस्था रखने वाली रूस में जन्मी एक योगिनी इन दिनों नौ धुनी अग्नि तपस्या में लीन है। ध्यान में लीन ये राधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ हैं, जिन्होंने 10 साल पहले नाथ संप्रदाय अपनाया था। इन दिनों वो पुष्कर में छोटी बस्ती स्थित शमशान भूमि पर अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में नौ धुनियों के बीच बैठकर 21 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रही हैं।
1: नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो नाथ जी बनने का महत्व तो यही होता है कि जो हमारी धरोहर है उसको संभालना, तो यही हमारी धरोहर है। वह नाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो वह इस तपस्या को कर रही हैं। इनकी वह पहली तपस्या है।
0: ये कोई साधारण तप नहीं, नाथ संप्रदाय की प्राचीन अग्नि साधना है जो कर्मों को भस्म कर आत्मा को शुद्ध कर देती है। और इस साधना में उतरने से पहले शरीर पर भस्म का लेप लगाया जाता है, फिर धुनियों के बीच योग मुद्रा में बैठा जाता है। गोबर के कंडों से लगातार धुनी प्रज्वलित होती रहती है। धीरे धीरे धुनियों में गोबर के कंडों की संख्या बढ़ाई जाती है और अंतिम दिन 108 गोबर के कंडों का इस्तेमाल होता है।
1: कभी भी कोई भी संत महात्मा तपस्या करता है तो नगरी के भला के लिए करता है, विश्व शांति कल्याण हेतु ही करता है, कोई कार्य करता है। तो जो भी जाता है, दर्शन करता है, उसके पुण्य के भागी बनता है। यह 9 धुनी तपस्या है। कोई महात्मा 21 धुनी करता है, कोई 108 धुनी करता है, कोई 1100 करता है। यह आदि अनादि काल से हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा चली आ रही है, जो कि इस कठोर साधना को हमारे संत महात्मा करते हैं, जिसको हम धुनी तपस्या के रूप में जानते हैं।
0: रूस की महिला की इस कठिन साधना की चर्चा अब चारों तरफ है। दूर दूर से लोग इस विदेशी महिला संत को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। पुष्कर की पावन भूमि पर की जा रही ये तपस्या सनातन की अमर ज्योति को विश्व भर में फैला रही है। पुष्कर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates. Steely Dan, Loggins and Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search sailing or tell your device to play sailing on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: News Pun, Raah Sachchai Ki, Raat 9 Baje.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, रुद्रप्रयाग का संगम पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र। यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कसौनी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं सैलानी। ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार, अयोध्या प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक के मंदिरों में लगा आस्था का मेला, भक्तों ने की सुख समृद्धि की कामना। बिहार के समस्तीपुर में आए और रोबोटिक सेमिनार, 280 से ज्यादा छात्रों ने लिया हिस्सा, 14 प्रतियोगियों में छात्रों ने किया हुनर का प्रदर्शन। कैन फिल्म फेस्टिवल से पहले बिछाया गया रेड कार्पेट, उद्घाटन से पहले रोबोट शो ने खींचा लोगों का ध्यान, ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने दिखाया जिम्नास्टिक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधवा, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है 7 बजे की गुड न्यूज का। 7 अच्छी खबरें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज, आज है बड़ा मंगल। कहते हैं कि आज के दिन हनुमान जी की आराधना करने से जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं, लिहाजा बड़ा मंगल पर आज हनुमान मंदिरों में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। ऐसे में आज की हमारी गुड न्यूज नंबर 1 यही है, बड़ा मंगल पर बजरंग बली हरेंगे हर संकट। 12 मई 2026 को ज्येष्ठ महीने के दूसरे बड़ा मंगल पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ समेत कई शहरों में सुबह 4 बजे से ही हनुमान मंदिरों में लंबी कतारें देखने को मिली और जय श्री राम और बजरंग बली की जय घोष भी सुनाई दी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी और प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और इस दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और हनुमान जी की आराधना की। जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए जहां श्रद्धालुओं को प्रसाद और शरबत वितरित किया गया। अत्यधिक भीड़ के कारण पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के बड़ा मंगल पर हनुमान जी की विशेष पूजा फलदायी मानी जाती है, जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
4: ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार है और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध मरकट वाले हनुमान मंदिर की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सुबह से श्रद्धालु का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर परिसर इस वक्त जयकारों से गूंज उठ रहा है। किस तरीके से जय श्री राम के जो गूंज है आपको वो पूरे मंदिर परिसर में जो है सुनाई देने वाली है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से लंबी लंबी लाइन जो है आपको वो नजर आ जाएगी और भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ इन लाइनों में इंतजार करके जो है अंदर जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने। और वैसे भी माना जाता है कि ज्येष्ठ महीने के जो मंगलवार होते हैं वो वाकई में बेहद खास होते हैं और इस समय हनुमान जी की पूजा उपासना जो है बड़े ही फलदायी होता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ मरकट वाले हनुमान मंदिर की किस तरीके से है, तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। हर कोई जो है मन में ढेर सारी आस्था के साथ आपको इस तरफ की मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो लोग जो है क्योंकि पीछे की तरफ ही जो है हनुमान जी स्थापित है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब यहाँ पर आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए जो है वो नजर आ जाएंगे। और बड़े मंगल में वैसे ही माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह के जो संकट है वो दूर होते हैं।
3: देवभूमि में इन दिनों आस्था, भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मौसम की चुनौतियां कैसी भी हों लेकिन श्रद्धालुओं का जोश हाई है, कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हमारी आज की अगली गुड न्यूज यही है, चारधाम यात्रा में आस्था अपार, पर्यटन को रफ्तार। हर दिन के साथ चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। उत्साह का आलम यह है कि केदारनाथ में 4.5 लाख तो बद्रीनाथ में 3 लाख के करीब भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। राज्य सरकार और प्रशासन भी यात्रियों की सुविधाओं को हर समय पुख्ता बनाने में जुटा है।
5: देवभूमि इन दिनों आस्था के अद्भुत रंग में रंग चुकी है। केदारनाथ में जहां तक नजर जाएगी केवल और केवल भक्ति में लीन भक्त दिखेंगे। वहीं बद्री विशाल के धाम पर भगवान बद्री नारायण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में आस्था की एक अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर चारों धामों पर भक्ति विश्वास और आस्था का दिव्य संगम नजर आ रहा है। पहाड़ों में गूंजते मंत्रोच्चार, मंदिरों की घंटियां और भक्तों की अटूट श्रद्धा देवभूमि को इस समय एक अलौकिक और दिव्य स्वरूप दे रही है। और इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए हेली सर्विस को भी पहले से ज्यादा बेहतर और सुगम बनाया गया है। श्रद्धालुओं को कम समय में सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिल पाए इसके लिए व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 22 अप्रैल से लेकर अब तक 21,000 से ज्यादा श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए चार धाम यात्रा कर चुके हैं। फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से संचालित शटल सेवाओं से 17,976 यात्रियों ने यात्रा की, जबकि चार्टर्ड सेवाओं के जरिए 3,974 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जाहिर है बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेली सर्विस का लाभ उठाकर बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह पहले से बेहतर सर्विस है।
6: हम लोग सेफ फ्लाइंग को इंश्योर करते हैं, बैड वेदर कंडीशंस को या अचानक से चेंज होने वाले वेदर के केस में हम लोग जो फ्लाइंग को स्टॉप करते हैं या सिक्योरिटी के दृष्टिगत और जो क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं वो विजिबिलिटी को लेके भी लगातार उस पर नजर रखी जाती है।
5: कुछ लोग हेली सर्विस से तो कुछ लोग पैदल, कुछ घोड़ों से यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है और अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं।
7: सड़कों पे गाड़ियों की लंबी कतार, चाहे रात के अंधेरे में चमचमाती गाड़ियों की लाइट सड़कों पे दिखाई दे रही है, वहीं हर सेकंड गाड़ियों की 2 मिनट में 1 किलोमीटर से लंबी लाइन का सड़कों पे देखने को मिल रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं का भारी भीड़, एक अलग ही उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है।
5: चारधाम यात्रा के लिए इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि में पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और गुड न्यूज केवल यही नहीं है कि चारों धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, बल्कि इस यात्रा से स्थानीय लोगों के चेहरों पर भी खुशियाँ लौट आई है। चारधाम यात्रा ने पहाड़ की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। होटल्स, ढाबे, टैक्सी, घोड़ा संचालक, दुकानदार और स्थानीय कारोबारी सभी को रोजगार मिल रहा है।
8: अच्छे इंतजाम है और यात्रा भी अच्छी चल रही है वहाँ पे और सुविधा बहुत अच्छी दी हुई है वहाँ पे।
5: यात्रा मार्गों पर रौनक बढ़ गई है और छोटे व्यापारियों की आमदनी में भी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी आस्था का ये महापर्व श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी उम्मीद और रोजगार की नई सौगात लेकर आया है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गर्मियों के मौसम की खूबसूरती सिर्फ छुट्टियां ही नहीं बल्कि इस मौसम में आने वाले स्वादिष्ट फलों में भी छिपी होती है। और जब बात गर्मी के फलों की हो तो आम और लीची का जिक्र सबसे पहले होता है। हर किसी को आम और लीची के स्वाद का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में आज की तीसरी गुड न्यूज यही है, प्रयागराज के आम और मुजफ्फरपुर की लीची की बढ़ी मांग। फलों का राजा कहलाने वाला आम और लीची गर्मियों में हर किसी की पहली पसंद होते हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, हर कोई इनका स्वाद चखना चाहता है, इंतजार करता है इन फलों का। प्रयागराज का आम और मुजफ्फरपुर की लीची बाजारों में पहुंच रही है।

0: प्रयागराज में कई सौ हेक्टेयर में फैले आम का बाग हरियाली और फलों से लहलहा रहे हैं। पेड़ों पर लटकते रसीले आम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। रस से भरे मीठे आम न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि गर्मियों के मिठास को भी दोगुना कर देते हैं, और इसका स्वाद तब और बढ़ जाता है जब बाजारों में इसकी अलग अलग वैरायटी पहुंचती है। और इस साल आम का स्वाद चखने वालों के लिए गुड न्यूज है कि इस बार आंधी तूफान का आम की फसल पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। ऐसे में इस बार आम की बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है।
1: जो देखा गया है मौसम ने साथ दिया है, बहुत विपरीत मौसम नहीं रहा है तो प्रयागराज क्षेत्र में अच्छे आम उत्पादन की उम्मीद है।
2: कौन कौन सी वैरायटी
1: है यहाँ पर? प्रयागराज में दशहरी है, लंगड़ा है, चौंसा है, आम्रपाली भी लोग काफी कुछ कर रहे हैं। खास करके जो देखेंगे कुंडा का हिस्सा है वहाँ पर दशहरी और लंगड़ा भी की अच्छी खेती होती है।
0: मंडल के तीन जिलों प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में आम की सबसे ज्यादा खेती होती है। यहाँ लगभग 2400 से 2500 हेक्टेयर भूमि पर आम की खेती की जाती है जिसमें कुल मिलाकर 1.5 लाख टन आम का वार्षिक उत्पादन होता है। प्रयागराज के खुसरो बाग स्थित औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के मुताबिक प्रयागराज में अकेले 600 से 650 हेक्टेयर में आम की बागवानी होती है जिसमें लगभग 10,000 टन से ज्यादा आम का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र से लगभग प्रति वर्ष 50,000 टन आम संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। इतना ही नहीं, वहीं प्रयागराज मंडल में आम की फसल को बढ़ावा देने के लिए खुसरो बाग स्थित औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र में लगातार आम की नई नई वैरायटी की पौध तैयार की जाती है। वैसे केवल आम ही नहीं, गर्मियों के मौसम में लीची का स्वाद भी लोगों को खूब पसंद आता है। रस से भरी मीठी और खुशबूदार लीची गर्मियों में ताजगी का एहसास कराती है। यही वजह है कि बाजारों में लीची की डिमांड भी तेजी से बढ़ जाती है। दरअसल बाजार में लीची का आने का समय मई के आखिर में होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में एक ऐसी खास जगह भी है जहां हर साल सबसे पहले लीची पकती है। मुजफ्फरपुर के बड़ी ईदगाह का लीची बागान पिछले कई वर्षों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
3: अमूमन मुजफ्फरपुर में लीची की तुराई 20 मई से होती है, लेकिन इस बड़ी ईदगाह की लीची तैयार हो गई है और दिल्ली के बाग बाजार में भेजने के लिए भी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
0: मुजफ्फरपुर में 20 मई के बाद लीची की तुड़ाई शुरू होती है, लेकिन बड़ी ईदगाह के बगीचे में मई के दूसरे सप्ताह से ही शाही लीची पक कर तैयार हो जाती है। यही वजह है कि जिले में सबसे पहले यहीं से लीची की तुड़ाई शुरू होती है। अब इसकी पहली खेप दिल्ली की आजादपुर मंडी भेजी जा रही है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के मुताबिक ईदगाह के बगीचे की मिट्टी की ऊपरी सतह पर ईंट की परत होने से तापमान ज्यादा रहता है, ऐसे में लीची की फसल यहाँ जल्दी पक जाती है।
4: सारी क्षेत्र के जो भी लीची पकती
3: है, लेकिन बड़ी ईदगाह की चर्चा है
4: क्या? ये एक नंबर में रहता है,
3: पहला यही। आप तो पूरे लीची के व्यापारी भी हैं, तो लेकिन सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। अच्छा, मीठा हो गया होगा लीची?
4: मीठा ये 70% होगा,
3: मिठास आ गया।
4: मिठास आ गया,
3: किसका क्या राज है कि यहीं से सबसे पहले पकता है लीची?
4: कुदरती देन है,
0: यानी इस बार गर्मियों में आम और लीची दोनों ही लोगों के स्वाद और सेहत का खास ख्याल रखने वाले हैं, और फलों की मिठास हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आने वाली है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और मुजफ्फरपुर से मणि भूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: दिल्ली में सफर अब पहले से ज्यादा तेज और स्मार्ट हो गया है। राजधानी के मुनका बकरवाला टोल प्लाजा पर नई मल्टी लेन फ्री फ्लो तकनीक लागू की गई है जिससे अब गाड़ियों को टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि अब गाड़ियां बिना रुके सीधे टोल पार कर पाएंगी। हमारी आज की अगली गुड न्यूज भी यही है। दिल्ली के मुनका में बिना रुके कटेगा टोल। अब दिल्ली के मुनका बकरवाला टोल पर न बैरियर है और न ही लंबी कतारें और न ही गाड़ियों के गुजरने का इंतजार। यहां गाड़ियां अब बिना रुके सीधा टोल पार कर पाएंगी और टोल टैक्स अपने आप कट जाएगा। टोल सिस्टम में यह बदलाव देश के कई हाईवे सिस्टम्स पर भी किया गया, उन्हीं में से एक है।

0: दिल्ली और आसपास सफर करने वाले लोगों के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की परेशानी और घंटों लाइन में लगने का झंझट अब जल्द ही गुजरे जमाने की बात होने वाली है। केंद्र सरकार ने अब देश में एक नया और हाईटेक टोल सिस्टम शुरू करके दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर लगने वाले ब्रेक को खत्म कर दिया है, जिसमें गाड़ियों को टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इस नई तकनीक का नाम है मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम, जिसकी शुरुआत हुई है मुनका बकरवाला टोल प्लाजा से, जिसका उद्घाटन केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है।
1: हम लगातार टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करेंगे, हम अच्छे से अच्छे हाईवे जनता को देंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, यह हमारा लगातार प्रयास रहेगा।
0: इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब टोल प्लाजा पर बैरियर नहीं होंगे, यानी गाड़ियों को रुकने या स्पीड कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हाईवे पर खास कैमरे, सेंसर और फास्टैग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही कोई गाड़ी टोल पॉइंट से गुजरेगी, कैमरा उसकी नंबर प्लेट और फास्टैग को स्कैन करेगा और तुरंत टोल की रकम खाते से कट जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इससे पहले गुजरात के सूरत में इस तकनीक को लागू कर चुकी है। वहां सफलता मिलने के बाद अब दिल्ली के मुनका बकरवाला टोल प्लाजा पर भी ये सिस्टम शुरू किया गया है।
2: इस टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं सभी गाड़ियां जो है सरपट दौड़ रही है और लाइन फ्री है। यहाँ पर किसी गाड़ी को ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो बैरिकेड लगता था, टोल कटता था, उसके बाद गाड़ियाँ निकलती थी, लेकिन अब पूरी तरह से लाइन फ्री है और सारी गाड़ियाँ यहाँ से सरपट निकल रही हैं और लोग इस जो मल्टी लाइन फ्री फ्लो की सुविधा से सभी खुश हैं। ओपी शुक्ला, दिल्ली।
3: धुरंधर फिल्म की सफलता किसी से छुपी नहीं और इसी फिल्म के एक गाने ने जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले एक बच्चे को इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। 13 साल के रसिक अहमद मीर के गाने जाइए सजना को 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं। यही है हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज। कश्मीर के 13 साल के बच्चा बना इंटरनेट सेंसेशन, धुरंधर के गाने में मिले करोड़ों व्यूज। बारामूला का रहने वाला है ये रसिक अहमद मीर। सोशल मीडिया पर कामयाबी के नए झंडे गढ़ रहा है। धुरंधर के गाने ने उसे इंटरनेट का धुरंधर बना दिया। उसकी रील को मिली कामयाबी किसी ब्लॉकबस्टर सफलता से कम नहीं है। रसिक अहमद मीर अपनी सुरीली आवाज से इंस्टाग्राम पर ऐसा छाया कि उसके बॉलीवुड गाने को 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। उत्तरी कश्मीर का रहने वाला रसिक अहमद 9वीं कक्षा में पढ़ता है और इसके लिए ये कोई स्टूडियो परफॉर्मेंस नहीं, ना ही कोई रियलिटी शो, बल्कि एक स्मार्टफोन से रिकॉर्ड की गई छोटी सी रिकॉर्डिंग थी जिसके करोड़ों व्यूज मिले और वो रातों रात सुपरस्टार बन गया।
4: जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी एक रील वायरल हुई जय सजना धुरेंद्र मूवी की, धुरेंद्र मूवी का सॉन्ग जो कि मैंने गाया था। और जी मुझे पिछले एक साल से बहुत ही शौक रहा है कि मैं गाऊं और इसमें मेरे भैया ने एक मेरे नाम से एक इंस्टाग्राम चैनल खुलाई रसिक मीर के नाम से और जहां पर मैंने आसपास 70 पोस्ट डाले और उसके बाद मेरी एक रील वायरल हुई जय सजना धुरेंद्र मूवी का सॉन्ग। यही मेरा वायरल हुआ, आसपास 50 मिलियन पहुंच गए मेरा सॉन्ग।
3: राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच अब लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार मैदान में उतर आई है। सरकार ने लोगों को गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह कूलिंग पॉइंट्स की शुरुआत की है, जहां लोगों को गर्मी से बचाव के लिए कई जरूरी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे में हमारी आज की 6वीं गुड न्यूज भी यही है, बढ़ते तापमान हीट वेव से राहत के लिए कूलिंग जोन। पुरानी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में सरकार ने खास कूलिंग जोन तैयार किया है, जहां कोई भी व्यक्ति ठंडा पानी पीने के लिए एक जगह रुक सकता है और कूलर में की हवा भी ले सकता है।
5: राजधानी दिल्ली में जब 12-40 डिग्री के पार चला जाता है तो ऐसी स्थिति में गर्म हवा के थपेड़े, बढ़ती गर्मी और लू लोगों का जीना मुहाल कर देती है। लेकिन दिल्ली सरकार गर्मी के सितम से निपटने के लिए इस बार पहले से तैयार है। इस साल दिल्ली सरकार ने हीट वेव एक्शन प्लान लागू किया है, जिसका उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान लोगों को राहत पहुंचाना है। सरकार ने राजधानी के कई हिस्सों में कूलिंग जोन और मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स की स्थापना की है, जहां लोगों को गर्मी से राहत देने के पूरे इंतजाम किए गए हैं।
6: इस वक्त हम पुरानी दिल्ली में मौजूद है और ये एक ऐसी जगह है जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के हम इस वक्त पास है, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही देखी जाती है, क्योंकि जामा मस्जिद भी पास है और साथ ही साथ चांदनी चौक का जो इलाका है वो भी पास है। तो ऐसे में लोगों की भीड़ यहां पर होती है और जब लोग बाजारों का रुख करते हैं गर्मी में, तो लोगों को थोड़ी सी राहत देने के लिए इस तरीके के कूलिंग जोन जो है वो बनाए जा रहे हैं और ये सबसे पहला कूलिंग जोन में हम आपको लेकर आए।
5: पुरानी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सरकार ने एक खास कूलिंग जोन तैयार किया है, जहां लोगों को गर्मी से बचाने के लिए कई जरूरी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास बनाए गए इस कूलिंग जोन में एक समय में करीब 70 से 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहां आने वाले लोगों को ठंडा पानी और ORS का घोल दिया जा रहा है और उन्हें आराम करने की पूरी सुविधा दी जा रही है, जिससे उन्हें तेज गर्मी और लू के असर से राहत मिल सके।
7: मैं यहाँ मार्केट आया था चांदनी चौक, गर्मी लग रही थी, मैंने अपनी बाइक खड़ी करी और यहाँ आराम से 1-1.5 घंटे से बैठा हूँ। अब थोड़ा रिलैक्स करके यहाँ से फिर निकलूंगा। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, ठंडा पानी की व्यवस्था है, ORS की व्यवस्था है।
5: दिल्ली सरकार के मुताबिक पुरानी दिल्ली जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में लोग बाजारों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर आते जाते रहते हैं। ऐसे में भीषण गर्मी के दौरान ये कूलिंग जोन राहत केंद्र के तौर पर काम करेगा।
6: यहाँ पर इनका यूनिट जो है वो तैयार किया गया है, आपको यहाँ पर जो है महिला कर्मी नजर आ जाएंगे और किस तरीके से लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनको राहत देने के लिए जो है यहाँ पर हर एक चीज जो है उपलब्ध करवाई गई है।
5: दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट शुरू की है। ये वैन शहर के लेबर चौकों, बस अड्डों, बाजारों और निर्माण स्थलों पर जाकर लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने का काम कर रही है। हालांकि जामा मस्जिद के पास स्थित ये कूलिंग जोन एक अस्थायी राहत केंद्र है, जहां लोग गर्मी से थक कर राहत पाने के लिए यहां आकर बैठ सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हैं और इस छायेदार जगह पर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद अपने काम के लिए दोबारा निकल सकते हैं। मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
3: भीषण गर्मी से इंसान तो क्या बेजुबान भी खासे परेशान है। ऐसे में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए भोपाल के चिड़ियाघर में खास इंतजाम किए गए हैं। यहां जानवरों को ठंडा रखने के लिए उनके बाड़ों में कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा उनको ठंडा रखने के लिए उनके बैठने वाली जगहों पर शेड्स लगाए गए हैं। ऐसे में हमारी आज की सातवीं और आखिरी गुड न्यूज भी यही है, बेजुबानों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाने का इंतजाम। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में भीषण गर्मी और लू से वन्य जीवों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ठंडा रखने के लिए बाघ, शेर, तेंदुए और भालू के बाड़ों में कूलर लगाए गए हैं। खिड़कियों पर खस की पट्टियां लगाई गई हैं, जिन्हें गीला रखा जाता ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। और इसके अलावा जानवरों के लिए पानी के कुंड नियमित रूप से भरे जा रहे हैं और शाकाहारी जानवरों के लिए शेड की व्यवस्था की गई। भालू के लिए छोटे तालाबों में पानी भर दिया गया है। गर्मी को देखते हुए जानवरों के भोजन में बदलाव किया गया है, उन्हें पानीदार फल जैसे तरबूज और खरबूजा दिए जा रहे हैं ताकि ये हाइड्रेट रह सके।
8: बिहार में मुख्यतः शाकाहारी वन्य प्राणी जो हैं वो खुले में स्वच्छंद विचरण करते हैं और जो मांसाहारी वन्य प्राणी हैं वो कैप्टिविटी में, एनक्लोजर्स में रहते हैं। उन दोनों

0: चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी की बिगड़ी तबीयत, बंगाल में हार का साइड इफेक्ट, ममता हुई बेहोश, तरे राह टीएमसी समर्थक की पिटाई का सच क्या, उम्र से बड़े संस्कार, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल, देखिए शुभम के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
3: You're listening to MSNBC.
1: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: Ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, रुद्रप्रयाग का संगम पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र, यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कसौनी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन का ले रहे रोमांच। ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार, अयोध्या प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक के मंदिरों में लगा आस्था का मेला, भक्तों ने की सुख समृद्धि की कामना। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा, सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। कान फिल्म फेस्टिवल से पहले बिछाया गया रेड कार्पेट, उद्घाटन से पहले रोबोट शो ने खींचा लोगों का ध्यान, ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने दिखाया जिम्नास्टिक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें और अखबार के पन्ने या अब टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गई। यहां हर किसी के हाथ में एक अलग कैमरा है, एक हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ बरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज हम फैक्ट चेक में बात करेंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि टीएमसी को मिली बड़ी हार के तुरंत बाद का ये वीडियो है। हार के बाद ममता बनर्जी कार में बेसुध हो गई। क्या है इस वायरल दावे की वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर में बात होगी उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि जिस लड़के ने ममता बनर्जी के चुनाव हारने पर कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमने की बात कही, परिणामों के बाद जनता ने सरेआम उसके कपड़े फाड़ दिए। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
10: बंगाल में चुनाव खत्म हो गए हैं। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट और वीडियो की बाढ़ आ गई है। इसी कड़ी में एक और वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को गाड़ी में बेसुध बैठे देखा जा रहा है। इस वीडियो को कुछ लोग शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बंगाल में ये हार का साइड इफेक्ट है। बंगाल में टीएमसी को मिली बड़ी हार के तुरंत बाद का ये वीडियो है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में।

0: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल करके बीजेपी ने टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये बंगाल में टीएमसी को मिली हार के बाद का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ममता बानो की हालत खराब, बेहतर इलाज के लिए बांग्लादेश रेफर किया जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तरीके से वायरल हो रहा है। वीडियो में ममता बनर्जी को बेसुध होकर कार में बैठे हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि बंगाल में टीएमसी को मिली हार के तुरंत बाद का ये वीडियो है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के हाथों मिली बड़ी हार के बाद ममता बनर्जी सदमे में चली गई, ये तस्वीर उसी की है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल के लिए वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें यह नजर आया कि वीडियो में ममता की आवाज को डाउन करके उसके ऊपर अलग से आवाज को जोड़ा गया है। मतलब ममता जो कुछ भी कह रही हैं उसे इसके जरिए छुपा दिया गया है। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के दावे पर शक हुआ। इसके बाद हमने ममता बनर्जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में हमें ऐसी कोई भी पोस्ट या फिर प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर दावा सच है तो वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है जिसको ये शेयर किया जा रहा है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वीडियो का लंबा वर्जन एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 10 मार्च 2021 को शेयर किया गया था। यहाँ मौजूद जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी कार के पास थी तब कुछ हमलावरों ने उन पर हमला किया। ये हादसा तब हुआ जब वह नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी। फिर ममता बनर्जी को इलाज के लिए नंदीग्राम से कोलकाता ले जाया गया था। हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक और विश्वसनीय वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 11 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार पार्टी के शीर्ष नेता सुखेंदु शेखर राय ने इसे लेकर कहा था कि ममता एक मंदिर में पूजा करने के बाद बिरुलिया अंचल से निकलने ही वाली थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें कार में धकेल दिया और जबरन दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके बाएं पैर में चोट आई थी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने इसे नाटक बताया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि ममता बनर्जी के बेसुध होने का वायरल वीडियो हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद का नहीं है। इस वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। असल में वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि करीब 5 साल पुराना है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर दो वीडियो का एक कोलाज शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के जीतने पर कोलकाता की सड़कों पर बिना कपड़ों के घूमने की बात कहने वाले सुफियान को लोगों ने सड़क पर निकालकर पीटा। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी यह रिपोर्ट देखिए।
2: सोशल मीडिया पर दो वीडियो का ये कोलाज तेजी से वायरल हो रहा है।
3: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा
2: दिया। इसके पहले वीडियो में एक युवक मीडिया से बात कर रहा है।
3: को हरा दिया। कलकत्ता घुरे। ओके घुरे। यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा।
2: वहीं दूसरे वीडियो में एक युवक की इस कदर पिटाई हो रही है कि उसके कपड़े तक फट गए हैं।
3: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दिया।
2: ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों लड़के एक ही हैं और इस लड़के ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो वो कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमेगा।
3: मेरा नाम सुफियान, यहाँ को दीदी को टीएमसी हरा दी।
2: अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि नतीजों में वाकई टीएमसी के हारने पर जनता ने उसे सरेआम पीट पीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। यूजर्स वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से वायरल कर रहे हैं।
1: सोशल मीडिया पर ये दो वीडियो का एक कोलाज खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। पहले वीडियो में एक युवक मीडिया से बात कर रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में एक युवक की इस कदर पिटाई हो रही है कि उसके कपड़े तक फट गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों लड़के एक ही हैं और इस लड़के ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो वो कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमेगा। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि नतीजों में वाकई टीएमसी के हारने पर जनता ने सुफियान के सरेआम पीट पीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो को गौर से देखा। पहले वीडियो में चेहरा साफ साफ दिख रहा है, लेकिन दूसरे वीडियो में मार खा रहे शख्स का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा। इससे साफ लग ही नहीं रहा कि ये दोनों वीडियो एक ही शख्स से जुड़े हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कई पुख्ता जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इस वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर ये वीडियो बंगाल का है तो आखिर कब का है और कहां का है, किस जगह का है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, यह भी अहम सवाल है। अब देखिए इस वीडियो के पीछे की सच्चाई।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी।
3: बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
2: वायरल कोलाज के जिस वीडियो में लड़का इंटरव्यू दे रहा है उसमें एक न्यूज आउटलेट का लोगो है।
3: मेरा नाम सुफियान है।
2: इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। यहाँ इसे 24 अप्रैल 2026 को पोस्ट किया गया था।
3: बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
2: वीडियो में दिख रहा लड़का वाकई चुनौती देते हुए ऐसा कहता है कि उसका नाम सुफियान है और अगर बीजेपी ने टीएमसी को हरा दिया तो वो बिना कपड़ों के कोलकाता में घूमेगा।
3: मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
2: इसके बाद हमने दूसरे वीडियो के बारे में खोजना शुरू किया। हमने देखा कि वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है कि ये ढाका का वीडियो है। साथ ही इस यूजर ने एक बांग्लादेशी पत्रकार की इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर की है जिसमें वायरल वीडियो का लंबा वर्जन है। तेईस अप्रैल 2026 को ये वीडियो शेयर करते हुए इसे ढाका के शाहबाग इलाके का बताया था, जहां वायरल वीडियो में रक्तचरित गाना बज रहा है। वहीं इस वीडियो में बंगाली भाषा में कमेंट्री है। हमें गूगल मैप्स पर शाहबाग की वो जगह भी मिल गई जहां वायरल वीडियो शूट किया गया था। एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट ने भी 23 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो छात्र दल और छात्र शिविर नाम के दो ग्रुप्स के बीच शाहबाग में हुए टकराव का है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब छात्र दल के कुछ कार्यकर्ता बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बेटी जाइमा रहमान के बारे में किए गए कुछ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंच गए। छात्र दल का आरोप था कि छात्र शिविर ने नेता अब्दुल्ला अल महमूद ने एआई से बनी विवादित तस्वीरें शेयर की। वहीं छात्र शिविर का कहना था कि उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं। छात्र दल के पुलिस के पास पहुंचने की जानकारी मिलने पर छात्र शिविर के कार्यकर्ता, कुछ पत्रकार और ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन के प्रतिनिधि भी शाहबाग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान डीयू सीएसयू के लिटरेरी एंड कल्चरल अफेयर्स सेक्रेटरी मुसद्दिक पर हमला हो गया। डीयू सीएसयू के एक दूसरे नेता एबी जुबैर पर भी हमला हुआ और दोनों ने पुलिस स्टेशन में छुपकर जान बचाई।
3: को दीदी को टीएमसी हरा
2: दी। साफ है पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के हार के बाद बिना कपड़ों की बात कहने वाले सूफियान को पीटे जाने का वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है।
3: मेरा नाम सूफियान है।
2: सूफियान के नाम पर सोशल मीडिया पर जो पिटाई का वीडियो शेयर किया जा रहा है वो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश के ढाका का है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
5: जल्द आ रहा है मॉनसून, भीषण गर्मी, बढ़ते तापमान से मिलेगा सुकून। बड़ा मंगल पर मंगल ही मंगल, आपकी हर चाल में बिजली। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
8: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
2: कई सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों के डिस्प्ले के लिए होते हैं, ताकि दुकान के सामने गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिकीन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है कि एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिकीन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है, और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कॉम्पिटिशन का थीम शायद खाने पर रहा होगा, क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप को इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं। भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं थी और न ही किसी कंपनी के शोरूम से निकली थी। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन खुद रुक गए और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगाई गई थी और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ रहा था। देखने में यह किसी छोटी कार जैसी लग रही थी और बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जहां लोग सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है, लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखता है। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे रैगजीन को काटकर एक खिड़की बना दी है जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे की मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कहीं ज्यादा कीमती लग रही है। दुनिया के लिए यह सिर्फ एक कटा हुआ रैगजीन हो सकता है, लेकिन उन बच्चों के लिए यह उनके सुपर हीरो पिता का प्यार है। इस वीडियो के वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। नेटिजंस ऑटो ड्राइवर पिता की क्रिएटिविटी और उसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। दानापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल किसी बैंक ATM जैसा दिखाई देता है। बड़ा SBI बोर्ड, नीली लाइट, ग्लास डोर और 24 घंटे सेवा का साइन। लेकिन जैसे ही लोग अंदर जाते हैं, वहाँ कैश मशीन नहीं बल्कि हेयर कटिंग सलून देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करता था। बाद में बैंक ने किसी तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहाँ से ATM मशीन हटा ली। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहाँ अब एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। नाई ने ATM का बोर्ड हटाने के बजाय उसी के नीचे अपनी दुकान चलानी शुरू कर दी। अब लोग मजाक में इसे हेयर कटिंग ATM और बाल निकासी मशीन कहने लगे हैं। सोशल मीडिया पर दुल्हा दुल्हन की ये एंट्री आकर्षण का केंद्र बन गई है। वायरल हो रहे वीडियो में बाइक की कतार दिखाई दी जिस पर दुल्हा दुल्हन और फिर उनके दोस्त या रिश्तेदार वेडिंग वेन्यू पर एंट्री लेते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले दूल्हा बाइक पर आता है, उसने सूट पहना है, उसकी बाइक पर ग्रूम भी लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरी बाइक पर दुल्हन एंट्री मारती है, वो भी व्हाइट सूट में नजर आती है। उसके सिर पर क्राउन और ब्राइडल वेल होती है। ये वीडियो मेघालय की एक शादी का बताया जा रहा है। कभी कभी कैमरे में ऐसे दृश्य कैद हो जाते हैं जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का सिर चकरा गया है। दरअसल जिस यामाहा R15 को खरीदने का सपना आज की युवा पीढ़ी देखती है, उसे एक महिला ने कबाड़ ढोने वाली गाड़ी बना डाला। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दंग रह गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब दो युवक अपनी स्कूटी से जा रहे थे तो उनकी नजर इस अनोखी गाड़ी पर पड़ी। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला लाल साड़ी बांधे एकदम देसी और रत्नागिरी अंदाज में यूके की सड़कों पर आम बेचती दिखाई दे रही है। इस दौरान उसके साथ एक ठेला है जो आम से खचाखच भरा हुआ है और वो यूके की सड़कों पर ऐसे आम बेच रही है मानो यूके नहीं बल्कि मुंबई या दिल्ली की गलियां हों।
3: लंदन वालों ऑफर लाई रहे, ऑफर अखा यूके में तुमको इससे सस्ता आम मिल जाएगा ना, तो शांता यही ठेला उठा के वापस चली जाएगी रत्नागिरी को।
2: इतना ही नहीं, आम बेचते हुए महिला आम ले लो आम की आवाजें भी जोर जोर से लगाती दिखाई दे रही है, जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है। लोग उसके ठेले पर आते हैं और भाव पूछते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के शहरों में मोहल्ले वाले पूछा करते हैं।
4: अरे संता भाई ऑफर कितने का लगाया वो तो बताओ।
3: अल्फांजो 18 का दर्जन और केसर 16 का दर्जन, अब यूके में तुमको किधर भी नहीं मिलेगा इससे सस्ता।
2: कुल मिलाकर गर्मी के मौसम में आम की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है और इससे वेस्टर्न छोर भी अछूता नहीं है। भूरे रंग के हिमालयी भालू भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। हमारे देश में यह रेयर प्रजाति लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखी जाती है। ये हिमालयी भालू ठंडे इलाकों में रहते हैं, जिनका रंग सामान्य भालुओं से सुनहरा या हल्का भूरा होता है, जिसकी वजह इनका ठंडे माहौल में रहना होता है। इंसानों से दूर रहना पसंद करने वाले इन दुर्लभ भालुओं के सड़क पर घूमने की एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह सड़क पर उछलते कूदते हुए अपने अंदाज में ही चलते नजर आ रहे हैं। उन्हें दौड़ते हुए देख जहां एक और लोगों को मजा आ रही है, वहीं दूसरी ओर लोग लुप्त प्रजातियों को इस तरह सड़क पर देखकर सवाल भी कर रहे हैं। स्वभाव से शर्मीले माने जाने वाले हिमालयी भालू को वायरल वीडियो में सड़क पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। गाड़ी से जा रहा शख्स इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करता हुआ आगे निकल जाता है। इस बीच दोनों ही भालू अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए नजर कर रहे हैं। स्वभाव से शर्मीले माने जाने वाले हिमालयी भालू को वायरल वीडियो में सड़क पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। गाड़ी से जा रहा शख्स इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करता हुआ आगे निकल जाता है। इस बीच दोनों ही भालू अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए नजर आते हैं। सुंदर नजारा, बर्फ से आधे ढके पहाड़ों के बीच हिमालयी भालुओं का दौड़ना इस नजारे को एक रेयर मोमेंट बना देता है। क्या आपने कभी किसी बंदर को इंसानों की तरह बकायदा सैलून में जाकर बाल कटवाते देखा है? कर्नाटक के चामराजनगर से एक ऐसा ही बेहद क्यूट और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बंदर मजे से सैलून की कुर्सी पर बैठा और नाई से अपने बालों की सेटिंग करवाई। इस अनोखे पल को देखकर न सिर्फ वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए, बल्कि अब यह वीडियो इंटरनेट पर भी धूम मचा रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: जल्द आ रहा है मॉनसून, भीषण गर्मी, बढ़ते तापमान से मिलेगा सुकून। बड़ा मंगल पर मंगल ही मंगल, आपकी हर चाल में बिजली। देखिए अच्छी खबर, सच्ची खबर, रात 8 बजे।
6: Order for Jennifer C.
7: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
6: Yeah. Can you handle that much caffeine?
7: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
6: Oh, really? That's great.
7: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
6: Yeah, you just said that.
7: Did you say I just said that?
6: Yeah, I'm cutting you off.
7: I can't have any more? Why not?
8: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
9: Your Saturday nights will never be the same.
10: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
11: The Tailgate Block Party.
9: The Tailgate Block Party.
10: 6 hours non-stop. Non-stop.
11: The best DJs from around the world.
9: The Tailgate Block Party.
10: Saturday night.
9: 8 p.m. Eastern.
11: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
10: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More more country roads.
13: Thank God I get to wake
12: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंघावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। भीषण गर्मी, बढ़ते तापमान से मिलेगा सुकून, समय से पहले आ रहा है मानसून। बड़ा मंगल पर मंगल ही मंगल, देश भर में बजरंगबली की जय जयकार। और चलिए दौड़िए भागिए बिजली बनाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाला ऊर्जा संकट का हल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
15: हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बदला मौसम का मजाज, नूह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहावना। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा, सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी।

यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, रुद्रप्रयाग का संगम पॉइंट बना यात्रियों के आकर्षण का केंद्र। यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी। कैन फिल्म फेस्टिवल से पहले बिछाया गया रेड कार्पेट, उद्घाटन से पहले रोबोट शो ने खींचा लोगों का ध्यान, ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने दिखाया जिम्नास्टिक। शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। मॉनसून की बात सबसे पहले, जिससे जुड़ी गुड न्यूज सामने आई है। खबर यह है कि इस साल भी दक्षिण पश्चिम मॉनसून वक्त से पहले केरलम तट पर दस्तक दे सकता है। संभावना यह है कि इस बार 25 से 27 मई के बीच ये केरलम तट पर पहुंच सकता है। इस बीच उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी एक्टिव है, जिसके असर से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से लेकर गुरुवार के बीच दिल्ली NCR, पंजाब और हरियाणा में धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

0: आम तौर पर इन दिनों में बारिश देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में एक नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने से यह बारिश हो रही है। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई। राहत का ये दौर आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई।
1: लगभग प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी 13 मई तक। इसी दौरान अगर 13 मई तक अलर्ट्स की बात करें तो आज और कल के लिए डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ में इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में तेज हवाएं चलने की संभावना है, और जो हमारे क्षेत्र है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का येलो कैटेगरी में अलर्ट जारी किया है। तो ओवरऑल 13 मई तक प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए 14 मई से वेदर एक्टिविटी थोड़ी कमी जरूर आएगी, परंतु 14 मई से लेकर 16 मई तक स्पेशली लेट इवनिंग और आफ्टरनून में जो हमारे जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश का क्रम जारी।
0: उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों ही नहीं बल्कि मैदानी राज्यों में भी मौसम की ये मेहरबानी देखने को मिल सकती है। आज से लेकर गुरुवार के बीच दिल्ली NCR, पंजाब और हरियाणा में धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम के इस यूटर्न को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, UP, इनके लिए हमने येलो अलर्ट दे रखा है, जहाँ पे रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की उम्मीद है। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए हम हिलस्टॉर्म भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
0: मार्च से लेकर मई तक इस साल बैक टू बैक कई वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ चुके हैं, जिनके प्रभाव से आंधी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली और लोगों ने तपिश से ज्यादा ठंडे ठंडे मौसम का सामना किया। अब लोगों के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि इस साल भी दक्षिण पश्चिम मानसून तय वक्त से पहले केरलम तट पर दस्तक दे सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरलम तट पर पहुंचता है, लेकिन इस बार इसके 25 से 27 मई के बीच पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर श्रीलंका तट के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो अगले 48 घंटों में और मजबूत होगा। इसके चलते दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश, जबकि ओडिशा के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिस्टम मानसून को आगे बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। यही वजह है कि इस साल भी मानसून के वक्त से पहले केरलम तट पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अगर मानसून को लेकर मौसम विशेषज्ञों का यह अनुमान सही साबित हुआ तो खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए ये वरदान साबित होगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए मानसून वाली गुड न्यूज के बाद अब हम आपको राजधानी दिल्ली में बने कूलिंग जोन की खबर दिखाते हैं। ये कूलिंग जोन राजधानी में लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव से लोगों को राहत देने के लिए तैयार किए गए हैं। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास बनाए गए कूलिंग जोन्स में एक समय में करीब 70 से 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जहां लोगों को ठंडा पानी, ORS, आराम करने की सुविधा दी जा रही है, ताकि तेज गर्मी और लू के असर से लोगों को राहत दिलाई जा सके। फिलहाल तो आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ती है तो राजधानी के दूसरे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी कुछ इसी तरह के कूलिंग जोन्स और हीट रिलीफ वैन की संख्या बढ़ाने की योजना है।
4: ये एक ऐसी जगह है जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के हम इस वक्त पास है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही देखी जाती है, क्योंकि जामा मस्जिद भी पास है और साथ ही साथ चांदनी चौक का जो इलाका है वो भी पास है। तो ऐसे में लोगों की भीड़ यहां पर होती है और जब लोग बाजारों का रुख करते हैं गर्मी में तो लोगों को थोड़ी सी राहत देने के लिए इस तरीके के कूलिंग जोन जो है वो बनाए जा रहे हैं। और ये सबसे पहला कूलिंग जोन में हम आपको लेकर आए जहां पर आपको हर एक सुविधा जो है वो दिखने वाली है। तो इस पूरे कूलिंग जोन की अगर हम बात करें तो अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। अंदर सबसे पहले जब आप एंटर करेंगे तो एंटर करते ही पहला डेस्क मिलेगा जहां पर बेसिक चीजें यहां पर आपको दिखी हुई नजर आएगी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको सबसे पहला ORS नजर आएगा। जो लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए उनको हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से महिलाएं कर्मी आपको नजर आ जाएगी कि वो किस तरीके से जो है लोगों को पानी पिला रही है, ठंडा पानी, और साथ ही साथ ORS आप देख सकते हैं कि ORS का घोल जो सबसे ज्यादा आवश्यक है इस चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए। तो इस तरीके से लोगों को ORS पिलाते हुए लोग जो है वहां पर आपको नजर आ जाएंगे। इस पूरे कूलिंग जोन में आपको करीब 5 से 6 जो है आपको कूलर्स जो है वो नजर आ जाएंगे ताकि अलग अलग तरीके से जहाँ पे जो व्यवस्था की गई है हर कोई जो है इस ठंडी हवा में जो है थोड़ी सी राहत जो है वो महसूस कर सके। साथ ही साथ 60 से 70 लोगों की बैठने की व्यवस्था इस पूरी कूलिंग जोन में की गई है। आप देख सकते हैं चेयर्स यहाँ पर लगाई गई है, ये पूरे टेंट के अंदर जो है ये सुविधा जो है वो दी गई है ताकि लोगों को पूरे तरीके से जो है राहत मिल सके। आप गर्मी से आए हैं, ठंडा पानी है या नहीं पहला तो सवाल ही है।
5: जी मैम, ठंडा पानी है, बिल्कुल
4: ठंडा पानी है।
5: जी मैम,
4: आप पहले पीए, पानी पीजिए आप पहले, क्योंकि आप अभी गर्मी से आए तो ठंडा पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने राहत की सांस ली है यहाँ पर?
6: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा मुझे आन के।
7: बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ है,
4: ठंडा पानी मिल रहा है,
7: ठंडा पानी मिल रहा है और ठंडी हवा भी मिल रही है ताकि सबको आराम मिल रहा है।
4: दिल्ली की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो प्रयास है गर्मी से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार वो कदम पूरी तरीके से उठा रही है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बड़ा मंगल यानी कि बुढ़वा मंगल की। ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगल है, ऐसे में सुबह से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि इसी महीने के मंगलवार को भगवान राम की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, भंडारा करवाते हैं, दान करते हैं, उन्हें विशेष फल और आशीर्वाद मिलता है।

0: मंदिरों में लगी है श्रद्धालुओं की कतार, वीरवर हनुमान की हो रही जय जयकार, क्योंकि आज है ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगलवार। इस खास मौके पर संकट मोचक हनुमान जी के दर्शन और पूजन के लिए सुबह से ही हनुमान मंदिरों में आस्था का ये अनंत सैलाब उमड़ आया है। यह तस्वीर दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर की है, जहां घंटों लाइन में लगे लोग दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।
1: ज्येष्ठ महीने का आज दूसरा बड़ा मंगलवार है और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध मरघट वाले हनुमान मंदिर की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सुबह से श्रद्धालु का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर परिसर इस वक्त जयकारों से गूंज उठ रहा है। किस तरीके से जय श्री राम के जो गूंज है आपको वो पूरे मंदिर परिसर में जो है सुनाई देने वाली है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से लंबी लंबी लाइन जो है आपको वो नजर आ जाएगी और भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ आस्था के साथ इन लाइनों में इंतजार करके जो है अंदर जा रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। और वैसे भी माना जाता है कि ज्येष्ठ महीने के जो मंगलवार होते हैं वो वाकई में बेहद खास होते हैं और इस समय हनुमान जी की पूजा उपासना जो है बड़े ही फलदायी होता है। इस तरफ की मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो लोग जो है क्योंकि पीछे की तरफ ही जो है हनुमान जी स्थापित है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब यहाँ पर आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए जो है वो नजर आ जाएंगे। और बड़े मंगल में वैसे ही माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह के जो संकट है वो दूर होते हैं और जीवन में हर तरीके की सुख समृद्धि जो है वो आती है।
0: दिल्ली की तरह ही यूपी के भी तमाम प्राचीन हनुमान मंदिरों में आस्था और भक्ति का यही सैलाब देखने को मिला। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की ये भीड़ दिन भर देखने को मिली। कोई परिवार संग दर्शन करने पहुंचा, कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ दर्शन करने पहुंचा, कोई फूलों की माला और लड्डू लेकर आया और कोई हनुमान जी को चढ़ाने के लिए सिंदूर और चोला लेकर आया। करीब 36 से 37 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी भी इन श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह को कम नहीं कर पाई। वैसे तो आम दिनों में भी हनुमानगढ़ी मंदिर भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन अगर मौका बुढ़वा मंगल और हनुमान जन्मोत्सव का हो तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। इस तरह के विशेष मौके पर लोग आसपास के जिलों से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं।
2: ज्येष्ठ माह का दूसरा मंगलवार है, उसको लेकर अयोध्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो कतार है, जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। लगातार हम हनुमानगढ़ी पे दिखा रहे हैं आपको, सुबह 4 बजे से जो भीड़ है, जो सैलाब है, हाथों में प्रसाद है, माला है, पुष्प है, तो लगातार श्रद्धालु जो है वो हनुमानगढ़ी प्रांगण में बजरंग बली को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आज ज्येष्ठ माह का दूसरा मंगलवार है और दूर दराज से लोग आए हैं।
3: आज जो भगवान से मांगे हैं इन्होंने बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया है।
2: कितनी देर हो गए आप खड़े हो गए?
4: अभी लगे आधा घंटा हो गया।
2: आप
4: गाजीपुर से?
2: आप
4: गाजीपुर से?
0: धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को भगवान राम की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और दान करते हैं, उन्हें विशेष फल और आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मनोकामना लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे। इनमें कई मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते नजर आए और कई दोनों हाथ उठाकर बजरंगबली का जयकारा लगाते दिखाई दिए। संगम तट पर मौजूद यह हनुमान मंदिर हमेशा से ही लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। लोगों की मान्यता है कि लेटे हनुमान जी अपने भक्तों का हर कष्ट दूर करते हैं और उनकी खाली झोली भरते हैं।
5: हम इस वक्त संगम के लेटे हनुमान मंदिर में हैं। सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है और यहाँ पर बजरंगबली लेटी हुई अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं और जो भक्त हैं सुबह से ही यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्त यहाँ जब आए हैं तो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और यहाँ बजरंगबली के नारे लगाए जा रहे हैं और बजरंगबली लेटी हुई अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्त जो भी मनोकामनाएं लेके आते हैं उनकी भक्त की मनोकामनाएं बजरंगबली पूरी अवश्य करते हैं।
6: यह मान्यता वर्षों वर्ष से चली आ रही है। यहाँ बाबा अपने दिव्य स्वरूप में है, भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। जो भी परेशान है, हैरान है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि यहाँ आइए, बाबा से अपनी अर्जी लगाइए, ये जरूर पूरा करेंगे।
0: दूसरे बड़े मंगल पर भी शहर शहर भंडारे का भी आयोजन किया गया। कहीं हलवा पूड़ी और सब्जी का प्रसाद बांटा गया, कहीं प्रसाद के रूप में बूंदी और फल बांटे गए, और कहीं गर्मी के सीजन में शरबत को प्रसाद के रूप में बांटा गया। दिल्ली से मनीषा लड्डा, अयोध्या से मयंक शुक्ला और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।
7: और बाद गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली ऊर्जा संकट की, जिसका हल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर निकाला है, जिसमें मिरांडा हाउस कॉलेज की अहम भूमिका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कॉलेजों ने कुछ ऐसे एनर्जी हार्वेस्टर्स तैयार किए हैं, जिसकी बदौलत आप भी भविष्य में अपनी जरूरत भर की बिजली खुद ही बना सकते हैं, वो भी चलते दौड़ते भागते, यहाँ तक कि अपने मोहल्ले की गली या फिर घर में चलते चलते भी। ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कॉलेजेस का दावा है, जो एनर्जी हार्वेस्टर से जुड़े इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने में जुटे हैं।

0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में मौजूद फिजिक्स लैब में कुछ कमाल हो रहा है। वहाँ दिख रहे ये छोटे छोटे उपकरण देश की ऊर्जा संकट, खासकर बिजली आपूर्ति से जुड़ी बड़ी समस्या दूर कर सकते हैं। अभी तक मानव गतिविधियों से पैदा होने वाली ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। इस तरह की ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल के लिए ही मिरांडा हाउस कॉलेज के भौतिक लैब में अलग अलग तरह की तकनीक पर काम हो रहा है।
1: अगर हम चलते भी हैं, तो एक एनर्जी जनरेट हो रही है। सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है तो वहाँ भी उस गाड़ी के चलने से एक एनर्जी जनरेट हो रही है, लेकिन ये एनर्जी वेस्ट हो जाती है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसी वेस्ट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का तरीका निकाल लिया है मिरांडा हाउस कॉलेज ने। और अब अगर इस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो सड़क से जब गाड़ी निकलेगी तो उसकी वेस्ट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी आप बना सकते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी से जो स्ट्रीट लाइट है उनको जलाया जा सकता है। कैसी ये डिवाइस है, किस तरह से काम करती है, आइए दिखाते हैं आप।
0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के यह वैज्ञानिक ऐसे एनर्जी हार्वेस्टर यानी ऊर्जा संग्राहक तैयार करने में जुटे हैं, जो वातावरण में मौजूद सूक्ष्म वेस्ट ऊर्जा को बिजली में बदल सके। इसके लिए एनर्जी हार्वेस्टर्स के जरिए इंसानी गतिविधियों, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से भी पैदा होने वाली ऊर्जा को इस्तेमाल करने की तैयारी है, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में उसका बेहतर इस्तेमाल हो सके।
2: हम लोगों ने कुछ एनर्जी हार्वेस्टर्स बनाए हुए हैं। एनर्जी हार्वेस्टर्स ऐसा नहीं है कि एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, लेकिन एनर्जी हार्वेस्टर्स कुछ इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट में जो वेस्ट एनर्जी है उसको लेके यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। तो जैसे कि हम चल रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी वो वेस्ट हो रही है, हम उस मैकेनिकल एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर जैसे कि हमारे पास, हमने ट्राइबो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी बनाए हुए हैं, जिसके अंदर की जो सलाइन वाटर है जो कि सी में बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, उसको भी अगर हम एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर से फ्लो कराएं तो वहां पर भी स्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उसके ऊपर भी हमने बहुत काम किया हुआ है। और एक थर्मो इलेक्ट्रिक, जैसे कि आपको जहां पे भी टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से भी आपको एनर्जी जनरेट कर पाएंगे।
0: भौतिकी लैब में पॉलीमीटर शीट की मदद से पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर तैयार किया गया है, जो इंसानी कदमों या गाड़ियों के दबाव को बिजली में बदल सकती है। पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर से तैयार सड़क या मार्ग पर जब भी कोई वाहन या व्यक्ति चलेगा तो बिजली पैदा होगी। इनका इस्तेमाल रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन जैसे सार्वजनिक जगहों के अलावा एक्सप्रेस वे पर लगी स्ट्रीट लाइट के लिए भी हो सकता है।
2: अभी हम यहाँ पे आपको पीजो इलेक्ट्रिक एंड थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी हार्वेस्टर्स दिखा रहे हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक एनर्जी हार्वेस्टर, हमने एक ये पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर की शीट्स हैं जिससे कि हमने बनाया हुआ है। केएनएन बेस्ड है ये, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। और इससे हमने पूरा डिवाइस बनाया हुआ है। यू कैन सी कि जैसे जैसे ये मैडम टैप कर रही है उस डिवाइस के ऊपर, यहाँ पे एलईडी ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब कि इतनी वोल्टेज जनरेट हो रही है जिससे कि हमारा एलईडी ग्लो कर पा रहा है।
1: इसका, इस पर्टिकुलर डिवाइस का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम?
2: इस पर्टिकुलर डिवाइस का इस्तेमाल हम बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं। जैसे कि आप रोड है, रोड के ऊपर अगर हम ये पीजो इलेक्ट्रिक शीट्स की टाइल्स बना के बिछा दें, तो जैसे भी व्हीकल उसके ऊपर चल रहा है तो वो जो भी फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और हम वहां पे रोड के ऊपर जो हमारे को स्ट्रीट लाइट्स हैं उसको ग्लो करने के लिए हम ये एनर्जी को यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ट्रेन स्टेशन के ऊपर, मेट्रो स्टेशन के ऊपर, बस स्टेशन के ऊपर, सब्जी मंडी में, जहां पर भी लोगों की बहुत ज्यादा मूवमेंट है, वहां पे आप इस तरीके के टाइल्स को यूज कर सकते हैं।
1: मैम, कुछ ऐसा नंबर है कि कितने लोग कितनी देर के लिए वहां से गुजरे तो कितना वोल्टेज क्रिएट होगा?
2: ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ऐसा हमने अभी करके तो देखा नहीं है, लेकिन हाँ हमने ये जरूर करके देखा हुआ है कि आप कितनी फोर्स लगाएंगे तो कितनी वोल्टेज जनरेट होगी। ये हमारा पेपर पब्लिश्ड है, आप चाहें तो वो उसको देख सकते हैं। मैक्सिमम हम 40 वोल्ट तक कभी जनरेट कर पाए हैं इन लेबोरेटरी एनवायरमेंट, जिसके अंदर की हम इतने स्मॉल स्मॉल साइज के डिवाइसेज ही बना रहे हैं। जितना हम इसका साइज इंक्रीज करेंगे और जितना वेट इंक्रीज हो जाएगा जो इसके ऊपर चल रहा है, उतना ही जनरेटेड वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी।
1: ख्याल से फिर ये जो हाईवे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हैं, वहाँ के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है।
2: यूजफुल हो सकता है।
1: ये एक एक डिवाइस रही जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं सड़क के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए।
0: वैज्ञानिकों ने थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर नाम का एक एनर्जी हार्वेस्टर भी तैयार किया जो ठंडे और गर्म तापमान के अंतर को बिजली में बदल देता है।
2: दूसरा जो हमारा डिवाइस जो हम अभी आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटर है। अभी ये इस तरीके के अरेस हमने बनाए हुए हैं। ये एक बड़ा अरे है, हम अभी एक छोटा अरे आपको दिखा रहे हैं और उसके अंदर से आप देखिए कि एक तरफ जो है गर्म पानी है, दूसरी तरफ हमने आइस रखी हुई है और इससे हमारे को 128 मिली वोल्ट तक वोल्टेज जनरेट हो पा रही है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं और ये हम जहां पर भी टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जैसे कार के रेडिएटर है या फिर बड़ी बड़ी मशीन्स है फैक्ट्रीज के अंदर है जो कि मशीन्स गर्म हो रही है, उनके ऊपर अगर हम ये थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगाएंगे तो हम उसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट करने के बाद हमें स्टोर करना पड़ेगा इसको।

0: नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपरा एकादशी की, जिसको अचला एकादशी कहा जाता है। क्या है इस एकादशी की महिमा, क्या है इसका पूजा विधान और किन बातों का रखना है ध्यान, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:29 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और मंगल विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और चंद्रमा तथा शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं अपरा यानी अचला एकादशी के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी का व्रत सारे व्रतों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए, व्रतों में जो प्रमुख व्रत हम सब रखते हैं, नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के, तमाम व्रत जितने भी रखे जाते हैं उसमें सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति एकादशी से पूर्णिमा तक और एकादशी से अमावस्या तक मन पर नकारात्मक असर डाल सकती है और चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो वो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकता है। यहां तक कि एकादशी का व्रत रख करके अगर साधना की जाए तो ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका सीधा प्रभाव
मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी का उपाय करके, एकादशी का व्रत रख के आप अपने मन और शरीर दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एकादशी का फायदा तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। अगर आप इसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो एकादशी रखने का ज्यादा फायदा आपको प्राप्त नहीं होगा। एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि अपरा एकादशी का, जिसको अचला एकादशी भी कहते हैं, इसका महत्व क्या है। देखिए, आप किसी भी एकादशी का पालन करें, किसी भी एकादशी का उपवास रखें, आपका मन और आपका शरीर एकाग्र होगा, लेकिन अलग अलग एकादशियां विशेष प्रभाव भी जीवन में उत्पन्न कर देती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला या अपरा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका पालन करने से आपको गलतियों की क्षमा मिलती है। खास तौर से झूठ बोलने के पाप से, पाखंड से मुक्ति मिलती है, और अगर आपने कोई गलती की है जीवन में तो उस गलती की क्षमा मिल जाती है अगर आप अपरा एकादशी पर व्रत रखकर साधना करते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का नाम और यश बढ़ता है, और इसके प्रभाव से इस व्रत को रखकर प्रार्थना करने से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
अपरा एकादशी का पालन अगर ईमानदारी से किया जाए, व्रत रख के उपासना साधना ध्यान किया जाए, तो ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। इस बार जो अपरा एकादशी है यानी अचला एकादशी है वो 13 मई को है, तो इसका पालन करके अपनी गलतियों को क्षमा करवाना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, और अगर जीवन में कोई अपराध हो गया है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। व्रत रखने का नियम क्या है इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो उस व्रत को रखने का नियम क्या है, तरीका क्या है? दो प्रकार से एकादशी का उपवास रखा जाता है। एक तो है निर्जल व्रत, दूसरा है फलाहारी या जलीय व्रत, फल खाकर या पानी पीकर व्रत रखना। सामान्यतः निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, बाकी लोगों को, सामान्य लोगों को फल खाकर या लिक्विड लेकर, फलों का रस लेकर, नींबू पानी पीकर उपवास रखना चाहिए। अपरा एकादशी के व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा होती है या लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कहीं कहीं पर बलराम जी और श्री कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है। इस व्रत में भगवान को फल और जल का भोग लगाया जाता है। बेहतर यही होगा कि अगर आप उपवास रखते हैं तो इस दिन केवल जल और फल का सेवन करिएगा।
और उपवास रखने का मतलब ये होता है कि आप केवल अनाज नहीं खाएंगे, उससे उपवास नहीं होगा। जब भी मौका मिले पूरे 24 घंटे में अधिक से अधिक मंत्र जप करें, अधिक से अधिक साधना करें, अधिक से अधिक ध्यान करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब एकादशी व्रत की कुछ सावधानियां भी हैं, क्या करने से बचना चाहिए। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहिए। एकादशी के दिन कम से कम प्रभु मांस मदिरा का सेवन मत करिए, भले ही व्रत मत रखिए। अपना व्यवहार और अपने विचार शुद्ध रखने का प्रयास करिए। और एकादशी की तिथि है तो कम से कम भगवान कृष्ण की उपासना सुबह सुबह जरूर कर लें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत मत करिए। और मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में लगाएं, और उसका सबसे अच्छा तरीका है नाम जप करिए। भगवान के जिस स्वरूप के प्रति आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उनके नाम का निरंतर जप करते रहेंगे तो आपका मन ईश्वर में लगा रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपवास मत रखिए। शुद्ध सात्विक भोजन, प्याज लहसुन भी ना हो, सात्विक भोजन खाइए और प्रक्रियाओं का पालन करिए, यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करिए, मंत्र जप करिए, स्तुति करिए, ध्यान करिए, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं, घर में शुभ कार्य हो सकता है, खान पान में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की अपरा एकादशी के बारे में, अब जान लेते हैं आज के लिए क्या है लकी टिप। अगर आप नए कपड़े पहनने जा रहे हैं या कर्ज लेने जा रहे हैं तो बुधवार को करिएगा। नए कपड़े धारण करना, कर्ज लेना बुधवार को शुभ होता है।
इससे नए कपड़े लगातार मिलते रहते हैं और कर्ज अगर बुधवार को लेंगे तो आसानी से चुका पाएंगे, जीवन में सफलता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है.
4: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा. राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती हैं, कई पड़ाव होते हैं. देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज़ पथ पर. लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज। नूह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहावना। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा। सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट। गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। चारधाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। रुद्रप्रयाग का संगम पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र। यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़। बागेश्वर के कौसानी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी। कैंसल फेस्टिवल से पहले बिछाया गया रेड कार्पेट। उद्घाटन से पहले रोबोट शो ने खींचा लोगों का ध्यान। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने दिखाया जिम्नास्टिक। आइए शुरू करते न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों की भी हो रही है।
13: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के भव्य रथों का निर्माण परंपरा अनुसार पूरे विधि विधान के साथ तेजी से हो रहा है। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट रथ निर्माण स्थल पर तीनों रथों के निर्माण का कार्य सेवायतों की देखरेख में जारी है। भौरी उत्सव के अवसर पर चाकाडेरा अनुष्ठान के तहत तीनों रथों के पहियों को धुरों यानी एक्सल से जोड़ने का काम पूरा किया जा चुका है। 16 जुलाई को आयोजित होने वाली इस रथ यात्रा में 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के रहने का अनुमान है, जिसको देखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात और स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस उत्सव को लेकर पहली समन्वय बैठक में सभी व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा हुई। बैठक में सुरक्षा और श्रद्धालुओं की आवाजाही की व्यवस्था को बिना किसी बाधा के बनाने पर विशेष जोर दिया गया। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की हैं। यहाँ श्रीरंगम के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में चिथिराई उत्सव की अद्भुत छटा बिखर रही है। 11 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव इस साल 6 मई से 16 मई तक मनाया जा रहा है। इस उत्सव में भगवान विष्णु के अलग अलग वाहनों पर दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिल रहा है। उत्सव के दौरान भगवान रंगनाथ को चांदी के हाथी पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विशाल लकड़ी के रथ को भक्त जय घोष करते हुए मंदिर की सड़कों पर खींचते नजर आए। ये उत्सव अपनी भव्यता और पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग से सराबोर नजर आते हैं। चारधाम की यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। यहां हर दिन 15,000 से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। भगवान विष्णु के इस धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने के बाद से अब तक लगभग 3 लाख यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है, उसे यात्रा मार्ग पर हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतारों को देखकर समझा जा सकता है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के बाद श्रद्धालु देश के प्रथम गांव माणा में भी पहुंच रहे हैं और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते वो ठंड और बारिश से बचने के लिए यहां खरीदारी करते भी नजर आ रहे हैं। राजस्थान के 43 डिग्री तापमान में एक विदेशी महिला की तपस्या की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। पुष्कर में रूस की रहने वाली ये महिला 9 धूनी अग्नि तप कर रही हैं, जो नाथ संप्रदाय की एक बहुत प्राचीन और कठोर हठ योग साधना है, जिसमें साधक चारों तरफ धधकती आग के बीच बैठकर तपस्या करते हैं। रूस की इस महिला ने 10 साल पहले नाथ संप्रदाय को अपनाया था। उसके बाद से राधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ नाम की ये महिला नाथ संप्रदाय के रीति रिवाज से अपना जीवन यापन कर रही है। ये अग्नि तपस्या भी उसी परंपरा की कड़ी है। अजमेर के पुष्कर में छोटी बस्ती स्थित शमशान भूमि पर अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में राधिका योगिनी 21 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रही हैं, जिसमें वो हर दिन लगभग 3.25 घंटे तक धधकती अग्नि के बीच बैठकर शिव साधना और गुरु बीज मंत्र का जाप करती हैं। साथ ही रोजाना हवन पूजन और आरती का आयोजन भी होता है। 3 मई से शुरू हुई उनकी ये साधना पूर्ण आहुति और संत भंडारे के साथ 25 मई को सम्पन्न होगी। कहीं तेज गर्मी का आलम तो कहीं बारिश और तेज हवाओं का दौर। देश में इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में खासकर पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ देखा जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सुबह से मौसम में बदलाव देखा गया। यहां हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने को लेकर बारिश का ऑरेंज अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था। पश्चिमी विक्षोभ का असर देश की राजधानी दिल्ली पर भी पड़ने का मौसम विभाग का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते के आखिर तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरू होने के लिए हालात अनुकूल होते जा रहे हैं। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में लू चलने का अनुमान भी है। साथ ही दक्षिण के कुछ राज्यों में भी बारिश की संभावना जताई गई है।
12: चलिए बात करते हैं तेलंगाना के नरसिंह मंदिर की। मल्लूर का ये मंदिर अपनी जीवित प्रतिमा के कारण दुनिया भर में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यानी कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा को जीवित मानकर उनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर को लेकर लोगों में ये आस्था है कि इसकी प्रतिमा में दिव्य ऊर्जा का वास है, लिहाजा अगर आप धर्म और आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आपको नरसिंह मंदिर जरूर जाना चाहिए। यहाँ भगवान नरसिंह की जीवित प्रतिमा के दर्शन कर पाएंगे और उनकी दिव्य ऊर्जा को अनुभव भी कर सकेंगे।

0: तेलंगाना के मल्लूर में विराजमान है नरसिंह भगवान, जिन्हें छूने पर महसूस होती है इंसानी त्वचा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा से सटे तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां अनोखी मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति इंसान की त्वचा जैसी मुलायम है और मान्यता है कि मूर्ति को दबाने से उसमें तरल पदार्थ निकलने लगता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बैसाख के महीने में विशाल मेला आयोजित किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले के दौरान पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान के भक्त बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं।
1: हम हैदराबाद से नरसिंह भगवान के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर नरसिंह चौदस के दिन जो मेला लगता है, 8 दिन तक चलता है कंटिन्यू, बहुत पब्लिक है, जगह जगह से लोग आते हैं, बहुत अच्छे है दर्शन। यहाँ नाभि में से पस निकलता है नरसिंह भगवान के, बोली में जीवित रूप में है, बोली भी हर काम मनोकामना पूर्ण होती है। हम भी आए हैं, भगवान कुछ अच्छा करा तो अच्छा ही है। हम भी और आप सबको भी बोलते हैं कि दर्शन करने के लिए आओ सब जन।
0: नरसिम्हा स्वामी मंदिर, जिसे हिमाचल नरसिम्हा स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, ये मंदिर हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है और पहाड़ियों की शांति इसे आध्यात्मिक साधकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाती है। यहाँ लोग ध्यान लगाने और शांति से प्रार्थना करने आते हैं। भक्त इन सीढ़ियों को चढ़कर भगवान नरसिम्हा स्वामी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आते हैं। देश भर से श्रद्धालु नरसिंह भगवान की जीवित प्रतिमा के दर्शन के लिए लंबी यात्रा करते हैं। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन भक्तों को इसमें आनंद और शांति का अनुभव ही होता है। इस मंदिर की यात्रा और यहां के दर्शन से भक्तों को आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति को देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
2: छत्तीसगढ़ सीमा से लगा तेलंगाना का मुलुगु जिले में ये गांव है जहां पर नरसिंह भगवान की जीवित मूर्ति यहां पर बताई जाती है। जीवित मूर्ति यहां पर है, जिसमें शरीर जो है, जिस तरह से इंसान का शरीर होता है उस तरह से कोमल है। यह 4000 वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें अलग अलग जगह से लोग यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ दर्शन के लिए। यहाँ मान्यता है कि लोगों की मन्नत जो मांगते हैं वो पूर्ण होती है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ लोग हर वर्ष मेला लगता है और काफी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और काफी मान्यता है कि ये मंदिर जो जीवित आप नरसिंह भगवान यहाँ जीवित रूप में विराजमान है।
0: मंदिर के गर्भगृह में लगभग 10 फीट ऊंची भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर मान्यता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि साक्षात जीवित स्वरूप है और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। मूर्ति का पेट और दूसरे हिस्से इंसानी त्वचा की तरह कोमल माने जाते हैं। मंदिर के पुजारियों और भक्तों का मानना है कि मूर्ति की नाभि पर एक चोट का निशान है, जिसे नाभि प्रसादम कहा जाता है, जहां से तरल पदार्थ निकलता है। मान्यता है कि ये मंदिर 6वीं शताब्दी से पहले का है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऋषि अगस्त्य ने इस पहाड़ी का नाम हेमचला रखा।
3: ये इसका गांव का नाम है मल्लूर है। इसका जो देव है श्री हेमचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देव है इसमें, और आदि लक्ष्मी और चंचल लक्ष्मी माता भी है इसके साथ। अभी इधर का बहुत पुराना साल का जो ये टेम्पल है, वो इधर का जो मूर्ति है ना लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति का मानव स्वरूप है। मानव स्वरूप हमारा जो चमड़ा कैसे जैसे रहते हैं, ऐसे जो हम लोग अंदर घुसेगा तो वो घुस जाता है। मतलब उतना स्वच्छ और पावरफुल गॉड है। अभी इधर का जो दिख रहा है इसमें ये चिंतामणि बोलता है इसका, ये जो जल प्रवाह है ये चिंतामणि, ये पानी अब 200 मीटर से आपको दिखता है और बाकी जो किधर से आते हैं पता नहीं चलता है। अभी इधर का जो पानी पिएगा तो जो बीमार है बीमारी निकल जाता है।
0: इस क्षेत्र में बसे लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की प्रतिमा में दिव्य ऊर्जा का वास है। इस प्रतिमा की आंखें, मुखमंडल और त्वचा एक जीवित व्यक्ति की तरह प्रतीत होती है। प्रतिमा की त्वचा इंसानी त्वचा जैसी मुलायम है और अगर इसे दबाया जाए तो त्वचा पर गड्ढा बन जाता है। यही कारण है कि इस मंदिर को दुनिया का अनोखा मंदिर माना गया है।
4: 1200 किलोमीटर दूर से मुझे पता चला कि यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर है और रियल प्रतिमा है, तो यहाँ हर जगह से लोग आते हैं, जैसे तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो हमें भी ये पता चला, तो हम भी यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं दर्शन करने हमारी मन्नत लेके। काफी अच्छा है मंदिर, काफी शांत है, यहाँ पे देख के काफी अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 घंटे से बैठे हुए हैं, फिर भी मन नहीं कर रहा है घर जाने का। बहुत अच्छा है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज क्या है कि जनरली मूर्ति रहती है तो मूर्ति नॉर्मल दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मूर्ति के अंदर से पस भी निकल रहा है जो आपको रियल टाइम में ऐसा बताता है कि अंदर प्रतिमा के अंदर जान है। तो ये सब देखते हुए, इसका मान्यता को देखते हुए, हम खुद 1200 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हैं दर्शन करने पूरे परिवार के साथ।
0: नरसिंह की जीवंत प्रतिमा वाले इस मंदिर में आने वाले भक्तों की मान्यता है कि भगवान नरसिंह उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। भक्तों के अनुभव और चमत्कारों की कहानियाँ इस मंदिर की महत्ता को और बढ़ा देती है। भक्तों का मानना है कि प्रतिमा में भगवान नरसिंह की जीवित उपस्थिति है। कई भक्तों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने प्रतिमा में कई दिव्य चीजें होते देखी हैं और यहाँ उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिला है।
5: हम यहाँ अभी छत्तीसगढ़ से आए हैं, यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है और परंपरा के अनुसार यहाँ पे हर साल मेला लगता है। नरसिंह चौदस को मेला लगता है, जो यहाँ पे भगवान की शादी होती है, मेहंदी हल्दी सब प्रोग्राम बनाया जाता है जैसे शादी में मनाते हैं वैसा। और भगवान की प्रतिमा है जो यहाँ से खुद प्रकट हुई हुई है, उनके नाभि में से पस निकलता है, वो भी कह रही जीवित अवस्था में है वैसे मान्यता है इनकी। और पहाड़ के ऊपर अपने आप प्रतिमा प्रकट हुई है, यहाँ पे कोई मूर्ति बैठाई हुई नहीं है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं।
0: मल्लूर नरसिंह स्वामी मंदिर में ब्रह्मोत्सवम उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर साल आयोजित होने वाले इस उत्सव में भगवान नरसिंह की मूर्ति को एक भव्य शोभा यात्रा में ले जाया जाता रहा है। इस दौरान देश भर से आए श्रद्धालु मंदिर में उमड़ पड़ते हैं और इस दिव्य उत्सव का हिस्सा बनते हैं। नरसिंह स्वामी का ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहाँ भक्त भगवान नरसिंह की उपस्थिति का साक्षात अनुभव करते हैं। नरसिंह स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। इसका मुख्य द्वार गोपुरम नामक एक भव्य संरचना है जो देखते ही बनती है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां और पौराणिक कथाओं की नक्काशी है जो इस मंदिर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: चारधाम यात्रा में अब आईटीबीपी के जवान संभालेंगे ट्रैफिक की व्यवस्था। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
7: महाराष्ट्र के पुणे में गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। आरपीएफ के ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत पुणे सुपौल एक्सप्रेस में सफर कर रही गर्भवती महिला को ट्रेन में डिलीवरी के दौरान पूरी मदद की गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि महिला को ट्रेन में सफर के दौरान अचानक लेबर पेन हुआ। इस बात का अलर्ट मिलते ही आरपीएफ के जवान उसकी मदद में जुट गए। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। जोशीमठ सहित यात्रा मार्ग पर आईटीबीपी के जवान ट्रैफिक के साथ यात्रा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी जगह जगह आईटीबीपी की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। दरअसल शाम के समय जब भारी ट्रैफिक हो रहा है, ऐसे में ट्रैफिक संभालने के लिए आईटीबीपी के जवान बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आईटी सेक्टर में एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम को लेकर बहस तेज हो गई है। आईटी उद्योग से जुड़े संगठन एनआईटीईएस ने श्रम मंत्रालय को पत्र भेजा है। इसमें मांग की गई है कि आईटी और आईटीईएस सेक्टर में काम करने वाले लगभग 58 लाख कर्मचारियों के लिए अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी की जाए। संस्था का कहना है कि भारतीय आईटी उद्योग के पास रिमोट वर्क को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जरूरी तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। एनआईटीईएस के मुताबिक अगर कर्मचारी घर से काम करेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी, ट्रैफिक दबाव घटेगा और विदेशी मुद्रा की बचत में मदद मिलेगी।
6: जेष्ठ महीने के दूसरे बड़ा मंगल की आज बड़ा मंगल है। कहते हैं कि आज के दिन हनुमान जी की आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लिहाजा बड़ा मंगल पर आज हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रयागराज से लेकर अयोध्या और काशी विश्वनाथ से लेकर राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों में सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। मान्यता ये है कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना दान करते हैं, उन्हें विशेष फल और आशीर्वाद मिलता है।

0: जो अपने भक्तों के संकट मोचक और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम साधक और भक्त हैं, उन्हीं राम भक्त हनुमान के मंदिरों में उनके दर्शन और पूजन के लिए आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगल है, जिसे बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान को समर्पित है, लेकिन इसमें भी ज्येष्ठ महीने में आने वाले मंगलवार का अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए सुबह से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज देश के तमाम बड़े और प्राचीन मंदिरों में हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया और भोग लगाकर पूजन अर्चन किया गया। ऐसी ही एक तस्वीर प्रयागराज से आई है, जहां संगम तट पर बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं।
1: सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है और यहाँ पर बजरंगबली लेटी हुई अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं, और जो भक्त हैं सुबह से ही यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्त यहाँ जब आए हैं तो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और यहाँ बजरंगबली के नारे लगाए जा रहे हैं और बजरंगबली लेटी हुई अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्त जो भी मनोकामनाएं लेके आते हैं उनकी भक्त की मनोकामनाएं बजरंगबली पूरी अवश्य करते हैं। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे दूसरा ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगल है और कितनी भीड़ है और किस तरह से बजरंगबली दर्शन।
2: नॉर्मली भीड़ यहाँ मंगलवार को हमेशा रहती है, लेकिन ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार का मतलब दूसरा बड़ा मंगलवार है, इसलिए ज्यादा भीड़ है थोड़ा। ठीक है, भगवान यहाँ पे लेटे हुए अवस्था में है, सब आते हैं आशीर्वाद लेते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है।
3: आज मंगलवार के शुभ अवसर पे हम लोग लेटे हनुमान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पढ़ाई करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करके कुछ जीवन में सफल होना चाहते हैं।
4: हम लोग आए हैं बंधुआ हनुमान मंदिर आए हुए हैं और आज बड़ा मंगल है, दूसरा मंगल है। आज बहुत भीड़ भी है यहाँ पे, देख रहे हैं कि मतलब लाखों मतलब हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। सुबह से यहाँ पे मतलब पूजा पाठ चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है और भीड़ भी काफी ज्यादा है यहाँ पर।
0: ये तस्वीर भगवान राम की नगरी अयोध्या के प्राचीन हनुमान गढ़ी मंदिर की है, जहाँ बड़ा मंगल के मौके पर हनुमान भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। कोई भेंट चढ़ाने के लिए सिंदूर और चोला लेकर आया, तो कोई फूलों की माला और कोई उन्हें प्रसन्न करने के लिए मोदक लेकर आया।
5: शुभ अवसर पड़ रहा है कि अब की बार आठ
0: चोला लेकर आया, तो कोई फूलों की माला और कोई उन्हें प्रसन्न करने के लिए मोदक लेकर आया।
5: ज्येष्ठ का दूसरा मंगलवार बड़ा मंगलवार है, अब की बार ऐसा हो रहा है कि इतने शुभ मौसम मतलब इतना शुभ अवसर पड़ रहा है कि अब की बार आठ मंगलवार पड़ रहे हैं। हर बार पांच मिलते थे, अब की बार आठ मंगलवार मिल रहा है और प्रभु की इतनी असीम अनुकंपा से कि हमको अयोध्या वास मिल गया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की भी बात है और मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि प्रभु ने इतना मुझे सम्मान दिया कि आज मैं यहाँ पे आ पाई हूँ, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है।
6: बहुत अच्छा दर्शन हुआ, सुबह मंगल आरती 4 बजे की हुई है। यहाँ पे ज्येष्ठ का बड़ा मंगल, बहुत भीड़ है, हजारों आदमी यहाँ इस समय सुबह सुबह इकट्ठा हुआ।
7: सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम, जो अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज कहे जाते हैं, आज दूसरा ज्येष्ठ का मंगलवार है और स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि माँ जानकी स्वयं प्रभु हनुमान जी को जो है अपने लाडले को अमृत का वरदान प्राप्त का आशीर्वाद दिया था। और इसके साथ साथ आज ही के दिन जो है हनुमान जी और भगवान श्री राम का मिलन भी हुआ था, ऐसा आता है दृष्टांत। और स्कंद पुराण में तो खासकर ऐसा लिखा है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी का जो है मिलन उस दिन हुआ था, इसलिए उसका विशेष महत्व है।
0: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के पाताल भूमि हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना जारी रहा। मान्यता है कि हनुमान जी की ये मूर्ति स्वयंभू है और पवनसुत हनुमान अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
8: ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है, इसके पीछे कई कारण हैं। कहा जाता है कि इसी दिन हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था, तो इसी दिन हनुमान जी को राम जी की प्राप्ति भी हुई थी, उनसे वे मिले थे। तो दिन जब इतना खास हो तो धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी इससे कैसे अछूती रह सकती है। इसी वजह से हम वाराणसी के एक प्रमुख हनुमान मंदिर जिसे पाताल भूमि हनुमान मंदिर कहते हैं वहाँ आप पहुँचे हैं और आपको सीधे दर्शन पाताल भूमि हनुमान बाबा की कराते हैं। कहा जाता है कि 41 दिन अनवरत इनके दर्शन कर लेने मात्र से भक्तों की, हनुमान भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। हम ऐसे ही कुछ श्रद्धालु से बात करते हैं, जानते हैं कि आज के दिन का क्या खास महत्व है और आज इनके दर्शन से किस तरह की इच्छाओं की पूर्ति होती है।
9: बाबा के दर्शन करने से सभी इच्छाएं, सभी मनोकामना पूर्ण होती है और सभी हर इच्छा पूर्ण होती है कि 8 मंगलवार दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है।
8: प्रसाद स्वरूप भक्त यहाँ से जल लेते हैं, तुलसी लेते हैं और जो सिंदूर का तिलक है वे लगाते हैं अपने गले में, अपने मस्तक पे। हम मंदिर के पुजारी से ही बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में क्या खास बात है और कितना प्राचीन ये मंदिर है।
10: ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है, बाबा स्वयंभू है, पाताल से निकली हुई प्रतिमा है, यहीं मतलब पाताल से निकली और यहीं प्राण प्रतिष्ठित हो गई है।
0: राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध मरगट वाले हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। यहाँ हाथों में प्रसाद लिए भक्त दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए और कुछ भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं।
11: देश की राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध मरकट वाले हनुमान मंदिर की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सुबह से श्रद्धालु का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर परिसर इस वक्त जयकारों से गूंज उठ रहा है। किस तरीके से जय श्री राम के जो गूंज है आपको वो पूरे मंदिर परिसर में जो है सुनाई देने वाली है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से लंबी लंबी लाइन जो है आपको वो नजर आ जाएगी और भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ इन लाइनों में इंतजार करके जो है अंदर जा रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। वैसे भी माना जाता है कि ज्येष्ठ महीने के जो मंगलवार होते हैं वो वाकई में बेहद खास होते हैं और इस समय हनुमान जी की पूजा उपासना जो है बड़े ही फलदायी होता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ मरगट वाले हनुमान मंदिर की, किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। हर कोई जो है मन में ढेर सारी आस्था के साथ आपको मिलेगा। इस तरफ की मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो लोग जो है क्योंकि पीछे की तरफ ही जो है हनुमान जी स्थापित है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब यहाँ पर आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए जो है वो नजर आ जाएंगे। और मंगल में वैसे ही माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह के जो संकट है वो दूर होते हैं और जीवन में हर तरीके की सुख समृद्धि जो है वो आती है।
12: जयगा बाबा, बुलाएंगे जरूर आएंगे हम। हाँ, बुलाएंगे जरूर आएंगे
13: हम। बिल्कुल भी नहीं, बाबा ने बुलाया, इंतजार की तो जरूरत ही नहीं है।
0: भगवान राम के धाम अयोध्या से लेकर प्रयागराज, लखनऊ से लेकर काशी तक और राजधानी दिल्ली में पूरे दिन बजरंगबली के जयकारे, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, आरती और भजन मंदिरों में गूंजते रहे। मान्यता है कि जो लोग बड़ा मंगल पर हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करते हैं उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
14: और न्यूज पद पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद है। इसका सीधा रिश्ता

0: आप देख रहे न्यूज पर आगे बढ़े उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज, नूह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहावना। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा, सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। 4 धाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, रुद्रप्रयाग का संगम पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र, यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी। कांसवेल फेस्टिवल से पहले बिछाया गया रेड कार्पेट, उद्घाटन से पहले रोबोट शो ने खींचा लोगों का ध्यान, ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने दिखाया जिम्नास्टिक। और न्यूज पथ पर आगे बढ़ेंगे लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और ये वायरल भी है।
2: एक पिता और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब तेजी के साथ देखा जा रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। मिठाई के जरिए ये मासूम बच्ची जिस अंदाज में पिता से अपने माँ के बारे में शिकायत करती है उसने यूजर्स का दिल जीत लिया है।
3: पापा सुनो एक बात पूछूं।
4: हाँ, को पूछो।
3: आपकी शादी में मिठाई आई थी?
4: हाँ, मिठाई आई थी।
3: आपने खाई थी?
4: हाँ, को खाई थी।
3: मम्मा को भी खिला देते?
4: क्यों?
3: मम्मा थोड़ा भी बोल लेती।
4: क्या?
3: अरे मीठा बोल लेती थोड़ा।
2: ये तो हम सब जानते हैं, इस धरती पर एक से एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ ज्यादातर लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से एक अजीबोगरीब हरकत करके सबको चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है। इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द नहीं महसूस हो रहा, देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत नहीं कोई मशीन हो। सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों को डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं ताकि दुकान के सामने से गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिक्विन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिक्विन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्चे की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के दानापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल किसी बैंक ATM की तरह से दिखाई देता है, लेकिन अंदर कैश नहीं बल्कि हेयर कटिंग सैलून दिखाई दे रहा है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करती थी। बाद में बैंक ने इसे तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहां से ATM हटा लिया। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिए गए थे। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया जहां पर एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने पर बैंक की ब्रांडिंग को छिपा दिया गया। ऑटो रिक्शा में सनरूफ, जहां लोग कार में सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है, लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखा। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे टैगजीन को काट कर एक खिड़की बना दी जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कुछ ज्यादा कीमती लग रही है।

0: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्रों की, जिन्हें आज बड़ा झटका लगा है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को देश भर में नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी। ये फैसला पेपर लीक होने के आरोप के बाद लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख जल्दी ही जारी की जाएगी। एनटीए ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और मामले की सीबीआई जांच होगी। एनटीए ने जानकारी दी है कि नीट में बैठने वाले लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। पिछले परीक्षा केंद्रों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा देने वाले छात्रों से दोबारा एग्जाम में बैठने के लिए कोई अतिरिक्त फीस भी चार्ज नहीं की जाएगी। मामले की पड़ताल में सामने आया है कि पेपर छपने से पहले ही सवाल नकल गैंग के पास पहुंच गए थे। इनमें बायोलॉजी के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 35 सवाल थे, जो हूबहू परीक्षा में आए थे। एनटीए ने बताया है कि 8 मई को ही इस मामले से जुड़ी कुछ जांचों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था, ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जांच एजेंसियों से मिले निष्कर्षों के आधार पर ही यह तय किया गया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। जाहिर है कि लाखों छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता और नाराजगी दोनों देखने को मिल रहे हैं। इस मामले को लेकर हमने चंडीगढ़ में कुछ लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
1: एग्जाम के जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे उनके लिए बड़ी सेटबैक है, क्योंकि पेपर लीक हुआ उसके बाद जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है। लाखों जो बच्चे हैं वो इसके लिए अपेयर होते हैं, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन एक बड़ी सेटबैक है। हमारे साथ टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, तो बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम?
2: मेरा नाम मुकेश सियाल है जी।
1: मुकेश जी, यहाँ पे चंडीगढ़ में आप हैं, हेलिक्स इंस्टीट्यूट है। पहले ये बताइए कि ये जो नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये इसको आप किस तरह देखते हैं और कितना बड़ा सेटबैक है स्टूडेंट्स के लिए और आपके लिए?
2: देखिए, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स इसमें अपना मोमेंटम बनाते हैं और अपनी 2 साल की जर्नी होती है उनकी, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करते हैं, फिर दिन रात एक करते हैं, उसके बाद वो एग्जाम देने जाते हैं, अपनी पूरी शिद्दत के साथ इसमें अपीयर होते हैं। मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है हर पेरेंट के ऊपर। एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है जब एक बच्चा नीट के लिए अपीयर होने के लिए जा रहा होता है। तो फाइनली जब वो अपीयर होता है, सब कुछ हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, अच्छा रिजल्ट आ जाता है उसके लिए भी, और जिसका रिजल्ट अगर कुछ 19-21 भी होगा उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि वो नीट कैंसिल हो जाता है।
1: तो सर, जैसे आपको ये खबर मिली कि कैंसिलेशन हुआ, तो स्टूडेंट्स के आपको कॉल्स आने शुरू हुए, पैनिक है स्टूडेंट्स में?
2: बहुत ज्यादा पैनिक है, पेरेंट्स अपसेट हो चुके हैं, फैमिली अपसेट हो चुकी है। पेरेंट्स के लिए रीअपियर होना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, उनके लिए उनको दोबारा से अपने बच्चे को सेटअप दिलवाना, सब कुछ करवाना, नोट्स दोबारा से खोलना, मटेरियल बुक्स सब दोबारा से पढ़ना, वो प्रोसेस वो डिफिकल्ट लगता है बच्चे को, उसके मोमेंट बनाने में टाइम लग जाता है।
1: सर, आपका नाम? आप भी टीचर हैं?
3: हाँ, मैं राजेश हूँ, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। और ये तो सर ऐसा लगता है जैसे हम फिजिक्स में बच्चे को फ्री फॉल टीच करते हैं कि एकदम से ऊपर से नीचे गिर गया और फिर से उसको बिल्डअप करना है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल और पूरा पेरेंट्स का हर तरह से जो सारी बच्चे के लिए उन्होंने इनपुट दी होती है, उसके मोमेंटम को, उसके मेंटल हेल्थ को या उसको बूस्ट करने के लिए इस एग्जाम को क्रैक करना, और ऊपर से इस तरह की हैपनिंग्स अगर बार बार ही होती हैं। पहले 4 साल पहले हमने देखा कि लॉकडाउन का था तो वो इफेक्ट रहा, वहां से थोड़ा थोड़ा बच्चा निकलना शुरू हुआ। अभी इस साल उन्होंने बड़े अच्छे से तैयारी करी थी, हमारे यहां के बच्चों का ले लें तो काफी बच्चों का लगभग 650-700 के बीच में था, तो वो तो सेकंड फेज के लिए जा रहे थे, और ऊपर से फिर से गवर्नमेंट के इस तरह के लीकेज अगर बार बार होते रहेंगे तो फिर ये बच्चों के लिए तो क्या, नेशन के लिए बड़ी सिंपल बात होती है।
1: एक बड़ा आया था कि जब बार बार पेपर लीक्स होते हैं तो डेफिनेटली एक मोराल जो है इफेक्ट होता है स्टूडेंट का भी, टीचर का भी। तो आपको किस तरह लगता है कि फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए, ये बड़ा इम्पैक्ट करता है?
4: यस सर, एक फुल प्रूफ सिस्टम की अगर हम बात करें वो कितना रिक्वायर्ड है। एनटीए जो पूरा एक सेटअप बनाती है, एनटीए ने बोला था बहुत सिक्योर है, और आप देखिए कुछ दिन पहले ट्वीट भी करा था कि किस तरीके से वो पेपर बनाते हैं और बच्चों को कैसे तैयारी करनी है। एंड आफ्टर रिजल्ट आप देखिए, अब ये आ रहा है कि मतलब नीट होने के बाद रिजल्ट से पहले अब ये सुनने को मिल गया कि पेपर लीक हो गया। सो आप बच्चों का माइंडसेट देखिए कैसा होगा इस टाइम पे, कि सुबह से शाम तक दे आर प्रिपेयरिंग एंड नाउ दे आर लिसनिंग टू, सारा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है।
1: आपका नाम?
5: मेरा नाम संगीता है, मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ।
1: यहाँ मुश्किल होता है कि बच्चे को दोबारा प्रिपेयर करना भी, आपको दोबारा एग्जाम देना?
5: नहीं, बहुत मुश्किल होता है। मेरे नॉन कुछ स्टूडेंट्स है जो टच में है, वो कुछ वो सारे सामान पैक कर चुके थे कि अब हमें रिफ्रेश मोड में जाना है, अब हमें उन्हें दोबारा से सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सारे टेस्ट सारा नोट्स रिवीजन करना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम।
1: तो कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस तरफ जो अपीयर हुए थे वो तो जब नहीं है यहाँ, लेकिन जो एस्पायरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है?
6: रणविजय देओल नाम है।
1: रणविजय, आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं?
6: हाँ जी।
1: तो आज जब ये खबर ब्रेक हुई कि हाँ नीट का जो एग्जाम था वो कैंसिल हो गया, तो उनको री अपीयर करना होना पड़ेगा, डेट्स अभी आ जाएंगी, तो एज अ स्टूडेंट आपका क्या रिएक्शन है, किस तरह का आपको फीलिंग है?
6: हम तो अभी पढ़ ही रहे थे, हमको तो अभी पता चला कि नीट का जो पेपर है वो ऐसे लीक हो गया। हमें तो जैसे सेटबैक या जो प्रेपरेशन कर रहे थे जो स्टूडेंट्स, तो हमें भी अभी डर ही रहेगा कि जब हम पेपर देंगे कहीं तब अगर लीक हो गया पेपर तो तब क्या होगा।
1: तो कितनी मेहनत रहती है एक नीट के एग्जाम की तैयारी करने?
6: तो बहुत रहती है सर। हाँ जी, जैसे रोज ही पढ़ना पड़ता है, अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है फिर तो मुश्किल ही रहती है कि अगर वो क्लियर कर सकते हैं नीट या नहीं कर सकता।
1: आपका क्या नाम?
7: मेरा नाम आरव है।
1: आप कब से तैयारी कर रहे हैं और कब आपका एग्जाम कब है?
7: मैंने अभी तैयारी करनी शुरू किया जस्ट प्लस वन में हेलिक्स में आके, एंड मेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है, 90 चैप्टर्स 2 इयर्स के स्पैन में सिर्फ कवर करने हैं, तो ये बच्चे के लिए बहुत इजी टास्क तो बिल्कुल भी नहीं है। इतने प्रेशर में बच्चा आता है और एंड में जाके उसको पता चलता है, अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि
1: कुछ जाना, जिस तरह ये कैंसिल हो गया क्योंकि लीकेज हुई, तो इससे आपका जो मेंटल स्टेट है उस पर कितना इम्पैक्ट होगा?
7: ये ऑफकोर्स इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अब हमें कोई श्योरिटी नहीं है ना कि आगे 2 साल बाद हम पेपर दें और वो लीक हो जाए, फिर हम एक ऐसी यू नो पाथ पे चल रहे हैं जिसके कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो वो फिर ऑफकोर्स हमें बहुत इनसिक्योरिटी फील कराता है।
8: सर असर तो है, जैसे अब डर लगता है कि व्हेन वी विल बी अपेयरिंग इफ द सेम थिंग वुड हैपन, इट्स ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। जिन्होंने पेपर दिया, 2 साल तैयारी की है, अब उनके लिए भी डिफिकल्ट है और फॉर द नेक्स्ट वंस टू इट्स डिफिकल्ट।
9: जी सर, मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ और इशिका माय नेम, एंड हमारे बच्चों ने 2 साल बहुत मेहनत करी है, इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रेस लेते हैं बच्चे, और जब ऐसा एग्जाम इस तरह से होता है तो बहुत ही प्रेशर है, नॉट ओनली बच्चे पे, फैमिली पे। बच्चे का एग्जाम नहीं होता, पूरे परिवार का एग्जाम होता है, हम पेरेंट्स को देखते हैं कितना स्ट्रेस लेते हैं, तो ये चीजें होना बच्चों के लिए तो जस्टिस नहीं है।
0: रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताने जा रहे हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने शौक को पूरा करने में जुटा है, और इसी कड़ी में ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं था। वो अपनी आवाज से रातों रात मशहूर हो गया, और इस लड़के के बारे में जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए।
10: अपनी तरफ से आप लोगों को एक गजल सुनाना चाहता हूँ। आई होप कि आप ये सुनेंगे और आपको ये पसंद आएगा। और

0: लेकिन हम आपको इस लड़की की कहानी अभी बताने जा रहे हैं। कश्मीर के दूर दराज गाँव से निकली ये आवाज इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। तेरह साल के इस लड़के का नाम है रसिक अहमद मीर। कश्मीर के बारामूला जिले के छोटे से गांव के रहने वाले रसिक अहमद को एक गाने ने इंटरनेट का धुरंधर बना दिया। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म धुरंधर द रिवेंज का गाना जाइए सजना पर रसिक अहमद के बनाए रील ने रातों रात इन्हें स्टार बना दिया।
1: ऐसी प्रीत लाले रब्बा जैसी होर कदे होई ना, तेरे जान तो मैं बाद एक दिन सोई ना, पूरा

0: फिल्म धुरंधर द रिवेंज के लिए जैस्मिन सैंडलर्स और सतिंदर सरताज के गाए इस गाने को रसिक अहमद ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर इंस्टाग्राम रील पर डाला था। इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये रील इतनी वायरल हो जाएगी कि उसे 50 मिलियन से ज्यादा लोग देख लेंगे।
1: कोई ना दिल दिया दसदा
2: ये कहानी फिर सही।
3: मेरा नाम राशिक अमीर है और मैं सैरफियाबाद में रहता हूँ, जो कि एक छोटा सा गांव है, और यहीं पर मैं एक लोकल स्कूल में पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चाटूसा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी एक रील वायरल हुई जय सजना धुरेंद्र मूवी की, धुरेंद्र मूवी का सॉन्ग जो कि मैंने गाया था। और जी मुझे पिछले एक साल से बहुत ही शौक रहा है कि मैं गाऊं, और इसमें मेरे भैया ने एक मेरे नाम से एक इंस्टाग्राम चैनल खुलाई रसिक मीर के नाम से, और जहाँ पर मैंने आसपास 70 पोस्ट डाले और उसके बाद मेरी एक रील वायरल हुई जय सजना धुरेंद्र मूवी का सॉन्ग, यही मेरा वायरल हुआ है। आसपास 50 मिलियन पहुँच गए मेरा सॉन्ग।
0: उत्तरी कश्मीर के रफियाबाद इलाके के हाजीपुरा गांव के 9वीं क्लास के छात्र रसिक अहमद के लिए ये कोई स्टूडियो परफॉर्मेंस या रियलिटी शो नहीं था, बल्कि एक स्मार्टफोन पर की गई छोटी सी रिकॉर्डिंग थी। खास बात ये कि उनकी 51वीं कोशिश थी जिसमें ये गाना रिकॉर्ड हुआ, जिसे 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए।

0: ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਈ ਨਾ।
1: इंस्टाग्राम पर अपलोड किए जाने के महज 12 घंटों के अंदर रसिक अहमद को 85,000 लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। इस गाने की वीडियो ने इन्हें घाटी के सबसे ज्यादा चर्चित कलाकारों में शुमार कर दिया। यहां तक कि इस गाने को आवाज देने वाली गायिका जैस्मिन सैंडलस ने भी वीडियो पर कमेंट किया। टीवी एक्टर अली गोनी ने भी अपने अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया। रसिक के गाने के शौक को लेकर पिता पहले खुश नहीं थे, लेकिन अपने भाई की मदद से मिली शोहरत के बाद अब सब बेहद खुश हैं।
2: पहले मेरे पापा को एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ये इतनी वायरल हो जाएगी। वो डांटते थे रोज मुझे कि इससे कुछ नहीं होगा, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो। और जब मेरी रील वायरल हो गई तो पापा बहुत, सब घर वाले खुश हो गए। मेरे भैया, सबसे पहले मेरे बड़े भैया का सपोर्ट रहा है इसमें, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। उन्होंने ही बोला, उन्होंने ही चैनल भी खुलाई, उन्होंने बोला कि आप सॉन्ग अच्छे, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है। और ऐसे ही हम कामयाब हो गए।
1: हालांकि लाखों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने वाले रसिक अभी भी एक साधारण स्मार्टफोन पर गाने रिकॉर्ड करते हैं। इनके पास न प्रोफेशनल हेडफोन है, न गिटार और न ही कोई छोटा सा होम स्टूडियो जो इनके टैलेंट को और निखार सके। जबकि रसिक की ख्वाहिश गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की ही है। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी म्यूजिक स्कूल खुले, ताकि गाँव के बच्चों को भी संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सके।

0: और न्यूज पथ पर थोड़ी देर ब्रेक प्लाजा पर रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे खेल की खबरें, खेल चक्कर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
3: Smartless.
5: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
3: Marketplace.
6: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
3: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
8: Thank God I get to wake
7: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
1: राहुल द्रविड बने T20 टीम के मालिक, आर अश्विन कप्तान। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
2: T20 टीम के मालिक बने राहुल द्रविड, उन्होंने यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्डियंस टीम खरीदी है। राहुल द्रविड़ की टीम डबलिन गार्डियंस की कप्तानी आर अश्विन करेंगे। इस लीग की वजह से यूरोप में T20 क्रिकेट के साथ साथ इस खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। ये लीग क्रिकेट आयरलैंड, क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन की साझेदारी में शुरू की जा रही है। EPTL का पहला सीजन 26 अगस्त से 20 सितंबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े नाम नजर आएंगे। IPL 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। IPL के सीजन में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन शानदार रहा है। गुजरात टाइटंस ने 11 में से 7 मुकाबले जीते हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 11 में से 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। दोनों ही टीमों के 14-14 पॉइंट्स हैं। जिम्बाब्वे के घरेलू क्रिकेट में खेले गए एक मुकाबले के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। 2025-26 मस्विंगो 50 ओवर फर्स्ट लीग के इस मुकाबले में स्कॉर्पियन क्रिकेट क्लब ने 50 ओवरों में 822 रन बना डाले, जबकि मेथल लॉयंस की टीम महज 28 रन पर ही सिमट गई।
1: और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत संधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
5: It's my music and it's my station.
4: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
6: राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir It Up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
2: सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: ईंधन की खपत कम करने के लिए पीएम की अपील के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले में 50% की होगी कटौती, बड़े संस्थानों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा, सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, रुद्रप्रयाग का संगम व्यू पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र, यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा की। बेशक मौसम की चुनौतियां हैं, रास्तों में मुश्किलें हैं, लेकिन बद्री विशाल का दरबार हो या बाबा केदारनाथ का दरबार, भक्तों की भारी भीड़ है। आस्था मौसम की हर चुनौती पर भारी है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने वालों का आंकड़ा 3 लाख पार कर चुका है और रोज करीब 15,000 श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। आज आपको बद्रीनाथ के धाम लेकर चलेंगे। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में वो संगम व्यू पॉइंट भी दिखाएंगे जो केदारनाथ धाम के रास्ते में श्रद्धालुओं का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। आखिर में बात होगी बड़े मंगल की। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल का क्या महत्व है और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यता क्या है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। शुरुआत चारधाम यात्रा से। हिमालय की गोद में बसे बद्रीनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कपाट खुलने के बाद अब तक 3 लाख से अधिक भक्त दर्शन कर चुके हैं और रोज करीब 15,000 यात्री पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम की चुनौती है, बारिश और भूस्खलन के खतरे हैं, फिर भी आस्था का पलड़ा भारी है। दूसरी ओर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। यात्रा मार्गों पर पुलिस, SDRF, NDRF और अब ITBP के जवान भी तैनात हैं। ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम। हवा धीमी और शीतल तो नहीं है, अच्छी खासी ठंड है, उस पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, पर बद्री विशाल के दरबार में चहल पहल जरा भी कम नहीं। बद्रीनाथ के मार्ग भी जयकारा गूंजता रहता है, दिन हो या रात गाड़ियों का सिलसिला भी नहीं थमता है। हिमालय की गोद में अलकनंदा के किनारे भगवान विष्णु का धाम, जिसे धरती का बैकुंठ कहते हैं, हजारों हजार लोगों की आस्था से गुलजार है। मौसम की चुनौती और मार्ग की कठिनाइयों के बावजूद रोज करीब 15,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं और कपाट खुलने के बाद आंकड़ा अभी तक 3,00,000 पार जा चुका है। मई का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है।
1: वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं का भारी भीड़, एक अलग ही उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम कहें या फिर उत्तराखंड के चारों धामों में इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। तो वहीं भारत चीन सीमा से जुड़ा हुआ भारत का प्रथम गांव, पहले इसे अंतिम गांव कहा जाता था लेकिन अब प्रथम गांव माणा में भी लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल 12 और 13 मई को पहाड़ों में भारी बारिश और तेज आंधर तूफान का जो अलर्ट किया है, उसके चलते प्रशासन पूरी तरह से इस समय अलर्ट पर है। वहीं मौसम जो लगातार बदल रहा है बद्रीनाथ धाम में, चाहे चमोली जनपद में, वहीं माणा में जो गर्म ऊनी कपड़ों की दुकानें हैं वहां पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई गर्म कपड़े अपने साथ यहां से लेके जा रहा है। हालांकि अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर लेकर आएँ, क्योंकि पहाड़ों में मौसम अचानक गर्मी अचानक सर्दी का इस समय देखने को मिल रहा है। यही बद्रीनाथ धाम में है, धूप रहते हुए तो बद्रीनाथ में अच्छी खासी गर्मी देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त ठंड का एहसास भी हो रहा है।
0: दिन में आसमान साफ है, चमकीली धूप भी निकली, लेकिन सुबह और शाम के वक्त चमोली में तापमान कम है, उस पर मौसम के यूटर्न लेने की चेतावनी है, इसलिए श्रद्धालु ऊनी कपड़ों से लैस हैं। बारिश से बचने के लिए रेनकोट और छतरी का भी इंतजाम है। फिर भी अगर ठंड लगे तो माणा में ऊनी कपड़ों की दुकान तो है ही, पर बात सिर्फ ठंड की नहीं, मौसम लगातार रुख बदल रहा है, तेज बारिश और उसके साथ भूस्खलन का खतरा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी देखते हुए चारधाम यात्रा मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ SDRF और NDRF की टीमें तैनात हैं। यात्रियों से अपील की जा रही है कि बिना मौसम की जानकारी के लिए यात्रा शुरू न करें और जहां मौसम खराब होने की खबर मिले उससे पहले किसी सुरक्षित स्थान पर ठहर जाएं। चेक पोस्ट और पड़ावों पर यात्रियों को लगातार जानकारी दी जा रही है, साथ ही यात्रा मार्गों और रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर LED स्क्रीन लगाई गई हैं, जिन पर अगले कई दिनों के मौसम का पूर्वानुमान लगातार दिखाया जा रहा है।
2: कि वर्तमान में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और मौसम विभाग के द्वारा हाल ही में दिनांक 12 और 13 तारीख को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस संबंध में जो सभी जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको सचेत किया जाता है कि सावधानी पूर्वक यात्रा करें और मौसम का विशेष रूप से ध्यान रखें और कहीं पर बारिश या ऐसी स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहें, और बाकी कोई आपदा की स्थिति आती है या कुछ अन्य कोई समस्या आती है तो हमारे आपदा कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं।
0: सावधानी है, मुस्तैदी है, हाँ इसके साथ श्रद्धालुओं में गजब का जोश है, और उसकी वजह ये भी है कि प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए जबरदस्त व्यवस्था की हुई है। आने जाने, ठहरने, खाने पीने किसी में कोई तकलीफ नहीं।

0: हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो जाहिर है गाड़ियों की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी। चार धाम यात्रा मार्ग पर अभी तक ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस के हवाले थी, पर अब उनके साथ आईटीबीपी के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। जोशीमठ समेत यात्रा मार्ग पर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती अलग अलग जगह पर की गई है, जो ट्रैफिक के साथ यात्रा व्यवस्था को भी संभाल रहे हैं।
1: अब बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम तक पुलिस और होमगार्ड के जवानों के साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। हर मार्ग पे जहाँ पे भी यात्रा व्यवस्था जो अव्यवस्था होती है उसे संभालने और उसे सुधारने के लिए अब आईटीबीपी के जवान भी मुस्तैदी से यहाँ पे लगा दिए गए हैं। जोशीमठ का ये एक छोर है, यहाँ से वन वे ट्रैफिक जो है वो जाता है। जो गाड़ियाँ यहाँ से नीचे नहीं जा सकती है उन्हें रोकने का, खासकर जब लोकल का सिस्टम हो जाता है तो कई बातें हो जाती है। ऐसे में आईटीबीपी जोशीमठ के इस चौराहे पे या फिर जोशीमठ के शुरुआती उसमें या नरसिंह मंदिर मार्ग पे या फिर पेट्रोल पंप और बद्रीनाथ धाम में सहित हर जगह इस समय आईटीबीपी की तैनाती की गई है ताकि वो ट्रैफिक व्यवस्था को भी संभाल सके। जगह जगह इस समय जब ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है या ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने लगती है तो आईटीबीपी के जवान ही काम आते हैं। ऐसे में आप पूरी तैनाती सुबह से रात तक लगभग 25 जवानों की तैनाती इस पूरे यात्रा मार्ग पर की गई है, जो सुबह से शाम तक और रात्रि में भी यहाँ पे अपनी तैनाती दे रहे हैं, जिससे बद्रीनाथ यात्रा में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रह सके।
0: केदारनाथ के उलट बद्रीनाथ तक गाड़ियाँ सीधी जाती हैं, इसलिए रास्ते पर छोटी बड़ी गाड़ियों की कतार है। खासतौर पर शाम के समय ट्रैफिक ज्यादा होता है और यही वो समय होता है जब ट्रैफिक जाम होता है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब आईटीबीपी के जवानों ने ये जिम्मेदारी संभाल ली है और उम्मीद की जा रही है कि अब जाम जैसी समस्या नहीं होगी। ट्रैफिक के साथ फोकस सुरक्षा व्यवस्था पर भी है। चमोली पुलिस और एटीएस मिलकर संयुक्त सुरक्षा अभियान चला रही हैं। इसके तहत गहन निरीक्षण और चेकिंग अभियान जारी है। अस्पताल, होटल्स, पार्किंग स्थल, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और वाहनों की चेकिंग हो रही है। इसके साथ सीमा पर मौजूद माणा गांव तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। लगातार गश्त और निरीक्षण हो रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। खासकर केदारनाथ यात्रा जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस रास्ते में रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी संगम व्यू पॉइंट पर यात्रियों की भारी भीड़ लग रही है। ये तस्वीर इतनी खूबसूरत है कि लोग इसे देखते नहीं थकते। इस व्यू पॉइंट की वजह से स्थानीय लोगों की भी अच्छी खासी आमदनी है, साथ ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यात्रा से लौट रहे श्रद्धालु यहाँ ठहरते हैं और यहाँ तस्वीरें खींचते हैं।
3: समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग में जो चारधाम जाने वाले यात्री हैं उनकी भारी भीड़ मची हुई है। कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है वह पीक पर चल रही है। यह रुद्रप्रयाग का केदारनाथ हाईवे, इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। कह सकते हैं एक प्रकार से यह संगम का व्यू पॉइंट भी है और संगम को निहारने के लिए देश विदेश से पहुंचने वाले यात्रियों की भारी भीड़ लगी हुई है।
4: बहुत मजा आया यहाँ का नज़ारा, जो कुदरती खरेखर जो कुदरत ने बनाया है, कुछ करिश्मा है। और यहाँ का जो सरकार की और यहाँ के जो प्रशासनों की जो व्यवस्था है वो भी कुछ अलग है। ऐसे पहाड़ी इलाकों में रियल में आप बिना तो कभी बिलीव नहीं करोगे, सबको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए।
2: चारधाम यात्रा में हेली सेवा श्रद्धालुओं के लिए बेहद मददगार है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास परिषद यानी UCADA के अनुसार 22 अप्रैल से अब तक 21,000 से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से चारधाम यात्रा कर चुके हैं। फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से संचालित शटल सेवाओं से 17,976 यात्रियों ने यात्रा की, जबकि चार्टर्ड सेवाओं के जरिए 3,974 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। देहरादून में सहस्त्रधारा और सिरसी में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहाँ DGCA और IMD के अधिकारी तैनात हैं और यहां से हेली सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। और UCADA लगातार आधुनिक तकनीक के जरिए हेली यात्रा को और अधिक सुरक्षित सुव्यवस्थित बनाने पर काम कर रहा है। यूकाडा, DGCA और मौसम विभाग की संयुक्त टीम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय बनाकर खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की स्थिति में भी हेली संचालन पर नजर रख रही है। पीटीजेट कैमरों और ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से सभी हेली रूट, टेक ऑफ और लैंडिंग की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
5: डीजीसीए के डायरेक्शंस के क्रम में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर जो एस्टेब्लिश किया है सिरसी और सहस्त्रधारा में, ये एक क्रूशियल रोल इस सेंस में प्ले करता है कि वहाँ पे डीजीसीए के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बैठते हैं, मेट ऑफिसर्स जो कि आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी रहते हैं, साथ ही वो ATC के कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट में रहते हैं और उसके बेसिस पे ही हम लोग सेफ फ्लाइंग को इंश्योर करते हैं। बैड वेदर कंडीशंस को या अचानक से चेंज होने वाले वेदर के केस में हम लोग जो फ्लाइंग को स्टॉप करते हैं या सिक्योरिटी के दृष्टिगत और जो क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं वो विजिबिलिटी को लेकर भी लगातार उस पर नजर रखी जाती है।
2: और अब बात बड़े मंगल की। ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगल पर उत्तर भारत पूरी तरह भक्ति में रंगा नजर आया। अयोध्या, प्रयागराज, काशी और लखनऊ समेत कई शहरों में सुबह से ही हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बजरंग बली को चोला, सिंदूर और प्रसाद अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। जगह जगह सुंदरकांड पाठ, भजन कीर्तन और विशाल भंडारों का आयोजन हुआ। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला।

0: संकट मोचन आपका, जग में सुंदर नाम, भक्त सभी जाते वहीं, जहां आपका धाम। तपती धूप, लंबी कतारें, हाथों में प्रसाद, फोटो पर जय बजरंगबली और दिल में अटूट विश्वास। ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगल पर आज पूरा उत्तर भारत भक्ति में डूबा नजर आया। अयोध्या से लेकर काशी तक, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक, हर ओर राम भक्त हनुमान के जयकारे गूंजते रहे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से मंदिरों के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि गलियां, घाट और मंदिर परिसर पूरी तरह भक्तिमय हो उठे। किसी ने सिंदूर चढ़ाया, किसी ने चोला अर्पित किया, तो कोई हाथ जोड़कर बजरंगबली से सुख समृद्धि की कामना करता दिखा। ज्येष्ठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर देश भर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिरों में घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी। हनुमान मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी रहीं। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों के कदम नहीं रुके। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा, हर वर्ग के लोग बजरंगबली के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते दिखाई दिए। रामनगरी अयोध्या में भक्ति का अलग ही रंग देखने को मिला। स्नान के बाद भक्त सीधे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर की ओर बढ़ते नजर आए। पूरा शहर जय श्री राम और बजरंगबली की जय के उद्घोष से गूंज उठा। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हर रास्ते पर पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैद दिखाई दी।
1: बजरंगबली के दरबार में और बजरंगबली के लोग दर्शन भी कर रहे हैं, और जो आप भीड़ देख रहे हैं वो यहाँ पे रुकी हुई है और काफी देर से यहाँ पे भीड़ है, रुकी है, और सुबह से ही जो बजरंगबली के द्वार दरबार पे जो है जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है। और जो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना ना हो तो उसके लिए प्रशासन ने जो है जगह जगह बैरिकेडिंग भी की है, और बीच में जो बैरिकेड है तीन रो में इसको बांट दिया गया है काफी जो है, और यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो अभी जो वक्त है वो मंदिर जो है अभी कुछ देर के लिए बंद किया गया है क्योंकि भगवान का भोग लग रहा है, और उसको लेकर काफी यहाँ पे भीड़ जो है काफी देर से रुकी हुई है, और दूर दराज से लोग आ रहे हैं आज सुबह से बजरंगबली के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, और उनसे अब उनका आशीर्वाद लेके सीधा अपने घर को वापस जा रहे हैं। तो अयोध्या का जो आज रंग है, जो माहौल है, जो उत्सव है, जो ज्येष्ठ माह का दूसरा मंगल, उसको लेकर काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग सुबह से पहुंचे हुए हैं।
0: हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्त हाथों में फूलमाला, चोला, सिंदूर और मोदक लेकर पहुंचे। कई श्रद्धालु परिवार के सुख शांति की कामना करते दिखे, तो कुछ ने जीवन की परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना की। जगह जगह सुंदरकांड पाठ, भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का आयोजन हुआ। धार्मिक धुनों से पूरी अयोध्या का माहौल भक्तिमय बना रहा।
2: असर पड़ रहा है कि अब की बार 8 मंगलवार पड़ रहे हैं, हर बार 5 मिलते थे, अब की बार 8 मंगलवार मिल रहा है, और प्रभु की इतनी असीम अनुकंपा से कि हमको अयोध्या वास मिल गया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की भी बात है और मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि प्रभु ने इतना मुझे सम्मान दिया कि आज मैं यहाँ पे आ पाई हूँ, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, सब लोग पावन दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं प्रभु के, तो ऐसे बहुत मंगलमय है। हम लोग अपने घर से 1 बजे निकले थे, यहाँ पे 2 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे। जी जी,
3: लाइन लगी है,
2: बहुत लंबी लाइन, आप देख सकते हैं इतना भीड़ है यहाँ पे कि आप बता नहीं सकते अभी कितनी भीड़ होगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं।
0: श्रद्धालुओं की सेवा के लिए शहर में अलग अलग स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया गया। कहीं शरबत बांटा गया तो कहीं पूड़ी, सब्जी और हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संगठन पूरे उत्साह के साथ सेवा कार्य में जुटे नजर आए।
4: बहुत बड़ा मंगलवार है, तो आज जो भगवान से मांगे हैं इन्होंने बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया है, बाकी देखते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, जो अच्छा रहेगा सबके लिए अच्छा हो।
0: अयोध्या ही नहीं बल्कि संगम नगरी प्रयागराज में भी बड़े मंगल की खास रौनक दिखाई दी। लेटे हुए हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में लगातार बजरंगबली के जयकारे सुनाई देते रहे। श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर परिवार की खुशहाली और सफलता की कामना की।
3: शुभ अवसर पे हम लोग लेटे हनुमान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पढ़ाई करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करके कुछ जीवन में सफल होना चाहते हैं।
5: मंगलवार है और ये बड़े हनुमान मंदिर के पास आए हैं दर्शन के लिए। हम लोग बलिया से आए हैं।
6: क्या क्या किया?
5: हनुमान जी का दर्शन ही किए, गंगा जी नहाए संगम पे।
0: दूसरी ओर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी आस्था चरम पर दिखाई दी। पातालपुरी हनुमान मंदिर, संकट मोचन और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिरों में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि यहाँ विराजमान पवन पुत्र अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिरों में आकर्षक श्रृंगार किया गया, फूलों और रोशनी से पूरा परिसर सजा नजर आया।
7: स्वयंभू है ये मंदिर, सैकड़ों साल पुराना है। बाबा स्वयंभू है, पाताल से निकली हुई प्रतिमा है। यही मतलब पाताल से निकली और यही प्राण प्रतिष्ठित हो गई है। और यहाँ 41 दिन लगातार अगर नियम से कोई दर्शन कर ले तो उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और मनोकामनाओं की पूर्ति के बाद कोई भंडारा कराता है, कोई सवामनी कराता है, जो भाव मतलब श्रद्धा के हिसाब से अपना कार्य करता है।
0: लखनऊ में भी मंदिरों में सुबह से दर्शन का सिलसिला जारी रहा। शहर के अलग अलग इलाकों में भंडारों की लंबी श्रृंखला दिखाई दी। कहीं भक्तों को प्रसाद दिया गया तो कहीं राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाकर सेवा की गई। बड़ा मंगल को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने में ही भगवान श्री राम और हनुमान जी का पहला मिलन हुआ था। इसी वजह से इस माह के मंगलवार का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता ये भी है कि इसी दिन पवन सुत ने भीम का अहंकार समाप्त किया था, इसलिए ज्येष्ठ के हर मंगलवार को बेहद शुभ माना जाता है।
8: ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। कहा जाता है कि इसी दिन हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था, तो इसी दिन हनुमान जी को राम जी की प्राप्ति भी हुई थी, उनसे वे मिले थे। तो दिन जब इतना खास हो तो धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी इससे कैसे अछूती रह सकती है। इसी वजह से हम वाराणसी के एक प्रमुख हनुमान मंदिर जिसे पाताल भूमि हनुमान मंदिर कहते हैं वहाँ आप पहुँचे हैं और आपको सीधे दर्शन पाताल भूमि हनुमान बाबा की कराते हैं। कहा जाता है कि 41 दिन अनवरत इनके दर्शन कर लेने मात्र से भक्तों की, हनुमान भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और ज्येष्ठ मास में इस बार 8 मंगलवार अधिक मास के चलते प्राप्त हो रहा है, इस वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
0: इस साल ज्येष्ठ महीने में कुल 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस दौरान सच्चे मन से पूजा करने और व्रत रखने से जीवन के संकट दूर होते हैं और बजरंग बली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आस्था की यही ताकत बड़े मंगल को खास बनाती है। जहां तपती गर्मी भी विश्वास को कमजोर नहीं कर पाती, जहां घंटों इंतजार के बाद भी चेहरे पर थकान नहीं बल्कि संतोष दिखाई देता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, बनारस से रोशन कुमार, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

0: hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: ईंधन की खपत कम करने के लिए पीएम की अपील के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले में 50% की होगी कटौती, बड़े संस्थानों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा, सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, रुद्रप्रयाग का संगम व्यू पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र, यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन का ले रहे रोमांच। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज, नूह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहाना।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबर।
2: कौसानी और बैजनाथ में उमड़ रही पर्यटकों की भारी भीड़, महानगरों की गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे सैलानी। बागेश्वर के हिल स्टेशन कौसानी में मौसम बेहद सुहावना, लगातार बारिश से साफ दिखाई दे रही है हिमालय की चोटियां। जंगल की आग से फैला धुआं, बारिश के बाद पूरी तरह छटा, पर्यटक अब खुले आसमान और खूबसूरत वादियों का ले रहे हैं आनंद। पर्यटकों को खूब लुभा रहा है बैजनाथ मंदिर में दर्शन और झील में नौकायन, यहां छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं लोग। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय कारोबारियों में खुशी का माहौल, होटल रेस्टोरेंट और दुकानों में लौटी रौनक। हरियाणा के नूह मेवात में तेज बारिश और ओलावृष्टि से मौसम हुआ सुहावना, आज दोपहर बाद अचानक मौसम ने बदली करवट। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार गिरते रहे ओले, अचानक आए बदलाव को लेकर लोगों में खुशी। पूर्वी यूपी में कल गरज चमक के साथ बारिश के आसार, आंधी चलने की भी संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को लेकर भी अलर्ट, हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में फिर करवट लेगा मौसम, 5 जिलों में बारिश, आंधी पानी का अलर्ट। हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बारिश के साथ गिरेंगे ओले। हिमाचल प्रदेश में मई महीने में अब तक 9 जिलों में दर्ज की गई सामान्य से अधिक बारिश। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बारिश, आसमान में छाई धुंध। अयोध्या में मौसम हुआ सुहाना, श्रद्धालुओं को गर्मी से मिली राहत। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शनों के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू किए अर्पित। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मंगलवार को हुआ था हनुमान जी का भगवान राम से मिलन। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। सुबह से राम मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतार, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। ज्येष्ठ का दूसरा बड़ा मंगलवार पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखा, काशी के हनुमान मंदिरों में सुबह से भक्तों की लगी लंबी कतारें। मान्यता है कि बड़े मंगलवार के दिन ही हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था, इसी वजह से ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार का है विशेष महत्व। इस वर्ष अधिक मास के चलते भक्तों को कुल 8 बड़े मंगलवार का संयोग मिलेगा, श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन कर सुख समृद्धि की कर रहे हैं कामना। पाताल भूमि हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी, मान्यता है कि यहां हनुमान जी स्वयं पाताल लोक से प्रकट हुए थे। भक्तों का विश्वास है कि लगातार 41 दिन दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं होती है पूर्ण, इसी आस्था के साथ बड़ी संख्या में मंदिर आते हैं श्रद्धालु। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, रथ यात्रा का रथ का निर्माण का काम चल रहा जोरों पर। तीनों रथों के लिए 18 पहियों का निर्माण कार्य पूरा, रथ निर्माण के लिए कुल 818 लकड़ियों की होती है जरूरत। 200 से अधिक कुशल कारीगर तीनों रथों का कर रहे निर्माण, बिना लोहे की कील के बना रहे हैं रथ। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर 15 लाख से लेकर 20 लाख भक्तों की संभावना, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात के पुख्ता इंतजाम। जगन्नाथ पुरी के रत्न भंडार में लिस्टिंग का काम भी शुरू, लिस्टिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। गुवाहाटी पहुंची दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मां कामाख्या मंदिर में विधि विधान से की पूजा। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर के दरबार पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन, परिवार के संग किए दर्शन पूजन। गुवाहाटी पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मां कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने मां कामाख्या मंदिर के किए दर्शन, कहा देश और राज्य में शांति की कामना। अयोध्या में सोमनाथ अमृत महोत्सव को लेकर शिव मंदिरों में विशेष पूजा, मंदिर में किया गया रुद्राभिषेक और ओमकार जाप। भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम, मौसम बदलने के बाद भी बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम इलाके में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, माणा गांव से लेकर बद्रीनाथ धाम तक जगह जगह श्रद्धालुओं का तांता। बद्रीनाथ धाम में व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किए गए आईटीबीपी के जवान, जोशीमठ से बद्रीनाथ तक तैनात किए गए आईटीबीपी के करीब 25 जवान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नशे के खिलाफ पदयात्रा और साइकिल रैली का आयोजन, युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए आयोजन। नशा मुक्ति के खिलाफ आयोजित रैली में शामिल हुए हजारों लोग, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई, बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले यात्री रुद्रप्रयाग, मलकनंदा और मंदाकिनी संगम व्यू पॉइंट का भी कर रहे हैं रुख, संगम व्यू पॉइंट पर लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। यात्रियों के बढ़ते हुजूम को देखते हुए स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर, रोजगार के बढ़े अवसर। प्राकृतिक सौंदर्य का भी उठा रहे हैं लुत्फ, आस्था के माध्यम से पर्यटन को भी मिल रहा है बढ़ावा। सड़क हादसों को कम करने के लिए राजस्थान पुलिस की शानदार पहल, दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे पर यात्रियों को रास्ते में ब्लैक स्पॉट, गड्ढों और खराब सड़कों की गूगल मैप के जरिए मिलेगी जानकारी। स्थानीय प्रशासन NHAI की मदद से ब्लैक स्पॉट को ठीक करने का तेजी से कर रहा है काम, ट्रैफिक नियम अनुसार ब्लैक स्पॉट पॉइंट पर लगातार किया जा रहा है सुधार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बिजली बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के निर्देश दिए, लोगों से ईंधन बचत और सोने की अनावश्यक खरीद करने से बचने की अपील। सीएम योगी ने अपने और मंत्रियों के काफिले में 50% वाहनों की कटौती का किया दिया आदेश, सरकारी बैठकों और सेमिनार को अधिक से अधिक वर्चुअल करने पर दिया जोर। यूपी सरकार वर्क फ्रॉम होम और नो व्हीकल डे को देगी बढ़ावा, मंत्री सांसद और विधायकों से सप्ताह में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील। स्कूल कॉलेजों में बस सेवा बढ़ाने और पीक आवर में ऑफिस टाइम बदलने का सुझाव दिया गया, सीएम ने कार पूलिंग, मेट्रो, साइकिलिंग और ईवी उपयोग बढ़ाने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग, हेरिटेज और इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, ODOP और GI टैग उत्पादों को उपहार बनाकर स्वदेशी अभियान को किया जाएगा मजबूत। दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, राजधानी में ईवी को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने बड़े स्तर पर शुरू की तैयारी। आने वाले महीनों में राजधानी में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को किया जाएगा और मजबूत, दिल्ली में पहले 8,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन मौजूद, 3,000 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी, इससे इलेक्ट्रिक वाहनों पर ग्राहकों का बढ़ेगा भरोसा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर युवक को पड़ा हार्ट अटैक, CRPF की 90 बटालियन ने CPR देकर बचाई जान। कुलगाम में CRPF जवानों की सतर्कता आई काम, गोल्डन आवर में इलाज दिलाकर बचाई नागरिक की जिंदगी। समस्तीपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 दिवसीय AI और रोबोटिक सेमिनार का आयोजन, इस टेक फेस्टिवल में बिहार समेत कई राज्यों के 280 से अधिक छात्रों ने लिया हिस्सा। टेक फेस्ट में रोबोटिक्स, कोडिंग और टेक क्विज और डिजाइनिंग समेत 14 प्रतियोगिताएं कराई गई, छात्रों ने अपनी तकनीकी प्रतिभा और क्रिएटिविटी का किया शानदार प्रदर्शन। AI और रोबोटिक्स छात्रों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, ऐसे आयोजन बच्चों की क्रिएटिविटी और तकनीकी सोच को बढ़ावा देने का जरिया। सेमिनार में 13 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज शामिल हुए, आने वाले समय में मेडिकल और रिसर्च फील्ड में रोबोटिक्स की होगी बड़ी भूमिका। सेमिनार में छात्रों को AI आधारित तकनीक और रोबोटिक्स के व्यवहारिक उपयोग की दी गई जानकारी, आपदा राहत सर्जरी और मशीन डेवलपमेंट में AI भविष्य बदलने वाला है। मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी को भेजने की तैयारी, करीब 2,000 पैकेट लीची मई के अंत में भेज जाएगी दिल्ली। बेहतरीन बागानों से लीची चुनकर खास पैकेजिंग के साथ भेजी जाएगी दिल्ली। शाही लीची सीजन को लेकर अलर्ट मोड में है मुजफ्फरपुर प्रशासन। मुजफ्फरपुर की जीआई टैग वाली शाही लीची की मिठास फिर देश के वीवीआईपी तक पहुंचेगी। हर बार की तरह इस बार भी टॉप क्वालिटी लीची भेजी जाएगी। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस फैलने के बाद अलर्ट मोड में नागपुर। यहां के महाराज बाग प्राणी संग्रहालय को किया जा रहा सैनिटाइज। सोमवार को वन्य प्राणियों के सभी पिंजरों को डिसइंफेक्ट किया गया, साथ ही सुरक्षा गार्ड को भी कर दिया गया सतर्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी ने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दरबार लगाई हाजिरी। दोनों नेताओं ने दर्शन पूजन कर मां कामाख्या के लिए आशीर्वाद। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच देश में एलपीजी उत्पादन से जुड़ी गुड न्यूज। 35 से 36,000 टन से बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ देश में एलपीजी का उत्पादन। प्रधानमंत्री की अपील के बाद साइकिल पर कोर्ट पहुंचे जबलपुर हाईकोर्ट के जज। 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर हाईकोर्ट पहुंचे जस्टिस डीडी बंसल। पीएम की अपील का असर, भोपाल में लघु उद्योग निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण ने ई रिक्शे से दफ्तर पहुंचकर संभाला पदभार। राजस्थान के सवाई माधोपुर से आया भालू की मस्ती का वीडियो, प्रचंड गर्मी से बचने के लिए पानी भरे गड्ढे में नहाता और लौटता दिखा भालू। बांग्लादेश सीमा पर लोगों के साथ बेहतर संबंधों के लिए बीएसएफ की खेल कूटनीति, कूच बिहार में स्थानीय युवाओं के साथ एक दोस्ताना वॉलीबॉल मैच का आयोजन। कौनमुक्ता प्राइमरी स्कूल के मैदान में हुए इस मैच में स्थानीय टीम ने बीएसएफ की टीम को 2-0 से दी मात। बीएसएफ अफसरों ने लोगों से सहयोग की अपील की। एशियाई शहरों के लिए मशहूर गुजरात का गिरब अपनी अनोखी कला के लिए बन रहा है पहचान। यहाँ यूनिक थ्रेड आर्ट से तैयार की जाती है अद्भुत कलाकृतियां। यहाँ के पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से बनाई जा रही है स्पेशल आर्ट, इसमें लकड़ी के बोर्ड पर छोटी कीलें लगाकर धागों को जोड़कर बनाई जाती है जीवंत तस्वीरें। 600 रुपए से लेकर 15,000 तक में बिकती है एक कलाकृति। पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ इस कला से युवाओं को भी मिल रहा रोजगार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द की नीट यूजी की परीक्षा, सीबीआई करेगी पेपर लीक की जांच। 3 मई को हुई परीक्षा में बैठे थे 22 लाख छात्र। असम में नई सरकार का हुआ शपथ ग्रहण, हिमंता बिस्वा सरमा ने दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ। हिमंता के साथ 4 नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। शपथ समारोह में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन नवीन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल, कई राज्यों के सीएम भी रहे मौजूद। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को हाथ मिलाकर दी बधाई। पीएम ने सभी मंत्रियों को दी शुभकामनाएं। रणजीत कुमार दास बनाए गए असम विधानसभा के स्पीकर, पहले मंत्री रह चुके हैं रणजीत कुमार दास।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: क्या तमाम प्रयासों के बावजूद आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे? लाख कोशिशों के बावजूद प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे? प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमा आपको परेशान कर रहा है? कौन सी होती हैं प्रॉपर्टी की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
4: just
5: Jay-Z.
4: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
7: What you got for me, Jack?
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें
5: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: रणवीर सिंह धुरंधर फिल्म से कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। अब खबरें हैं कि रणवीर फ्यूचर के एक मास्टर प्लान को तैयार कर रहे हैं। दरअसल उनका ये प्लान एक फिल्म फ्रेंचाइजी को लेकर है, जिसमें सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि फिल्म के तीन पार्ट बनेंगे। ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म है जिसका ट्रेंड इन दिनों खूब चल रहा है। रणवीर इसमें भोलेनाथ का रोल निभाने वाले हैं।
2: नाम तय नहीं, डायरेक्टर का पता नहीं, स्क्रिप्ट आधी अधूरी, लेकिन एक चीज फाइनल है। फिल्म के लीड एक्टर धुरंधर रणवीर सिंह, जिनकी फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 ने मिलकर दुनिया भर में 3100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। और अब कामयाबी के शिखर पर काबिज रणवीर ने फ्यूचर के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान फिल्म फ्रेंचाइजी को लेकर है, मतलब सिर्फ एक फिल्म बनाने का नहीं बल्कि एक फिल्म के तीन पार्ट बनाने का है, और वो भी एक माइथोलॉजिकल फिल्म, जिसका ट्रेंड इन दिनों खूब चल रहा है। और रणवीर सिंह इसी ट्रेंड पर चलकर कामयाबी के रथ पर सवार रहना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी माँ कसम फिल्म के जरिए अमीश त्रिपाठी के नॉवल द इमॉर्टल्स ऑफ महलुआ के राइट्स खरीद लिए हैं। रणवीर इस माइथोलॉजिकल कहानी को बड़े स्केल के साथ पर्दे पर पेश करने की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्होंने अनन्या बिरला की कंपनी बिरला स्टूडियोज के साथ सुपर डील की है। रणवीर सिंह इस फिल्म में भगवान शिव के रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म तीन पार्ट में रिलीज की जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। स्क्रिप्ट पूरी होने पर तसल्ली से स्क्रीन प्ले पर काम किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2028 में पहले पार्ट की शूटिंग शुरू हो जाएगी। रणवीर सिंह ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने का टारगेट 2028 इसलिए रखा है कि वो अगस्त में प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे। मार्च 2027 में धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर की अगली फिल्म पर काम करेंगे। उसके बाद रणवीर सिंह अपनी इस नई माइथोलॉजिकल फिल्म का हिस्सा बनेंगे। हालांकि अभी ना तो फिल्म का नाम तय हुआ है और ना ही डायरेक्टर का। फिल्म की कास्टिंग भी अभी तय नहीं है सिवाय रणवीर सिंह के। बताया जा रहा है कि स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद ये सारा काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe, live from London on TuneIn.
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: ईंधन की खपत कम करने के लिए पीएम की अपील के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले में 50% की होगी कटौती, बड़े संस्थानों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा, सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, रुद्रप्रयाग का संगम व्यू पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र, यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन कर रहे रोमांच। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज, नूह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहाना।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और गुड लक टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। कई बार ऐसा होता है हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन वो बिक नहीं पाती। कई बार ऐसा होता है हमें जिसे लेने का मन है हम वो खरीद नहीं पाते, तो अलग अलग समस्याएं उससे रिलेटेड होती रहती हैं। तो उनसे बचने के उपाय क्या है और उन समस्याओं को हम कैसे सुलझाएं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप अपनी कुंडली के मंगल को मजबूत करना चाहते हैं, मंगल से जीवन में लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने मस्तक पर लाल रंग का गोल तिलक लगाइए। अगर आप ऐसा करें तो इससे आपके मंगल को शक्ति मिलेगी।
0: और आइए जान लेते हैं 13 मई 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:29 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जान लेते हैं कि संपत्ति यानी कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है।
1: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संपत्ति संबंधी कोई समस्या है, संपत्ति संबंधी अगर कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत को, उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि संपत्ति का किन ग्रहों से संबंध होता है। देखिए, संपत्ति में सामान्यतः भूमि और भवन शामिल किए जाते हैं, और भूमि और भवन से पहला संबंध होता है मंगल का। मंगल जमीन जायदाद का मुख्य स्वामी है, मंगल की भूमिका इसमें ज्यादा होती है। इसके बाद संपत्ति से संबंध होता है शुक्र का। शुक्र आम तौर पर बने बनाए मकान का या बने बनाए फ्लैट का स्वामी होता है, उसमें शुक्र की भूमिका पाई जाती है। 12 राशियों में कर्क राशि भी संपत्ति से संबंध रखती है, इसका संबंध प्रॉपर्टी से होता है। सामान्यतः शनि, राहु और केतु अगर ये निगेटिव पोजीशन में हैं, अगर ये नकारात्मक स्थिति में हैं, तो संपत्ति के मामलों में आम तौर पर बाधा देते हैं। मंगल या शुक्र अगर कुंडली में खराब हो जाए, अगर निगेटिव हो जाए, तो ये संपत्ति के लिए शुभ नहीं होता। यानी मुख्य रूप से अगर आपकी कुंडली में मंगल बेहतर हो या कुछ मात्रा में अगर शुक्र बेहतर हो तो किसी न किसी तरीके से आपको संपत्ति का सुख मिल जाएगा।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं जिन लोगों की राशि मेष, वृष या मिथुन है उनका क्या कहता है राशिफल।
1: मेष राशि, व्यर्थ का तनाव आपको इस समय हो सकता है, नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे, खान पान में सावधानी बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए जानते हैं कि अगर आप संपत्ति ना खरीद पा रहे हो, आपका मन है कोई संपत्ति खरीदने का लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी आप उसे खरीद नहीं पा रहे, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए।
1: देखिए, संपत्ति की पहली समस्या ये है कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, आप कोई संपत्ति खरीद लें, लेकिन आप संपत्ति नहीं खरीद पा रहे। तो अगर आप संपत्ति नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक लाल रंग का तिकोना झंडा ले लीजिए, बनवा लीजिए ट्रायंगुलर झंडा लाल रंग का, इस पर राम लिखवा लें, पीले रंग से लिखवा लें, सफेद रंग से लिखवा लें, इस पर राम लिखवा लें और मंगलवार को प्रातः इस झंडे को ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दें और संपत्ति खरीद लेने की प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी मैं प्रॉपर्टी खरीद सकूं। ये उपाय 6 महीने में एक बार या साल में 2 बार ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा 2 बार ये उपाय कर लेने से निश्चित रूप से संपत्ति का लाभ हो जाता है।
0: और अब जानते हैं कि अगर संपत्ति का निर्माण ना हो पा रहा हो तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए।
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जमीन तो होती है लेकिन हम उस पर अपना मकान या उस पर अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनवा पाते। बार बार उसमें अड़चन आती है, बार बार उसमें रुकावट आती है। अगर संपत्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर्टी बनाने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे? जिस जमीन पर मकान बनवाना है आपको, संपत्ति का निर्माण करवाना है आपको, वहां पर मंगलवार को जाइएगा। जमीन के पूरब उत्तर कोने में, नॉर्थ ईस्ट के कोने में, या तो जमीन में ही एक तुलसी का पौधा लगा दीजिएगा या तुलसी के पौधे का गमला रख दीजिएगा। उसी कोने में थोड़ी सी जमीन खोद करके एक नई ईंट जमीन में दबा दीजिएगा। अगर आप एक बार ऐसा कर लेते हैं और वहां प्रार्थना कर लेते हैं तो संपत्ति का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा, जल्दी से जल्दी जमीन पर मकान या प्रॉपर्टी आप बनवा पाएंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, मन बेहतर होगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो गया आज के सवाल का और पंडित जी द्वारा उनके दिए जाने वाले जवाबों का। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न प्रियंका शर्मा ने हमें लिखा है, रांची से लिखती हैं, 21 जुलाई 1996 का जन्म है, मध्य रात्रि में 12:10 रांची झारखंड। ये कह रही हैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती हूं और अब मैं नौकरी छोड़ रही हूं, आगे मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या व्यवस्था रहेगी। प्रियंका आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और कन्या राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा बुध की चल रही है। आप अगर नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी का प्रयास करें तो इस समय आपको दूसरी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अभी अपना इंडिपेंडेंट काम करना या अपना कोई व्यापार करना आपके लिए बहुत सही नहीं होगा। अभी आपके लिए हर लिहाज से नौकरी करना ही बेहतर रहेगा। करियर और भविष्य आपका अच्छा दिखता है, उसके लिए बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः माणिक्य धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न प्रीति ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, 17 नवंबर 1995 का जन्म है, 10:55 रात को दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रीति आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह, महादशा राहु की और अंतर दशा शनि की फिलहाल चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपका विवाह होने की संभावना बनती है। इस समय आपका विवाह अवश्य ही होना चाहिए। आने वाला समय आपकी कुंडली के लिहाज से ठीक है और अगर थोड़ी बुद्धिमानी से विवाह करेंगी तो वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। वैसे कुल मिला जुला कर आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है। एक मोती बनवा के पहन लें, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के बारे में, और अगर कोई आपकी संपत्ति है जिसे आप बेचना चाहते हो लेकिन वो बिक नहीं रही हो, आप लाख कोशिशें कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से।
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, हम कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं, लेकिन हमारा मकान, हमारी जमीन ये बिक नहीं पाती, तो अगर संपत्ति बेचना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हर मंगलवार को नहा करके धो करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के चरणों में लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा लगातार मंगलवार के मंगलवार करते जाएं, कम से कम 11 मंगलवार अगर आप ऐसा करें तो जिस प्रॉपर्टी को बेचने की आपको सर्वाधिक जरूरत है वो संपत्ति जल्दी से जल्दी बिक जाएगी।
0: तो चलिए जानते हैं, अगर संपत्ति से संबंधित मुकदमे चल रहे हों, कई बार ऐसा होता है कोई प्रॉपर्टी होती है वो डिस्प्यूटेड होती है, उस पर हमें मुकदमे जो हैं वो लगातार चल रहे होते हैं, लेकिन हम लाख कोशिश करते हैं और वो सुलझ नहीं पाते, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
1: प्रॉपर्टी को लेके, जमीन को लेके, मकान को लेके अक्सर विवाद भी होते हैं और अक्सर मुकदमेबाजी भी होती है। तो अगर संपत्ति से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमे चल रहे हों तो क्या उपाय करें कि ये मुकदमे समाप्त तो हो जाएं? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करिएगा। अगर महिला हैं तो आप सिंदूर अर्पित ना करें, आप केवल लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद वहीं पर एक घी का दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा मंगलवार के मंगलवार करते जाएं, थोड़े लंबे समय तक ये उपाय करें तो जल्दी से जल्दी संपत्ति के, जमीन के, जायदाद के मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा।
0: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
1: तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, सेहत अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आज के लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है, नई जमीन खरीदी है और आपको उसमें जाना है, गृह प्रवेश करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए।
1: देखिए, अगर आप किसी नई जगह पर जा रहे हो, नई दुकान हो, नया मकान हो, नई जमीन हो और उसका प्रयोग करने जा रहे हो, तो क्या करेंगे, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है, जहां आपने मकान दुकान आदि बनवाया है या खरीदा है, वहां पर एक पूजा घर जरूर बनाइएगा और पूजा के स्थान पर शिव जी की मूर्ति की स्थापना करिएगा या शिव जी का एक चित्र रखिएगा। घर में रहने की शुरुआत के पहले या दुकान में काम की शुरुआत के पहले उस संपत्ति पर जो नई प्रॉपर्टी है वहां पर एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवा लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
0: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, घर में शुभ कार्य हो सकता है, खान पान में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
1: जी, अगला प्रश्न संजीव कुमार जी ने हमें गुजरात से लिखा है। 27 अगस्त 1969 का जन्म है, 8:15 रात को गांधीधाम गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैं जब 50 वर्ष का हुआ तो मैंने VRS ले लिया था और उसके बाद मैं एक बेहतर नौकरी की तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे 6 सालों से तलाश करने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है। आने वाले समय में क्या मुझे कोई नौकरी मिलेगी? क्या मेरा करियर सेट हो पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? संजीव कुमार जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से जो संभावना है वो आपके लिए व्यापार की ज्यादा है। नौकरी की संभावनाएं आपकी कुंडली में इतनी प्रबल नहीं हैं, व्यापार में जाने की संभावना ज्यादा दिखती है। अगर

0: मोती धारण की हुई है वो मोती धारण किए रखिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपको लाभ होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं आज का अंतिम और चौथा प्रश्न पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न शशि भूषण शुक्ला जी ने हमें लिखा है, वापी गुजरात से मेल लिखते हैं। 3 सितंबर 1973 का जन्म है, 3 बजे दोपहर में, जन्म स्थान है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, मैं व्यापार करूं या नौकरी करूं और कहां पे करूं, वापी में करूं या गोरखपुर में करूं। शशि भूषण जी आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा राहु की आपकी चल रही है। देखिए जुलाई 2026 के बाद आप अपना व्यापार कर सकते हैं, कपड़े का, कॉस्मेटिक्स का, दवाइयों का, लकड़ी या फर्नीचर का, ऐसा कोई व्यापार करना आपके लिए बेहतर होगा। गोरखपुर आपका जन्म स्थान है, वहां पर जाने की सलाह नहीं देंगे, आप वापी में उसके आसपास ही व्यापार करने का प्रयास करिए, आपके लिए बेहतर होगा। अप्रैल 2027 के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे एक मूंगा धारण करें, शुक्र के उपाय करें, हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें और रोज शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं, कोई दुकान खरीदते हैं और हम उसमें रहने लगते हैं, तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि वो हमें अच्छा फल दे और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
0: जी देखिए बहुत सारे घरों का ऑरा ऐसा होता है, वाइब्रेशन ऐसा होता है कि जब आप उसमें रहते हैं तो आपके सारे काम बनने लगते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, आप वहाँ जाते हैं तो आपको अच्छे अनुभव होने लगते हैं। और बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जब से घर लिया तब से मुश्किल शुरू हो जाती है या उस घर में जाने पर दिक्कतें आनी शुरू होने लगती हैं। तो आप अपने घर के वाइब्रेशंस को सुधार सकते हैं बड़ी आसानी से। रोज संध्या काल में अपने घर में चारों तरफ संभव हो तो हर कमरे में या घर के बीच में लिविंग एरिया में धूप बत्ती जलाएं, और अगर ये धूप बत्ती चंदन की सुगंध वाली, गुग्गल की सुगंध वाली हो तो बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा, सप्ताह में एक दिन, विशेष तौर से शनिवार के दिन, अगर सुंदर कांड का पाठ आप अपने घर में करें, सारे परिवार के लोगों के साथ मिल करके अगर सुंदर कांड का पाठ करें तो काफी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी।
1: जिनका जन्मदिन 13 मई 2026 को आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 13 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले

0: खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है।
2: call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: ईंधन की खपत कम करने के लिए पीएम की अपील के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले में 50% की होगी कटौती, बड़े संस्थानों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा, सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, रुद्रप्रयाग का संगम व्यू पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र, यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और वैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन कर रहे रोमांच। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज, नूह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहाना।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: आइए शुरू करते हैं न्यूज़ पद का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों की भी हो रही है।
8: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के भव्य रथों का निर्माण परंपरा अनुसार पूरे विधि विधान के साथ तेजी से हो रहा है। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट रथ निर्माण स्थल पर तीनों रथों के निर्माण का कार्य सेवायतों की देखरेख में जारी है। भौरी उत्सव के अवसर पर चाकाडेरा अनुष्ठान के तहत तीनों रथों के पहियों को धुरों यानी एक्सल से जोड़ने का काम पूरा किया जा चुका है। 16 जुलाई को आयोजित होने वाली इस रथ यात्रा में 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के रहने का अनुमान है, जिसको देखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात और स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस उत्सव को लेकर पहली समन्वय बैठक में सभी व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा हुई। बैठक में सुरक्षा और श्रद्धालुओं की आवाजाही की व्यवस्था को बिना किसी बाधा के बनाने पर विशेष जोर दिया गया। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की हैं। यहाँ श्रीरंगम के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में चिथिराई उत्सव की अद्भुत छटा बिखर रही है। 11 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव इस साल 6 मई से 16 मई तक मनाया जा रहा है। इस उत्सव में भगवान विष्णु के अलग अलग वाहनों पर दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिल रहा है। उत्सव के दौरान भगवान रंगनाथ को चांदी के हाथी पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विशाल लकड़ी के रथ को भक्त जय घोष करते हुए मंदिर की सड़कों पर खींचते नजर आए। ये उत्सव अपनी भव्यता और पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग से सराबोर नजर आते हैं। चारधाम की यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। यहां हर दिन 15,000 से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। भगवान विष्णु के इस धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने के बाद से अब तक लगभग 3,00,000 यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है, उसे यात्रा मार्ग पर हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतारों को देखकर समझा जा सकता है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के बाद श्रद्धालु देश के प्रथम गांव माणा में भी पहुंच रहे हैं और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते वो ठंड और बारिश से बचने के लिए यहां खरीदारी करते भी नजर आ रहे हैं। राजस्थान के 43 डिग्री तापमान में एक विदेशी महिला की तपस्या की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। पुष्कर में रूस की रहने वाली ये महिला 9 धुनी अग्नि तप कर रही हैं, जो नाथ संप्रदाय की एक बहुत प्राचीन और कठोर हठ योग साधना है, जिसमें साधक चारों तरफ धधकती आग के बीच बैठकर तपस्या करते हैं। रूस की इस महिला ने 10 साल पहले नाथ संप्रदाय को अपनाया था। उसके बाद से राधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ नाम की ये महिला नाथ संप्रदाय के रीति रिवाज से अपना जीवन यापन कर रही है। ये अग्नि तपस्या भी उसी परंपरा की कड़ी है। अजमेर के पुष्कर में छोटी बस्ती स्थित शमशान भूमि पर अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में राधिका योगिनी 21 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रही हैं, जिसमें वो हर दिन लगभग 3.25 घंटे तक धधकती अग्नि के बीच बैठकर शिव साधना और गुरु बीज मंत्र का जाप करती हैं। साथ ही रोजाना हवन पूजन और आरती का आयोजन भी होता है। 3 मई से शुरू हुई उनकी ये साधना पूर्ण आहुति और संत भंडारे के साथ 25 मई को सम्पन्न होगी। कहीं तेज गर्मी का आलम तो कहीं बारिश और तेज हवाओं का दौर। देश में इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में खासकर पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ देखा जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सुबह से मौसम में बदलाव देखा गया। यहां हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने को लेकर बारिश का ऑरेंज अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था। पश्चिमी विक्षोभ का असर देश की राजधानी दिल्ली पर भी पड़ने का मौसम विभाग का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते के आखिर तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरू होने के लिए हालात अनुकूल होते जा रहे हैं। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में लू चलने का अनुमान भी है। साथ ही दक्षिण के कुछ राज्यों में भी बारिश की संभावना जताई गई है।
7: चलिए बात करते हैं तेलंगाना के नरसिंह मंदिर की। मल्लूर का ये मंदिर अपनी जीवित प्रतिमा के कारण दुनिया भर में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यानी कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा को जीवित मानकर उनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर को लेकर लोगों में ये आस्था है कि इसकी प्रतिमा में दिव्य ऊर्जा का वास है, लिहाजा अगर आप धर्म और आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आपको नरसिंह मंदिर जरूर जाना चाहिए। यहाँ भगवान नरसिंह की जीवित प्रतिमा के दर्शन कर पाएंगे और उनकी दिव्य ऊर्जा को अनुभव भी कर सकेंगे।

0: तेलंगाना के मल्लूर में विराजमान है नरसिंह भगवान, जिन्हें छूने पर महसूस होती है इंसानी त्वचा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा से सटे तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां अनोखी मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति इंसान की त्वचा जैसी मुलायम है और मान्यता है कि मूर्ति को दबाने से उसमें तरल पदार्थ निकलने लगता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बैसाख के महीने में विशाल मेला आयोजित किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले के दौरान पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान के भक्त बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं।
1: हम हैदराबाद से नरसिंह भगवान के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर नरसिंह चौदस के दिन जो मेला लगता है, 8 दिन तक चलता है कंटिन्यू, बहुत पब्लिक है, जगह जगह से लोग आते हैं, बहुत अच्छे है दर्शन। यहाँ नाभि में से पस निकलता है नरसिंह भगवान के, बोली में जीवित रूप में है, बोली भी हर काम मनोकामना पूर्ण होती है। हम भी आए हैं, भगवान कुछ अच्छा करा तो अच्छा ही है। हम भी और आप सबको भी बोलते हैं कि दर्शन करने के लिए आओ सब जन।
0: नरसिम्हा स्वामी मंदिर, जिसे हिमाचल नरसिम्हा स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, ये मंदिर हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है और पहाड़ियों की शांति इसे आध्यात्मिक साधकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाती है। यहाँ लोग ध्यान लगाने और शांति से प्रार्थना करने आते हैं। भक्त इन सीढ़ियों को चढ़कर भगवान नरसिम्हा स्वामी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आते हैं। देश भर से श्रद्धालु नरसिंह भगवान की जीवित प्रतिमा के दर्शन के लिए लंबी यात्रा करते हैं। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन भक्तों को इसमें आनंद और शांति का अनुभव ही होता है। इस मंदिर की यात्रा और यहां के दर्शन से भक्तों को आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति को देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
2: छत्तीसगढ़ सीमा से लगा तेलंगाना का मुलुगु जिले में ये गांव है जहां पर नरसिंह भगवान की जीवित मूर्ति यहां पर बताई जाती है। जीवित मूर्ति यहां पर है, जिसमें शरीर जो है जिस तरह से इंसान का शरीर होता है उस तरह से कोमल है। यह 4000 वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें अलग अलग जगह से लोग यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ दर्शन के लिए, यहाँ मान्यता है कि लोगों की मन्नत जो मांगते हैं वो पूर्ण होती है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ लोग हर वर्ष मेला लगता है और काफी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और काफी मान्यता है कि ये मंदिर जो जीवित आप नरसिंह भगवान यहाँ जीवित रूप में विराजमान है।
0: मंदिर के गर्भगृह में लगभग 10 फीट ऊंची भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर मान्यता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि साक्षात जीवित स्वरूप है और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। मूर्ति का पेट और दूसरे हिस्से इंसानी त्वचा की तरह कोमल माने जाते हैं। मंदिर के पुजारियों और भक्तों का मानना है कि मूर्ति की नाभि पर एक चोट का निशान है, जिसे नाभि प्रसादम कहा जाता है, जहां से तरल पदार्थ निकलता है। मान्यता है कि ये मंदिर 6वीं शताब्दी से पहले का है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऋषि अगस्त्य ने इस पहाड़ी का नाम हेमचला रखा।
3: ये इसका गांव का नाम है मल्लूर, मल्लूर है। इसका जो देव है श्री हेमचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देव है। इसमें और आदि लक्ष्मी और चंचल लक्ष्मी माता भी है इसके साथ। अभी इधर का बहुत पुराना साल का जो ये टेम्पल है, वो इधर का जो मूर्ति है ना लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति का मानव स्वरूप है। मानव स्वरूप हमारा जो चमड़ा है कैसे जैसे रहते हैं, ऐसे जो हम लोग अंदर घुसेगा तो घुस जाता है, मतलब उतना स्वच्छ और पावरफुल पावरफुल गॉड है। अभी इधर का जो दिख रहा है इसमें ये चिंतामणि बोलता है इसका, ये जो जल प्रवाह है ये चिंतामणि, ये पानी अब 200 मीटर से आपको दिखता है और बाकी जो किधर से आते हैं पता नहीं चलता है। अभी इधर का जो पानी पिएगा तो जो बीमार है बीमारी निकल जाता है।
0: इस क्षेत्र में बसे लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की प्रतिमा में दिव्य ऊर्जा का वास है। इस प्रतिमा की आंखें, मुखमंडल और त्वचा एक जीवित व्यक्ति की तरह प्रतीत होती है। प्रतिमा की त्वचा इंसानी त्वचा जैसी मुलायम है और अगर इसे दबाया जाए तो त्वचा पर गड्ढा बन जाता है। यही कारण है कि इस मंदिर को दुनिया का अनोखा मंदिर माना गया है।
4: 1200 किलोमीटर दूर से मुझे पता चला कि यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर है और रियल प्रतिमा है, तो यहाँ हर जगह से लोग आते हैं, जैसे तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो हमें भी ये पता चला, तो हम भी यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं दर्शन करने हमारी मन्नत लेके। काफी अच्छा है मंदिर, काफी शांत है, यहाँ पे देख के काफी अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 घंटे से बैठे हुए हैं, फिर भी मन नहीं कर रहा है घर जाने का। बहुत अच्छा है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज क्या है कि जनरली मूर्ति रहती है तो मूर्ति नॉर्मल दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मूर्ति के अंदर से पस भी निकल रहा है जो आपको रियल टाइम में ऐसा बताता है कि अंदर प्रतिमा के अंदर जान है। तो ये सब देखते हुए, इसका मान्यता को देखते हुए, हम खुद 1200 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हैं दर्शन करने पूरे परिवार के साथ।
0: नरसिंह की जीवंत प्रतिमा वाले इस मंदिर में आने वाले भक्तों की मान्यता है कि भगवान नरसिंह उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। भक्तों के अनुभव और चमत्कारों की कहानियाँ इस मंदिर की महत्ता को और बढ़ा देती है। भक्तों का मानना है कि प्रतिमा में भगवान नरसिंह की जीवित उपस्थिति है। कई भक्तों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने प्रतिमा में कई दिव्य चीजें होते देखी हैं और यहाँ उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिला है।
5: हम यहाँ अभी छत्तीसगढ़ से आए हैं, यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है और परंपरा के अनुसार यहाँ पे हर साल मेला लगता है, नरसिंह चौदस को मेला लगता है, जो यहाँ पे भगवान की शादी होती है, मेहंदी हल्दी सब प्रोग्राम बनाया जाता है जैसे शादी में मनाते हैं वैसा। और भगवान की प्रतिमा है जो यहाँ से खुद प्रकट हुई हुई है, उनके नाभि में से पस निकलता है, वो भी कह रही जीवित अवस्था में है वैसे मान्यता है इनकी। और पहाड़ के ऊपर अपने आप प्रतिमा प्रकट हुई है, यहाँ पे कोई मूर्ति बैठाई हुई नहीं है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं।
0: मल्लूर नरसिंह स्वामी मंदिर में ब्रह्मोत्सवम उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर साल आयोजित होने वाले इस उत्सव में भगवान नरसिंह की मूर्ति को एक भव्य शोभा यात्रा में ले जाया जाता रहा है। इस दौरान देश भर से आए श्रद्धालु मंदिर में उमड़ पड़ते हैं और इस दिव्य उत्सव का हिस्सा बनते हैं। नरसिंह स्वामी का ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहाँ भक्त भगवान नरसिंह की उपस्थिति का साक्षात अनुभव करते हैं। नरसिंह स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। इसका मुख्य द्वार गोपुरम नामक एक भव्य संरचना है जो देखते ही बनती है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां और पौराणिक कथाओं की नक्काशी है जो इस मंदिर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: चारधाम यात्रा में अब आईटीबीपी के जवान संभालेंगे ट्रैफिक की व्यवस्था। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
7: महाराष्ट्र के पुणे में गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। आरपीएफ के ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत पुणे सुपौल एक्सप्रेस में सफर कर रही गर्भवती महिला को ट्रेन में डिलीवरी के दौरान पूरी मदद की गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि महिला को ट्रेन में सफर के दौरान अचानक लेबर पेन हुआ। इस बात का अलर्ट मिलते ही आरपीएफ के जवान उसकी मदद में जुट गए। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। जोशीमठ सहित यात्रा मार्ग पर आईटीबीपी के जवान ट्रैफिक के साथ यात्रा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी जगह जगह आईटीबीपी की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। दरअसल शाम के समय जब भारी ट्रैफिक हो रहा है, ऐसे में ट्रैफिक संभालने के लिए आईटीबीपी के जवान बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आईटी सेक्टर में एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम को लेकर बहस तेज हो गई है। आईटी उद्योग से जुड़े संगठन एनआईटीईएस ने श्रम मंत्रालय को पत्र भेजा है। इसमें मांग की गई है कि आईटी और आईटीईएस सेक्टर में काम करने वाले लगभग 58 लाख कर्मचारियों के लिए अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी की जाए। संस्था का कहना है कि भारतीय आईटी उद्योग के पास रिमोट वर्क को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जरूरी तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। एनआईटीईएस के मुताबिक अगर कर्मचारी घर से काम करेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी, ट्रैफिक दबाव घटेगा और विदेशी मुद्रा की बचत में मदद मिलेगी।
6: और न्यूज पद पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद है। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले।
8: कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को भारी बिकवाली के कारण 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 1456 अंक लुढ़क कर 74,559 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 436 अंकों की गिरावट के बाद 23,379 पर बंद हुआ।
9: मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में लगभग 1% का उछाल देखा गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,500 रुपए बढ़कर 1,56,800 रुपए पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में 4% से ज्यादा का उछाल देखा गया और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 12,000 रुपए की बढ़त के साथ 2,77,000 रुपए पहुँच गयी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर रुपए की कीमत पर भी पड़ रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज फिर कमजोर हुआ। 35 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर की कीमत 95.63 रुपए के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गई।
6: और न्यूज पद पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और ये वायरल भी है।
10: एक पिता और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब तेजी के साथ देखा जा रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। मिठाई के जरिए ये मासूम बच्ची जिस अंदाज में पिता से अपने माँ के बारे में शिकायत करती है, उसने यूजर्स का दिल जीत लिया है।
11: पापा सुनो, एक बात पूछो।
12: हाँ, को पूछो।
11: आपकी शादी में मिठाई आई थी?
12: हाँ, मिठाई आई थी।
11: आपने खाई थी?
12: हाँ, को खाई थी।
11: देते
12: क्यों?
11: मम्मा थोड़ा भी बोल लेती।
12: क्या?
11: अरे मीठा बोल लेती थोड़ा।
10: ये तो हम सब जानते हैं, इस धरती पर एक से एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ ज्यादातर लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से एक अजीबोगरीब हरकत करके सब कुछ चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है। इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द नहीं महसूस हो रहा। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत नहीं कोई मशीन हो। सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों को डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं, ताकि दुकान के सामने से गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिक्विन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिक्विन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के दानापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल किसी बैंक ATM की तरह से दिखाई देता है, लेकिन अंदर कैश नहीं बल्कि हेयर कटिंग सैलून दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करती थी। बाद में बैंक ने इसे तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहां से ATM हटा लिया। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिए गए थे। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहां पर एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने पर बैंक की ब्रांडिंग को छिपा दिया गया। ऑटो रिक्शा में सनरूफ। जहां लोग कार में सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है, लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखा। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे रैगजीन को काट कर एक खिड़की बना दी, जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कुछ ज्यादा कीमती लग रही है।
6: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्रों की, जिन्हें आज बड़ा झटका लगा है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को देश भर में नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी। ये फैसला पेपर लीक होने के आरोप के बाद लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख जल्दी ही जारी की जाएगी। NTA ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और मामले की CBI जांच होगी। NTA ने जानकारी दी है कि नीट में बैठने वाले लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। पिछले परीक्षा केंद्रों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा देने वाले छात्रों से दोबारा एग्जाम में बैठने के लिए कोई अतिरिक्त फीस भी चार्ज नहीं की जाएगी। मामले की पड़ताल में सामने आया है कि पेपर छपने से पहले ही सवाल नकल गैंग के पास पहुंच गए थे। इनमें बायोलॉजी के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 35 सवाल थे जो हूबहू परीक्षा में आए थे। एनटीए ने बताया है कि 8 मई को ही इस मामले से जुड़ी कुछ जांचों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जांच एजेंसियों से मिले निष्कर्षों के आधार पर ही यह तय किया गया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। जाहिर है कि लाखों छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता और नाराजगी दोनों देखने को मिल रहे हैं। इस मामले को लेकर हमने चंडीगढ़ में कुछ लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का ट्रेलर रिलीज। इसके साथ ही ऐसी कई और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर।
13: पत्रलेखा और मानवी गगरू स्टारर हीरा सारा और पांडिचेरी का ट्रेलर हुआ रिलीज, जिसमें दिखाया गया है कि अलग अलग बैकग्राउंड वाली दो लड़कियां अचानक सोलो बाइक ट्रिप पर पुदुचेरी के लिए निकल पड़ती हैं। दोनों में पहले से जान पहचान नहीं रहती है, लेकिन साथ में एक ही बाइक से ट्रिप पर निकलने से दोनों दोस्त बन जाती हैं। दोनों ट्रिप पर एंजॉय करती हैं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर भी करती हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरह की परेशानियां भी हैं, उसकी झलक भी ट्रेलर में देखने को मिली है। कार्तिक चौधरी निर्देशित इस फिल्म में श्वेता साल्वे, आरिफ जकारिया, निशंक वर्मा भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। ये फिल्म 29 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
14: अंकल इसको मालूम है इसकी लड़की का है।
15: तू शादी तोड़ने जाए।
16: टीचो तू नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आई है,
17: इसको भी तो पता चले।
16: चल अभी चल।
13: जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें दिखता है कि एक बच्चा अपने दादाजी को सुपर हीरो बताता है। वो अपने दोस्तों में अपने दादाजी की झूठी सुपर हीरो वाली कहानियां सुनाता रहता है, जबकि उसके दादाजी असल में बुजुर्ग और कमजोर हैं। इसलिए उसकी बातों पर उसके दोस्तों को शक होने लगता है। ये फिल्म बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। मनीष सैनी निर्देशित इस फिल्म में प्रतीक, स्मिता पाटिल, भाग्यश्री दसानी, शरद सक्सेना जैसे कलाकार भी हैं। ये फिल्म 29 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
18: और राजू बोल रहा था तुमने सामान फ्री में दे दिया था।
19: अब फ्री में हमारे लिए इतना कर रहे हो, अपने पैसे ले लो।
20: एक एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तुम्हारी वो ट्रेन वाली खबर तो कहीं नहीं आई।
21: दोनों पागल बना रहे हैं।
22: अरे भाई सुनो, ये गंगाधरी शक्तिमान वाला सीन है।
13: सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका स्टारर फिल्म सिस्टम का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसकी शुरुआत सोनाक्षी सिन्हा के किरदार नेहा से होती है, जो युवा वकील है और अपने पिता की लॉ फर्म में पार्टनर बनने के लिए खुद को योग्य साबित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पिता की भूमिका निभा रहे आशुतोष गोविरकर उसे कठिन केस लेने की चुनौती देते हैं। अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए नेहा सारिका का किरदार निभा रही ज्योतिका को अपने साथ लाती है, लेकिन उसके अपने कुछ छिपे इरादे दिखते हैं, फिर कुछ नए राज खुलते जाते हैं। ट्रेलर में सोनाक्षी का सिस्टम से संघर्ष दिखाया गया है।
23: इंसाफ पे सबका हक होता है।
24: सीनियर लॉयर होने के नाते तुम्हें वकालत सिखानी जरूरी है, और एक बाप होने के नाते तमीज।
25: प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस।
26: मुझसे इन्फॉर्मेशन चुरा के डैड को दोगे?
27: एक बात बोलूं मैडम, दुनिया में हम सब अपना असली चेहरा छुपाते हैं।
13: इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस का दूसरा टीजर भी आया सामने। जोराजन निर्देशित इस फिल्म में दीपक तिजोरी, यूलिया वंतूर और स्पेनिश अभिनेत्री एलेसांड्रा वेल मैरिडीज अहम भूमिका में हैं। अपनी गहरी भावनात्मक कहानी और मजबूत अभिनय की वजह से ये इस वर्ष की चर्चित शॉर्ट फिल्मों में से एक है, जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी आयोजनों में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल के 79वें संस्करण में इसी हफ्ते दिखाया जाएगा। अभिनेत्री पूजा बत्रा के अलायंस मीडिया पीटीवाई लिमिटेड के सहयोग से निर्मित इस फिल्म को कांस में दो प्रमुख स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। इस फिल्म का प्रदर्शन मार्चे डू फिल्म कांस में 14 मई और फ्रेंच रिवेरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 16 मई को होगा।
9: 12 से 23 मई तक आयोजित होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा भारत के कई स्टार्स भी बन रहे हैं।
0: You have a new message.
9: महाकाल के दरबार में भक्ति में लीन नजर आई अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। उज्जैन की श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर वो वहां भस्म आरती में शामिल हुई। श्रद्धालुओं के बीच बैठकर तमन्ना महाकाल की आरती गाती और तालियां बजाती भी दिखी। उन्होंने चांदी द्वार से महाकाल को जल भी अर्पित किया। यहां दर्शन पूजन करके तमन्ना बहुत ही खुश नजर आई। यहां आने को उन्होंने अपना सौभाग्य बताया।
6: राहुल द्रविड़ बने T20 टीम के मालिक, आर अश्विन कप्तान। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
9: T20 टीम के मालिक बने राहुल द्रविड़। उन्होंने यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्डियंस टीम खरीदी है। राहुल द्रविड़ की टीम डबलिन गार्डियंस की कप्तानी आर अश्विन करेंगे। इस लीग की वजह से यूरोप में T20 क्रिकेट के साथ साथ इस खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। ये लीग क्रिकेट आयरलैंड, क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन की साझेदारी में शुरू की जा रही है। EPTL का पहला सीजन 26 अगस्त से 20 सितंबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े नाम नजर आएंगे। IPL 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। IPL के सीजन में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन शानदार रहा है। गुजरात टाइटंस ने 11 मैच से 7 मुकाबले जीते हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 11 में से 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। दोनों ही टीमों के 14-14 पॉइंट्स हैं। जिम्बाब्वे के घरेलू क्रिकेट में खेले गए एक मुकाबले के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। 2025-26 मस्विंगो 50 ओवर फर्स्ट लीग के इस मुकाबले में स्कॉर्पियन क्रिकेट क्लब ने 50 ओवरों में 822 रन बना डाले, जबकि मेथल लॉयंस की टीम महज 28 रन पर ही सिमट गई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: TuneIn's How To. A brief look

0: विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: ईंधन की खपत कम करने के लिए पीएम की अपील के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले में 50% की होगी कटौती, बड़े संस्थानों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा, सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, रुद्रप्रयाग का संगम व्यू पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र, यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और वैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन कर रहे रोमांच। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज, नूह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहाना।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें और अखबार के पन्ने या अब टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गई, यहां हर किसी के हाथ में एक अलग कैमरा है, एक हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही जी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ बरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज हम फैक्ट चेक में बात करेंगे सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि टीएमसी को मिली बड़ी हार के तुरंत बाद का ये वीडियो है। हार के बाद ममता बनर्जी कार में बेसुध हो गई, क्या है इस वायरल दावे की वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर में बात होगी उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि जिस लड़के ने ममता बनर्जी के चुनाव हारने पर कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमने की बात कही, परिणामों के बाद जनता ने सरेआम उसके कपड़े फाड़ दिए, क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
3: बंगाल में चुनाव खत्म हो गए हैं, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट और वीडियो की बाढ़ आ गई है। इसी कड़ी में एक और वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को गाड़ी में बेसुध बैठे देखा जा रहा है। इस वीडियो को कुछ लोग शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बंगाल में ये हार का साइड इफेक्ट है, बंगाल में टीएमसी को मिली बड़ी हार के तुरंत बाद का ये वीडियो है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में।

0: बंगाल में बीजेपी की सरकार है। धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल करके बीजेपी ने टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये बंगाल में टीएमसी को मिली हार के बाद का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ममता बानो की हालत खराब, बेहतर इलाज के लिए बांग्लादेश रेफर किया जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ममता बनर्जी को बेसुध होकर कार में बैठे हुए देखा जा सकता है।

0: वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि बंगाल में टीएमसी को मिली हार की तुरंत बाद का ये वीडियो है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के हाथों मिली बड़ी हार के बाद ममता बनर्जी सदमे में चली गई, ये तस्वीर उसी की है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल के लिए वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें यह नजर आया कि वीडियो में ममता की आवाज को डाउन करके उसके ऊपर अलग से आवाज को जोड़ा गया है, मतलब ममता जो कुछ भी कह रही हैं उसे इसके जरिए छुपा दिया गया है। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के दावे पर शक हुआ। इसके बाद हमने ममता बनर्जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में हमें ऐसी कोई भी पोस्ट या फिर प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर दावा सच है तो वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है जिसको ये शेयर किया जा रहा है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
1: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वीडियो का लंबा वर्जन एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 10 मार्च 2021 को शेयर किया गया था। यहां मौजूद जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी कार के पास थी तब कुछ हमलावरों ने उन पर हमला किया। ये हादसा तब हुआ जब वह नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी। फिर ममता बनर्जी को इलाज के लिए नंदीग्राम से कोलकाता ले जाया गया था। हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक और विश्वसनीय वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 11 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार पार्टी के शीर्ष नेता सुखेंदु शेखर राय ने इसे लेकर कहा था कि ममता एक मंदिर में पूजा करने के बाद बिरुलिया अंचल से निकलने ही वाली थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें कार में धकेल दिया और जबरन दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके बाएं पैर में चोट आई थी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने इसे नाटक बताया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि ममता बनर्जी के बेसुध होने का वायरल वीडियो हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद का नहीं है। इस वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। असल में वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि करीब 5 साल पुराना है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर दो वीडियो का एक कोलाज शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के जीतने पर कोलकाता की सड़कों पर बिना कपड़ों के घूमने की बात कहने वाले सुफियान को लोगों ने सड़क पर निकालकर पीटा। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी यह रिपोर्ट देखिए।
2: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दिया, रिकॉर्डिंग कर ले, बीजेपी टीएमसी को हरा दिया।
3: सोशल मीडिया पर दो वीडियो का ये कोलाज तेजी से वायरल हो रहा है।
2: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा।
3: इसके पहले वीडियो में एक युवक मीडिया से बात कर रहा है।
2: हरा दिया। कलकत्ता गुरे। ओके गुरे। यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा।
3: वहीं दूसरे वीडियो में एक युवक की इस कदर पिटाई हो रही है कि उसके कपड़े तक फट गए हैं।
2: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दिया।
3: ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों लड़के एक ही हैं और इस लड़के ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो वो कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमेगा।
2: मेरा नाम सुफियान, यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दिया।
3: अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि नतीजों में वाकई टीएमसी के हारने पर जनता ने उसे सरेआम पीट पीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। यूजर्स वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से वायरल कर रहे हैं।
0: सोशल मीडिया पर ये दो वीडियो का एक कोलाज खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। पहले वीडियो में एक युवक मीडिया से बात कर रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में एक युवक की इस कदर पिटाई हो रही है कि उसके कपड़े तक फट गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों लड़के एक ही हैं और इस लड़के ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो वो कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमेगा। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि नतीजों में वाकई टीएमसी के हारने पर जनता ने सुफियान के सरेआम पीट पीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो को गौर से देखा। पहले वीडियो में चेहरा साफ साफ दिख रहा है, लेकिन दूसरे वीडियो में मार खा रहे शख्स का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा। इससे साफ लगी नहीं रहा कि ये दोनों वीडियो एक ही शख्स से जुड़े हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कई पुख्ता जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने इस वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर ये वीडियो बंगाल का है तो आखिर कब का है और कहां का है, किस जगह का है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, यह भी अहम सवाल है। अब देखिए इस वीडियो के पीछे की सच्चाई।
2: दीदी को
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी।
2: बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरेगा।
3: वायरल कोलाज के जिस वीडियो में लड़का इंटरव्यू दे रहा है उसमें एक न्यूज आउटलेट का लोगो है,
2: मेरा नाम सुफियान है।
3: इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। यहाँ इसे 24 अप्रैल 2026 को पोस्ट किया गया था।
2: बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
3: वीडियो में दिख रहा लड़का वाकई चुनौती देते हुए ऐसा कहता है कि उसका नाम सुफियान है और अगर बीजेपी ने टीएमसी को हरा दिया तो वो बिना कपड़ों के कोलकाता में घूमेगा।
2: मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
3: इसके बाद हमने दूसरे वीडियो के बारे में खोजना शुरू किया। हमने देखा कि वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है कि ये ढाका का वीडियो है। साथ ही इस यूजर ने एक बांग्लादेशी पत्रकार की इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर की है जिसमें वायरल वीडियो का लंबा वर्जन है। तेईस अप्रैल 2026 को ये वीडियो शेयर करते हुए इसे ढाका के शाहबाग इलाके का बताया था, जहां वायरल वीडियो में रक्तचरित गाना बज रहा है। वहीं इस वीडियो में बंगाली भाषा में कमेंट्री है। हमें गूगल मैप्स पर शाहबाग की वो जगह भी मिल गई जहां वायरल वीडियो शूट किया गया था। एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट ने भी 23 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो छात्र दल और छात्र शिविर नाम के दो ग्रुप्स के बीच शाहबाग में हुए टकराव का है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब छात्र दल के कुछ कार्यकर्ता बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बेटी जाइमा रहमान के बारे में किए गए कुछ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंच गए। छात्र दल का आरोप था कि छात्र शिविर ने नेता अब्दुल्ला अल महमूद ने एआई से बनी विवादित तस्वीरें शेयर की। वहीं छात्र शिविर का कहना था कि उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं। छात्र दल के पुलिस के पास पहुंचने की जानकारी मिलने पर छात्र शिविर के कार्यकर्ता, कुछ पत्रकार और ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन के प्रतिनिधि भी शाहबाग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान डीयू सीएसयू के लिटरेरी एंड कल्चरल अफेयर्स सेक्रेटरी मुसद्दिक पर हमला हो गया। डीयू सीएसयू के एक दूसरे नेता एबी जुबैर पर भी हमला हुआ और दोनों ने पुलिस स्टेशन में छुपकर जान बचाई। साफ है पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के हार के बाद बिना कपड़ों की बात कहने वाले सुफियान को पीटे जाने का वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है।
2: मेरा नाम सुफियान है।
3: सुफियान के नाम पर सोशल मीडिया पर जो पिटाई का वीडियो शेयर किया जा रहा है वो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश के ढाका का है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
0: और अब वक्त चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
3: कई सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों के डिस्प्ले के लिए होते हैं, ताकि दुकान के सामने गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिकीन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है कि एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिकीन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है, और वहीं उसका ड्रेस नूडल जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कॉम्पिटिशन का थीम शायद खाने पर रहा होगा, क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप को इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं। भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं थी और न ही किसी कंपनी के शोरूम से निकली थी। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन खुद रुक गए और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगाई गई थी और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ रहा था। देखने में यह किसी छोटी कार जैसी लग रही थी और बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जहां लोग सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है, लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखता है। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे रैगजीन को काटकर एक खिड़की बना दी है जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे की मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कहीं ज्यादा कीमती लग रही है। दुनिया के लिए यह सिर्फ एक कटा हुआ रैगजीन हो सकता है, लेकिन उन बच्चों के लिए यह उनके सुपर हीरो पिता का प्यार है। इस वीडियो के वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। नेटिजंस ऑटो ड्राइवर पिता की क्रिएटिविटी और उसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। दानापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल किसी बैंक ATM जैसा दिखाई देता है। बड़ा SBI बोर्ड, नीली लाइट, ग्लास डोर और 24 घंटे सेवा का साइन। लेकिन जैसे ही लोग अंदर जाते हैं, वहाँ कैश मशीन नहीं बल्कि हेयर कटिंग सलून देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करता था। बाद में बैंक ने किसी तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहाँ से ATM मशीन हटा ली। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहाँ अब एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। नाई ने ATM का बोर्ड हटाने के बजाय उसी के नीचे अपनी दुकान चलानी शुरू कर दी। अब लोग मजाक में इसे हेयर कटिंग ATM और बाल निकासी मशीन कहने लगे हैं। सोशल मीडिया पर दुल्हा दुल्हन की ये एंट्री आकर्षण का केंद्र बन गई है। वायरल हो रहे वीडियो में बाइक की कतार दिखाई दी जिस पर दुल्हा दुल्हन और फिर उनके दोस्त या रिश्तेदार वेडिंग वेन्यू पर एंट्री लेते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले दूल्हा बाइक पर आता है उसने सूट पहना है, उसकी बाइक पर ग्रूम भी लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरी बाइक पर दुल्हन एंट्री मारती है, वो भी व्हाइट सूट में नजर आती है। उसके सिर पर क्राउन और ब्राइडल वेल होती है। ये वीडियो मेघालय की एक शादी का बताया जा रहा है। कभी कभी कैमरे में ऐसे दृश्य कैद हो जाते हैं जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का सिर चकरा गया है। दरअसल जिस यामाहा R15 को खरीदने का सपना आज की युवा पीढ़ी देखती है, उसे एक महिला ने कबाड़ ढोने वाली गाड़ी बना डाला। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दंग रह गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब दो युवक अपनी स्कूटी से जा रहे थे तो उनकी नजर इस अनोखी गाड़ी पर पड़ी। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला लाल साड़ी बांधे एकदम देसी और रत्नागिरी अंदाज में यूके की सड़कों पर आम बेचती दिखाई दे रही है। इस दौरान उसके साथ एक ठेला है जो आम से खचाखच भरा हुआ है, और वो यूके की सड़कों पर ऐसे आम बेच रही है मानो यूके नहीं बल्कि मुंबई या दिल्ली की गलियां हों।
6: लंदन वालों ऑफर लाए रे ऑफर, अखा यूके में तुमको इससे सस्ता आम मिल जाएगा ना, तो शांता तो यही ठेला उठा के वापस चली जाएगी रत्नागिरी को।
3: इतना ही नहीं, आम बेचते हुए महिला आम ले लो आम की आवाजें भी जोर जोर से लगाती दिखाई दे रही है, जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है। लोग उसके ठेले पर आते हैं और भाव पूछते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के शहरों में मोहल्ले वाले पूछा करते हैं।
7: अरे संता भाई ऑफर कितने का लगाया वो तो बताओ।
6: अल्फांजो 18 का दर्जन और केसर 16 का दर्जन, अपने यूके में तुमको किधर भी नहीं मिलेगा इससे सस्ता।
3: कुल मिलाकर गर्मी के मौसम में आम की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है, और इससे वेस्टर्न छोर भी अछूता नहीं है। भूरे रंग के हिमालयी भालू भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। हमारे देश में यह रेयर प्रजाति लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखी जाती है। ये हिमालयी भालू ठंडे इलाकों में रहते हैं, जिनका रंग सामान्य भालुओं से सुनहरा या हल्का भूरा होता है, जिसकी वजह इनका ठंडे माहौल में रहना होता है। इंसानों से दूर रहना पसंद करने वाले इन दुर्लभ भालुओं के सड़क पर घूमने की एक वीडियो वायरल है, जिसमें वे सड़क पर उछलते कूदते हुए अपने अंदाज में ही चलते नजर आ रहे हैं। उन्हें दौड़ते हुए देख जहां एक और लोगों को मजा आ रही है, वहीं दूसरी ओर लोग लुप्त प्रजातियों को इस तरह सड़क पर देखकर सवाल भी कर रहे हैं। स्वभाव से शर्मीले माने जाने वाले हिमालयी भालू को वायरल वीडियो में सड़क पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। गाड़ी से जा रहा शख्स इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करता हुआ आगे निकल जाता है। इस बीच दोनों ही भालू अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए नजर आते हैं। सुंदर नजारा, बर्फ से आधे ढके पहाड़ों के बीच हिमालयी भालुओं का दौड़ना इस नजारे को एक रेयर मोमेंट बना देता है। क्या आपने कभी किसी बंदर को इंसानों की तरह बकायदा सैलून में जाकर बाल कटवाते देखा है? कर्नाटक के चामराजनगर से एक ऐसा ही बेहद क्यूट और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बंदर मजे से सैलून की कुर्सी पर बैठा और नाई से अपने बालों की सेटिंग करवाई। इस अनोखे पल को देखकर न सिर्फ वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए, बल्कि अब यह वीडियो इंटरनेट पर भी धूम मचा रहा है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: जो आपको अच्छी लगे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: सनातन संस्कृति का प्रकाश दुनिया भर में फैल रहा है, इसका जीवंत प्रमाण इस समय राजस्थान के पुष्कर में देखने के लिए मिल रहा है। पुष्कर में भीषण गर्मी में विदेशी साध्वी कठिन 9 धुनी तपस्या में लीन है। रूस में जन्मी ये साध्वी 21 दिनों की कठिन साधना के दौरान रोजाना 3 घंटे से ज्यादा धुनी रमाकर बैठती हैं।

0: ये तप शिव का प्रत्यक्ष आह्वान है। ये साधना सनातन की शाश्वत शक्ति का प्रमाण है। इसी सनातन में आस्था रखने वाली रूस में जन्मी एक योगिनी इन दिनों नौ धुनी अग्नि तपस्या में लीन है। ध्यान में लीन ये राधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ हैं, जिन्होंने 10 साल पहले नाथ संप्रदाय अपनाया था। इन दिनों वो पुष्कर में छोटी बस्ती स्थित शमशान भूमि पर अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में नौ धुनियों के बीच बैठकर 21 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रही हैं।
1: नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो नाथ जी बनने का महत्व यही होता है कि जो हमारी धरोहर है उसको संभालना, तो यही हमारी धरोहर है। वह नाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो वह इस तपस्या को कर रही हैं। इनकी वह पहली तपस्या है।
0: ये कोई साधारण तप नहीं, नाथ संप्रदाय की प्राचीन अग्नि साधना है जो कर्मों को भस्म कर आत्मा को शुद्ध कर देती है। और इस साधना में उतरने से पहले शरीर पर भस्म का लेप लगाया जाता है, फिर धुनियों के बीच योग मुद्रा में बैठा जाता है। गोबर के कंडों से लगातार धुनी प्रज्वलित होती रहती है। धीरे धीरे धुनियों में गोबर के कंडों की संख्या बढ़ाई जाती है और अंतिम दिन 108 गोबर के कंडों का इस्तेमाल होता है।
1: कभी भी कोई भी संत महात्मा तपस्या करता है तो नगरी के भला के लिए करता है, विश्व शांति कल्याण हेतु ही करता है। कोई कार्य करता है तो जो भी जाता है दर्शन करता है उसके पुण्य के भागी बनता है। यह 9 धुनी तपस्या है। कोई महात्मा 21 धुनी करता है, कोई 108 धुनी करता है, कोई 1100 करता है। यह आदि अनादि काल से हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा चली आ रही है, जो कि इस कठोर साधना को हमारे संत महात्मा करते हैं, जिसको हम धुनी तपस्या के रूप में जानते हैं।
0: रूस की महिला की इस कठिन साधना की चर्चा अब चारों तरफ है। दूर दूर से लोग इस विदेशी महिला संत को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। पुष्कर की पावन भूमि पर की जा रही ये तपस्या सनातन की अमर ज्योति को विश्व भर में फैला रही है। पुष्कर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इस हफ्ते भी कई धमाकेदार फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं। एक तरफ है आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो, और दूसरी तरफ है संजय दत्त की आखिरी सवाल। थिएटर्स ही नहीं, ओटीटी पर भी दर्शकों को कई ऐसी फिल्में और सीरीज देखने के लिए मिलेंगी जिनका काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था।
3: अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोच है विकी। डिबेट यानी विवाद, भारत विवाद नहीं, संवाद यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इसमें भरोसा लगता है।
4: सच। धुरंधर में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद संजय दत्त एक बार फिर पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने को तैयार है।
3: वरना आजकल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट।
4: उनकी फिल्म आखिरी सवाल 15 मई को थिएटर में रिलीज होने वाली है।
3: तो हैशटैग बनाते विल शिवाजी बेंडनी।
5: देखिए डिबेट नहीं है, ये दंगा है।
3: इतिहास गवाह है, जब भी भगवे के और कोई कालिक देखता है तो उसी स्याही से इतिहास लिखा जाता है।
6: लेफ्ट इज ऑलवेज राइट।
7: सारा मुझे अपने लक्ष्य तक।
4: पहले ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट में देरी की वजह से इसके रिलीज डेट को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया।
6: ये चोट निशान छोड़ेगी।
4: इस फिल्म की सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है।
8: बटोर सके और हमें इमोशनल।
9: ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना सर, ताकि आप अपने आरएसएस को बचा सके।
4: रिलीज से पहले राजधानी में फिल्म का एक प्रीमियर रखा गया है। इस प्रीमियर में कई नामी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।
10: कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ टेरर।
4: फिल्म में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बड़े प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है।
10: और आरएसएस वायलेंट है,
3: वो तब गिरा जब इस देश के बहुसंख्यक समाज का विश्वास टूट गया।
4: संजय दत्त की इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।
11: आदमी शिष्टाचारी है, पति आज्ञाकारी है, और तो और वन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी है। समस्या अबे हमारे जीवन में कहां से आएगी समस्या।
3: काम बे।
4: संजय दत्त की आखिरी सवाल को पर्दे पर टक्कर देने के लिए आयुष्मान खुराना हंसी ठहाकों का फुल डोज लेकर आ रहे हैं।
12: जानवर काजे भूल गए, घर को पिंजरा का ये पकड़ लिया।
13: आज न छोड़ूंगा तुझे।
12: अरे चंचल को।
4: उनकी फिल्म पति पत्नी और वो दो भी 15 मई को रिलीज हो रही है।
14: खातून कौन थी? Who was the lady?
15: दिल में है तू कौन?
14: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
15: तो पुलिस में जाती वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
4: इस फिल्म में आयुष्मान, रकुल प्रीत सिंह, वामिका गाबी और सारा अली खान के साथ कॉमेडी का तड़का लगाएंगे।
16: कैसे है आपका मानसी?
4: ये फिल्म 2019 में कार्तिक आर्यन और भूमि पडनेकर की फिल्म पति पत्नी और वो की सीक्वल है। टीजर रिलीज होने के बाद से इस फिल्म को लेकर दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई है। फिल्म में आयुष्मान खुराना का लुक भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।
17: धर्म करते हैं कर्म छूटता है, कर्म करते हैं धर्म छूटता है, कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुँचती।
18: 8 साल में तो आम का पेड़ भी फल देने लग गए, तेरे में तो कैरी भी ना फूट रही।
19: हमारी इन्वेस्टिगेशन के
4: रणदीप हुड्डा की मोस्ट पॉपुलर सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 भी 15 मई को ही OTT पर स्ट्रीम होने जा रहा है।
20: ये है अभय गुज्जर, भेड़ों का राजा।
21: कल रात तक पैसे नए न लल्ला
22: तो भेड़ों का राजा।
4: हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था।
23: बड़ा प्लान कर रहे हैं,
24: देवी के सर पर शेख साहब का हाथ
25: है। यहाँ का बादशाह सिर्फ एक है और वो है हम।
4: ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सीरीज क्राइम, पॉलिटिक्स और करप्शन की दिलचस्प कहानी लेकर आ रही है।
26: हम तो महादेव के भक्त हैं, एक ही बार में दिल, मन और आत्मा।
4: यानी ये हफ्ता सिनेमा के शौकीनों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बड़े पर्दे के साथ साथ OTT पर भी उन्हें कई ऑप्शन मिलने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
27: करेंगे हम आज हर हर महादेव।
28: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
29: ईंधन की खपत कम करने के लिए पीएम की अपील के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले में 50% की होगी कटौती। बड़े संस्थानों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा, सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, रुद्रप्रयाग का संगम व्यू पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र, यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और वैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन कर रहे रोमांच। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज, नूह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहाना।
28: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: आइए शुरू करते हैं न्यूज़पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों की भी हो रही है।
30: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। ओडिशा की पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के भव्य रथों का निर्माण परंपरा अनुसार पूरे विधि विधान के साथ तेजी से हो रहा है। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट रथ निर्माण स्थल पर तीनों रथों के निर्माण का कार्य सेवायतों की देखरेख में जारी है। भौरी उत्सव के अवसर पर चाकाडेरा अनुष्ठान के तहत तीनों रथों के पहियों को धुरों यानी एक्सल से जोड़ने का काम पूरा किया जा चुका है। 16 जुलाई को आयोजित होने वाली इस रथ यात्रा में 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के रहने का अनुमान है, जिसको देखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात और स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस उत्सव को लेकर पहली समन्वय बैठक में सभी व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा हुई। बैठक में सुरक्षा और श्रद्धालुओं की आवाजाही की व्यवस्था को बिना किसी बाधा के बनाने पर विशेष जोर दिया गया। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की हैं। यहाँ श्रीरंगम के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में चिथिराई उत्सव की अद्भुत छटा बिखर रही है। 11 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव इस साल 6 मई से 16 मई तक मनाया जा रहा है। इस उत्सव में भगवान विष्णु के अलग अलग वाहनों पर दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिल रहा है। उत्सव के दौरान भगवान रंगनाथ को चांदी के हाथी पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विशाल लकड़ी के रथ को भक्त जय घोष करते हुए मंदिर की सड़कों पर खींचते नजर आए। ये उत्सव अपनी भव्यता और पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग से सराबोर नजर आते हैं। चारधाम की यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। यहां हर दिन 15,000 से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। भगवान विष्णु के इस धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने के बाद से अब तक लगभग 3,00,000 यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है, उसे यात्रा मार्ग पर हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतारों को देखकर समझा जा सकता है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के बाद श्रद्धालु देश के प्रथम गांव माणा में भी पहुंच रहे हैं और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते वो ठंड और बारिश से बचने के लिए यहां खरीदारी करते भी नजर आ रहे हैं। राजस्थान के 43 डिग्री तापमान में एक विदेशी महिला की तपस्या की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। पुष्कर में रूस की रहने वाली ये महिला 9 धुनी अग्नि तप कर रही हैं, जो नाथ संप्रदाय की एक बहुत प्राचीन और कठोर हठ योग साधना है, जिसमें साधक चारों तरफ धधकती आग के बीच बैठकर तपस्या करते हैं। रूस की इस महिला ने 10 साल पहले नाथ संप्रदाय को अपनाया था। उसके बाद से राधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ नाम की ये महिला नाथ संप्रदाय के रीति रिवाज से अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये अग्नि तपस्या भी उसी परंपरा की कड़ी है। अजमेर के पुष्कर में छोटी बस्ती स्थित शमशान भूमि पर अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में राधिका योगिनी 21 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रही हैं, जिसमें वो हर दिन लगभग 3.25 घंटे तक धधकती अग्नि के बीच बैठकर शिव साधना और गुरु बीज मंत्र का जाप करती हैं। साथ ही रोजाना हवन पूजन और आरती का आयोजन भी होता है। 3 मई से शुरू हुई उनकी ये साधना पूर्ण आहुति और संत भंडारे के साथ 25 मई को सम्पन्न होगी। कहीं तेज गर्मी का आलम तो कहीं बारिश और तेज हवाओं का दौर। देश में इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में खासकर पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ देखा जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सुबह से मौसम में बदलाव देखा गया। यहां हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने को लेकर बारिश का ऑरेंज अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था। पश्चिमी विक्षोभ का असर देश की राजधानी दिल्ली पर भी पड़ने का मौसम विभाग का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते के आखिर तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरू होने के लिए हालात अनुकूल होते जा रहे हैं। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में लू चलने का अनुमान भी है। साथ ही दक्षिण के कुछ राज्यों में भी बारिश की संभावना जताई गई है।
0: चलिए बात करते हैं तेलंगाना के नरसिंह मंदिर की। मल्लूर का ये मंदिर अपनी जीवित प्रतिमा के कारण दुनिया भर में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यानी कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा को जीवित मानकर उनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर को लेकर लोगों में ये आस्था है कि इसकी प्रतिमा में दिव्य ऊर्जा का वास है, लिहाजा अगर आप धर्म और आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आपको नरसिंह मंदिर जरूर जाना चाहिए। यहाँ भगवान नरसिंह की जीवित प्रतिमा के दर्शन कर पाएंगे और उनकी दिव्य ऊर्जा को अनुभव भी कर सकेंगे।

0: तेलंगाना के मल्लूर में विराजमान हैं नरसिंह भगवान, जिन्हें छूने पर महसूस होती है इंसानी त्वचा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा से सटे तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां अनोखी मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति इंसान की त्वचा जैसी मुलायम है और मान्यता है कि मूर्ति को दबाने से उसमें तरल पदार्थ निकलने लगता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बैसाख के महीने में विशाल मेला आयोजित किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले के दौरान पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान के भक्त बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं।
1: हम हैदराबाद से नरसिंह भगवान के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर नरसिंह चौदस के दिन जो मेला लगता है 8 दिन तक चलता है कंटिन्यू, बहुत पब्लिक है, जगह जगह से लोग आते हैं, बहुत अच्छे है दर्शन। यहाँ नाभि में से पस निकलता है नरसिंह भगवान के, बोली में जीवित रूप में है, बोली भी हर काम मनोकामना पूर्ण होती है। हम भी आए हैं, भगवान कुछ अच्छा करा तो अच्छा ही है। हम भी और आप सबको भी बोलते हैं कि दर्शन करने के लिए आओ सब जन।
0: नरसिम्हा स्वामी मंदिर, जिसे हिमाचल नरसिम्हा स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, ये मंदिर हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है और पहाड़ियों की शांति इसे आध्यात्मिक साधकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाती है। यहाँ लोग ध्यान लगाने और शांति से प्रार्थना करने आते हैं। भक्त इन सीढ़ियों को चढ़कर भगवान नरसिम्हा स्वामी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आते हैं। देश भर से श्रद्धालु नरसिंह भगवान की जीवित प्रतिमा के दर्शन के लिए लंबी यात्रा करते हैं। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन भक्तों को इसमें आनंद और शांति का अनुभव ही होता है। इस मंदिर की यात्रा और यहां के दर्शन से भक्तों को आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति को देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
2: छत्तीसगढ़ सीमा से लगा तेलंगाना का मुलुगु जिले में ये गांव है जहां पर नरसिंह भगवान की जीवित मूर्ति यहां पर बताई जाती है। जीवित मूर्ति यहां पर है, जिसमें शरीर जो है जिस तरह से इंसान का शरीर होता है उस तरह से कोमल है। यह 4000 वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें अलग अलग जगह से लोग यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ दर्शन के लिए। यहाँ मान्यता है कि लोगों की मन्नत जो मांगते हैं वो पूर्ण होती है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ लोग हर वर्ष मेला लगता है और काफी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और काफी मान्यता है कि ये मंदिर जो जीवित आप नरसिंह भगवान यहाँ जीवित रूप में विराजमान है।
0: मंदिर के गर्भगृह में लगभग 10 फीट ऊंची भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर मान्यता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि साक्षात जीवित स्वरूप है और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। मूर्ति का पेट और दूसरे हिस्से इंसानी त्वचा की तरह कोमल माने जाते हैं। मंदिर के पुजारियों और भक्तों का मानना है कि मूर्ति की नाभि पर एक चोट का निशान है, जिसे नाभि प्रसादम कहा जाता है, जहां से तरल पदार्थ निकलता है। मान्यता है कि ये मंदिर 6वीं शताब्दी से पहले का है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऋषि अगस्त्य ने इस पहाड़ी का नाम हेमचला रखा।
3: ये इसका गांव का नाम है मल्लूर है। इसका जो देव है श्री हेमचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देव है। इसमें और आदि लक्ष्मी और चंचल लक्ष्मी माता भी है इसके साथ। अभी इधर का बहुत पुराना साल का जो ये टेम्पल है, वो इधर का जो मूर्ति है ना लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति का मानव स्वरूप है। मानव स्वरूप हमारा जो चमड़ा कैसे जैसे रहते हैं ऐसे जो हम लोग अंदर घुसेगा तो घुस जाता है, मतलब उतना स्वच्छ और पावरफुल गॉड है। अभी इधर का जो दिख रहा है इसमें ये चिंतामणि बोलता है इसका, ये जो जल प्रवाह है ये चिंतामणि, ये पानी अब 200 मीटर से आपको दिखता है और बाकी जो किधर से आते है पता नहीं चलता है। अभी इधर का जो पानी पिएगा तो जो बीमार है बीमारी निकल जाता है।
0: इस क्षेत्र में बसे लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की प्रतिमा में दिव्य ऊर्जा का वास है। इस प्रतिमा की आंखें, मुखमंडल और त्वचा एक जीवित व्यक्ति की तरह प्रतीत होती है। प्रतिमा की त्वचा इंसानी त्वचा जैसी मुलायम है और अगर इसे दबाया जाए तो त्वचा पर गड्ढा बन जाता है। यही कारण है कि इस मंदिर को दुनिया का अनोखा मंदिर माना गया है।
4: 1200 किलोमीटर दूर से मुझे पता चला कि यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर है और रियल प्रतिमा है, तो यहाँ हर जगह से लोग आते हैं, जैसे तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो हमें भी ये पता चला, तो हम भी यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं दर्शन करने हमारी मन्नत लेके। काफी अच्छा है मंदिर, काफी शांत है, यहाँ पे देख के काफी अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 घंटे से बैठे हुए हैं, फिर भी मन नहीं कर रहा घर जाने का। बहुत अच्छा है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज क्या है कि जनरली मूर्ति रहती है तो मूर्ति नॉर्मल दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मूर्ति के अंदर से पस भी निकल रहा है जो आपको रियल टाइम में ऐसा बताता है कि अंदर प्रतिमा के अंदर जान है। तो ये सब देखते हुए, इसका मान्यता को देखते हुए, हम खुद 1200 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हैं दर्शन करने पूरे परिवार के साथ।
0: नरसिंह की जीवंत प्रतिमा वाले इस मंदिर में आने वाले भक्तों की मान्यता है कि भगवान नरसिंह उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। भक्तों के अनुभव और चमत्कारों की कहानियाँ इस मंदिर की महत्ता को और बढ़ा देती है। भक्तों का मानना है कि प्रतिमा में भगवान नरसिंह की जीवित उपस्थिति है। कई भक्तों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने प्रतिमा में कई दिव्य चीजें होते देखी हैं और यहाँ उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिला है।
5: हम यहाँ अभी छत्तीसगढ़ से आए हैं, यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है और परंपरा के अनुसार यहाँ पे हर साल मेला लगता है। नरसिंह चौदस को मेला लगता है, जो यहाँ पे भगवान की शादी होती है, मेहंदी हल्दी सब प्रोग्राम बनाया जाता है, जैसे शादी में मनाते हैं वैसा। और भगवान की प्रतिमा है जो यहाँ से खुद प्रकट हुई हुई है, उनके नाभि में से पस निकलता है, वो भी कह रही जीवित अवस्था में है, वैसे मान्यता है इनकी। और पहाड़ के ऊपर अपने आप प्रतिमा प्रकट हुई है, यहाँ पे कोई मूर्ति बैठाई हुई नहीं है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं।
0: मल्लूर नरसिंह स्वामी मंदिर में ब्रह्मोत्सवम उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर साल आयोजित होने वाले इस उत्सव में भगवान नरसिंह की मूर्ति को एक भव्य शोभा यात्रा में ले जाया जाता रहा है। इस दौरान देश भर से आए श्रद्धालु मंदिर में उमड़ पड़ते हैं और इस दिव्य उत्सव का हिस्सा बनते हैं। नरसिंह स्वामी का ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहाँ भक्त भगवान नरसिंह की उपस्थिति का साक्षात अनुभव करते हैं। नरसिंह स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। इसका मुख्य द्वार गोपुरम नामक एक भव्य संरचना है जो देखते ही बनती है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां और पौराणिक कथाओं की नक्काशी है, जो इस मंदिर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: चारधाम यात्रा में अब आईटीबीपी के जवान संभालेंगे ट्रैफिक की व्यवस्था। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
7: महाराष्ट्र के पुणे में गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। आरपीएफ के ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत पुणे सुपौल एक्सप्रेस में सफर कर रही गर्भवती महिला को ट्रेन में डिलीवरी के दौरान पूरी मदद की गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि महिला को ट्रेन में सफर के दौरान अचानक लेबर पेन हुआ। इस बात का अलर्ट मिलते ही आरपीएफ के जवान उसकी मदद में जुट गए। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। जोशीमठ सहित यात्रा मार्ग पर आईटीबीपी के जवान ट्रैफिक के साथ यात्रा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी जगह जगह आईटीबीपी की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। दरअसल शाम के समय जब भारी ट्रैफिक हो रहा है, ऐसे में ट्रैफिक संभालने के लिए आईटीबीपी के जवान बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आईटी सेक्टर में एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम को लेकर बहस तेज हो गई है। आईटी उद्योग से जुड़े संगठन एनआईटीईएस ने श्रम मंत्रालय को पत्र भेजा है। इसमें मांग की गई है कि आईटी और आईटीईएस सेक्टर में काम करने वाले लगभग 58 लाख कर्मचारियों के लिए अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी की जाए। संस्था का कहना है कि भारतीय आईटी उद्योग के पास रिमोट वर्क को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जरूरी तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। एनआईटीईएस के मुताबिक अगर कर्मचारी घर से काम करेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी, ट्रैफिक दबाव घटेगा और विदेशी मुद्रा की बचत में मदद मिलेगी।
6: और न्यूज पद पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद है। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले।
8: कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को भारी बिकवाली के कारण 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 1456 अंक लुढ़क कर 74,559 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 436 अंकों की गिरावट के बाद 23,379 पर बंद हुआ।
9: मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में लगभग 1% का उछाल देखा गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,500 रुपए बढ़कर 1,56,800 रुपए पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में 4% से ज्यादा का उछाल देखा गया और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 12,000 रुपए की बढ़त के साथ 2,77,000 रुपए पहुँच गयी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर रुपए की कीमत पर भी पड़ रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज फिर कमजोर हुआ। 35 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर की कीमत 95.63 रुपए के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गई।
6: और न्यूज पद पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और ये वायरल भी है।
10: एक पिता और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब तेजी के साथ देखा जा रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। मिठाई के जरिए ये मासूम बच्ची जिस अंदाज में पिता से अपने माँ के बारे में शिकायत करती है, उसने यूजर्स का दिल जीत लिया है।
11: पापा सुनो, एक बात पूछूं?
12: हाँ, को पूछो।
11: आपकी शादी में मिठाई आई थी?
12: हाँ, मिठाई आई थी।
11: आपने खाई थी?
12: हाँ, को खाई थी।
11: देते
12: क्यों?
11: मम्मा थोड़ा भी बोल लेती।
12: क्या?
11: अरे मीठा बोल लेती थोड़ा।
10: ये तो हम सब जानते हैं, इस धरती पर एक से एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ ज्यादातर लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से एक अजीबोगरीब हरकत करके सबको चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है। इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द नहीं महसूस हो रहा। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत में ही कोई मशीन हो। सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों को डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं, ताकि दुकान के सामने से गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिक्विन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिक्विन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के दानापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल किसी बैंक ATM की तरह से दिखाई देता है, लेकिन अंदर कैश नहीं बल्कि हेयर कटिंग सैलून दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करती थी। बाद में बैंक ने इसे तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहां से ATM हटा लिया। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिए गए थे। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहां पर एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने पर बैंक की ब्रांडिंग को छिपा दिया गया। ऑटो रिक्शा में सनरूफ। जहां लोग कार में सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है, लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखा। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे रैगजीन को काट कर एक खिड़की बना दी, जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कुछ ज्यादा कीमती लग रही है।
6: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्रों की, जिन्हें आज बड़ा झटका लगा है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को देश भर में नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी। ये फैसला पेपर लीक होने के आरोप के बाद लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख जल्दी ही जारी की जाएगी। NTA ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और मामले की CBI जांच होगी। NTA ने जानकारी दी है कि नीट में बैठने वाले लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। पिछले परीक्षा केंद्रों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा देने वाले छात्रों से दोबारा एग्जाम में बैठने के लिए कोई अतिरिक्त फीस भी चार्ज नहीं की जाएगी। मामले की पड़ताल में सामने आया है कि पेपर छपने से पहले ही सवाल नकल गैंग के पास पहुंच गए थे। इनमें बायोलॉजी के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 35 सवाल थे जो हूबहू परीक्षा में आए थे। एनटीए ने बताया है कि 8 मई को ही इस मामले से जुड़ी कुछ जांचों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जांच एजेंसियों से मिले निष्कर्षों के आधार पर ही यह तय किया गया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। जाहिर है कि लाखों छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता और नाराजगी दोनों देखने को मिल रहे हैं। इस मामले को लेकर हमने चंडीगढ़ में कुछ लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का ट्रेलर रिलीज। इसके साथ ही ऐसी कई और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर।
13: पत्रलेखा और मानवी गगरू स्टारर हीरा सारा और पांडिचेरी का ट्रेलर हुआ रिलीज, जिसमें दिखाया गया है कि अलग अलग बैकग्राउंड वाली दो लड़कियां अचानक सोलो बाइक ट्रिप पर पुदुचेरी के लिए निकल पड़ती हैं। दोनों में पहले से जान पहचान नहीं रहती है, लेकिन साथ में एक ही बाइक से ट्रिप पर निकलने से दोनों दोस्त बन जाती हैं। दोनों ट्रिप पर एंजॉय करती हैं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर भी करती हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरह की परेशानियां भी हैं, उसकी झलक भी ट्रेलर में देखने को मिली है। कार्तिक चौधरी निर्देशित इस फिल्म में श्वेता साल्वे, आरिफ जकारिया, निशंक वर्मा भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। ये फिल्म 29 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
14: अंकल इसको मालूम है इसकी लड़की का है।
15: तू शादी तोड़ने जाए।
16: टीचो तू नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आई है, उसको भी तो पता चले। चल अभी चल।
13: जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें दिखता है कि एक बच्चा अपने दादाजी को सुपर हीरो बताता है। वो अपने दोस्तों में अपने दादाजी की झूठी सुपर हीरो वाली कहानियां सुनाता रहता है, जबकि उसके दादाजी असल में बुजुर्ग और कमजोर हैं। इसलिए उसकी बातों पर उसके दोस्तों को शक होने लगता है। ये फिल्म बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। मनीष सैनी निर्देशित इस फिल्म में प्रतीक, स्मिता पाटिल, भाग्यश्री दसानी, शरद सक्सेना जैसे कलाकार भी हैं। ये फिल्म 29 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
17: और राजू बोल रहा था तूने सामान फ्री में दे दिया था।
18: अब फ्री में हमारे लिए इतना कर रहे और मैं पैसे ले लूं।
19: एक एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तुम्हारी वो ट्रेन वाली खबर तो कहीं नहीं आई।
20: दोनों पागल बना रहे हैं।
21: अरे भाई सुनो, ये गंगाधरी शक्तिमान वाला सीन है।
13: सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका स्टारर फिल्म सिस्टम का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसकी शुरुआत सोनाक्षी सिन्हा के किरदार नेहा से होती है, जो युवा वकील है और अपने पिता की लॉ फर्म में पार्टनर बनने के लिए खुद को योग्य साबित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पिता की भूमिका निभा रहे आशुतोष गोविरकर उसे कठिन केस लेने की चुनौती देते हैं। अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए नेहा सारिका का किरदार निभा रही ज्योतिका को अपने साथ लाती है, लेकिन उसके अपने कुछ छिपे इरादे दिखते हैं, फिर कुछ नए राज खुलते जाते हैं। ट्रेलर में सोनाक्षी का सिस्टम से संघर्ष दिखाया गया है।
22: इंसाफ पे सबका हक होता है।
23: सीनियर लॉयर होने के नाते तुम्हें वकालत सिखानी जरूरी है, और एक बाप होने के नाते तमीज।
24: प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस।
25: मुझसे इन्फॉर्मेशन चुरा के डैड को दोगे?
26: एक बात बोलूं मैडम, दुनिया में हम सब अपना असली चेहरा छुपाते हैं।
13: इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस का दूसरा टीजर भी आया सामने। जोराजन निर्देशित इस फिल्म में दीपक तिजोरी, यूलिया वंतूर और स्पेनिश अभिनेत्री एलेसांड्रा वेल मेरेडीज अहम भूमिका में हैं। अपनी गहरी भावनात्मक कहानी और मजबूत अभिनय की वजह से ये इस वर्ष की चर्चित शॉर्ट फिल्मों में से एक है, जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी आयोजनों में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल के 79वें संस्करण में इसी हफ्ते दिखाया जाएगा। अभिनेत्री पूजा बत्रा के अलायंस मीडिया पीटीवाई लिमिटेड के सहयोग से निर्मित इस फिल्म को कांस में दो प्रमुख स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। इस फिल्म का प्रदर्शन मार्चे डू फिल्म कांस में 14 मई और फ्रेंच रिवेरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 16 मई को होगा।
9: 12 से 23 मई तक आयोजित होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा भारत के कई स्टार्स भी बन रहे हैं।
1: You have a new message.
9: महाकाल के दरबार में भक्ति में लीन नजर आई अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। उज्जैन की श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर वो वहां भस्म आरती में शामिल हुई। श्रद्धालुओं के बीच बैठकर तमन्ना महाकाल की आरती गाती और तालियां बजाती भी दिखी। उन्होंने चांदी द्वार से महाकाल को जल भी अर्पित किया। यहां दर्शन पूजन करके तमन्ना बहुत ही खुश नजर आई। यहां आने को उन्होंने अपना सौभाग्य बताया।
6: राहुल द्रविड़ बने T20 टीम के मालिक, आर अश्विन कप्तान। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
9: T20 टीम के मालिक बने राहुल द्रविड़। उन्होंने यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्डियंस टीम खरीदी है। राहुल द्रविड़ की टीम डबलिन गार्डियंस की कप्तानी आर अश्विन करेंगे। इस लीग की वजह से यूरोप में T20 क्रिकेट के साथ साथ इस खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। ये लीग क्रिकेट आयरलैंड, क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन की साझेदारी में शुरू की जा रही है। EPTL का पहला सीजन 26 अगस्त से 20 सितंबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े नाम नजर आएंगे। IPL 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। IPL के सीजन में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन शानदार रहा है। गुजरात टाइटंस ने 11 मैच से 7 मुकाबले जीते हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 11 में से 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। दोनों ही टीमों के 14-14 पॉइंट्स हैं। जिम्बाब्वे के घरेलू क्रिकेट में खेले गए एक मुकाबले के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। 2025-26 मस्विंगो 50 ओवर फर्स्ट लीग के इस मुकाबले में स्कॉर्पियन क्रिकेट क्लब ने 50 ओवरों में 822 रन बना डाले, जबकि मेथल लॉयंस की टीम महज 28 रन पर ही सिमट गई।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else,

0: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: ईंधन की खपत कम करने के लिए पीएम की अपील के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले में 50% की होगी कटौती, बड़े संस्थानों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा, सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, रुद्रप्रयाग का संगम व्यू पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र, यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और वैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन कर रहे रोमांच। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज, नूह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहाना।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें और अखबार के पन्ने या अब टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गई। यहां हर किसी के हाथ में एक अलग कैमरा है, एक हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ बरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज हम फैक्ट चेक में बात करेंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि टीएमसी को मिली बड़ी हार के तुरंत बाद का ये वीडियो है। हार के बाद ममता बनर्जी कार में बेसुध हो गई। क्या है इस वायरल दावे की वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर में बात होगी उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि जिस लड़के ने ममता बनर्जी के चुनाव हारने पर कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमने की बात कही, परिणामों के बाद जनता ने सरेआम उसके कपड़े फाड़ दिए। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: बंगाल में चुनाव खत्म हो गए हैं। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट और वीडियो की बाढ़ आ गई है। इसी कड़ी में एक और वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को गाड़ी में बेसुध बैठे देखा जा रहा है। इस वीडियो को कुछ लोग शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बंगाल में ये हार का साइड इफेक्ट है। बंगाल में टीएमसी को मिली बड़ी हार के तुरंत बाद का ये वीडियो है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में।

बंगाल में बीजेपी की सरकार है। धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल करके बीजेपी ने टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये बंगाल में टीएमसी को मिली हार के बाद का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ममता बानो की हालत खराब, बेहतर इलाज के लिए बांग्लादेश रेफर किया जाए।

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ममता बनर्जी को बेसुध होकर कार में बैठे हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि बंगाल में टीएमसी को मिली हार के तुरंत बाद का ये वीडियो है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के हाथों मिली बड़ी हार के बाद ममता बनर्जी सदमे में चली गई, ये तस्वीर उसी की है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल के लिए वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें यह नजर आया कि वीडियो में ममता की आवाज को डाउन करके उसके ऊपर अलग से आवाज को जोड़ा गया है, मतलब ममता जो कुछ भी कह रही हैं उसे इसके जरिए छुपा दिया गया है। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के दावे पर शक हुआ। इसके बाद हमने ममता बनर्जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में हमें ऐसी कोई भी पोस्ट या फिर प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर दावा सच है तो वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है जिसको ये शेयर किया जा रहा है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वीडियो का लंबा वर्जन एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 10 मार्च 2021 को शेयर किया गया था। यहां मौजूद जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी कार के पास थी तब कुछ हमलावरों ने उन पर हमला किया। ये हादसा तब हुआ जब वह नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी। फिर ममता बनर्जी को इलाज के लिए नंदीग्राम से कोलकाता ले जाया गया था। हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक और विश्वसनीय वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 11 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार पार्टी के शीर्ष नेता सुखेंदु शेखर राय ने इसे लेकर कहा था कि ममता एक मंदिर में पूजा करने के बाद बिरुलिया अंचल से निकलने ही वाली थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें कार में धकेल दिया और जबरन दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके बाएं पैर में चोट आई थी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने इसे नाटक बताया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि ममता बनर्जी के बेसुध होने का वायरल वीडियो हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद का नहीं है। इस वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। असल में वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि करीब 5 साल पुराना है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर दो वीडियो का एक कोलाज शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के जीतने पर कोलकाता की सड़कों पर बिना कपड़ों के घूमने की बात कहने वाले सुफियान को लोगों ने सड़क पर निकालकर पीटा। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी यह रिपोर्ट देखिए।
2: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दिया।
3: सोशल मीडिया पर दो वीडियो का ये कोलाज तेजी से वायरल हो रहा है।
2: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा।
3: इसके पहले वीडियो में एक युवक मीडिया से बात कर रहा है।
2: हरा दिया। कलकत्ता घूरे। ओके घूरे। यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा।
3: वहीं दूसरे वीडियो में एक युवक की इस कदर पिटाई हो रही है कि उसके कपड़े तक फट गए हैं।
2: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दिया।
3: ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों लड़के एक ही हैं और इस लड़के ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो वो कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमेगा।
2: मेरा नाम सुफियान। यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दिया।
3: अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि नतीजों में वाकई टीएमसी के हारने पर जनता ने उसे सरेआम पीट पीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। यूजर्स वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से वायरल कर रहे हैं।
1: सोशल मीडिया पर ये दो वीडियो का एक कोलाज खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। पहले वीडियो में एक युवक मीडिया से बात कर रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में एक युवक की इस कदर पिटाई हो रही है कि उसके कपड़े तक फट गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों लड़के एक ही हैं और इस लड़के ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो वो कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमेगा। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि नतीजों में वाकई टीएमसी के हारने पर जनता ने सुफियान के सरेआम पीट पीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो को गौर से देखा। पहले वीडियो में चेहरा साफ साफ दिख रहा है, लेकिन दूसरे वीडियो में मार खा रहे शख्स का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा। इससे साफ लग ही नहीं रहा कि ये दोनों वीडियो एक ही शख्स से जुड़े हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कई पुख्ता जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने इस वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर ये वीडियो बंगाल का है तो आखिर कब का है और कहां का है, किस जगह का है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, यह भी अहम सवाल है। अब देखिए इस वीडियो के पीछे की सच्चाई।
2: दीदी को टीएमसी
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी।
2: बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
3: वायरल कोलाज के जिस वीडियो में लड़का इंटरव्यू दे रहा है उसमें एक न्यूज आउटलेट का लोगो है।
2: मेरा नाम सुफियान है।
3: इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। यहाँ इसे 24 अप्रैल 2026 को पोस्ट किया गया था।
2: बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
3: वीडियो में दिख रहा लड़का वाकई चुनौती देते हुए ऐसा कहता है कि उसका नाम सुफियान है और अगर बीजेपी ने टीएमसी को हरा दिया तो वो बिना कपड़ों के कोलकाता में घूमेगा।
2: मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
3: इसके बाद हमने दूसरे वीडियो के बारे में खोजना शुरू किया। हमने देखा कि वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है कि ये ढाका का वीडियो है। साथ ही इस यूजर ने एक बांग्लादेशी पत्रकार की इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर की है जिसमें वायरल वीडियो का लंबा वर्जन है। तेईस अप्रैल 2026 को ये वीडियो शेयर करते हुए इसे ढाका के शाहबाग इलाके का बताया था, जहां वायरल वीडियो में रक्तचरित गाना बज रहा है। वहीं इस वीडियो में बंगाली भाषा में कमेंट्री है। हमें गूगल मैप्स पर शाहबाग की वो जगह भी मिल गई जहां वायरल वीडियो शूट किया गया था। एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट ने भी 23 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो छात्र दल और छात्र शिविर नाम के दो ग्रुप्स के बीच शाहबाग में हुए टकराव का है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब छात्र दल के कुछ कार्यकर्ता बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बेटी जाइमा रहमान के बारे में किए गए कुछ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंच गए। छात्र दल का आरोप था कि छात्र शिविर ने नेता अब्दुल्ला अल महमूद ने एआई से बनी विवादित तस्वीरें शेयर की। वहीं छात्र शिविर का कहना था कि उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं। छात्र दल के पुलिस के पास पहुंचने की जानकारी मिलने पर छात्र शिविर के कार्यकर्ता, कुछ पत्रकार और ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन के प्रतिनिधि भी शाहबाग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान डीयू सीएसयू के लिटरेरी एंड कल्चरल अफेयर सेक्रेटरी मुसद्दिक पर हमला हो गया। डीयू सीएसयू के एक दूसरे नेता एबी जुबैर पर भी हमला हुआ और दोनों ने पुलिस स्टेशन में छुप कर जान बचाई। साफ है पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद बिना कपड़ों की बात कहने वाले सुफियान को पीटे जाने का वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है।
2: मेरा नाम सुफियान है।
3: सुफियान के नाम पर सोशल मीडिया पर जो पिटाई का वीडियो शेयर किया जा रहा है वो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश के ढाका का है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक के वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
3: कई सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों के डिस्प्ले के लिए होते हैं, ताकि दुकान के सामने गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिकीन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है कि एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिकीन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है, और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कॉम्पिटिशन का थीम शायद खाने पर रहा होगा, क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप को इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं। भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं थी और न ही किसी कंपनी के शोरूम से निकली थी। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन खुद रुक गए और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगाई गई थी और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ रहा था। देखने में यह किसी छोटी कार जैसी लग रही थी और बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जहां लोग सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है, लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखता है। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे रैगजीन को काटकर एक खिड़की बना दी है जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे की मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कहीं ज्यादा कीमती लग रही है। दुनिया के लिए यह सिर्फ एक कटा हुआ रैगजीन हो सकता है, लेकिन उन बच्चों के लिए यह उनके सुपर हीरो पिता का प्यार है। इस वीडियो के वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। नेटिजंस ऑटो ड्राइवर पिता की क्रिएटिविटी और उसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। दानापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल किसी बैंक ATM जैसा दिखाई देता है। बड़ा SBI बोर्ड, नीली लाइट, ग्लास डोर और 24 घंटे सेवा का साइन। लेकिन जैसे ही लोग अंदर जाते हैं, वहाँ कैश मशीन नहीं बल्कि हेयर कटिंग सलून देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करता था। बाद में बैंक ने किसी तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहाँ से ATM मशीन हटा ली। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहाँ अब एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। नाई ने ATM का बोर्ड हटाने के बजाय उसी के नीचे अपनी दुकान चलानी शुरू कर दी। अब लोग मजाक में इसे हेयर कटिंग ATM और बाल निकासी मशीन कहने लगे हैं। सोशल मीडिया पर दुल्हा दुल्हन की यह एंट्री आकर्षण का केंद्र बन गई है। वायरल हो रहे वीडियो में बाइक की कतार दिखाई दी जिस पर दुल्हा दुल्हन और फिर उनके दोस्त या रिश्तेदार वेडिंग वेन्यू पर एंट्री लेते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले दूल्हा बाइक पर आता है, उसने सूट पहना है, उसकी बाइक पर ग्रूम भी लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरी बाइक पर दुल्हन एंट्री मारती है, वो भी व्हाइट सूट में नजर आती है। उसके सिर पर क्राउन और ब्राइडल वेल होती है। ये वीडियो मेघालय की एक शादी का बताया जा रहा है। कभी कभी कैमरे में ऐसे दृश्य कैद हो जाते हैं जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का सिर चकरा गया है। दरअसल जिस यामाहा R15 को खरीदने का सपना आज की युवा पीढ़ी देखती है, उसे एक महिला ने कबाड़ ढोने वाली गाड़ी बना डाला। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दंग रह गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब दो युवक अपनी स्कूटी से जा रहे थे तो उनकी नजर इस अनोखी गाड़ी पर पड़ी। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला लाल साड़ी बांधे एकदम देसी और रत्नागिरी अंदाज में यूके की सड़कों पर आम बेचती दिखाई दे रही है। इस दौरान उसके साथ एक ठेला है जो आम से खचाखच भरा हुआ है, और वो यूके की सड़कों पर ऐसे आम बेच रही है मानो यूके नहीं बल्कि मुंबई या दिल्ली की गलियां हूं।
5: लंदन वालों ऑफर लाई रे ऑफर, अखा यूके में तुमको इससे सस्ता आम मिल जाएगा ना, तो शांता तो यही ठेला उठा के वापस चली जाएगी रत्नागिरी को।
3: इतना ही नहीं, आम बेचते हुए महिला आम ले लो आम की आवाजें भी जोर जोर से लगाती दिखाई दे रही है, जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है। लोग उसके ठेले पर आते हैं और भाव पूछते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के शहरों में मोहल्ले वाले पूछा करते हैं।
6: अरे संता भाई ऑफर कितने का लगाया वो तो बताओ।
5: अल्फांजो 18 का दर्जन और केसर 16 का दर्जन, अपने यूके में तुमको किधर भी नहीं मिलेगा इससे सस्ता।
3: कुल मिलाकर गर्मी के मौसम में आम की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है, और इससे वेस्टर्न छोर भी अछूता नहीं है। भूरे रंग के हिमालयी भालू भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। हमारे देश में यह रेयर प्रजाति लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखी जाती है। ये हिमालयी भालू ठंडे इलाकों में रहते हैं, जिनका रंग सामान्य भालुओं से सुनहरा या हल्का भूरा होता है, जिसकी वजह इनका ठंडे माहौल में रहना होता है। इंसानों से दूर रहना पसंद करने वाले इन दुर्लभ भालुओं के सड़क पर घूमने की एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह सड़क पर उछलते कूदते हुए अपने अंदाज में ही चलते नजर आ रहे हैं। उन्हें दौड़ते हुए देख जहां एक और लोगों को मजा आ रही है, वहीं दूसरी ओर लोग लुप्त प्रजातियों को इस तरह सड़क पर देखकर सवाल भी कर रहे हैं। स्वभाव से शर्मीले माने जाने वाले हिमालयी भालू को वायरल वीडियो में सड़क पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। गाड़ी से जा रहा शख्स इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करता हुआ आगे निकल जाता है। इस बीच दोनों ही भालू अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए नजर आते हैं। सुंदर नजारा, बर्फ से आधे ढके पहाड़ों के बीच हिमालयी भालुओं का दौड़ना इस नजारे को एक रेयर मोमेंट बना देता है। क्या आपने कभी किसी बंदर को इंसानों की तरह बकायदा सैलून में जाकर बाल कटवाते देखा है? कर्नाटक के चामराजनगर से एक ऐसा ही बेहद क्यूट और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बंदर मजे से सैलून की कुर्सी पर बैठा और नाई से अपने बालों की सेटिंग करवाई। इस अनोखे पल को देखकर न सिर्फ वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए, बल्कि अब यह वीडियो इंटरनेट पर भी धूम मचा रहा है।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
9: Jack, you're killing me.
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
10: सनातन संस्कृति का प्रकाश दुनिया भर में फैल रहा है, इसका जीवंत प्रमाण इस समय राजस्थान के पुष्कर में देखने के लिए मिल रहा है। पुष्कर में भीषण गर्मी में विदेशी साध्वी कठिन 9 धुनी तपस्या में लीन है। रूस में जन्मी ये साध्वी 21 दिनों की कठिन साधना के दौरान रोजाना 3 घंटे से ज्यादा धुनी रमाकर बैठती हैं।

0: ये तप शिव का प्रत्यक्ष आह्वान है। ये साधना सनातन की शाश्वत शक्ति का प्रमाण है। इसी सनातन में आस्था रखने वाली रूस में जन्मी एक योगिनी इन दिनों नौ धुनी अग्नि तपस्या में लीन है। ध्यान में लीन ये राधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ हैं, जिन्होंने 10 साल पहले नाथ संप्रदाय अपनाया था। इन दिनों वो पुष्कर में छोटी बस्ती स्थित शमशान भूमि पर अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में नौ धुनियों के बीच बैठकर 21 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रही हैं।
1: नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो नाथ जी बनने का महत्व तो यही होता है कि जो हमारी धरोहर है उसको संभालना, तो यही हमारी धरोहर है। वह नाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो वह इस तपस्या को कर रही हैं। इनकी वह पहली तपस्या है।
0: ये कोई साधारण तप नहीं, नाथ संप्रदाय की प्राचीन अग्नि साधना है जो कर्मों को भस्म कर आत्मा को शुद्ध कर देती है। और इस साधना में उतरने से पहले शरीर पर भस्म का लेप लगाया जाता है, फिर धुनियों के बीच योग मुद्रा में बैठा जाता है। गोबर के कंडों से लगातार धुनि प्रज्वलित होती रहती है। धीरे धीरे धुनियों में गोबर के कंडों की संख्या बढ़ाई जाती है और अंतिम दिन 108 गोबर के कंडों का इस्तेमाल होता है।
1: कभी भी कोई भी संत महात्मा तपस्या करता है तो नगरी के भला के लिए करता है, विश्व शांति कल्याण हेतु ही करता है, कोई कार्य करता है। तो जो भी जाता है दर्शन करता है उसके पुण्य के भागी बनता है। यह नौ धुनी तपस्या है, कोई महात्मा 21 धुनी करता है, कोई 108 धुनी करता है, कोई 1100 करता है। यह आदि अनादि काल से हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा चली आ रही है, जो कि इस कठोर साधना को हमारे संत महात्मा करते हैं, जिसको हम धुनी तपस्या के रूप में जानते हैं।
0: रूस की महिला की इस कठिन साधना की चर्चा अब चारों तरफ है। दूर दूर से लोग इस विदेशी महिला संत को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पुष्कर की पावन भूमि पर की जा रही ये तपस्या सनातन की अमर ज्योति को विश्व भर में फैला रही है। पुष्कर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इस हफ्ते भी कई धमाकेदार फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं। एक तरफ है आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो, और दूसरी तरफ है संजय दत्त की आखिरी सवाल। थिएटर्स ही नहीं, ओटीटी पर भी दर्शकों को कई ऐसी फिल्में और सीरीज देखने के लिए मिलेंगी जिनका काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था।
3: अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोच है विकी। डिबेट यानी विवाद, भारत विवाद नहीं, संवाद यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इसमें भरोसा लगता है।
4: धुरंधर में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद संजय दत्त एक बार फिर पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने को तैयार है।
3: वरना आजकल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट,
4: उनकी फिल्म आखिरी सवाल 15 मई को थिएटर में रिलीज होने वाली है।
3: तो हैशटैग बनाते विल शिवाजी बेंड द नी।
5: देखिए डिबेट नहीं है, ये दंगा है।
3: इतिहास कब आया, जब भी भगवे के और कोई कालिक बिकता है तो उसी स्याही से इतिहास लिखा जाता है।
6: लेफ्ट इज ऑलवेज राइट।
7: सारा मुझे अपने लक्ष्य तक।
4: पहले ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट में देरी की वजह से इसके रिलीज डेट को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया।
6: ये चोट निशान छोड़ेगी।
4: इस फिल्म की सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है।
8: बटोर सके और हमें इमोशन,
9: ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना सर, ताकि आप अपने आरएसएस को बचा सके।
4: रिलीज से पहले राजधानी में फिल्म का एक प्रीमियर रखा गया है। इस प्रीमियर में कई नामी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।
8: कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ टेरिबल।
4: फिल्म में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बड़े प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है।
8: और आरएसएस वायलेंट है,
3: वो तब गिरा जब इस देश के बहुसंख्यक समाज का विश्वास टूट गया।
4: संजय दत्त की इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।
10: आदमी शिष्टाचारी है, पति आज्ञाकारी है, और तो और वन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी है। समस्या, अबे हमारे जीवन में कहां से आएगी समस्या।
4: संजय दत्त की आखिरी सवाल को पर्दे पर टक्कर देने के लिए आयुष्मान खुराना हंसी ठहाकों का फुल डोज लेकर आ रहे हैं।
11: जानवर काजे भूल गए, घर को पिंजरा का चिप पकड़ लिया।
9: अरे चंचल को।
4: उनकी फिल्म पति पत्नी और वो दो भी 15 मई को रिलीज हो रही है।
12: खातून कौन थी, हु वाज द लेडीज। एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
13: तो पुलिस में जाती वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
4: इस फिल्म में आयुष्मान, रकुल प्रीत सिंह, वामिका गाबी और सारा अली खान के साथ कॉमेडी का तड़का लगाएंगे।
14: कैसे है आपका मानसी?
4: ये फिल्म 2019 में कार्तिक आर्यन और भूमि पडनेकर की फिल्म पति पत्नी और वो की सीक्वल है। टीजर रिलीज होने के बाद फिल्म में आयुष्मान खुराना का लुक भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।
15: कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुंचती।
16: 8 साल में तो आम का पेड़ भी फल देने लग गए, तेरे में तो कैरी भी ना फूट रही।
17: हमारी इन्वेस्टिगेशन के
4: रणदीप हुड्डा की मोस्ट पॉपुलर सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 भी 15 मई को ही OTT पर स्ट्रीम होने जा रहा है।
18: ये है अभय गुज्जर, भीड़ों का राजा।

0: बारिश के साथ गिरे ओले, धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहाना।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
2: आइए शुरू करते न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों की भी हो रही है।
3: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के भव्य रथों का निर्माण परंपरा अनुसार पूरे विधि विधान के साथ तेजी से हो रहा है। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट रथ निर्माण स्थल पर तीनों रथों के निर्माण का कार्य सेवायतों की देखरेख में जारी है। भौरी उत्सव के अवसर पर चाकाडेरा अनुष्ठान के तहत तीनों रथों के पहियों को धुरों यानी एक्सल से जोड़ने का काम पूरा किया जा चुका है। 16 जुलाई को आयोजित होने वाली इस रथ यात्रा में 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के रहने का अनुमान है, जिसको देखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात और स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस उत्सव को लेकर पहली समन्वय बैठक में सभी व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा हुई। बैठक में सुरक्षा और श्रद्धालुओं की आवाजाही की व्यवस्था को बिना किसी बाधा के बनाने पर विशेष जोर दिया गया। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की हैं। यहाँ श्रीरंगम के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में चिथिराई उत्सव की अद्भुत छटा बिखर रही है। 11 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव इस साल 6 मई से 16 मई तक मनाया जा रहा है। इस उत्सव में भगवान विष्णु के अलग अलग वाहनों पर दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिल रहा है। उत्सव के दौरान भगवान रंगनाथ को चांदी के हाथी पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विशाल लकड़ी के रथ को भक्त जय घोष करते हुए मंदिर की सड़कों पर खींचते नजर आए। ये उत्सव अपनी भव्यता और पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग से सराबोर नजर आते हैं। चारधाम की यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। यहां हर दिन 15,000 से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। भगवान विष्णु के इस धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने के बाद से अब तक लगभग 3 लाख यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है, उसे यात्रा मार्ग पर हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतारों को देखकर समझा जा सकता है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के बाद श्रद्धालु देश के प्रथम गांव माणा में भी पहुंच रहे हैं और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते वो ठंड और बारिश से बचने के लिए यहां खरीदारी करते भी नजर आ रहे हैं। राजस्थान के 43 डिग्री तापमान में एक विदेशी महिला की तपस्या की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। पुष्कर में रूस की रहने वाली ये महिला 9 धूनी अग्नि तप कर रही हैं, जो नाथ संप्रदाय की एक बहुत प्राचीन और कठोर हठ योग साधना है, जिसमें साधक चारों तरफ धधकती आग के बीच बैठकर तपस्या करते हैं। रूस की इस महिला ने 10 साल पहले नाथ संप्रदाय को अपनाया था। उसके बाद से राधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ नाम की महिला नाथ संप्रदाय के रीति रिवाज से अपना जीवन यापन कर रही है। यह अग्नि तपस्या भी उसी परंपरा की कड़ी है। अजमेर के पुष्कर में छोटी बस्ती स्थित शमशान भूमि पर अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में राधिका योगिनी 21 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रही हैं, जिसमें वो हर दिन लगभग 3.25 घंटे तक धधकती अग्नि के बीच बैठकर शिव साधना और गुरु बीज मंत्र का जाप करती हैं। साथ ही रोजाना हवन, पूजन और आरती का आयोजन भी होता है। 3 मई से शुरू हुई उनकी ये साधना पूर्ण आहुति और संत भंडारे के साथ 25 मई को सम्पन्न होगी। कहीं तेज गर्मी का आलम तो कहीं बारिश और तेज हवाओं का दौर। देश में इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में खासकर पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ देखा जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सुबह से मौसम में बदलाव देखा गया। यहां हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने को लेकर बारिश का ऑरेंज अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था। पश्चिमी विक्षोभ का असर देश की राजधानी दिल्ली पर भी पड़ने का मौसम विभाग का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते के आखिर तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के शुरू होने के लिए हालात अनुकूल होते जा रहे हैं। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में लू चलने का अनुमान भी है। साथ ही दक्षिण के कुछ राज्यों में भी बारिश की संभावना जताई गई है।
2: चलिए बात करते हैं तेलंगाना के नरसिंह मंदिर की। मल्लूर का ये मंदिर अपनी जीवित प्रतिमा के कारण दुनिया भर में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यानी कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा को जीवित मानकर उनकी पूजा की जा

जाती है। इस मंदिर को लेकर लोगों में ये आस्था है कि इसकी प्रतिमा में दिव्य ऊर्जा का वास है, लिहाजा अगर आप धर्म और आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आपको नरसिंह मंदिर जरूर जाना चाहिए। यहाँ भगवान नरसिंह की जीवित प्रतिमा के दर्शन कर पाएंगे और उनकी दिव्य ऊर्जा को अनुभव भी कर सकेंगे।

0: तेलंगाना के मल्लूर में विराजमान हैं नरसिंह भगवान, जिन्हें छूने पर महसूस होती है इंसानी त्वचा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा से सटे तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां अनोखी मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति इंसान की त्वचा जैसी मुलायम है और मान्यता है कि मूर्ति को दबाने से उसमें तरल पदार्थ निकलने लगता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बैसाख के महीने में विशाल मेला आयोजित किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले के दौरान पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान के भक्त बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं।
1: हम हैदराबाद से नरसिंह भगवान के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर नरसिंह चौदस के दिन जो मेला लगता है 8 दिन तक चलता है कंटिन्यू, बहुत पब्लिक है, जगह जगह से लोग आते हैं, बहुत अच्छे है दर्शन। यहाँ नाभि में से पस निकलता है नरसिंह भगवान के, बोली में जीवित रूप में है, बोली भी हर काम मनोकामना पूर्ण होती है। हम भी आए हैं, भगवान कुछ अच्छा करा तो अच्छा ही है। हम भी और आप सबको भी बोलते हैं कि दर्शन करने के लिए आओ सब जन।
0: नरसिम्हा स्वामी मंदिर, जिसे हिमाचल नरसिम्हा स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, ये मंदिर हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है और पहाड़ियों की शांति इसे आध्यात्मिक साधकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाती है। यहाँ लोग ध्यान लगाने और शांति से प्रार्थना करने आते हैं। भक्त इन सीढ़ियों को चढ़कर भगवान नरसिम्हा स्वामी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आते हैं। देश भर से श्रद्धालु नरसिंह भगवान की जीवित प्रतिमा के दर्शन के लिए लंबी यात्रा करते हैं। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन भक्तों को इसमें आनंद और शांति का अनुभव ही होता है। इस मंदिर की यात्रा और यहां के दर्शन से भक्तों को आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति को देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
2: छत्तीसगढ़ सीमा से लगा तेलंगाना का मुलुगु जिले में ये गांव है जहां पर नरसिंह भगवान की जीवित मूर्ति यहां पर बताई जाती है। जीवित मूर्ति यहां पर है, जिसमें शरीर जो है जिस तरह से इंसान का शरीर होता है उस तरह से कोमल है। यह 4000 वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें अलग अलग जगह से लोग यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ दर्शन के लिए। यहाँ मान्यता है कि लोगों की मन्नत जो मांगते हैं वो पूर्ण होती है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ लोग हर वर्ष मेला लगता है और काफी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और काफी मान्यता है कि ये मंदिर जो जीवित आप नरसिंह भगवान यहाँ जीवित रूप में विराजमान है।
0: मंदिर के गर्भगृह में लगभग 10 फीट ऊंची भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर मान्यता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि साक्षात जीवित स्वरूप है और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। मूर्ति का पेट और दूसरे हिस्से इंसानी त्वचा की तरह कोमल माने जाते हैं। मंदिर के पुजारियों और भक्तों का मानना है कि मूर्ति की नाभि पर एक चोट का निशान है, जिसे नाभि प्रसादम कहा जाता है, जहां से तरल पदार्थ निकलता है। मान्यता है कि ये मंदिर 6वीं शताब्दी से पहले का है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऋषि अगस्त्य ने इस पहाड़ी का नाम हेमचला रखा।
3: ये इसका गांव का नाम है मल्लूर है। इसका जो देव है श्री हेमचल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देव है इसमें, और आदि लक्ष्मी और चंचल लक्ष्मी माता भी है इसके साथ। अभी इधर का बहुत पुराना साल का जो ये टेम्पल है, वो इधर का जो मूर्ति है ना लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति का मानव स्वरूप है। मानव स्वरूप हमारा जो चमड़ा कैसे जैसे रहते हैं ऐसे जो हम लोग अंदर घुसेगा तो घुस जाता है, मतलब उतना स्वच्छ और पावरफुल गॉड है। अभी इधर का जो दिख रहा है इसमें ये चिंतामणि बोलता है इसका, ये जो जल प्रवाह है ये चिंतामणि, ये पानी अब 200 मीटर से आपको दिखता है और बाकी जो किधर से आते है पता नहीं चलता है। अभी इधर का जो पानी पिएगा तो जो बीमार है बीमारी निकल जाता है।
0: इस क्षेत्र में बसे लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की प्रतिमा में दिव्य ऊर्जा का वास है। इस प्रतिमा की आंखें, मुखमंडल और त्वचा एक जीवित व्यक्ति की तरह प्रतीत होती है। प्रतिमा की त्वचा इंसानी त्वचा जैसी मुलायम है और अगर इसे दबाया जाए तो त्वचा पर गड्ढा बन जाता है। यही कारण है कि इस मंदिर को दुनिया का अनोखा मंदिर माना गया है।
4: 1200 किलोमीटर दूर से मुझे पता चला कि यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर है और रियल प्रतिमा है, तो यहाँ हर जगह से लोग आते हैं, जैसे तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो हमें भी ये पता चला, तो हम भी यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं दर्शन करने हमारी मन्नत लेके। काफी अच्छा है मंदिर, काफी शांत है, यहाँ पे देख के काफी अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 घंटे से बैठे हुए हैं, फिर भी मन नहीं कर रहा घर जाने का। बहुत अच्छा है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज क्या है कि जनरली मूर्ति रहती है तो मूर्ति नॉर्मल दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मूर्ति के अंदर से पस भी निकल रहा है जो आपको रियल टाइम में ऐसा बताता है कि अंदर प्रतिमा के अंदर जान है। तो ये सब देखते हुए, इसका मान्यता को देखते हुए, हम खुद 1200 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हैं दर्शन करने पूरे परिवार के साथ।
0: नरसिंह की जीवंत प्रतिमा वाले इस मंदिर में आने वाले भक्तों की मान्यता है कि भगवान नरसिंह उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। भक्तों के अनुभव और चमत्कारों की कहानियाँ इस मंदिर की महत्ता को और बढ़ा देती है। भक्तों का मानना है कि प्रतिमा में भगवान नरसिंह की जीवित उपस्थिति है। कई भक्तों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने प्रतिमा में कई दिव्य चीजें होते देखी हैं और यहाँ उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिला है।
5: हम यहाँ अभी छत्तीसगढ़ से आए हैं, यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है और परंपरा के अनुसार यहाँ पे हर साल मेला लगता है। नरसिंह चौदस को मेला लगता है, जो यहाँ पे भगवान की शादी होती है, मेहंदी हल्दी सब प्रोग्राम बनाया जाता है, जैसे शादी में मनाते हैं वैसा। और भगवान की प्रतिमा है जो यहाँ से खुद प्रकट हुई हुई है, उनके नाभि में से पस निकलता है, वो भी क्या जीवित अवस्था में है, वैसे मान्यता है इनकी। और पहाड़ के ऊपर अपने आप प्रतिमा प्रकट हुई है, यहाँ पे कोई मूर्ति बैठाई हुई नहीं है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं।
0: मल्लूर नरसिंह स्वामी मंदिर में ब्रह्मोत्सवम उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर साल आयोजित होने वाले इस उत्सव में भगवान नरसिंह की मूर्ति को एक भव्य शोभा यात्रा में ले जाया जाता रहा है। इस दौरान देश भर से आए श्रद्धालु मंदिर में उमड़ पड़ते हैं और इस दिव्य उत्सव का हिस्सा बनते हैं। नरसिंह स्वामी का ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहां भक्त भगवान नरसिंह की उपस्थिति का साक्षात अनुभव करते हैं। नरसिंह स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। इसका मुख्य द्वार गोपुरम नामक एक भव्य संरचना है जो देखते ही बनती है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां और पौराणिक कथाओं की नक्काशी है, जो इस मंदिर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: चारधाम यात्रा में अब आईटीबीपी के जवान संभालेंगे ट्रैफिक की व्यवस्था। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
7: महाराष्ट्र के पुणे में गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। आरपीएफ के ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत पुणे सुपौल एक्सप्रेस में सफर कर रही गर्भवती महिला को ट्रेन में डिलीवरी के दौरान पूरी मदद की गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि महिला को ट्रेन में सफर के दौरान अचानक लेबर पेन हुआ। इस बात का अलर्ट मिलते ही आरपीएफ के जवान उसकी मदद में जुट गए। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। जोशीमठ सहित यात्रा मार्ग पर आईटीबीपी के जवान ट्रैफिक के साथ यात्रा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी जगह जगह आईटीबीपी की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। दरअसल शाम के समय जब भारी ट्रैफिक हो रहा है, ऐसे में ट्रैफिक संभालने के लिए आईटीबीपी के जवान बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आईटी सेक्टर में एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम को लेकर बहस तेज हो गई है। आईटी उद्योग से जुड़े संगठन एनआईटीईएस ने श्रम मंत्रालय को पत्र भेजा है। इसमें मांग की गई है कि आईटी और आईटीईएस सेक्टर में काम करने वाले लगभग 58 लाख कर्मचारियों के लिए अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी की जाए। संस्था का कहना है कि भारतीय आईटी उद्योग के पास रिमोट वर्क को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जरूरी तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। एनआईटीईएस के मुताबिक अगर कर्मचारी घर से काम करेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी, ट्रैफिक दबाव घटेगा और विदेशी मुद्रा की बचत में मदद मिलेगी।
6: और न्यूज पद पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद है। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर लें।
8: कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को भारी बिकवाली के कारण 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 1456 अंक लुढ़क कर 74,559 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 436 अंकों की गिरावट के बाद 23,379 पर बंद हुआ।
9: मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में लगभग 1% का उछाल देखा गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,500 रुपए बढ़कर 1,56,800 रुपए पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में 4% से ज्यादा का उछाल देखा गया और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 12,000 रुपए की बढ़त के साथ 2,77,000 रुपए पहुँच गयी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर रुपए की कीमत पर भी पड़ रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज फिर कमजोर हुआ। 35 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर की कीमत 95.63 रुपए के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गई।
6: और न्यूज पद पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और ये वायरल भी है।
10: एक पिता और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब तेजी के साथ देखा जा रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। मिठाई के जरिए ये मासूम बच्ची जिस अंदाज में पिता से अपने माँ के बारे में शिकायत करती है, उसने यूजर्स का दिल जीत लिया है।
11: पापा सुनो, एक बात पूछूं?
12: हाँ, को पूछो।
11: आपकी शादी में मिठाई आई थी?
12: हाँ, मिठाई आई थी।
11: आपने खाई थी?
12: हाँ, को खाई थी।
11: देते
12: क्यों?
11: मम्मा थोड़ा भी बोल लेती।
12: क्या?
11: अरे मीठा बोल लेती थोड़ा।
10: ये तो हम सब जानते हैं, इस धरती पर एक से एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ ज्यादातर लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से एक अजीबोगरीब हरकत करके सबको चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है। इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द नहीं महसूस हो रहा। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत में ही कोई मशीन हो। सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों को डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं, ताकि दुकान के सामने से गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिक्विन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिक्विन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के दानापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल किसी बैंक ATM की तरह से दिखाई देता है, लेकिन अंदर कैश नहीं बल्कि हेयर कटिंग सैलून दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करती थी। बाद में बैंक ने इसे तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहां से ATM हटा लिया। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिए गए थे। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहां पर एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने पर बैंक की ब्रांडिंग को छिपा दिया गया। ऑटो रिक्शा में सनरूफ। जहां लोग कार में सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है, लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखा। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे रैगजीन को काट कर एक खिड़की बना दी, जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कुछ ज्यादा कीमती लग रही है।
6: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्रों की, जिन्हें आज बड़ा झटका लगा है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को देश भर में नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी। ये फैसला पेपर लीक होने के आरोप के बाद लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख जल्दी ही जारी की जाएगी। NTA ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और मामले की CBI जांच होगी। NTA ने जानकारी दी है कि नीट में बैठने वाले लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। पिछले परीक्षा केंद्रों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा देने वाले छात्रों से दोबारा एग्जाम में बैठने के लिए कोई अतिरिक्त फीस भी चार्ज नहीं की जाएगी। मामले की पड़ताल में सामने आया है कि पेपर छपने से पहले ही सवाल नकल गैंग के पास पहुंच गए थे। इनमें बायोलॉजी के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 35 सवाल थे जो हूबहू परीक्षा में आए थे। एनटीए ने बताया है कि 8 मई को ही इस मामले से जुड़ी कुछ जांचों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जांच एजेंसियों से मिले निष्कर्षों के आधार पर ही यह तय किया गया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। जाहिर है कि लाखों छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता और नाराजगी दोनों देखने को मिल रहे हैं। इस मामले को लेकर हमने चंडीगढ़ में कुछ लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का ट्रेलर रिलीज। इसके साथ ही ऐसी कई और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर।
13: पत्रलेखा और मानवी गगरू स्टारर हीरा सारा और पांडिचेरी का ट्रेलर हुआ रिलीज, जिसमें दिखाया गया है कि अलग अलग बैकग्राउंड वाली दो लड़कियां अचानक सोलो बाइक ट्रिप पर पुदुचेरी के लिए निकल पड़ती हैं। दोनों में पहले से जान पहचान नहीं रहती है, लेकिन साथ में एक ही बाइक से ट्रिप पर निकलने से दोनों दोस्त बन जाती हैं। दोनों ट्रिप पर एंजॉय करती हैं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर भी करती हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरह की परेशानियां भी हैं, उसकी झलक भी ट्रेलर में देखने को मिली है। कार्तिक चौधरी निर्देशित इस फिल्म में श्वेता साल्वे, आरिफ जकारिया, निशंक वर्मा भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। ये फिल्म 29 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
14: अंकल इसको मालूम है इसकी लड़की का है।
15: तू शादी तोड़ने जाए।
16: टीचो तू नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आई है, इसको भी तो पता चले। चल अभी चल।
13: जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें दिखता है कि एक बच्चा अपने दादाजी को सुपर हीरो बताता है। वो अपने दोस्तों में अपने दादाजी की झूठी सुपर हीरो वाली कहानियां सुनाता रहता है, जबकि उसके दादाजी असल में बुजुर्ग और कमजोर हैं। इसलिए उसकी बातों पर उसके दोस्तों को शक होने लगता है। ये फिल्म बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। मनीष सैनी निर्देशित इस फिल्म में प्रतीक, स्मिता पाटिल, भाग्यश्री दसानी, शरद सक्सेना जैसे कलाकार भी हैं। ये फिल्म 29 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
17: और राजू बोल रहा था तूने सामान फ्री में दे दिया था।
18: अब फ्री में हमारे लिए इतना कर रहे और मैं पैसे ले लूं।
19: एक एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तुम्हारी वो ट्रेन वाली खबर तो कहीं नहीं आई।
20: दोनों पागल बना रहे हैं।
21: अरे भाई सुनो, ये गंगाधरी शक्तिमान वाला सीन है।
13: सोनाक्षी सिन्हा ज्योतिका स्टारर फिल्म सिस्टम का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसकी शुरुआत सोनाक्षी सिन्हा के किरदार नेहा से होती है, जो युवा वकील है और अपने पिता की लॉ फर्म में पार्टनर बनने के लिए खुद को योग्य साबित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पिता की भूमिका निभा रहे आशुतोष गोविरकर उसे कठिन केस लेने की चुनौती देते हैं। अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए नेहा सारिका का किरदार निभा रही ज्योतिका को अपने साथ लाती है, लेकिन उसके अपने कुछ छिपे इरादे दिखते हैं, फिर कुछ नए राज खुलते जाते हैं। ट्रेलर में सोनाक्षी का सिस्टम से संघर्ष दिखाया गया है।
22: इंसाफ पे सबका हक होता है।
23: सीनियर लॉयर होने के नाते तुम्हें वकालत सिखानी जरूरी है, और एक बाप होने के नाते तमीज।
24: प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस।
25: मुझसे इन्फॉर्मेशन चुरा के डैड को दोगे?
26: एक बात बोलूं मैडम, दुनिया में हम सब अपना असली चेहरा छुपाते हैं।
13: इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस का दूसरा टीजर भी आया सामने। जोराजन निर्देशित इस फिल्म में दीपक तिजोरी, यूलिया वंतूर और स्पेनिश अभिनेत्री एलेसांड्रा वेल मेरेडीज अहम भूमिका में हैं। अपनी गहरी भावनात्मक कहानी और मजबूत अभिनय की वजह से ये इस वर्ष की चर्चित शॉर्ट फिल्मों में से एक है, जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी आयोजनों में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल के 79वें संस्करण में इसी हफ्ते दिखाया जाएगा। अभिनेत्री पूजा बत्रा के अलायंस मीडिया पीटीवाई लिमिटेड के सहयोग से निर्मित इस फिल्म को कांस में दो प्रमुख स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। इस फिल्म का प्रदर्शन मार्चे डू फिल्म कांस में 14 मई और फ्रेंच रिवेरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 16 मई को होगा।
9: 12 से 23 मई तक आयोजित होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा भारत के कई स्टार्स भी बन रहे हैं।
1: You have a new message.
9: महाकाल के दरबार में भक्ति में लीन नजर आई अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। उज्जैन की श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर वो वहां भस्म आरती में शामिल हुई। श्रद्धालुओं के बीच बैठकर तमन्ना महाकाल की आरती गाती और तालियां बजाती भी दिखी। उन्होंने चांदी द्वार से महाकाल को जल भी अर्पित किया। यहां दर्शन पूजन करके तमन्ना बहुत ही खुश नजर आई। यहां आने को उन्होंने अपना सौभाग्य बताया।
6: राहुल द्रविड़ बने T20 टीम के मालिक, आर अश्विन कप्तान। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
9: T20 टीम के मालिक बने राहुल द्रविड़। उन्होंने यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्डियंस टीम खरीदी है। राहुल द्रविड़ की टीम डबलिन गार्डियंस की कप्तानी आर अश्विन करेंगे। इस लीग की वजह से यूरोप में T20 क्रिकेट के साथ साथ इस खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। ये लीग क्रिकेट आयरलैंड, क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन की साझेदारी में शुरू की जा रही है। EPTL का पहला सीजन 26 अगस्त से 20 सितंबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े नाम नजर आएंगे। IPL 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। IPL के सीजन में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन शानदार रहा है। गुजरात टाइटंस ने 11 मैच से 7 मुकाबले जीते हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 11 में से 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। दोनों ही टीमों के 14-14 पॉइंट्स हैं। जिम्बाब्वे के घरेलू क्रिकेट में खेले गए एक मुकाबले के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। 2025-26 मस्विंगो 50 ओवर फर्स्ट लीग के इस मुकाबले में स्कॉर्पियन क्रिकेट क्लब ने 50 ओवरों में 822 रन बना डाले, जबकि मेथल लॉयंस की टीम महज 28 रन पर ही सिमट गई।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
4: Thank God I get to wake up.
3: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: ईंधन की खपत कम करने के लिए पीएम की अपील के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला। मंत्रियों के काफिले में 50% की होगी कटौती। बड़े संस्थानों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा। सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। रुद्रप्रयाग का संगम व्यू पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र। यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़। बागेश्वर के कौसानी और वैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी। झील में नौकायन कर रहे रोमांच। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज। नूह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहाना।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
7: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें और अखबार के पन्ने या अब टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गई। यहां हर किसी के हाथ में एक अलग कैमरा है, एक हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ बरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज हम फैक्ट चेक में बात करेंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि टीएमसी को मिली बड़ी हार के तुरंत बाद का ये वीडियो है। हार के बाद ममता बनर्जी कार में बेसुध हो गई। क्या है इस वायरल दावे की वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर में बात होगी उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि जिस लड़के ने ममता बनर्जी के चुनाव हारने पर कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमने की बात कही, परिणामों के बाद जनता ने सरेआम उसके कपड़े फाड़ दिए। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
7: बंगाल में चुनाव खत्म हो गए हैं। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट और वीडियो की बाढ़ आ गई है। इसी कड़ी में एक और वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को गाड़ी में बेसुध बैठे देखा जा रहा है। इस वीडियो को कुछ लोग शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बंगाल में ये हार का साइड इफेक्ट है। बंगाल में टीएमसी को मिली बड़ी हार के तुरंत बाद का ये वीडियो है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में।

0: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल करके बीजेपी ने टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये बंगाल में टीएमसी को मिली हार के बाद का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ममता बानो की हालत खराब, बेहतर इलाज के लिए बांग्लादेश रेफर किया जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ममता बनर्जी को बेसुध होकर कार में बैठे हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि बंगाल में टीएमसी को मिली हार की तुरंत बाद का ये वीडियो है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के हाथों मिली बड़ी हार के बाद ममता बनर्जी सदमे में चली गई, ये तस्वीर उसी की है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल के लिए वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें यह नजर आया कि वीडियो में ममता की आवाज को डाउन करके उसके ऊपर अलग से आवाज को जोड़ा गया है, मतलब ममता जो कुछ भी कह रही हैं उसे इसके जरिए छुपा दिया गया है। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के दावे पर शक हुआ। इसके बाद हमने ममता बनर्जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में हमें ऐसी कोई भी पोस्ट या फिर प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, तो कुछ अहम सवाल निकल कर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर दावा सच है तो वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है जिसको ये शेयर किया जा रहा है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वीडियो का लंबा वर्जन एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 10 मार्च 2021 को शेयर किया गया था। यहाँ मौजूद जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी कार के पास थीं, तब कुछ हमलावरों ने उन पर हमला किया। ये हादसा तब हुआ जब वह नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी। फिर ममता बनर्जी को इलाज के लिए नंदीग्राम से कोलकाता ले जाया गया था। हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक और विश्वसनीय वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 11 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार पार्टी के शीर्ष नेता सुखेंदु शेखर राय ने इसे लेकर कहा था कि ममता एक मंदिर में पूजा करने के बाद बिरुलिया अंचल से निकलने ही वाली थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें कार में धकेल दिया और जबरन दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके बाएं पैर में चोट आई थी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने इसे नाटक बताया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि ममता बनर्जी के बेसुध होने का वायरल वीडियो हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद का नहीं है। इस वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। असल में वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि करीब 5 साल पुराना है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर दो वीडियो का एक कोलाज शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के जीतने पर कोलकाता की सड़कों पर बिना कपड़ों के घूमने की बात कहने वाले सुफियान को लोगों ने सड़क पर निकालकर पीटा। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी यह रिपोर्ट देखिए।
2: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दिया, रिकॉर्डिंग कर ले, बीजेपी टीएमसी को हरा दिया।
3: सोशल मीडिया पर दो वीडियो का ये कोलाज तेजी से वायरल हो रहा है।
2: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा।
3: इसके पहले वीडियो में एक युवक मीडिया से बात कर रहा है।
2: को हरा दिया। कलकत्ता गुरे। ओके गुरे। यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा।
3: वही दूसरे वीडियो में एक युवक की इस कदर पिटाई हो रही है कि उसके कपड़े तक फट गए हैं।
2: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दिया।
3: ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों लड़के एक ही हैं और इस लड़के ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो वो कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमेगा।
2: मेरा नाम सुफियान, यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दी।
3: अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि नतीजों में वाकई टीएमसी के हारने पर जनता ने उसे सरेआम पीट पीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। यूजर्स वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से वायरल कर रहे हैं।
1: सोशल मीडिया पर ये दो वीडियो का एक कोलाज खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। पहले वीडियो में एक युवक मीडिया से बात कर रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में एक युवक की इस कदर पिटाई हो रही है कि उसके कपड़े तक फट गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों लड़के एक ही हैं और इस लड़के ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो वो कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमेगा। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि नतीजों में वाकई टीएमसी के हारने पर जनता ने सुफियान के सरेआम पीट पीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो को गौर से देखा। पहले वीडियो में चेहरा साफ साफ दिख रहा है, लेकिन दूसरे वीडियो में मार खा रहे शख्स का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा। इससे साफ लग ही नहीं रहा कि ये दोनों वीडियो एक ही शख्स से जुड़े हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कई पुख्ता जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने इस वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर ये वीडियो बंगाल का है तो आखिर कब का है और कहां का है, किस जगह का है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, यह भी अहम सवाल है। अब देखिए इस वीडियो के पीछे की सच्चाई।
2: दीदी को
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी।
2: बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
3: वायरल कोलाज के जिस वीडियो में लड़का इंटरव्यू दे रहा है उसमें एक न्यूज आउटलेट का लोगो है,
2: मेरा नाम सुफियान है।
3: इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। यहाँ इसे 24 अप्रैल 2026 को पोस्ट किया गया था।
2: बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
3: वीडियो में दिख रहा लड़का वाकई चुनौती देते हुए ऐसा कहता है कि उसका नाम सुफियान है और अगर बीजेपी ने टीएमसी को हरा दिया तो वो बिना कपड़ों के कोलकाता में घूमेगा।
2: मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
3: इसके बाद हमने दूसरे वीडियो के बारे में खोजना शुरू किया। हमने देखा कि वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है कि ये ढाका का वीडियो है। साथ ही इस यूजर ने एक बांग्लादेशी पत्रकार की इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर की है जिसमें वायरल वीडियो का लंबा वर्जन है। तेईस अप्रैल 2026 को ये वीडियो शेयर करते हुए इसे ढाका के शाहबाग इलाके का बताया था, जहां वायरल वीडियो में रक्तचरित गाना बज रहा है। वहीं इस वीडियो में बंगाली भाषा में कमेंट्री है। हमें गूगल मैप्स पर शाहबाग की वो जगह भी मिल गई जहां वायरल वीडियो शूट किया गया था। एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट ने भी 23 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो छात्र दल और छात्र शिविर नाम के दो ग्रुप्स के बीच शाहबाग में हुए टकराव का है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब छात्र दल के कुछ कार्यकर्ता बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बेटी जाइमा रहमान के बारे में किए गए कुछ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंच गए। छात्र दल का आरोप था कि छात्र शिविर ने नेता अब्दुल्ला अल महमूद ने एआई से बनी विवादित तस्वीरें शेयर की। वहीं छात्र शिविर का कहना था कि उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं। छात्र दल के पुलिस के पास पहुंचने की जानकारी मिलने पर छात्र शिविर के कार्यकर्ता, कुछ पत्रकार और ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन के प्रतिनिधि भी शाहबाग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान डीयू सीएसयू के लिटरेरी एंड कल्चरल अफेयर्स सेक्रेटरी मुसद्दिक पर हमला हो गया। डीयू सीएसयू के एक दूसरे नेता एबी जुबैर पर भी हमला हुआ और दोनों ने पुलिस स्टेशन में छुपकर जान बचाई।
2: माँ को दीदी को टीएमसी हरा।
3: साफ है पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के हार के बाद बिना कपड़ों की बात कहने वाले सूफियान को पीटे जाने का वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है।
2: मेरा नाम सूफियान है।
3: सूफियान के नाम पर सोशल मीडिया पर जो पिटाई का वीडियो शेयर किया जा रहा है वो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश के ढाका का है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक के वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
3: कई सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों के डिस्प्ले के लिए होते हैं ताकि दुकान के सामने गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिकीन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है कि एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिकीन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कॉम्पिटिशन का थीम शायद खाने पर रहा होगा क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप को इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं। भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं थी और न ही किसी कंपनी के शोरूम से निकली थी। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन खुद रुक गए और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगाई गई थी और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ रहा था। देखने में यह किसी छोटी कार जैसी लग रही थी और बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जहां लोग सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखता है। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे रैगजीन को काटकर एक खिड़की बना दी है जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे की मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कहीं ज्यादा कीमती लग रही है। दुनिया के लिए यह सिर्फ एक कटा हुआ रैगजीन हो सकता है लेकिन उन बच्चों के लिए यह उनके सुपर हीरो पिता का प्यार है। इस वीडियो के वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। नेटिजंस ऑटो ड्राइवर पिता की क्रिएटिविटी और उसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। दानापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल किसी बैंक ATM जैसा दिखाई देता है। बड़ा SBI बोर्ड, नीली लाइट, ग्लास डोर और 24 घंटे सेवा का साइन। लेकिन जैसे ही लोग अंदर जाते हैं वहाँ कैश मशीन नहीं बल्कि हेयर कटिंग सलून देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल यह जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम सेंटर हुआ करता था। बाद में बैंक ने किसी तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहां से एटीएम मशीन हटा ली। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहां अब एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। नाई ने एटीएम का बोर्ड हटाने के बजाय उसी के नीचे अपनी दुकान चलानी शुरू कर दी। अब लोग मजाक में इसे हेयर कटिंग एटीएम और बाल निकासी मशीन कहने लगे हैं। सोशल मीडिया पर दुल्हा दुल्हन की यह एंट्री आकर्षण का केंद्र बन गई है। वायरल हो रहे वीडियो में बाइक की कतार दिखाई दी, जिस पर दुल्हा दुल्हन और फिर उनके दोस्त या रिश्तेदार वेडिंग वेन्यू पर एंट्री लेते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले दूल्हा बाइक पर आता है, उसने सूट पहना है, उसकी बाइक पर ग्रूम भी लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरी बाइक पर दुल्हन एंट्री मारती है, वो भी व्हाइट सूट में नजर आती है। उसके सिर पर क्राउन और ब्राइडल वेल होती है। ये वीडियो मेघालय की एक शादी का बताया जा रहा है। कभी कभी कैमरे में ऐसे दृश्य कैद हो जाते हैं जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का सिर चकरा गया है। दरअसल जिस यामाहा R15 को खरीदने का सपना आज की युवा पीढ़ी देखती है, उसे एक महिला ने कबाड़ ढोने वाली गाड़ी बना डाला। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दंग रह गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब दो युवक अपनी स्कूटी से जा रहे थे तो उनकी नजर इस अनोखी गाड़ी पर पड़ी। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला लाल साड़ी बांधे एकदम देसी और रत्नागिरी अंदाज में यूके की सड़कों पर आम बेचती दिखाई दे रही है। इस दौरान उसके साथ एक ठेला है जो आम से खचाखच भरा हुआ है, और वो यूके की सड़कों पर ऐसे आम बेच रही है मानो यूके नहीं बल्कि मुंबई या दिल्ली की गलियां हों।
6: लंदन वालों ऑफर लाई रे ऑफर, अखा यूके में तुमको इससे सस्ता आम मिल जाएगा ना, तो शांता तो यही ठेला उठा के वापस चली जाएगी रत्नागिरी को।
3: इतना ही नहीं, आम बेचते हुए महिला आम ले लो आम की आवाजें भी जोर जोर से लगाती दिखाई दे रही है, जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है। लोग उसके ठेले पर आते हैं और भाव पूछते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के शहरों में मोहल्ले वाले पूछा करते हैं।
7: अरे संता भाई ऑफर कितने का लगाया वो तो बताओ।
6: अल्फांजो 18 का दर्जन और केसर 16 का दर्जन, अब यूके में तुमको किधर भी नहीं मिलेगा इससे सस्ता।
3: कुल मिलाकर गर्मी के मौसम में आम की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है, और इससे वेस्टर्न छोर भी अछूता नहीं है। भूरे रंग के हिमालयी भालू भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। हमारे देश में यह रेयर प्रजाति लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखी जाती है। ये हिमालयी भालू ठंडे इलाकों में रहते हैं, जिनका रंग सामान्य भालुओं से सुनहरा या हल्का भूरा होता है, जिसकी वजह इनका ठंडे माहौल में रहना होता है। इंसानों से दूर रहना पसंद करने वाले इन दुर्लभ भालुओं के सड़क पर घूमने की एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह सड़क पर उछलते कूदते हुए अपने अंदाज में ही चलते नजर आ रहे हैं। उन्हें दौड़ते हुए देख जहां एक और लोगों को मजा आ रही है, वहीं दूसरी ओर लोग लुप्त प्रजातियों को इस तरह सड़क पर देखकर सवाल भी कर रहे हैं। स्वभाव से शर्मीले माने जाने वाले हिमालयी भालू को वायरल वीडियो में सड़क पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। गाड़ी से जा रहा शख्स इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करता हुआ आगे निकल जाता है। इस बीच दोनों ही भालू अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए नजर आते हैं। सुंदर नजारा, बर्फ से आधे ढके पहाड़ों के बीच हिमालयी भालुओं का दौड़ना इस नजारे को एक रेयर मोमेंट बना देता है। क्या आपने कभी किसी बंदर को इंसानों की तरह बकायदा सैलून में जाकर बाल कटवाते देखा है? कर्नाटक के चामराजनगर से एक ऐसा ही बेहद क्यूट और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बंदर मजे से सैलून की कुर्सी पर बैठा और नाई से अपने बालों की सेटिंग करवाई। इस अनोखे पल को देखकर न सिर्फ वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए, बल्कि अब यह वीडियो इंटरनेट पर भी धूम मचा रहा है।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
9: What about me, Jack? What about me?
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
10: Gracious, great balls of fire.
11: Well played, Jack. Well played.
8: Jack FM, playing what we want.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
12: सनातन संस्कृति का प्रकाश दुनिया भर में फैल रहा है। इसका जीवंत प्रमाण इस समय राजस्थान के पुष्कर में देखने के लिए मिल रहा है। पुष्कर में भीषण गर्मी में विदेशी साध्वी कठिन नौ धुनी तपस्या में लीन है। रूस में जन्मी ये साध्वी 21 दिनों की कठिन साधना के दौरान रोजाना 3 घंटे से ज्यादा धुनी रमाकर बैठती हैं।

0: ये तप शिव का प्रत्यक्ष आह्वान है। ये साधना सनातन की शाश्वत शक्ति का प्रमाण है। इसी सनातन में आस्था रखने वाली रूस में जन्मी एक योगिनी इन दिनों नौ धुनी अग्नि तपस्या में लीन है। ध्यान में लीन ये राधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ हैं, जिन्होंने 10 साल पहले नाथ संप्रदाय अपनाया था। इन दिनों वो पुष्कर में छोटी बस्ती स्थित शमशान भूमि पर अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में नौ धुनियों के बीच बैठकर 21 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रही हैं।
1: नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो नाथ जी बनने का महत्व तो यही होता है कि जो हमारी धरोहर है उसको संभालना, तो यही हमारी धरोहर है। वह नाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो वह इस तपस्या को कर रही हैं। इनकी वह पहली तपस्या है।
0: ये कोई साधारण तप नहीं, नाथ संप्रदाय की प्राचीन अग्नि साधना है जो कर्मों को भस्म कर आत्मा को शुद्ध कर देती है। और इस साधना में उतरने से पहले शरीर पर भस्म का लेप लगाया जाता है, फिर धुनियों के बीच योग मुद्रा में बैठा जाता है। गोबर के कंडों से लगातार धुनि प्रज्वलित होती रहती है। धीरे धीरे धुनियों में गोबर के कंडों की संख्या बढ़ाई जाती है और अंतिम दिन 108 गोबर के कंडों का इस्तेमाल होता है।
1: कभी भी कोई भी संत महात्मा तपस्या करता है तो नगरी के भला के लिए करता है, विश्व शांति कल्याण हेतु ही करता है। कोई कार्य करता है तो जो भी जाता है दर्शन करता है उसके पुण्य के भागी बनता है। यह नौ धुनी तपस्या है। कोई महात्मा 21 धुनी करता है, कोई 108 धुनी करता है, कोई 1100 करता है। यह आदि अनादि काल से हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा चली आ रही है, जो कि इस कठोर साधना को हमारे संत महात्मा करते हैं, जिसको हम धुनी तपस्या के रूप में जानते हैं।
0: रूस की महिला की इस कठिन साधना की चर्चा अब चारों तरफ है। दूर दूर से लोग इस विदेशी महिला संत को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पुष्कर की पावन भूमि पर की जा रही ये तपस्या सनातन की अमर ज्योति को विश्व भर में फैला रही है। पुष्कर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इस हफ्ते भी कई धमाकेदार फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं। एक तरफ है आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो, और दूसरी तरफ है संजय दत्त की आखिरी सवाल। थिएटर्स ही नहीं, ओटीटी पर भी दर्शकों को कई ऐसी फिल्में और सीरीज देखने के लिए मिलेंगी जिनका काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था।
3: अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोच है विकी। डिबेट यानी विवाद, भारत विवाद नहीं, संवाद यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इसमें भरोसा लगता है।
4: सच। धुरंधर में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद संजय दत्त एक बार फिर पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने को तैयार है।
3: वरना आजकल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट।
4: उनकी फिल्म आखिरी सवाल 15 मई को थिएटर में रिलीज होने वाली है।
3: तो हैशटैग बनाते विल शिवाजी बेंड द नी।
5: देखिए डिबेट नहीं है, ये दंगा है।
3: इतिहास का वायदा, जब भी भगवे के और कोई कालिक देखता है तो उसी स्याही से इतिहास लिखा जाता है।
6: लेफ्ट इज ऑलवेज राइट।
7: सारा मुझे अपने लक्ष्य तक।
4: पहले ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट में देरी की वजह से इसके रिलीज डेट को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया।
6: ये चोट निशान छोड़ेगी।
4: इस फिल्म की सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है।
8: बटोर सके और हमें इमोशनल।
9: ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना सर, ताकि आप अपने आरएसएस को बचा सके।
4: रिलीज से पहले राजधानी में फिल्म का एक प्रीमियर रखा गया है। इस प्रीमियर में कई नामी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।
8: कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
4: फिल्म में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बड़े प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है।
8: और आरएसएस वायलेंट है,
3: वो तब गिरा जब इस देश के बहुसंख्यक समाज का विश्वास टूट गया।
4: संजय दत्त की इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।
10: आदमी शिष्टाचारी है, पति आज्ञाकारी है, और तो और वन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी है। समस्या अबे हमारे जीवन में कहां से आएगी समस्या।
11: Keep calm, babe.
4: संजय दत्त की आखिरी सवाल को पर्दे पर टक्कर देने के लिए आयुष्मान खुराना हंसी ठहाकों का फुल डोज लेकर आ रहे हैं।
12: जानवर काजे भूल गए, घर को पिंजरा का चिप पकड़ लिया।
11: अरे चंचल को।
4: उनकी फिल्म पति पत्नी और वो दो भी 15 मई को रिलीज हो रही है।
13: खातून कौन थी? Who was the ladies? एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
14: तो पुलिस में जाती वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
4: इस फिल्म में आयुष्मान, रकुल प्रीत सिंह, वामिका गाबी और सारा अली खान के साथ कॉमेडी का तड़का लगाएंगे।
15: कैसे है आपका मानसी?
4: ये फिल्म 2019 में कार्तिक आर्यन और भूमि पडनेकर की फिल्म पति पत्नी और वो की सीक्वल है। टीजर रिलीज होने के बाद से इस फिल्म को लेकर दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई है। फिल्म में आयुष्मान खुराना का लुक भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।
16: धर्म करते हैं कर्म छूटता है, कर्म करते हैं धर्म छूटता है, कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुँचती।
17: 8 साल में तो आम का पेड़ भी फल देने लग गए, तेरे में तो कैरी भी ना फूट रही।
18: हमारी इन्वेस्टिगेशन के
4: रणदीप हुड्डा की मोस्ट पॉपुलर सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 भी 15 मई को ही OTT पर स्ट्रीम होने जा रहा है।
19: ये है अभय गुज्जर, बियर्डों का राजा।
20: कल रात तक पैसे नए न लल्ला
21: तो बियर्डन लगा दूंगा।
4: हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था।
22: बड़ा प्लान कर रहे हैं,
23: देवी के सर पर शेख साहब का हाथ है।
24: यहाँ का बादशाह सिर्फ एक है और वो है हम।
4: ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सीरीज क्राइम, पॉलिटिक्स और करप्शन की दिलचस्प कहानी लेकर आ रही है।
25: हम तो महादेव के भक्त हैं, एक ही बार में दिल, दिमाग और आत्मा।
4: यानी ये हफ्ता सिनेमा के शौकीनों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बड़े पर्दे के साथ साथ OTT पर भी उन्हें कई ऑप्शन मिलने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
26: करेंगे हम आज हर हर महादेव।
27: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत।
27: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
28: ईंधन की खपत कम करने के लिए पीएम की अपील के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला। मंत्रियों के काफिले में 50% की होगी कटौती। बड़े संस्थानों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा। सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा

0: बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र, यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और वैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन कर रहे रोमांच। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज, नूह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहाना।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: आइए शुरू करते हैं न्यूज पद का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों की भी हो रही है।
3: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के भव्य रथों का निर्माण परंपरा अनुसार पूरे विधि विधान के साथ तेजी से हो रहा है। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट रथ निर्माण स्थल पर तीनों रथों के निर्माण का कार्य सेवायतों की देखरेख में जारी है। भौरी उत्सव के अवसर पर चाकाडेरा अनुष्ठान के तहत तीनों रथों के पहियों को धुरों यानी एक्सल से जोड़ने का काम पूरा किया जा चुका है। 16 जुलाई को आयोजित होने वाली इस रथ यात्रा में 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के रहने का अनुमान है, जिसको देखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात और स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस उत्सव को लेकर पहली समन्वय बैठक में सभी व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा हुई। बैठक में सुरक्षा और श्रद्धालुओं की आवाजाही की व्यवस्था को बिना किसी बाधा के बनाने पर विशेष जोर दिया गया। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की हैं। यहाँ श्रीरंगम के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में चिथिराई उत्सव की अद्भुत छटा बिखर रही है। 11 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव इस साल 6 मई से 16 मई तक मनाया जा रहा है। इस उत्सव में भगवान विष्णु के अलग अलग वाहनों पर दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिल रहा है। उत्सव के दौरान भगवान रंगनाथ को चांदी के हाथी पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विशाल लकड़ी के रथ को भक्त जय घोष करते हुए मंदिर की सड़कों पर खींचते नजर आए। ये उत्सव अपनी भव्यता और पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग से सराबोर नजर आते हैं। चारधाम की यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। यहां हर दिन 15,000 से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। भगवान विष्णु के इस धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने के बाद से अब तक लगभग 3 लाख यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है, उसे यात्रा मार्ग पर हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतारों को देखकर समझा जा सकता है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के बाद श्रद्धालु देश के प्रथम गांव माणा में भी पहुंच रहे हैं और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते वो ठंड और बारिश से बचने के लिए यहां खरीदारी करते भी नजर आ रहे हैं। राजस्थान के 43 डिग्री तापमान में एक विदेशी महिला की तपस्या की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। पुष्कर में रूस की रहने वाली ये महिला 9 धुनी अग्नि तप कर रही हैं, जो नाथ संप्रदाय की एक बहुत प्राचीन और कठोर हठ योग साधना है, जिसमें साधक चारों तरफ धधकती आग के बीच बैठकर तपस्या करते हैं। रूस की इस महिला ने 10 साल पहले नाथ संप्रदाय को अपनाया था। उसके बाद से राधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ नाम की ये महिला नाथ संप्रदाय के रीति रिवाज से अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये अग्नि तपस्या भी उसी परंपरा की कड़ी है। अजमेर के पुष्कर में छोटी बस्ती स्थित शमशान भूमि पर अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में राधिका योगिनी 21 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रही हैं, जिसमें वो हर दिन लगभग 3.25 घंटे तक धधकती अग्नि के बीच बैठकर शिव साधना और गुरु बीज मंत्र का जाप करती हैं। साथ ही रोजाना हवन पूजन और आरती का आयोजन भी होता है। 3 मई से शुरू हुई उनकी ये साधना पूर्ण आहुति और संत भंडारे के साथ 25 मई को सम्पन्न होगी। कहीं तेज गर्मी का आलम तो कहीं बारिश और तेज हवाओं का दौर, देश में इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में खासकर पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ देखा जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सुबह से मौसम में बदलाव देखा गया, यहां हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने को लेकर बारिश का ऑरेंज अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था। पश्चिमी विक्षोभ का असर देश की राजधानी दिल्ली पर भी पड़ने का मौसम विभाग का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते के आखिर तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरू होने के लिए हालात अनुकूल होते जा रहे हैं। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में लू

0: चलने का अनुमान भी है। साथ ही दक्षिण के कुछ राज्यों में भी बारिश की संभावना जताई गई है।
1: चलिए बात करते हैं तेलंगाना के नरसिंह मंदिर की। मल्लूर का ये मंदिर अपनी जीवित प्रतिमा के कारण दुनिया भर में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यानी कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा को जीवित मानकर उनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर को लेकर लोगों में ये आस्था है कि इसकी प्रतिमा में दिव्य ऊर्जा का वास है, लिहाजा अगर आप धर्म और आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आपको नरसिंह मंदिर जरूर जाना चाहिए। यहाँ भगवान नरसिंह की जीवित प्रतिमा के दर्शन कर पाएंगे और उनकी दिव्य ऊर्जा को अनुभव भी कर सकेंगे।

0: तेलंगाना के मल्लूर में विराजमान हैं नरसिंह भगवान, जिन्हें छूने पर महसूस होती है इंसानी त्वचा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा से सटे तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां अनोखी मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति इंसान की त्वचा जैसी मुलायम है और मान्यता है कि मूर्ति को दबाने से उसमें तरल पदार्थ निकलने लगता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बैसाख के महीने में विशाल मेला आयोजित किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले के दौरान पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान के भक्त बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं।
1: हम हैदराबाद से नरसिंह भगवान के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर नरसिंह चौदस के दिन जो मेला लगता है, 8 दिन तक चलता है कंटिन्यू, बहुत पब्लिक है, जगह जगह से लोग आते हैं, बहुत अच्छे है दर्शन। यहाँ नाभि में से पस निकलता है नरसिंह भगवान के, बोली में जीवित रूप में है, बोली भी हर काम मनोकामना पूर्ण होती है। हम भी आए हैं, भगवान कुछ अच्छा करा तो अच्छा ही है, हम भी और आप सबको भी बोलते हैं कि दर्शन करने के लिए आओ सब जन।
0: नरसिम्हा स्वामी मंदिर, जिसे हिमाचल नरसिम्हा स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, ये मंदिर हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है और पहाड़ियों की शांति इसे आध्यात्मिक साधकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाती है। यहाँ लोग ध्यान लगाने और शांति से प्रार्थना करने आते हैं। भक्त इन सीढ़ियों को चढ़कर भगवान नरसिम्हा स्वामी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आते हैं। देश भर से श्रद्धालु नरसिंह भगवान की जीवित प्रतिमा के दर्शन के लिए लंबी यात्रा करते हैं। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन भक्तों को इसमें आनंद और शांति का अनुभव ही होता है। इस मंदिर की यात्रा और यहां के दर्शन से भक्तों को आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति को देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
2: छत्तीसगढ़ सीमा से लगा तेलंगाना का मुलुगु जिले में ये गांव है जहां पर नरसिंह भगवान की जीवित मूर्ति यहां पर बताई जाती है, जीवित मूर्ति यहां पर है, जिसमें शरीर जो है जिस तरह से इंसान का शरीर होता है उस तरह से कोमल है। यह 4000 वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहां पर हर वर्ष यहां पर मेला लगता है, जिसमें अलग अलग जगह से लोग यहां लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां पर तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग जगहों से लोग यहां दर्शन के लिए, यहां मान्यता है कि लोगों की मन्नत जो मांगते हैं वो पूर्ण होती है। आज हम यहां पहुंचे हैं, यहां लोग हर वर्ष मेला लगता है और काफी लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और काफी मान्यता है कि ये मंदिर जो जीवित आप नरसिंह भगवान यहां जीवित रूप में विराजमान है।
0: मंदिर के गर्भगृह में लगभग 10 फीट ऊंची भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर मान्यता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि साक्षात जीवित स्वरूप है और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। मूर्ति का पेट और दूसरे हिस्से इंसानी त्वचा की तरह कोमल माने जाते हैं। मंदिर के पुजारियों और भक्तों का मानना है कि मूर्ति की नाभि पर एक चोट का निशान है, जिसे नाभि प्रसादम कहा जाता है, जहां से तरल पदार्थ निकलता है। मान्यता है कि ये मंदिर 6वीं शताब्दी से पहले का है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऋषि अगस्त्य ने इस पहाड़ी का नाम हेमचला रखा।
3: चारधाम यात्रा में अब ITPP के जवान संभालेंगे ट्रैफिक की व्यवस्था। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
4: महाराष्ट्र के पुणे में गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। RPF के ऑपरेशन मातृ शक्ति के तहत पुणे सुपौल एक्सप्रेस में सफर कर रही गर्भवती महिला को ट्रेन में डिलीवरी के दौरान पूरी मदद की गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि महिला को ट्रेन में सफर के दौरान अचानक लेबर पेन हुआ। इस बात का अलर्ट मिलते ही RPF के जवान उसकी मदद में जुट गए। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस के साथ
3: और न्यूज पथ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर पायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और ये वायरल भी है।
5: एक पिता और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब तेजी के साथ देखा जा रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। मिठाई के जरिए ये मासूम बच्ची जिस अंदाज में पिता से अपने माँ के बारे में शिकायत करती है, उसने यूजर्स का दिल जीत लिया है।
6: पापा सुनो, एक बात पूछो।
7: हाँ, को पूछो।
6: आपकी शादी में मिठाई आई थी?
7: हाँ, मिठाई आई थी।
6: आपने खाई थी?
7: आंखों को खाई थी?
6: मम्मा को भी खिला देते।
7: क्यों?
6: मम्मा थोड़ा भी बोल लेती।
7: क्या?
6: अरे मीठा बोल लेती थोड़ा।
5: ये तो हम सब जानते हैं, इस धरती पर एक से एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ ज्यादातर लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से एक अजीबोगरीब हरकत करके सबको चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है। इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द नहीं महसूस हो रहा, देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत नहीं कोई मशीन हो। सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों को डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं, ताकि दुकान के सामने से गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिक्विन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिक्विन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के दानापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल किसी बैंक ATM की तरह से दिखाई देता है, लेकिन अंदर कैश नहीं बल्कि हेयर कटिंग सैलून दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करती थी। बाद में बैंक ने इसे तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहां से ATM हटा लिया। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिए गए थे। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहां पर एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने पर बैंक की ब्रांडिंग को छिपा दिया गया। ऑटो रिक्शा में सनरूफ। जहां लोग कार में सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है, लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखा। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे रैगजीन को काट कर एक खिड़की बना दी, जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कुछ ज्यादा कीमती लग रही है।
3: न्यूज़पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्रों की, जिन्हें आज बड़ा झटका लगा है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को देश भर में नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी। ये फैसला पेपर लीक होने के आरोप के बाद लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख जल्दी ही जारी की जाएगी। NTA ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और मामले की CBI जांच होगी। NTA ने जानकारी दी है कि नीट में बैठने वाले लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। पिछले परीक्षा केंद्रों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा देने वाले छात्रों से दोबारा एग्जाम में बैठने के लिए कोई अतिरिक्त फीस भी चार्ज नहीं की जाएगी। मामले की पड़ताल में सामने आया है कि पेपर छपने से पहले ही सवाल नकल गैंग के पास पहुंच गए थे। इनमें बायोलॉजी के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 35 सवाल थे, जो हूबहू परीक्षा में आए थे। NTA ने बताया है कि 8 मई को ही इस मामले से जुड़ी कुछ जांचों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था, ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जांच एजेंसियों से मिले निष्कर्षों के आधार पर ही यह तय किया गया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। जाहिर है कि लाखों छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता और नाराजगी दोनों देखने को मिल रहे हैं। इस मामले को लेकर हमने चंडीगढ़ में कुछ लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का ट्रेलर रिलीज। इसके साथ ही ऐसी कई और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर।
4: पत्रलेखा और मानवी गगरू स्टारर हीरा सारा और पांडिचेरी का ट्रेलर हुआ रिलीज, जिसमें दिखाया गया है कि अलग अलग बैकग्राउंड वाली दो लड़कियां अचानक सोलो बाइक ट्रिप पर पुदुचेरी के लिए निकल पड़ती हैं।
7: दोनों में पहले से जान पहचान नहीं रहती है, लेकिन साथ में एक ही बाइक से ट्रिप पर निकलने से दोनों दोस्त बन जाती हैं। दोनों ट्रिप पर एंजॉय करती हैं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर भी करती हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरह की परेशानियां भी हैं, उसकी झलक भी ट्रेलर में देखने को मिली है। कार्तिक चौधरी निर्देशित इस फिल्म में श्वेता साल्वे, आरिफ जकारिया, निशंक वर्मा भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। ये फिल्म 29 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
8: अंकल इसको मालूम है इसकी लड़की का है।
9: तू शादी तोड़ने जा रही
10: है। टीचो तू नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आई है,
11: उसको भी तो पता चले।
10: चल अभी चल।
7: जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें दिखता है कि एक बच्चा अपने दादाजी को सुपर हीरो बताता है। वो अपने दोस्तों में अपने दादाजी की झूठी सुपर हीरो वाली कहानियां सुनाता रहता है, जबकि उसके दादाजी असल में बुजुर्ग और कमजोर हैं, इसलिए उसकी बातों पर उसके दोस्तों को शक होने लगता है। ये फिल्म बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। मनीष सैनी निर्देशित इस फिल्म में प्रतीक, स्मिता पाटिल, भाग्यश्री दसानी, शरद सक्सेना जैसे कलाकार भी हैं। ये फिल्म 29 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
12: और राजू बोल रहा था तूने सामान फ्री में दे दिया था।
13: अब फ्री में हमारे लिए इतना कर रहे और मैं पैसे ले लूं।
14: एक एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तुम्हारी वो ट्रेन वाली खबर तो कहीं नहीं आई।
15: दोनों पागल बना रहे हैं।
16: अरे भाई सुनो, ये गंगाधरी शक्तिमान वाला सीन है।
7: सोनाक्षी सिन्हा ज्योति का स्टारर फिल्म सिस्टम का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसकी शुरुआत सोनाक्षी सिन्हा के किरदार नेहा से होती है, जो युवा वकील है और अपने पिता की लॉ फर्म में पार्टनर बनने के लिए खुद को योग्य साबित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पिता की भूमिका निभा रहे आशुतोष गोवरकर उसे कठिन केस लेने की चुनौती देते हैं। अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए नेहा सारिका का किरदार निभा रही ज्योतिका को अपने साथ लाती है, लेकिन उसके अपने कुछ छिपे इरादे दिखते हैं, फिर कुछ नए राज खुलते जाते हैं। ट्रेलर में सोनाक्षी का सिस्टम से संघर्ष दिखाया गया है।
17: इंसाफ पे सबका हक होता है।
18: सीनियर लॉयर होने के नाते तुम्हें वकालत सिखानी जरूरी है, और एक बाप होने के नाते तमीज।
19: प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस।
20: मुझसे इन्फॉर्मेशन चुरा के डैड को दोगे?
21: एक बात बोलू मैडम, दुनिया में हम सब अपना असली चेहरा छुपाते हैं।
7: इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस का दूसरा टीजर भी आया सामने। जो राजन निर्देशित इस फिल्म में दीपक तिजोरी, यूलिया वंतूर और स्पेनिश अभिनेत्री एलेसांड्रा वेल मेरेडीज अहम भूमिका में हैं। अपनी गहरी भावनात्मक कहानी और मजबूत अभिनय की वजह से ये इस वर्ष की चर्चित शॉर्ट फिल्मों में से एक है, जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी आयोजनों में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल के 79वें संस्करण में इसी हफ्ते दिखाया जाएगा। अभिनेत्री पूजा बत्रा के अलायंस मीडिया PTY लिमिटेड के सहयोग से निर्मित इस फिल्म को कांस में दो प्रमुख स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। इस फिल्म का प्रदर्शन मार्चे डू फिल्म कांस में 14 मई और फ्रेंच रिवेरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 16 मई को होगा। 12 से 23 मई तक आयोजित होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा भारत के कई स्टार्स भी बन रहे हैं।
22: यू हैव अ न्यू मैसेज।
7: महाकाल के दरबार में भक्ति में लीन नजर आई अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। उज्जैन की श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर वो वहां भस्म आरती में शामिल हुई। श्रद्धालुओं के बीच बैठकर तमन्ना महाकाल की आरती गाती और तालियां बजाती भी दिखी। उन्होंने चांदी द्वार से महाकाल को जल भी अर्पित किया। यहां दर्शन पूजन करके तमन्ना बहुत ही खुश नजर आई। यहां आने को उन्होंने अपना सौभाग्य बताया।
3: राहुल द्रविड़ बने T20 टीम के मालिक, आर अश्विन कप्तान। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
7: T20 टीम के मालिक बने राहुल द्रविड़। उन्होंने यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग में डब्लिन गार्डियंस टीम खरीदी है। राहुल द्रविड़ की टीम डब्लिन गार्डियंस की कप्तानी आर अश्विन करेंगे। इस लीग की वजह से यूरोप में T20 क्रिकेट के साथ साथ इस खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। ये लीग क्रिकेट आयरलैंड, क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन की साझेदारी में शुरू की जा रही है। EPTL का पहला सीजन 26 अगस्त से 20 सितंबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े नाम नजर आएंगे। IPL 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। IPL के सीजन में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन शानदार रहा है। गुजरात टाइटंस ने 11 मैच से 7 मुकाबले जीते हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 11 में से 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। दोनों ही टीमों के 14-14 पॉइंट्स हैं। जिम्बाब्वे के घरेलू क्रिकेट में खेले गए एक मुकाबले के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। 2025-26 मस्विंगो 50 ओवर फर्स्ट लीग के इस मुकाबले में स्कॉर्पियन क्रिकेट क्लब ने 50 ओवरों में 822 रन बना डाले, जबकि मेथल लॉयंस की टीम महज 28 रन पर ही सिमट गई।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
19: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: ईंधन की खपत कम करने के लिए पीएम की अपील के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले में 50% की होगी कटौती। बड़े संस्थानों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी। राजस्थान में अब गूगल मैप बताएगा एक्सीडेंट का खतरा, सड़क हादसों को कम करने के लिए मार्क किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, गूगल मैप से मिलेगी जानकारी। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, रुद्रप्रयाग का संगम व्यू पॉइंट बना यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र, यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है मिलन। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और वैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, झील में नौकायन कर रहे रोमांच। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बदला मौसम का मिजाज, नूह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, धौलपुर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहाना।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें और अखबार के पन्ने या अब टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गई। यहां हर किसी के हाथ में एक अलग कैमरा है, एक हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, तो कोई वीडियो तोड़ बरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है।

0: इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये बंगाल में टीएमसी को मिली हार के बाद का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ममता बानो की हालत खराब, बेहतर इलाज के लिए बांग्लादेश रेफर किया जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ममता बनर्जी को बेसुध होकर कार में बैठे हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि बंगाल में टीएमसी को मिली हार की तुरंत बाद का ये वीडियो है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के हाथों मिली बड़ी हार के बाद ममता बनर्जी सदमे में चली गई, ये तस्वीर उसी की है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल के लिए वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें यह नजर आया कि वीडियो में ममता की आवाज को डाउन करके उसके ऊपर अलग से आवाज को जोड़ा गया है, मतलब ममता जो कुछ भी कह रही हैं उसे इसके जरिए छुपा दिया गया है। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के दावे पर शक हुआ। इसके बाद हमने ममता बनर्जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में हमें ऐसी कोई भी पोस्ट या फिर प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर दावा सच है तो वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है जिसको ये शेयर किया जा रहा है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वीडियो का लंबा वर्जन एक आधिकारिक YouTube चैनल पर मिला। इस वीडियो को 10 मार्च 2021 को शेयर किया गया था। यहाँ मौजूद जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी कार के पास थी तब कुछ हमलावरों ने उन पर हमला किया। ये हादसा तब हुआ जब वह नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी। फिर ममता बनर्जी को इलाज के लिए नंदीग्राम से कोलकाता ले जाया गया था। हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक और विश्वसनीय वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 11 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार पार्टी के शीर्ष नेता सुखेंदु शेखर राय ने इसे लेकर कहा था कि ममता एक मंदिर में पूजा करने के बाद बिरुलिया अंचल से निकलने ही वाली थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें कार में धकेल दिया और जबरन दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके बाएं पैर में चोट आई थी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने इसे नाटक बताया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि ममता बनर्जी के बेसुध होने का वायरल वीडियो हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद का नहीं है। इस वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। असल में वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि करीब 5 साल पुराना है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर दो वीडियो का एक कोलाज शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के जीतने पर कोलकाता की सड़कों पर बिना कपड़ों के घूमने की बात कहने वाले सुफियान को लोगों ने सड़क पर निकालकर पीटा। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी यह रिपोर्ट देखिए।
2: सोशल मीडिया पर दो वीडियो का ये कोलाज तेजी से वायरल हो रहा है।
3: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दिया।
2: इसके पहले वीडियो में एक युवक मीडिया से बात कर रहा है।
3: हरा दिया। कलकत्ता घुरे। ओके घुरे। यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा।
2: वहीं दूसरे वीडियो में एक युवक की इस कदर पिटाई हो रही है कि उसके कपड़े तक फट गए हैं।
3: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दिया।
2: ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों लड़के एक ही हैं और इस लड़के ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो वो कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमेगा।
3: मेरा नाम सुफियान। यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दिया।
2: अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि नतीजों में वाकई टीएमसी के हारने पर जनता ने उसे सरे

0: शाम पीट पीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। सुशील,
1: मेरा नाम सुफियान है, यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा दी।
0: अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि नतीजों में वाकई टीएमसी के हारने पर जनता ने उसे सरेआम पीट पीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। यूजर्स वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से वायरल कर रहे हैं।
2: सोशल मीडिया पर ये दो वीडियो का एक कोलाज खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। पहले वीडियो में एक युवक मीडिया से बात कर रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में एक युवक की इस कदर पिटाई हो रही है कि उसके कपड़े तक फट गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों लड़के एक ही हैं और इस लड़के ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो वो कोलकाता में बिना कपड़ों के घूमेगा। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि नतीजों में वाकई टीएमसी के हारने पर जनता ने सुफियान के सरेआम पीट पीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो को गौर से देखा। पहले वीडियो में चेहरा साफ साफ दिख रहा है, लेकिन दूसरे वीडियो में मार खा रहे शख्स का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा। इससे साफ लग ही नहीं रहा कि ये दोनों वीडियो एक ही शख्स से जुड़े हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कई पुख्ता जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने इस वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि अगर ये वीडियो बंगाल का है तो आखिर कब का है और कहाँ का है, किस जगह का है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इस वीडियो के पीछे की सच्चाई।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी।
1: बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
0: वायरल कोलाज के जिस वीडियो में लड़का इंटरव्यू दे रहा है उसमें एक न्यूज आउटलेट का लोगो है।
1: मेरा नाम सुफियान है।
0: इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें ये वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला। यहाँ इसे 24 अप्रैल 2026 को पोस्ट किया गया था।
1: बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
0: वीडियो में दिख रहा लड़का वाकई चुनौती देते हुए ऐसा कहता है कि उसका नाम सुफियान है और अगर बीजेपी ने टीएमसी को हरा दिया तो वो बिना कपड़ों के कोलकाता में घूमेगा।
1: मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, पूरा कलकत्ता घूरे।
0: इसके बाद हमने दूसरे वीडियो के बारे में खोजना शुरू किया। हमने देखा कि वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है कि ये ढाका का वीडियो है। साथ ही इस यूजर ने एक बांग्लादेशी पत्रकार की इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर की है जिसमें वायरल वीडियो का लंबा वर्जन है। तेईस अप्रैल 2026 को ये वीडियो शेयर करते हुए इसे ढाका के शाहबाग इलाके का बताया था, जहां वायरल वीडियो में रक्तचरित गाना बज रहा है। वहीं इस वीडियो में बंगाली भाषा में कमेंट्री है। हमें गूगल मैप्स पर शाहबाग की वो जगह भी मिल गई जहां वायरल वीडियो शूट किया गया था। एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट ने भी 23 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये वीडियो शेयर किया। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो छात्र दल और छात्र शिविर नाम के दो ग्रुप्स के बीच शाहबाग में हुए टकराव का है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब छात्र दल के कुछ कार्यकर्ता बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बेटी जाइमा रहमान के बारे में किए गए कुछ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंच गए। छात्र दल का आरोप था कि छात्र शिविर ने नेता अब्दुल्ला अल महमूद ने AI से बनी विवादित तस्वीरें शेयर की। वहीं छात्र शिविर का कहना था कि उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं। छात्र दल के पुलिस के पास पहुंचने की जानकारी मिलने पर छात्र शिविर के कार्यकर्ता, कुछ पत्रकार और ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन के प्रतिनिधि भी शाहबाग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान DU CSU के लिटरेरी एंड कल्चरल अफेयर्स सेक्रेटरी मुसद्दिक पर हमला हो गया। DUCSU के एक दूसरे नेता एबी जुबैर पर भी हमला हुआ और दोनों ने पुलिस स्टेशन में छुपकर जान बचाई।
1: यहाँ वो दीदी को टीएमसी हरा।
0: साफ है, पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के हार के बाद बिना कपड़ों की बात कहने वाले सूफियान को पीटे जाने का वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है।
1: मेरा नाम सूफियान है।
0: सूफियान के नाम पर सोशल मीडिया पर जो पिटाई का वीडियो शेयर किया जा रहा है वो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश के ढाका का है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक रखते छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
2: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
0: कई सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों के डिस्प्ले के लिए होते हैं ताकि दुकान के सामने गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिकीन बोलते हैं। कई सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों के डिस्प्ले के लिए होते हैं ताकि दुकान के सामने गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिकीन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है कि एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिकीन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कॉम्पिटिशन का थीम शायद खाने पर रहा होगा क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप को इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं। भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं थी और न ही किसी कंपनी के शोरूम से निकली थी। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन खुद रुक गए और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगाई गई थी और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ रहा था। देखने में यह किसी छोटी कार जैसी लग रही थी और बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जहां लोग सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखता है। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे रैगजीन को काटकर एक खिड़की बना दी है जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे की मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कहीं ज्यादा कीमती लग रही है। दुनिया के लिए यह सिर्फ एक कटा हुआ रैगजीन हो सकता है लेकिन उन बच्चों के लिए यह उनके सुपर हीरो पिता का प्यार है। इस वीडियो के वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। नेटिजंस ऑटो ड्राइवर पिता की क्रिएटिविटी और उसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। दानापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल किसी बैंक ATM जैसा दिखाई देता है। बड़ा SBI बोर्ड, नीली लाइट, ग्लास डोर और 24 घंटे सेवा का साइन। लेकिन जैसे ही लोग अंदर जाते हैं वहाँ कैश मशीन नहीं बल्कि हेयर कटिंग सलून देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करता था। बाद में बैंक ने किसी तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहाँ से ATM मशीन हटा ली। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहाँ अब एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। नाई ने ATM का बोर्ड हटाने के बजाय उसी के नीचे अपनी दुकान चलानी शुरू कर दी। अब लोग मजाक में इसे हेयर कटिंग ATM और बाल निकासी मशीन कहने लगे हैं। सोशल मीडिया पर दुल्हा दुल्हन की यह एंट्री आकर्षण का केंद्र बन गई है। वायरल हो रहे वीडियो में बाइक की कतार दिखाई दी, जिस पर दुल्हा दुल्हन और फिर उनके दोस्त या रिश्तेदार वेडिंग वेन्यू पर एंट्री लेते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले दूल्हा बाइक पर आता है, उसने सूट पहना है, उसकी बाइक पर ग्रूम भी लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरी बाइक पर दुल्हन एंट्री मारती है, वो भी व्हाइट सूट में नजर आती है। उसके सिर पर क्राउन और ब्राइडल वेल होती है। ये वीडियो मेघालय की एक शादी का बताया जा रहा है। कभी कभी कैमरे में ऐसे दृश्य कैद हो जाते हैं जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का सिर चकरा गया है। दरअसल जिस यामाहा R15 को खरीदने का सपना आज की युवा पीढ़ी देखती है, उसे एक महिला ने कबाड़ ढोने वाली गाड़ी बना डाला। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दंग रह गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब दो युवक अपनी स्कूटी से जा रहे थे तो उनकी नजर इस अनोखी गाड़ी पर पड़ी। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला लाल साड़ी बांधे एकदम देसी और रत्नागिरी अंदाज में UK की सड़कों पर आम बेचती दिखाई दे रही है। इस दौरान उसके साथ एक ठेला है जो आम से खचाखच भरा हुआ है और वो UK की सड़कों पर ऐसे आम बेच रही है मानो UK नहीं बल्कि मुंबई या दिल्ली की गलियां हूँ।
5: लंदन वालों ऑफर लाई रहे, ऑफर अखा UK में तुमको इससे सस्ता आम मिल जाएगा ना, तो शांता तो यही ठेला उठा के वापस चली जाएगी रत्नागिरी को।
0: इतना ही नहीं, आम बेचते हुए महिला आम ले लो आम की आवाजें भी जोर जोर से लगाती दिखाई दे रही है, जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है। लोग उसके ठेले पर आते हैं और भाव पूछते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के शहरों में मोहल्ले वाले पूछा करते हैं।
6: अरे संता भाई ऑफर कितने का लगाया वो तो बताओ।
5: अल्फांजो 18 का दर्जन और केसर 16 का दर्जन, अपने UK में तुमको किधर भी नहीं मिलेगा इससे सस्ता।
0: कुल मिलाकर गर्मी के मौसम में आम की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है और इससे वेस्टर्न छोर भी अछूता नहीं है। भूरे रंग के हिमालयी भालू भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। हमारे देश में यह रेयर प्रजाति लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखी जाती है। ये हिमालयी भालू ठंडे इलाकों में रहते हैं, जिनका रंग सामान्य भालुओं से सुनहरा या हल्का भूरा होता है, जिसकी वजह इनका ठंडे माहौल में रहना होता है। इंसानों से दूर रहना पसंद करने वाले इन दुर्लभ भालुओं के सड़क पर घूमने की एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह सड़क पर उछलते कूदते हुए अपने अंदाज में ही चलते नजर आ रहे हैं। उन्हें दौड़ते हुए देख जहां एक और लोगों को मजा आ रही है, वहीं दूसरी ओर लोग लुप्त प्रजातियों को इस तरह सड़क पर देखकर सवाल भी कर रहे हैं। स्वभाव से शर्मीले माने जाने वाले हिमालयी भालू को वायरल वीडियो में सड़क पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। गाड़ी से जा रहा शख्स इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करता हुआ आगे निकल जाता है। इस बीच दोनों ही भालू अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए नजर आते हैं। सुंदर नजारा, बर्फ से आधे ढके पहाड़ों के बीच हिमालयी भालुओं का दौड़ना इस नजारे को एक रेयर मोमेंट बना देता है। क्या आपने कभी किसी बंदर को इंसानों की तरह बकायदा सैलून में जाकर बाल कटवाते देखा है? कर्नाटक के चामराजनगर से एक ऐसा ही बेहद क्यूट और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बंदर मजे से सैलून की कुर्सी पर बैठा और नाई से अपने बालों की सेटिंग करवाई। इस अनोखे पल को देखकर न सिर्फ वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए, बल्कि अब यह वीडियो इंटरनेट पर भी धूम मचा रहा है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly, It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
8: सनातन संस्कृति का प्रकाश दुनिया भर में फैल रहा है, इसका जीवंत प्रमाण इस समय राजस्थान के पुष्कर में देखने के लिए मिल रहा है। पुष्कर में भीषण गर्मी में विदेशी साध्वी कठिन नौ धुनी तपस्या में लीन है। रूस में जन्मी ये साध्वी 21 दिनों की कठिन साधना के दौरान रोजाना 3 घंटे से ज्यादा धुनी रमाकर बैठती हैं।

0: ये तप शिव का प्रत्यक्ष आह्वान है। ये साधना सनातन की शाश्वत शक्ति का प्रमाण है। इसी सनातन में आस्था रखने वाली रूस में जन्मी एक योगिनी इन दिनों नौ धुनी अग्नि तपस्या में लीन है। ध्यान में लीन ये राधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ हैं, जिन्होंने 10 साल पहले नाथ संप्रदाय अपनाया था। इन दिनों वो पुष्कर में छोटी बस्ती स्थित शमशान भूमि पर अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में नौ धुनियों के बीच बैठकर 21 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रही हैं।
1: नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो नाथ जी बनने का महत्व तो यही होता है कि जो हमारी धरोहर है उसको संभालना, तो यही हमारी धरोहर है। वह नाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो वह इस तपस्या को कर रही हैं। इनकी वह पहली तपस्या है।
0: ये कोई साधारण तप नहीं, नाथ संप्रदाय की प्राचीन अग्नि साधना है जो कर्मों को भस्म कर आत्मा को शुद्ध कर देती है। और इस साधना में उतरने से पहले शरीर पर भस्म का लेप लगाया जाता है, फिर धुनियों के बीच योग मुद्रा में बैठा जाता है। गोबर के कंडों से लगातार धुनी प्रज्वलित होती रहती है। धीरे धीरे धुनियों में गोबर के कंडों की संख्या बढ़ाई जाती है और अंतिम दिन 108 गोबर के कंडों का इस्तेमाल होता है।
1: कभी भी कोई भी संत महात्मा तपस्या करता है तो नगरी के भला के लिए करता है, विश्व शांति कल्याण हेतु ही करता है। कोई कार्य करता है तो जो भी जाता है दर्शन करता है उसके पुण्य के भागी बनता है। यह 9 धुनी तपस्या है। कोई महात्मा 21 धुनी करता है, कोई 108 धुनी करता है, कोई 1100 करता है। यह आदि अनादि काल से हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा चली आ रही है, जो कि इस कठोर साधना को हमारे संत महात्मा करते हैं, जिसको हम धुनी तपस्या के रूप में जानते हैं।
0: रूस की महिला की इस कठिन साधना की चर्चा अब चारों तरफ है। दूर दूर से लोग इस विदेशी महिला संत को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पुष्कर की पावन भूमि पर की जा रही ये तपस्या सनातन की अमर ज्योति को विश्व भर में फैला रही है। पुष्कर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इस हफ्ते भी कई धमाकेदार फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं। एक तरफ है आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो, और दूसरी तरफ है संजय दत्त की आखिरी सवाल। थिएटर्स ही नहीं, ओटीटी पर भी दर्शकों को कई ऐसी फिल्में और सीरीज देखने के लिए मिलेंगी जिनका काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था।
3: डिबेट विबेट बाहर की सोचे विकी, डिबेट यानी विवाद, भारत विवाद नहीं संवाद यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इसमें भरोसा लगता है।
4: सच धुरंधर में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद संजय दत्त एक बार फिर पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने को तैयार है।
3: वरना आजकल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट,
4: उनकी फिल्म आखिरी सवाल 15 मई को थिएटर में रिलीज होने वाली है।
3: तो हैशटैग बनाते विल शिवाजी बेंड द नी।
5: देखिए ये डिबेट नहीं है, ये दंगा है।
3: इतिहास गवाह है, जब भी भगवे के ओर कोई कालिक दिखता है तो उसी स्याही से इतिहास लिखा जाता है।
6: लेफ्ट इज ऑलवेज राइट।
7: सारा मुझे अपने लक्ष्य तक।
4: पहले ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट में देरी की वजह से इसके रिलीज डेट को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया।
6: ये चोट निशान छोड़ेगी।
4: इस फिल्म की सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है।
8: बटोर सके और हमें इमोशनल,
9: ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना सर, ताकि आप अपने आरएसएस को बचा सके।
4: रिलीज से पहले राजधानी में फिल्म का एक प्रीमियर रखा गया है। इस प्रीमियर में कई नामी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।
8: कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ टेरर।
4: फिल्म में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बड़े प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है।
8: और आरएसएस वायलेंट है,
3: वो तब गिरा जब इस देश के बहुसंख्यक समाज का विश्वास टूट गया।
4: संजय दत्त की इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।
10: आदमी शिष्टाचारी है, पति आज्ञाकारी है, और तो और वन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी है। समस्या अबे हमारे जीवन में कहां से आएगी समस्या।
4: संजय दत्त की आखिरी सवाल को पर्दे पर टक्कर देने के लिए आयुष्मान खुराना हंसी ठहाकों का फुल डोज लेकर आ रहे हैं।
11: जानवर काजे भूल गए, घर को पिंजरा का ये पकड़ लिया।
10: अरे चंचल को।
4: उनकी फिल्म पति पत्नी और वो दो भी 15 मई को रिलीज हो रही है।
12: खातून कौन थी? Who was the ladies? एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
13: तो पुलिस में जाती वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
4: इस फिल्म में आयुष्मान, रकुल प्रीत सिंह, वामिका गाबी और सारा अली खान के साथ कॉमेडी का तड़का लगाएंगे।
14: कैसे है आपका मानसी?
4: ये फिल्म 2019 में कार्तिक आर्यन और भूमि पडनेकर की फिल्म पति पत्नी और वो की सीक्वल है। टीजर रिलीज होने के बाद से इस फिल्म को लेकर दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई है। फिल्म में आयुष्मान खुराना का लुक भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।
15: धर्म करते हैं कर्म छूटता है, कर्म करते हैं धर्म छूटता है, कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुँचती।
16: 8 साल में तो आम का पेड़ भी फल देने लग गए, तेरे में तो कैरी भी ना फूट रही।
17: हमारी इन्वेस्टिगेशन के
4: रणदीप हुड्डा की मोस्ट पॉपुलर सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 भी 15 मई को ही OTT पर स्ट्रीम होने जा रहा है।
18: ये है अभय गुज्जर, बियर्डों का राजा।
19: कल रात तक पैसे ना आए ना लल्ला
20: तो बियर्ड लगाड़ दूंगा।
4: हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था।
21: बड़ा प्लान कर रहे हैं,
22: देवी के सर पर शेख साहब का हाथ है।
23: यहाँ का बादशाह सिर्फ एक है और वो है हम।
4: ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सीरीज क्राइम, पॉलिटिक्स और करप्शन की दिलचस्प कहानी लेकर आ रही है।
24: हम तो महादेव के भक्त हैं, एक ही बार में दिल, दिमाग और आत्मा।
4: यानी ये हफ्ता सिनेमा के शौकीनों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बड़े पर्दे के साथ साथ OTT पर भी उन्हें कई ऑप्शन मिलने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
25: करेंगे हम आज हर हर महादेव।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला